0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है।
2: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता, और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
6: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
5: Learn more at emory.edu.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
7: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक का प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
8: सोशल मीडिया वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ और ये वीडियो उसी हमले से जुड़ा हुआ है। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
9: बिहार की राजधानी पटना के नाम पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तीन शख्स को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते देखा जा रहा है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही तीनों नकाबपोश अंदर घुसते हैं, वैसे ही गेट पर खड़े दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर पड़ते हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पटना इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की सूचना से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
8: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में तीन नकाबपोशों को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमले का ये वीडियो है, और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, और वीडियो की शुरुआत में ही नजर आता है कि तीन नकाबपोश बंदूक लेकर गेट को खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसते हैं, उस दौरान वहां मौजूद दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई थी, मतलब यह है कि दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक सारे किरदार अपने अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा वीडियो में एक जगह है ये भी देखने को मिल रहा है कि यह आदमी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब अगर आतंकी हमला हुआ होता तो फिर घटनास्थल पर अफरा तफरी मचनी थी, लेकिन ये शख्स बिना डरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये भी हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर पटना के इस्कॉन मंदिर में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ होता या आतंकवादी घुसे होते तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर होती, लेकिन कहीं कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिली। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुट गई। सर्च के दौरान हमें संबंधित दावों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि ऐसी खबरें मिली जिसमें बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में एक मॉक ड्रिल हुई थी। 29 जुलाई को पब्लिश एक खबर में बताया गया है कि घटना असली आतंकी हमले की नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए किए गए मॉक ड्रिल की थी। अभ्यास के दौरान आतंकी हमले का काल्पनिक माहौल तैयार किया गया। खबर में वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें एक रीजनल न्यूज चैनल के एक्स हैंडल पर एक खबर मिली। 29 जुलाई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में मॉक ड्रिल हुई थी। इसी तरह हमें बिहार पुलिस के एक्स हैंडल पर भी मॉक ड्रिल से जुड़ी पोस्ट मिली। 29 जुलाई की इस पोस्ट में कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया था, आज दिनांक 29 जुलाई को पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में बिहार एटीएस द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आतंकी हमले अथवा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों एवं संबंधित हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना तथा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभ्यास के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई, परिसर की घेराबंदी, श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी, संदिग्धों की तलाश तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का यथार्थ परख अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस प्रकार के नियमित मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जांच के अगले चरण में हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें डीडी न्यूज बिहार के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें वायरल वीडियो से जुड़ा वीडियो मिला। इसमें वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। वीडियो के साथ साफ तौर पर इसे मॉक ड्रिल बताया गया है। साथ में लिखा गया है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की स्थिति पर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सुरक्षा एजेंसियों ने पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले का परिदृश्य तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। पटना के इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा को जांचने के लिए 29 जुलाई को एक मॉक ड्रिल हुई थी। उससे जुड़े वीडियो को अब असली आतंकी घटना बताकर वायरल किया गया। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए मकानों को दिखाया गया और कहा जा रहा है कि असम का वीडियो है, क्योंकि असम में भयानक बाढ़ आई है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद भरभराकर कई मकान जमींदोज हो गए। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
10: बीते 6 दशक की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के कारण राज्य के 11 जिलों के करीब 7.21 लाख से अधिक लोग, करीब 900 गांव प्रभावित हुए हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 मिनट का है जिसमें बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि यह असम का 28 जुलाई का दृश्य है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 52 साल में कभी नहीं दिखी ऐसी तबाही। असम बाढ़ में अब तक 68 मौत, 6 लाख से बेघर लोग, घर तो ताश के पत्तों के माफिक गिर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
8: दरअसल सोशल मीडिया पर असम की बाढ़ का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की, क्योंकि ये बात सच है कि असम में बाढ़ के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। हाल फिलहाल में बाढ़ की विभीषिका से जुड़ी कई तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन वायरल हो रहा ये वीडियो असम का ही है, ये जानना जरूरी था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में मौजूद पहला घर जिस घर पर गिरता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक घर की छत पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भी काफी अजीब से दिखाई देते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
10: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर 27 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच इसी तरह के कई वीडियोज अपलोड किए हुए मिले। इनमें से अधिकांश वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल पर भी जांचा, तो हमें हाइव डिटेक्शन टूल और रिजेम्बल AI डिटेक्शन ने भी इसके AI से बने होने की संभावना जताई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि असम में आई बाढ़ के दावे से शेयर हो रहा ये वीडियो असल में AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
11: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक माँ ने अपने बेटे की रोज की परेशानी का एक ऐसा मजेदार हल निकाला है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल इस बच्चे की एक आदत उसकी माँ के लिए सिरदर्द बन गई थी। पढ़ाई के दौरान वो हर थोड़ी देर में अपनी कोई न कोई चीज खो देता था। कभी पेंसिल गायब हो जाती थी तो कभी रबर का पता नहीं चलता और कभी शार्पनर ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता। पढ़ाई से ज्यादा वक्त सामान तलाशने में चला जाता था। माँ भी रोज रोज यही कहानी देखकर परेशान हो गई थी। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे बच्चे का सामान भी सुरक्षित रहे और उसकी पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। वीडियो में दिखाई देता है कि माँ ने बहुत ही आसान लेकिन कमाल का देसी जुगाड़ अपनाया। उसने एक पतली सी रस्सी ली और उसी में बच्चे की पेंसिल, रबर और शार्पनर को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उस रस्सी को बच्चे के गले में इस तरह से पहनाया, जरूरत पड़ते ही वो आसानी से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सके। अब न तो पेंसिल इधर उधर गिरने का डर था, न ही रबर या शार्पनर खोजने की परेशानी। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बच्चे को भी इस अनोखे इंतजाम से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आई।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल सुबह सुबह स्कूल पहुंची इस बच्ची का स्कूल का पहला दिन है। वो प्रेयर की लाइन में खड़ी है, प्रेयर चल रही है, लेकिन इस चंचल बच्ची का ध्यान प्रेयर में नहीं, वो अपने ही मस्ती में मगन है। और सब बच्चे जहाँ आँख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो इतना क्यूट हंस रही है कि उसे देखकर हर चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस बच्ची की हरकतें आपको भी हंसने के लिए मजबूर कर देंगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्ची पार्क की बेंच पर लगे स्टैचू को रियल समझ रही है। वो पढ़ने की मुद्रा में बेंच पर बैठे बच्चों के स्टैचू को देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। यही नहीं, वो जब देखती है कि स्टैचू में कोई हरकत नहीं हुई, तो वो गोल गोल घूमकर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकतें देख सबको बच्ची पर प्यार आ रहा है।

ये मासूम आवाज और गाने का अलग अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची पूरे मन से गाना गा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पूरे आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाती रहती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश की इन तीन बहनों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी मीठी आवाज और दिल को छू लेने वाली गायकी से ये तीनों लोगों का दिल जीत रही हैं। इनकी वीडियो में कोई भारी भरकम सेटअप या दिखावा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर परफॉर्मेंस लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल के माहौल को अपनी मुस्कान और डांस से खुशियों में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अस्पताल के बेड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और सिर पर टांके भी नजर आते हैं। इसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर या उदासी नहीं दिखती। जैसे ही शैकी गाना बजता है, वो बेड पर मस्ती में डांस करना शुरू कर देता है। इस खूबसूरत पल को बच्चे की बड़ी बहन ने और भी खास बना दिया। वो भी अपने छोटे भाई के साथ डांस करने लगी। दोनों की मस्ती देखकर अस्पताल का कमरा कुछ देर के लिए किसी डांस स्टेज जैसा लगने लगा। जहां आमतौर पर इलाज और चिंता का माहौल रहता है, वहीं इस भाई बहन की जोड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहां मौजूद एक नर्स भी इस प्यारे पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती नजर आई।

घर में बच्चे का जन्म हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन जब किसी परिवार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो जाए तो वो पल और भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पूरे 52 साल बाद पहली बार बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही नन्ही परी के आने की खबर मिली, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। वीडियो में परिवार के सदस्यों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। कोई खुशी के आंसू बहाता नजर आता है तो कोई बच्ची को गोद में लेकर प्यार से निहार रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या छोटे सदस्य, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी दिखाई दे रही है।

देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने इस बार इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पानी से भरे खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। खेत पूरी तरह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था जिससे काम करना काफी मुश्किल लग रहा था। महिला लगातार मेहनत कर रही थी और अपने काम में जुटी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना के कुछ जवान अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही जवानों की नजर खेत में काम कर रही महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना सफर कुछ देर के लिए रोक दिया। बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के कुछ जवान तुरंत खेत में उतर गए। उन्होंने महिला से बातचीत की और फिर उसके साथ मिलकर धान की रोपाई करने लगे। कुछ मिनटों तक सभी जवान महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जवानों की इस छोटी सी मदद से महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडोनेट ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जीरो ग्रेविटी में इन योग करती दिख रही हैं। इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स हैरान भी हैं और इसे जादुई भी बता रहे हैं। दरअसल पृथ्वी पर तो लोग मैट बिछाकर आराम से योग कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर चीज हवा में तैरती है, इसलिए योग करने के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की दीवारों और उसके दूसरे हिस्सों का सहारा लेते हैं। बिना ग्रेविटी के शरीर को सीधा बनाए रखने के लिए कोर स्ट्रेंथ यानी पेट और अंदरूनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। इन योग में शरीर को धीरे धीरे और देर तक खींचा जाता है, इससे थकान दूर होती है।

देश भर में इंसानों के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर मिलना बेहद आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे पार्लर के बारे में सुना है जहां भैंसों, बैलों और दूसरे दुधारू पशुओं का मेकअप और ग्रूमिंग की जाती हो। हरियाणा के कैथल जिले में एक ऐसा ही अनोखा ब्यूटी पार्लर खुला है जो इन दिनों पूरे देश और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनूठे ब्यूटी पार्लर की नींव कैथल निवासी संदीप जाखोली ने रखी है। पार्लर में पशुओं के सींगों की पॉलिश, हेयर कट, खुरों की सफाई और टूटे सींगों के लिए नकली सींग लगाने जैसी अनूठी सेवाएं दी जा रही हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ खेलों का खत्म होने का जश्न नहीं बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां पर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
4: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था बल्कि भारत के लिए भी यह ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
5: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
4: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
4: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड, जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट्स के 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता, और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: आज सावन का पहला मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन, सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का महापर्व। पुंछ में अराई शिव मंदिर से बड़ा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। कांवड़ मेले का दिख रहा है अनोखा अंदाज, बड़ी बड़ी शिव प्रतिमाओं और झांकियों वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की योगी सरकार की तैयारी, 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के सात जिलों में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश में मौसम होगा मेहरबान, 4 से 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, 4 से 6 डिग्री गिरेगा तापमान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

हमारे पास आयोजक मंडल और हमारे उद्घोषक महोदय आए, बोले गुरुजी गर्मी भयंकर है, पहले तुम 1-1.5 घंटे की कथा कर लो, फिर दरबार लगा लेना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, बोले आपको दरबार में 2-2.5 घंटा लग जाना, फिर आपका इंजन ही 1-1.5 घंटे में गर्म होता है, सो कथा में 3 घंटे लगाना, रात के 10 बज जाएंगे। तो हमने कहा क्या करें, बोले गुरुजी पहले 1.5-2 घंटे की कथा सुना दो, फिर चाहे जितने बजे तक दरबार लगा लेना। उससे हमने कहा क्या होगा, बोले तब तक कुछ ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था राजस्थान इतना गर्म है, हमारे तो प्राण निकल रहे, सांस सी फूल रही। और हम तो ये बात पे आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग कैसे रह लेते होगे यहां पर भैया कितनी भी गर्मी रहे, हनुमान कथा की शीतलता भी तो दिल को ठंडक पहुंचा रही है। चौपाई कहती है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, इसीलिए आप सभी लोग यह चौपाई पहले गा लीजिए।

मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया, जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत, असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलों, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी को कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरी प्रिय, मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा।

देवे या ना देवे, पर मेरे पागलो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अच्छा देखो तो धनरे अंग्रेजी का जमाना क्या जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी एसी काले भूरे बिलैया छाप ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे, हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे बैल कम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं कुत्तों से सावधान। बताओ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए, चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा।

हनुमान जी कौन? जिन्हें ना मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराराम धीसम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए

जिनका चारों युगों में प्रताप है, यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में बानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपित ध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है, तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहाँ? अरे भैया कहाँ नहीं, लो हम उत्तर दे देते हैं, कहाँ?

जहाँ जहाँ संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो, संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहाँ? जहाँ महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो, छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत हैं। बोलो जय सिया राम। देखा, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने, आपको हम बताएं, अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए, 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई। आपको हम प्रमाण सहित देते हैं। पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहुं मोके भयो बिहारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह। पहली छलांग हनुमान जी ने बाल काल में बचपन में लगाई। ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहाहा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा वही दूसरी छलांग

शक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई? संजीव

0: पहली छलांग बचपन में सूर खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह वैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई, आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई, जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है? पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने पांचवी छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में?
1: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता, और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: स्टेप इनटू टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक वर्क्स फ्रॉम द मास्टर्स, brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
3: Good news today is really good. It's in this, right? उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
0: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: आज है सावन का पहला मंगलवार, माँ मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन, सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का महापर्व। पुंछ में आराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। कावड़ मेले का दिख रहा है अनोखा अंदाज, बड़ी बड़ी शिव प्रतिमाओं और झांकियों वाली कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। कावड़ यात्रा को भव्य बनाने की योगी सरकार की तैयारी, 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश में मौसम होगा मेहरबान, 4 से 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, 4 से 6 डिग्री गिरेगा तापमान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: आज है सावन का पहला मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा, मां मंगला गौरी देती हैं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। मां मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप, मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट होते हैं दूर। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की थी कठोर तपस्या, कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को किया प्रसन्न। पुंछ में श्रद्धालुओं ने आराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की, पिछले 5 साल से लगातार हो रही है ये पैदल यात्रा। यात्रा के दौरान लगे बम बम भोले के जयकारे, नई पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ना है यात्रा का मकसद। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इस यात्रा में होते हैं शामिल, भगवान भोले के भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। 5 साल पहले सिर्फ 11 लोगों से शुरू हुई थी ये यात्रा, अब इस यात्रा में जुड़ चुके हैं 100 से ज्यादा श्रद्धालु। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ कर रहे हैं कदमतार। हरिद्वार कावड़ मेले में दिखा नया रंग, पैदल कावड़ के साथ साथ अनोखी और विशाल कावड़ भी लोगों का खींच रही है अपनी ओर ध्यान। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र, कावड़िये शिव, शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगाजल ले जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते बढ़ रहे हैं आगे कावड़िये, हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ कर रहे हैं अपनी यात्रा पूरी। झांकियों पर लाखों खर्च कर रहे हैं कावड़िये, पैसे पूछने पर कावड़िये बताते हैं सब भोलेनाथ की कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है संभव। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं कावड़िये, भगवान शिव में आस्था देती है उन्हें लंबी यात्रा की ताकत। सावन के पहले सोमवार को महाकाल की भक्ति के रंग में डूबा उज्जैन, रजत पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले भगवान महाकाल।

0: भगवान महाकाल ने उज्जैन के लोगों और उज्जैन पहुंचे श्रद्धालुओं को चंद्र बौलेश्वर और मन महेश स्वरूप में दिए दर्शन। महाकाल का भव्य दिव्य रूप देखने उमड़े नगरवासी। कड़ाबीन और शंख ध्वनि के बीच निकली महाकाल की पालकी। पुलिस के जवानों ने बैंड की धुन पर महाकाल को दी सलामी। गणों का वेश बनाए बहरूपी भी हुए शामिल। वैदिक उद्घोष की थीम पर निकाली गई महाकाल की सवारी। शिप्रा तट पर वेद पाठी बटुकों ने किया वेद का पाठ। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन किए। अपनी प्रजाजनों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हैं भगवान महाकालेश्वर। सावन और भाद्रपद मास में हर सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं महाकाल। सावन के पहले सोमवार के मौके पर केदारनाथ धाम में दिखी रौनक। बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में धाम पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का किया जलाभिषेक। केदारनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच रोजाना पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिखी नोटों वाली कावड़। कावड़ में लगाए गए 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट। भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली से ले जा रहे हैं कावड़। दिल्ली के रहने वाले भोले के भक्त दीपांशु ने अपनी कावड़ में लगाए हैं नोट। तीन साथियों के साथ हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर की कावड़ यात्रा पर है दीपांशु। सावन के पहले सोमवार को झारखंड के रामगढ़ में उमड़े श्रद्धालु। चमत्कारी शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़। यहां मां गंगा खुद करती हैं जलाभिषेक। टूटी झरना मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में मां गंगा की प्रतिमा की नाभि से पूरे साल शिवलिंग पर होता रहता है जलाभिषेक। शिवलिंग के ऊपर विराजमान है मां गंगा। प्रयागराज के एक मंदिर में भगवान के साथ साथ एक जज के रूप में भी पूजे जाते हैं महादेव। मान्यता है कि उनकी अदालत में भक्तों की गलतियां माफ करते हैं भोलेनाथ। त्रिवेणी संगम के पास मौजूद शिव कचहरी के नाम से मशहूर इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और गलतियों का पश्चाताप करते हैं। यहां सावन में लगता है मेला। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिवस के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। सुनील ग्रोवर ने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिद्वार के कलेक्टर ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। डीएम ने पत्नी के साथ किया जलाभिषेक। श्रद्धालुओं को बांटे फल। सावन के पहले सोमवार पर चंदौली के कालेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन को पहुंच रहे श्रद्धालु। यहां भोले शंकर के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु टलने की है मान्यता। चंदौली के सकलडीहा में मौजूद भोलेनाथ के इस मंदिर में लोगों की विशेष मान्यता। सावन के मौके पर दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से यहां पहुंच रहे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग जारी। गंगा में बढ़े हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग। आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बाढ़ और जल राहत टीम की तैनाती। अत्याधुनिक उपकरणों मोटर बोट वाटर एम्बुलेंस और जीवन रक्षक संसाधनों से लैस है टीमें। सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अमरनाथ तक निकली भव्य कावड़ यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। महिलाओं ने एकता सामूहिक सहभागिता का दिया संदेश। बोल बम के जयकारों से भक्तिमय हुआ डोंबिवली। चमोली के बद्रीनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। भक्तों के बीच बांटी गई खीर। मध्य प्रदेश के खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने किए ओमकारेश्वर के दर्शन। रांची में सावन की पहली सोमवारी पर शिव में हुआ पहाड़ी मंदिर, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। जयपुर के तड़केश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। करनाल में प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा। कांवड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए 40 कूलर, 30 सीसीटीवी कैमरे से हो रही है भक्तों की निगरानी। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ का सहस्त्रकुंड झरना हुआ ओवरफ्लो, झरने को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, सामने आया झरने का ड्रोन वीडियो। श्रीनगर में लोगों के लिए राहत बनकर आई बारिश, बारिश से गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश, राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बिजली की गरज और चमक के साथ हुई भारी बारिश, कई जगह सड़कों और रेल लाइन्स पर भरा पानी, दार्जिलिंग में आज बारिश का रेड अलर्ट। दक्षिण कश्मीर के त्राल के नागबल इलाके में अचानक आई बाढ़ के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियान में जुटे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान, स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख, रजत पदक विजेता को 20 लाख, कांस्य पदक विजेता को मिला 10 लाख रुपए का इनाम। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन, वेटलिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 8 मेडल। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाली मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की मुलाकात, सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन की तारीफ की। गुजरात के युवक के अंगों से कई जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी, अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन को रोककर अहमदाबाद भेजा गया युवक का धड़कता हुआ दिल। हादसे में ब्रेन डेड होने के बाद 22 साल के अतुल पटेल के परिवार ने के फैसले जो है उसका मिसाल बन गई है, अतुल के अंगदान से कई लोगों को मिलेगी नई जिंदगी। दिल्ली में ISSF शॉटगन रेफरी कोर्स की शुरुआत, निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड तकनीकी अधिकारी तैयार करना कोर्स का मकसद। 7 अगस्त तक चलने वाला ये कोर्स मार्च अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, कोर्स में सऊदी अरब और श्रीलंका के लोग भी शामिल। चिली के 15 साल के जेमी क्रेम बुस्टॉस ने रचा इतिहास, पेरिस में हुए टूर्नामेंट स्ट्रीट फाइटर 6 का खिताब जीतकर बने सबसे कम उम्र के ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चैंपियन। टीम फॉल्कन्स की ओर से देखते हुए क्रेम ने फाइनल में जापान के हिबिकी को 5-2 से दी मात, क्रेम ने पहला राउंड हारने के बाद वापसी करते हुए जीता करियर का सबसे बड़ा खिताब। इस जीत पर क्रेम को मिला 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम, साथ ही कैपकॉम कप 13 के लिए किया क्वालिफाई। शेयर बाजार के करोड़ों निवेशकों से जुड़ी गुड न्यूज, 544 अंगों की तेजी के साथ 78,639 पर बंद हुआ 30 शेयर्स का सूचकांक सेंसेक्स। निफ्टी 50 में देखी सेंसेक्स से भी ज्यादा तेजी, 390 अंक चढ़कर 24,774 पर बंद हुआ, लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने शेयर बाजार की तेजी को दिया सहारा, 4.62% गिरकर $83 पर पहुंची क्रूड की कीमत। विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटने से भी बाजार में लौटा भरोसा, विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को की 277.48 करोड़ की खरीदारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगातार छठे दिन रही मजबूती। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 95.31 रुपए पर पहुंचा रुपया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता, और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
4: I think we still can win the World Cup with this squad.
3: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। आज आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल तथा बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम सावन में शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव जी की पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं और जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना पूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान या विधान पाया जाता है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ये शिवलिंग अपने आप धरती के अंदर से प्रकट होते हैं, इनको स्वयंभू मानते हैं और स्वयंभू मान करके इनकी पूजा की जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जब भी आप शिवलिंग पर कोई वस्तु, जल, दूध ये अर्पित करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर अगर आप जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, लिक्विड चीज अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ जैसे फल, बेलपत्र आदि अर्पित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा।
और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए और मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से शिवलिंग की पूजा ना करें। जब आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो उस समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सामान्यतः जब रुद्राभिषेक किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक होता है, तो रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। अगर आप ये ना कर सकें तो एक विशेष मंत्र पढ़िए और शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करिएगा। मंत्र होगा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं या आप निरंतर नमः शिवाय का जप करते जाएं और शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करें, शिवलिंग का अभिषेक करते जाएं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज अर्पित करने से किस तरह का लाभ होता है। अगर आप शिवलिंग पर घी की धारा अर्पित करते हैं तो इससे आपके वंश का विस्तार होता है। इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के दुर्योग, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अगर आप अभिषेक करें तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग का अभिषेक शहद से करें तो पुरानी से पुरानी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। जल में शक्कर मिला करके शक्कर मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करें तो संतान प्राप्ति आसानी से होती है। शिवलिंग का भस्म से भी अभिषेक होता है और भस्म से अभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है, सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जल से अभिषेक करना।
शास्त्र कहता है कि शिव जी जल से, सूर्य देव नमस्कार से और भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप शिवलिंग पर कुछ अर्पित कर सकें या ना कर सकें, नियमित रूप से जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में किसी तरह का शस्त्र, चाकू, पिस्तौल आदि या नुकीली चीजें मत रखिए। अगर अपने बेडरूम में कोई शस्त्र रखेंगे, नुकीली चीज रखेंगे, तो वैवाहिक जीवन में विवाद और हिंसा आपके बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
4: Sage University, transforming your passion into profession.
5: आज सावन का पहला मंगलवार, माँ मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन, सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का महापर्व। पुंछ में अराई शिव मंदिर से बड़ा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। कांवड़ मेले का दिख रहा है अनोखा अंदाज, बड़ी बड़ी शिव प्रतिमाओं और झांकियों वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की योगी सरकार की तैयारी, 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के साथ जिलों में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश में मौसम होगा मेहरबान, 4 से 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, 4 से 6 डिग्री गिरेगा तापमान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
7: जी नमस्कार।
6: तो देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और आपकी कुंडली में जो भी दुर्योग होते हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, जो अशुभ संयोग बन रहे हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी के बारे में आज पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।

0: किसी भी दिन सार्वजनिक स्थान पर या पार्क में एक पीपल या बरगद का पौधा जरूर लगाइएगा। अगर आप सावन में ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन से संतान की और धन की समस्या दूर होगी।
1: सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 4 अगस्त 2026 यानी मंगलवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:03 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 9:54 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:54 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं कि केम द्रुम योग क्या होता है और सावन में इसकी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है।
0: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि कुंडली के अलग अलग जो अशुभ योग होते हैं उन अशुभ योगों को आप सावन में कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमद्रुम योग की। केमद्रुम योग की समस्या क्या है और इसका उपाय क्या है। देखिए, चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर योग केमद्रुम योग माना जाता है। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और चंद्र पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, वैसे तो दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होंगे तो भी केमद्रुम योग बनेगा। ये योग अगर कुंडली में है केमद्रुम योग तो मानसिक बीमारी, अवसाद यानी डिप्रेशन और पागलपन जैसी स्थितियां बन जाती हैं। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा और ये योग होने पर व्यक्ति को कभी कभी घनघोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल है तो ये योग काफी हद तक कमजोर हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो सावन में आप उपाय करके इसके दुष्प्रभाव को, इसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। एक तो नियमित जीवन में अपनी माता का और स्त्रियों का सम्मान करें अपनी रेगुलर लाइफ में। सावन में एक बार भगवान शिव का दूध से अभिषेक करवाइएगा। सावन में जितना भी संभव हो, जितने दिन भी कर सकें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और सावन में एक चांदी की चेन ले आइएगा, शिवलिंग पर स्पर्श करा के इस चांदी की चेन को गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप सावन में ऐसा कर लेते हैं और हर साल सावन में ऐसा करते रहते हैं तो केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है, परिवार में अशांति से बचें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के भी योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि विष योग आखिर क्या होता है और सावन में इसका निवारण क्या कुछ करके किया जा सकता है।
0: अब जिस योग की बात करेंगे वो है विष योग। विष योग होता क्या है और सावन में इसके लिए क्या उपाय करें। देखिए, ज्योतिष का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा नकारात्मक योग विष योग है। शनि चंद्रमा का संबंध बने या कुछ लोग कहते हैं शनि राहु का संबंध बने तो ये योग बनता है। वास्तव में शनि चंद्रमा से विष योग कुंडली में बनता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति नशे की आदत का शिकार होता है, दुष्चरित्र और अनैतिक हो जाता है और शनि चंद्र का विष योग होने से कभी कभी गंभीर दुर्घटना का शिकार भी होता है। विष योग होने पर व्यक्ति अपराधी या आतंकी भी बन जाता है और विष योग होने पर विचित्र तरह की मानसिक बीमारियां, भयंकर तरीके की मानसिक बीमारियां होने की संभावना बनती है। व्यक्ति को अक्सर भयानक मेंटल डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो सावन में क्या उपाय करें जिससे विष योग भंग हो जाए। सामान्य जीवन में रोज सवेरे सूर्य भगवान को

0: अब पाठ करना जरूरी है और सावन में नियमित रूप से शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करिएगा। सावन में एक रुद्राक्ष की माला ले लें, इसको शिवलिंग पर स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर कुंडली में विष योग है तो रुद्राक्ष पहनना बहुत आवश्यक है, जरूर पहनिए। और नियमित रूप से अगर रुद्राष्टक का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा।
1: और आगे बढ़ने से पहले दैनिक राशिफल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना।

रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका लेने वाले हैं?
0: जी आज का पहला प्रश्न दीपक परिहार ने हमें लिखा है, रतलाम मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 29 जनवरी 2001 का जन्म है, 12:45 दोपहर में, रतलाम मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर किस तरीके का होगा, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, और मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली टेक्निकल करियर दिखा रही है, अगर तकनीकी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाएं, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह उम्र के 29 या 30 साल के आसपास होगा, आपकी अपनी इच्छा से। आपके मन में नकारात्मक विचार ना आए, आपका करियर बेहतर होता चला जाए, इसके लिए

0: बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका रहेगा।
0: जी अगला प्रश्न शशि बाला जी ने हमें दिल्ली से लिखा है, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 23 फरवरी 1990, 4:08 प्रातः दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शशि बाला जी, जो अभी समय चल रहा है वो आपकी बेटी के विवाह तय होने का समय है। इस समय उनकी शादी तय हो सकती है, लेकिन शादी होने की जो संभावना है वो साल 2027 में है, अगस्त 2027 के पहले। कुंडली मिला लीजिएगा विवाह करते समय एक बार, ताकि वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहे। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा करके पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा करके पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए अब सावन का महीना चल रहा है तो इससे जुड़ी जानकारियां पंडित जी से ले लेते हैं, जान लेते हैं कि ग्रहण योग क्या होता है और सावन में इसका निवारण कैसे किया जा सकता है।
0: अब बात करते हैं ग्रहण योग की। ग्रहण योग क्या होता है और सावन में इसके लिए क्या करें। देखिए, सूर्य या चंद्रमा अगर राहु के साथ संयोग करें या केतु के साथ संयोग करें तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। और ग्रहण योग कुंडली में जिस जगह पर बनता है उस सुख को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जीवन में खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। तमाम प्रयास करने के बावजूद जीवन में खुशियां नहीं आ पाती। और ग्रहण योग का मतलब ये है कि जो जीवन की सफलता है और आप हैं उसके बीच में ग्रहण लग जाता है। और कुंडली के शुभ योग सामान्यतः काम नहीं करते। ग्रहण का मतलब है आपके जीवन में आपकी सफलताओं को ग्रहण लग गया और आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सावन में क्या करेंगे। सावन के जितने भी सोमवार को संभव हो, 1 सोमवार 2 सोमवार 4 सोमवार, जितने भी सोमवार को संभव हो उपवास रखिएगा। नियमित रूप से सावन में भी और उसके बाद भी शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर केवल जलाभिषेक करिएगा। और पूरे सावन में रोज सुबह और शाम शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाएं, सावन के अलावा भी, या तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ें या नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें, आपको लाभ होगा।
1: आगे बढ़ने से पहले दैनिक राशिफल जान लेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, यात्रा पर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, आंखों का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जो राहु केतु से बनने वाले योग होते हैं वो जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और सावन में क्या कुछ करें जिससे इनका निवारण हो सके।
0: देखिए, कुंडली में कुछ विशेष खराब योग राहु और केतु से बनते हैं। ये होते कैसे हैं? राहु केतु के अशुभ योग और सावन में इनको शांत कैसे करें? राहु या केतु की खराब स्थिति कुंडली को अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से प्रभावित करती है और राहु केतु के खराब योग को लोग काल सर्प दोष या पितृ दोष का नाम देते हैं। वास्तव में उसके पीछे होते हैं राहु और केतु। इनकी वजह से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव होता है और राहु केतु के अगर खराब योग हैं तो आप कब ऊंचाई से सड़क पर आ जाएंगे इसका पता नहीं चलेगा। और राहु केतु के खराब योग धीरे धीरे करके जीवन के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। अगर राहु या केतु का कोई खराब योग कुंडली में है तो क्या करेंगे? सांप के आकार वाली, सर्प के आकार वाली एक अंगूठी सोने या चांदी में बनी हो, इसको धारण करना चाहिए। कच्चे दूध में जरा सी दूर्वा डालकर पूरे सावन में या उसके बाद हर शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाइए और पूरे सावन में नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र, नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए।
1: और अब वक्त हो चला है जानने का कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसके ऊपर आप मेल करके पंडित जी तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जानते हैं कि तीसरा सवाल आज किसका लेने वाले हैं।
0: जी

ने मुरादाबाद से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 25 फरवरी 1997, 5:30 प्रातः मुरादाबाद। ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र के व्यवहार से परेशान हूं, वो कुछ नहीं करता, बेवजह के झगड़े करता है, घर में व्यवहार अच्छा नहीं है, नशे आदि का शिकार हो गया है, पूरी तरह से भटक रहा है, तो क्या करूं जिससे मेरे बेटे का जीवन बेहतर हो जाए। देखिए मुकेश जी, आपके पुत्र की कुंडली में जो शनि की पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, और शनि की नकारात्मक स्थिति, चंद्रमा की गड़बड़ स्थिति इनकी समस्या का एक बड़ा कारण है। आपके बेटे के अंदर जो सुधार होने की संभावना दिख रही है वो जून 2027 के बाद दिखाई दे रही है। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें।

0: का दीपक जलाएं तो काफी बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज का आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मयंक मिश्रा ने फरीदाबाद से लिखा है। 17 फरवरी 2006 का जन्म है। 11:20 प्रातः फरीदाबाद हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी। मयंक जी, आपकी कुंडली पूरी तरह से टेक्निकल कुंडली है और अगर आप तकनीकी क्षेत्र में, खास तौर से कंप्यूटर में, आईटी में अपना करियर बनाएं तो काफी सफल होंगे। उम्र के 26 साल से ऐसी संभावना बन रही है कि आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी। हालांकि करियर की शुरुआत उम्र के 22 वर्ष के बाद आपकी हो जाएगी। करियर में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट करियर आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका 4 अगस्त को जन्मदिन है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि स्नान करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। हमेशा बैठ करके ही स्नान करना बेहतर होगा। जल पहले नाभि और पैरों पर डालिए और याद रखिए, निर्वस्त्र होकर कभी स्नान मत करिए। ऐसा करना वर्जित माना जाता है।
1: और चलिए अब जानेंगे कि 4 अगस्त 2026 यानी मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है 6:00 से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। आपकी कर्ज और धन से संबंधित समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 अगस्त मंगलवार 6:00 से 7:30 के बीच में।
1: और आखिर में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की आपकी गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस मंत्र का जप करने से लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आपको नियमित रूप से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपका भाग्य मजबूत होगा।
1: और चलिए आज का महा उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, महा उपाय क्या रहने वाला है?
0: जी,

0: वरदान चाहते हैं तो सावन में क्या करेंगे? पूरे सावन में सुबह के समय शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करिए, दोनों समय 108 बार ओम हौं जूं सः इस मंत्र का जप करिए और सावन में शिवलिंग पर स्पर्श करा करके एक रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करिए।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: बात का
0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: बात। कावड़ यात्रा की कर लेते हैं। सावन में शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बनी हुई है, तो कहीं कावड़ियों के लिए हाईटेक शिविर बनाया गया है।

0: गंगा घाट से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग तक हर ओर शिव भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं भोले के जयकारे गूंज रहे हैं तो कहीं शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप और संकल्प पूरा कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर काशी तक, देवघर से लेकर उज्जैन तक लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं और हर दिशा हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर धाम में आस्था और विश्वास की भव्य तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ देश भर से हजारों शिव भक्त और कांवड़िए भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे हैं। हरिद्वार में भोले के भक्त एक से बढ़कर एक कांवड़ लेकर पहुँच रहे हैं। किसी में शिव भक्ति स्वरूप को दिखाया गया है तो कोई कांवड़ देशभक्ति का संदेश दे रही है। देखिए ये 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा जिसे 26 कांवड़ियों का दल पैदल लेकर चल रहा है। ये भोले के भक्त 11 अगस्त को अपने घर के पास भोलेनाथ के शिवालय में जल चढ़ाएंगे।
1: हमारा 221 फीट लंबा है ये और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देशभक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
0: भोलेनाथ जितने निराले हैं उनके भक्त भी उतने ही अनोखे हैं। सावन में कोई नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है, कोई दंडवत चलकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और अब एक शिव भक्त अपनी अनूठी कावड़ को लेकर चर्चा में है। इस कावड़ की खासियत है एक खास स्पोर्ट्स कार जैसा रूप। मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली इस कावड़ ने सबका ध्यान खींचा। मैक्लारेन थीम वाली इस कावड़ को देखकर श्रद्धालु हैरान रह गए। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह कोई असली सुपर कार है।
2: बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय।
0: इस क्रिएटिव कावड़ में भक्ति के साथ साथ शानदार ऑटोमोटिव प्रेरित कारीगरी और आकर्षक लुक का मेल है। श्रद्धालु इस अनोखे आध्यात्मिक भेंट के जरिए परिवार में शांति और आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ये देखिए सहारनपुर में कावड़ियों के ठहरने, बैठने और उनके हर सुविधा का ध्यान रखते हुए वाटरप्रूफ शिविर तैयार किया गया है। इस शिविर में कावड़ियों को हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कावड़ियों के सामान और मोबाइल की सुरक्षा के लिए शिविर में 80 लॉकर की सुविधा दी गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गर्मी और उमस से राहत देने के लिए 40 टेंट कूलर लगाए गए हैं।
3: कावड़ियों के लिए गेट बनाया गया है आई लव महादेव और इसके बराबर में जो शिविर है, इस शिविर को पूरी तरीके से हाईटेक शिविर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कावड़ियों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए सभी चीज की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है।
0: इतना ही नहीं, सहारनपुर में कावड़ियों के स्वागत और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए कावड़ मार्ग को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सड़क पर आकर्षक लाइट रात के समय पूरे कावड़ मार्ग की खूबसूरती बढ़ा रही है।
4: ये लाइट वाला जो मार्ग है लगभग 1.25 किलोमीटर के एवरेज है, 1800 मीटर के करीब है और इसमें लगभग मुझे लगता है 6000 के आसपास, 6-7000 समथिंग इतनी लड़ियां लगी हैं।
3: जो कावड़िए इस रोड से होकर के गुजरते हैं तो कैसा उन्हें महसूस देता है? आपकी बात होती होगी, आप 24 घंटे रोड पर रहते हैं, बात क्या कहते हैं कावड़िए?
4: मैं पूरी रात से सुबह 4 बजे तक रोड पर रहता हूँ, 4 बजे मैं घर आके सो जाता हूँ, तो मैक्सिमम कावड़िए बहुत खुश हैं और ये बताते हैं मेरे को कि हरिद्वार से यहाँ तक कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं।
0: कावड़ियों की ऐसी ही रौनक बाबा बैद्यनाथ धाम मार्ग पर भी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ कई किलोमीटर की यात्रा करके भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, सहारनपुर से राहुल कुमार, खंडवा से जय नगड़ा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी। राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाकघर में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: के स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम, मोली, मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह, सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गर्मी का मौसम हो और दिन भर इतनी तेज धूप पड़े कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो लोग क्या करते हैं? चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू के लोगों ने इसका बड़ा दिलचस्प तरीका खोज लिया है। अब यहां लोग दिन की बजाय रात में घरों से निकल रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है शहर की सड़कें, पार्क्स और खुले मैदान लोगों से गुलजार हो जाते हैं।
3: दिन भर की गर्मी और फिर ढलती शाम, जैसे सूरज की तपिश कम होती है, चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू की सड़कों पर जिंदगी एकदम नए अंदाज में दौड़ने लगती है। पार्क हो या ग्रीन बे, हर तरफ साइकिल चलाते लोगों की लंबी कतारें नजर आ जाती है। नाइट साइकिलिंग यहां सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं रही, बल्कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने और तनाव दूर करने का नया ट्रेंड बन चुका है। चीन में बदलती लाइफस्टाइल का असर कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। साइकिल किराए पर देने वाली दुकानों में रात के समय ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, बढ़ती मांग को देखते हुए कई स्टोर्स ने अब 24 घंटे सेवा देना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, चेंगदू के शॉपिंग मॉल्स भी अब रात में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नए सेंटर बन चुके हैं। मॉल्स के भीतर बने स्पोर्ट्स जोन युवाओं और परिवारों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लोग खेलते हैं, फिर खरीदारी करते हैं और रेस्टोरेंट में समय बिताते हैं। यानी फिटनेस के साथ साथ नाइट इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ रही है।
4: 我们整个商场里头，就是夜间运动带给我们的一个客流，大概会占到我们整个商场夜间客流的20%左右。很重要的是，现在的夜间经济，大家也会叫着自己的朋友或者家人一起过来，所以还会有很多潜在的一个消费增长。
3: चीन के इस शहर में रॉक क्लाइंबिंग भी रात की सबसे पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो चुकी है। दफ्तर से लौटने वाले लोग बड़ी संख्या में क्लाइंबिंग जिम कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई जिम ने अपने संचालन का समय भी बढ़ा दिया है, ताकि नौकरी पेशा लोग भी आराम से क्लास में हिस्सा ले सके। चीन के चिंगदू शहर की ये नाइट स्पोर्ट्स संस्कृति केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी खूब लुभा रही है। ब्रिटेन से आए नील फॉस्टर ने पहली बार रात में रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव लिया। उनका कहना है कि अपने देश की भीषण गर्मी के मुकाबले चिंगदू की शामें कहीं ज्यादा सुहानी है, और दोस्तों के साथ खेलते हुए दिन का अंत करना एक शानदार एहसास है। गर्मी से राहत पाने का ये तरीका अब सिर्फ मौसम से जुड़ी मजबूरी नहीं बल्कि एक नया लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। चिंगदू में रातें अब सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि फिटनेस, रोमांच और बढ़ते कारोबार से भी जगमगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए अब नजर डालते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
0: मिली एक नौटी बच्चे से जो अपनी काम करती माँ के काम को कुछ यू एंजॉय कर रहा है। माँ अनाज भटकने और चालने का काम कर रही है, बच्चा माँ के एक्शन को रिदम मान बिल्कुल उसी तरह नाच रहा है, मानो कोई संगीत की धुन बज रही है। जैसे ही अनाज फटका जाता बच्चा भी जंप करता, और जैसे ही अनाज को चाला जाता है बच्चा भी वैसे ही सरकने लगता है। माँ को लगता तो है कि पीठ पीछे कुछ चल रहा है, लेकिन बच्चा माँ को पता नहीं चलने देता। अब इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसके बहाने अपने बचपन की शरारतें याद कर रहे हैं। अगस्त का महीना आ गया है और स्वतंत्रता दिवस का इंतजार किया जा रहा है। खास तौर पर बच्चे अपनी आजादी के जश्न को हमेशा अलग ढंग से मनाते हैं। इन बच्चियों को देखिए, इन्होंने तिरंगे के रंग के कपड़ों के इस्तेमाल से एक तिरंगा फूल बनाया और उसका खुशी से प्रदर्शन कर रही हैं। इन बच्चियों की ये वायरल तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर हर कोई इंडिया इंडिया इंडिया कर रहा है। बच्चों के साथ रहने से ही हंसी खुशी और यादें बढ़ती है। इन छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े सपने हैं और सपनों के साथ है ढेर सारी मस्ती। ये जेंजी के बाद की जनरेशन जेन अल्फा है, जो इन तस्वीरों के जरिए जेंजी के रास्ते पर चल रहे हैं, और इनके खुशमिजाज नन्हे दिल अपने लिए कुछ नए पल रच रहे हैं और दूसरों का दिन रोमांचक बना रहे हैं। जेंजी की वायरल रील पर जेन अल्फा बच्चों का ये प्रयोग भी सबको लुभा रहा है और हर एक चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही बच्चे तिरंगे के रंग में रंग गए हैं। तिरंगे के नारंगी, हरे और सफेद रंगों से रंगे ये छोटे छोटे हाथ कुछ इस तरह आजादी का जश्न मना रहे हैं। हर बच्चे ने हाथ पर तिरंगा पेंट कराया है और वो एकता का संदेश दे रहे हैं। उनके हाथ जरूर छोटे हैं, लेकिन उनके इन हाथों में भारत के भविष्य की तकदीर है, क्योंकि उन्होंने बड़े सपने संजोए हैं। बच्चों की ये तस्वीरें भी खूब वायरल हैं और लोगों को भा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस नन्ही बच्ची की समझदारी और संवेदनशीलता का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बच्ची के पिता अपने काम में मगन हैं और बच्ची की फ्रॉक पिता की कुर्सी के नीचे फंस गई है। इतनी छोटी सी बच्ची की संवेदनशीलता देखिए, वो अपने पिता के काम की महत्वता को जान उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए वो कुर्सी के पास बैठ जाती है और इंतजार करती है कि मीटिंग खत्म होगी तब कुर्सी हटेगी और फ्रॉक आजाद होगी और उसे भी आजादी मिलेगी, क्योंकि पिता के काम में वो बेवजह ही फंस गई है ना। लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और बच्चे की संवेदनशीलता और सहनशीलता को देख उस पर प्यार लुटा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
16: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
17: Sage University, transforming your passion into profession.
2: आज है सावन का पहला मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन, सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का महापर्व। पुंछ में अराय शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। नौ और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, कांवड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। प्रदेश में मौसम होगा मेहरबान, 4 से 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, 4 से 6 डिग्री गिरेगा तापमान। केरला में आज भी तेज बारिश का दौर, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, यातायात पर भी असर। उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात में हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: शुभ समाचार की शुरुआत महादेव और शक्ति के साथ करेंगे। दरअसल आज मंगला गौरी की आराधना का दिन है, सावन का पावन महीने में आज हर सोमवार को हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठता है। वहीं मंगलवार को भी मां गौरी की आराधना से भक्ति का रंग और भी गहरा हो जाता है। आज सावन का पहला मंगलवार है, यानी मंगला गौरी महाव्रत का पावन मौका। ये व्रत विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। क्या है इस व्रत की महिमा, आगे आपको बताएंगे। तो बाद बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की भी होगी, पुंछ में अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी आगे विस्तार से हम करेंगे बात। तो साथ ही बात कावड़ की भी होगी, हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते तक में कावड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने आकर्षक कावड़ के साथ जब कावड़िये रास्तों से गुजर रहे होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कावड़ यात्रा की बिखरी छटा को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, तो इसके रंग भी हम आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको मानसूनी बारिश में रेस्क्यू की तस्वीरें भी दिखाएंगे। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस साल उम्मीद के कम बारिश हुई है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जो भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन इसी बीच मिशन जिंदगी भी जारी है, तो इन रेस्क्यू मिशन के बारे में भी आगे हम विस्तार से करेंगे बात। इसके अलावा मिलवाएंगे न्यू माही से, माही का पुराना शौक नए अंदाज में दिखा है, उन्हें इस नए लुक में देखकर फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आए, तो पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर चंद्रमौलेश्वर रूप में नगर भ्रमण पर निकले। इस भव्य यात्रा के दौरान अवंतिका नगरी जय महाकाल के जय घोष से गूंज उठी, लाखों भक्तों ने राजाधिराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बम बम भोले के जयकारों के साथ देशभर में कावड़ यात्रा जारी है। यात्रा को लेकर शिवालय और गांव के तटों पर हर रोज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार प्रयागराज और वाराणसी के घाटों पर इन दिनों सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार कावड़ मेले में नया रंग देखने को मिला, पैदल कावड़ के साथ साथ अनोखी और विशाल कावड़ को भी लोगों का ध्यान अपनी ओर वो खींच रही है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कावड़िये शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा का 33वां दिन, आज सभी श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से अमरनाथ धाम भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला आज चंद्रकोट इलाके से गुजरा, यात्रियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पुंछ में श्रद्धालुओं ने अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा के दौरान बम बम भोले के जयकारे लगाए गए, यात्रा को लेकर भगवान भोले के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस यात्रा में 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक शामिल हुए, वहीं यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। भारतीय डाक विभाग ने इस बार रक्षाबंधन के लिए विशेष तैयारियां की हैं। राजस्थान के पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी के लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी मदद से बहनें अपनी राखी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से भेज सकेंगी। इसके साथ ही डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए राखी को कम समय में दिए गए पते पर पहुंचाया जा सकेगा। बिहार के गया जी में मगध इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर 2026 का भव्य आगाज हो गया, जिसमें लगभग 150 स्टॉल बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मेला गया जी के गांधी मैदान में लगाया गया। कल से शुरू हुआ ये मेला 16 अगस्त तक चलेगा। स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों समेत लगभग 150 स्टॉल यहां लगाए गए। चीन के यूनान प्रांत में छात्रों के लिए स्काई स्कूल बस शुरू की गई है। ये स्काई स्कूल बस बसों का सहारा बन गई है। इसके चलते यहाँ 3 घंटे का सफर अब 30 मिनट में पूरा हो रहा है। इस बस के लिए बना 288 मीटर ऊंचा एलिवेटर पहाड़ों की नई लाइफलाइन बन गया है। 1990 के दशक के बेहद लोकप्रिय गाने छोटा बच्चा को ओ माई डॉग के लिए छोटा बच्चा 2.0 के तौर पर फिर से बनाया गया, जिससे इस मशहूर गाने को एक नया और मॉडर्न अंदाज मिला। ओ माई डॉग 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत पवित्र और पावन सावन महीने के साथ करेंगे। सावन का पावन महीना जहां हर सोमवार हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है, वहीं मंगलवार भी मां गौरी की आराधना से भक्ति का रंग और भी गहरा इसमें नजर आता है। आज सावन का पहला मंगलवार है, यानी मंगला गौरी महाव्रत का पावन मौका। ये व्रत विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि मां मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन, पति की दीर्घायु तथा परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन श्रद्धालु मां गौरी से अपने परिवार के कल्याण, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द तथा जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यानी आज महादेव के साथ साथ महागौरी की आराधना से दोनों का आशीर्वाद पाने का शुभ मौका है।

0: सावन का पहला सोमवार हर सुहागिन के लिए एक संदेश लेकर आया है। यदि सोमवार शिव की असीम कृपा का द्वार है तो मंगलवार माँ गौरी के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद है। शिव की करुणा और शक्ति की कृपा जब एक साथ मिलती है तभी जीवन पूर्ण मंगलमय और आनंदमय बनता है।
1: शिव के बिना या शक्ति के बिना शिव सौ के समान है, तो केवल शिव पूजा से लाभ नहीं मिलता। श्रावण में सोमवार को भगवान महादेव की और मंगलवार को मंगला गौरी की जो पूजा होती है वो जीवन में मंगल का अर्थ होता है जीवन में मंगल कामनाएं और कल्याण, मंगल कल्याण करने के लिए ये जो मंगला गौरी का सावन के महीने में जो पूजन है व्रत है, तो भगवान शिव का सोमवार को और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने से गौरी शंकर की जब कृपा होती है तो जीवन में समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और सर्वदा मंगल और कल्याण होता है।
0: जिस तरह सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना गया है उसी तरह इस पवित्र महीने का हर मंगलवार भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आज सावन का पहला मंगलवार है, आज मंगला गौरी व्रत की धूम है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे मंगलकारी व्रतों में से एक माना जाता है। आज सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य, परिवार की समृद्धि और देवी की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि आज के दिन श्रद्धा और विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर देवी की विशेष कृपा बरसती है और उनका सुहाग अटल बना रहता है।

0: को करते हैं।
1: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कठिन व्रत, उपवास और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को प्रसन्न किया। उसी तप, त्याग, धैर्य और समर्पण की याद में सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है।
2: मंगला गौरी की पूजा में लाल वस्त्र पहन करके मंगला गौरी के मंदिर में जाएं और सौभाग्यवती स्त्री अगर है तो उसे सौभाग्य के द्रव्य और 5 प्रकार के फल भगवती मंगला गौरी को अर्पण करने चाहिए। लाल चूड़ियाँ हैं, सिंदूर है, ये सब चीज़ें भगवती को, लाल फल है, लाल रंग की मिठाई है, लाल रंग का फूल है, क्योंकि यह जो भगवती गौरी हैं यह इनको रक्त वर्ण की वस्तुएं या पीले रंग की वस्तुएं, आप पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पहन करके सौभाग्यवती स्त्रियां अगर महादेव का और मंगला गौरी दोनों का पूजन करती हैं तो जीवन में उनके हमेशा सौभाग्य बना रहता है।
1: माँ मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप है। ये सौभाग्य, समृद्धि, प्रेम, धैर्य, मातृत्व और शक्ति की अधिशास्त्री मानी जाती है। मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है, इसी कारण उन्हें सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है।
2: माँ मंगला गौरी की एक कथा आती है स्कंद पुराण में और पुराणों में। एक सेठ और एक उसके पत्नी की भक्ति कथा है कि बहुत प्रकार से उस सेठ के लिए संतान नहीं थी और संतान के उसने नाना प्रकार के उपाय किए लेकिन संतान अल्पायु थी, तो उसकी पत्नी ने मंगलवार का व्रत करके अपने संतान को दीर्घजीवी बनाया। इसीलिए श्रावण के महीने में मंगला गौरी का यह जो व्रत है यह संतान के लिए बहुत ही लाभदायक और कामना परक होता है।
1: सावन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यही है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक और अगले ही दिन मंगलवार को माँ मंगला गौरी का पूजन, ये क्रम केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन का संतुलन सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन नगरी, जहां महाकाल का भव्य दरबार भक्तों की आस्था और विश्वास से जगमगा रहा है। बाबा के दर्शन पूजन के लिए लाखों लोग महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं और सावन में उमड़ रही भक्तों की अटूट आस्था को देखते हुए बाबा महाकाल भी अपने भक्तों को समय से पहले दर्शन दे रहे हैं। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल मंदिर के पट खुलते ही भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सुबह सवेरे भगवान महाकाल की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती होती है। इस दिव्य अनुष्ठान की शुरुआत सबसे पहले पंचामृत अभिषेक से होती है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बाबा महाकाल का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद पवित्र जल से स्नान, विशेष श्रृंगार और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भस्म आरती संपन्न होती है। मान्यता है कि बाबा महाकाल की इस अलौकिक भस्म आरती के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है।

0: महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन का महीना पूरे श्रद्धा उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस पावन महीने में धर्म आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं और इस महीने की खासियत है कि बाबा महाकाल स्वयं अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पारंपरिक शाही सवारी के दौरान भगवान महाकाल विभिन्न स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं।
1: उज्जैन के राजा जब अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं तो पूरी नगरी शिवमय हो जाती है। महाकाल के जय घोष की गूंज के बीच हर गली, हर चौक चौराहा और रास्ता अपने राजा की झलक पाने के लिए भक्तों से

0: बाहर उठता है। सावन मास के पहले सोमवार को रजत पालकी में सवार होकर भगवान महाकाल अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रजत पालकी के मंदिर से बाहर आते ही पुलिस बैंड की धुन पर भगवान महाकाल को सलामी दी गई और फिर शुरू हुआ नगर भ्रमण। आगे आगे पुलिस का घुड़सवार दल, पीछे भजनों की धुन बजाता पुलिस बैंड और सवारी की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस के सशस्त्र बल की टुकड़ी। बाबा की सवारी जब निकली तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वैदिक उद्घोष की थीम पर निकाली गई इस पहली सवारी में महाकालेश्वर मंदिर का बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहा। बोलबम के जयकारे लगाते संत महंत और बाबा के भक्त नगरवासियों को भगवान के आगमन की सूचना देते चलते रहे। सवारी में गण विषाधरी और भजन मंडलियां माहौल को और भक्तिमय बना रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ खड़े श्रद्धालु भगवान की एक झलक पाने के लिए पालकी की ओर टकटकी लगाए दिखे और पालकी के पास आते ही जय महाकाल के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। महाकाल की इस भव्य सवारी में साधु संत, मंत्री से लेकर अफसर, कर्मचारी समेत सभी आम और खास साथ साथ चल रहे थे। सबके सब बाबा के दर्शन कर भाव विभोर दिखे।
1: कंटिन्यू दर्शन करने आते हैं, इंदौर से आते हैं और जो दर्शन होते हैं उसका शब्दों में व्याख्यान ही नहीं हो सकता सर। बहुत अच्छा लगा
2: बाबा के दर्शन करके, बड़ा आनंद आया, बहुत प्यारा लगा।
0: भगवान महाकाल ने मन महेश स्वरूप में प्रजा को दर्शन दिए। नगर में अलग अलग मार्गों से होते हुए सवारी क्षिप्रा नदी पहुँची। क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक पूजन हुआ। भटकों ने शंखनाद के साथ वेद पाठ किया और फिर पूजा के बाद सवारी तय मार्ग से वापस मंदिर के लिए चली।
3: राजा हैं यहाँ के, तो नगर भ्रमण के लिए स्वयं ही अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलते हैं। हर सोमवार को सावन के सोमवार है, इस बार चार सोमवार को बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और दो भादव की है, तो ऐसे 7 सितंबर तक 6 सवारियाँ निकाली जाएगी, निकलेगी बाबा की। और बाबा महाकाल से शाम को 4 बजे निकलते हैं और नदी पे क्षिप्रा मैया का जल से अभिषेक किया जाता है, फिर नगर भ्रमण होते हुए पुनः शाम को मंदिर में आते हैं और भगवान की आरती पूजा की जाती है।
0: भगवान महाकाल को इस प्राचीन नगरी का एकमात्र और अधिपति राजा माना जाता है। सावन भादो मास के सोमवार को मंदिर से बाहर निकलकर वो अपनी प्रजा का हाल जानते हैं और इस अवसर पर यहाँ की छटा अद्भुत होती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मौका सावन का है, महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग भी देखने को मिलते हैं। अपने आकर्षक कांवड़ के साथ जब कांवड़िए रास्तों से गुजर रहे होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा की बिखरी छटा को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

0: ये दिव्य छटा भगवान शिव के प्रिय माह सावन की है। इस माह में शिवालयों से लेकर कांवड़ पथ तक पर दिव्य रंगों के दर्शन होते हैं। एक से बढ़कर एक ऐसा कांवड़ लेकर शिव भक्त जाते दिखाई देते हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ थी, वहीं अब पैदल कांवड़ के साथ भव्य कांवड़ लेकर जाते शिव भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िये हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। अधिकतर कांवड़ में भगवान शिव अलग अलग स्वरूपों में है। कोई भक्त भोले बाबा की बड़ी प्रतिमा के साथ तो कोई भगवान शिव के पूरे परिवार की मूर्तियों की झांकी बनाकर ले जा रहा है। किसी कांवड़ में भगवान नरसिंह तो किसी में रावण की झांकी भी है। इसके अलावा बाकी देव देवता भी इन कांवड़ों में विराजमान दिखाई देते हैं।
1: शिवलिंग हमारे भोलेनाथ शिव लगवा रखी है, अपने शिव परिवार जोड़ा है हमारे पास।
0: अब कांवड़ यात्रा में शिव भक्त रावण को देखिए, जो पुष्पक विमान पर सवार है। ये ई रिक्शा की वो पुष्पक विमान है जिस पर सवार होकर रावण ने हरिद्वार से जल भरकर दिल्ली के लिए कूच किया। रावण का स्वरूप धरे शिव भक्त मूलचंद त्यागी जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूं और दिल्ली पहुंचूंगा, मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूं। पुष्पक विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: मूलचंद त्यागी हरिद्वार से कांवड़ उठाकर 1 अगस्त को अपने इस पुष्पक विमान पर सवार होकर निकले। ये दिल्ली में समयपुर बादली पहुंचकर शिवरात्रि पर शिवालय में भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सावन में आस्था और भक्ति के रंग तो आप देख ही रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं सावन में गहरेबाजी के रंग। जी हां, प्रयागराज में इक्के की रेस यानी गहरेबाजी हुई। सावन की पूजा के साथ इक्कों की रेस की ये परंपरा बेहद पुरानी है। इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे।

0: सावन के पहले सोमवार पर आस्था के साथ दिखी विरासत की रफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज में सदियों पुरानी घरेबाजी की परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी।
1: इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सावन चूंकि देवाधिदेव महादेव का दिन पूरा एक महीना रहता है, हम लोग इसी घोड़े से गंगा स्नान करते थे, शिवकुटी महादेव में भोलेनाथ की पूजन करते थे और उसके बाद गहरेबाजी में अपना आनंद लेते थे। बहुत पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है।
0: अरैल क्षेत्र में आयोजित पारंपरिक इक्का दौड़ ने लोगों को रोमांच और संस्कृति का अनूठा संगम देखने का अवसर दिया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में घोड़ों ने अपनी शानदार चाल, संतुलन और अनुशासन का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।
2: सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एक पुरानी परंपरा है इक्का दौड़ की, जिसे यहाँ पर गहरेबाजी कहा जाता है। तो तमाम घोड़े, एक से एक नस्ल के घोड़े यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम जो इक्का चालक हैं अपने अपने घोड़ों को लेकर के आए हैं और तमाम वैरायटी के घोड़े हैं और यहाँ इक्का दौड़ हो रही है। इसको देखने के लिए तमाम दूर दराज से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये नया यमुना पुल है, यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है इस इक्का दौड़ को देखने के लिए आई है। तो यहाँ पर जो इक्के हैं इनकी चाल से इनको जाना और पहचाना जाता है। तो इस इक्का दौड़ में दूर दराज से लोग आते हैं, अपने घोड़ों का और इक्कों का प्रदर्शन करते हैं।
0: प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर इक्का दौड़ आयोजित करने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। इस प्रतियोगिता में जीत केवल तेज रफ्तार से नहीं बल्कि घोड़े की नपी तुली चाल, संतुलन और प्रस्तुति से तय होती है। खासकर सिंधी नस्ल के घोड़े अपनी आकर्षक और लयबद्ध चाल के लिए विशेष पहचान रखते हैं।
2: चाल देखी जाती है क्या?
3: चाल देखी जाती है, सिंधी चाल जो प्योर चाल है, बिगाड़े नहीं घोड़े। स्पीड कम ज्यादा रहे लेकिन चाल ज्यादा बिगड़े ना, भागे ना, फॉरवर्ड ना हो।
2: अच्छा, नस्ल क्या होती है घोड़ों?
3: नस्ल इसमें सिंधी बढ़िया चाल में दौड़ते हैं, जो मिक्स रहते हैं वो थोड़ा भागने लगते हैं बीच बीच में।
2: कितने सालों से इस इक्का दौड़ में शामिल हो रहे हैं आप?
3: कई साल से शामिल हो रहे हैं, घोड़ा हमारा अभी साल भर का है, बाकी पहले बहुत पुराना शौक है हमारे लोगों का हराना में।
0: प्रतियोगिता के दौरान चौटाला, दुगामा, सिंधी और माधुरी जैसी पारंपरिक चालों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं उड़ान और हीरा नाम के घोड़ों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी।
1: इसमें देखिए ज्यादातर तो सिंधी घोड़े होते हैं, सिंधी नस्ल के घोड़े होते हैं और उनकी चाल चौटाला होती है, दुगामा चाल भी होती है, लेकिन घोड़े ज्यादातर इसमें सिंधी नस्ल के ही आपको मिलेंगे, मारवाड़ी कम मिलते हैं इसमें।
0: स्थानीय लोगों के लिए गहरेबाजी केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रयागराज की सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। आज भी ये परंपरा पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है और नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने का सशक्त माध्यम बनी हुई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
4: वाराणसी में इन दिनों कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। गंगा नदी में रोजाना हजारों की संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। घाटों पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आधुनिक उपकरणों और हाई स्पीड बोट्स के साथ ये टीमें किसी भी इमरजेंसी से निपटने को तैयार है।
0: ये तैयारी है शिव भक्तों की हिफाजत की।
5: बाहर जाके स्नान न करें।
0: वाराणसी में सावन के पावन माह में हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित करने के लिए जुटे हैं। बारिश के मौसम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लिहाजा पानी के तेज बहाव में शिव भक्तों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वाराणसी के गंगा घाटों पर एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। मोटर बोट, वाटर एम्बुलेंस और आधुनिक बचाव उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की पूरी टीम गंगा घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
6: वाराणसी में 11 NDRF अपने पूरे दलबल के साथ देख सकते हैं कि गंगा में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को हिदायत दे रही है कि गहरे पानी से बचे, बैरिकेटिंग के दायरे में ही रह के वे स्नान करें और पूजन अर्चन करें। देख सकते हैं लगातार ये ड्रिल चल रही है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। सावन की शुरुआत चुकी हो गई है और लोगों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है NDRF के लिए। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं।
0: दर्जनों मोटर बोट के साथ साथ हाई स्पीड बोट भी घाटों के लगातार चक्कर लगाकर श्रद्धालुओं को सतर्क कर रही है। NDRF की 11वीं वाहिनी के जवान लोगों को जागरूक करने के साथ साथ किसी भी अनहोनी को टालने के लिए तैयार हैं।
7: 11 NDRF की एक टीम यहाँ हमेशा 24/7 डिप्लॉय रहती है। चूंकि सावन है, सावन का माह शुरू हो गया है, बहुत सारे श्रद्धालुगण देश विदेश से यहाँ आते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक टीम और एडिशनल टीम यहाँ डिप्लॉय करी है। वो टीम बार बार लोगों को एडवाइस देती रहती है कि नदी के किनारे ज़्यादा गहरे में जो है स्नान ना करें। जो बोट चालक हैं वो बोटों में जिन लोगों के श्रद्धालुओं को बैठाते हैं उनको लाइफ सेविंग जैकेट पहनाएं ताकि कुछ दुर्घटना होने पर बचाव किया जा सके। इसके अलावा हमारी NDRF की टीमें हमेशा तैयार हैं 24/7 किसी भी इमरजेंसी के लिए।
0: घाटों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के साथ साथ NDRF की टीम स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल बनाकर चल रही है। कोशिश यही है कि वाराणसी आने वाले हर भक्त की तीर्थ यात्रा पूरी सुरक्षा और सहूलियत के साथ पूरी हो और बाबा विश्वनाथ के दर्शन की ये यात्रा सभी शिव भक्तों के लिए यादगार बन जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो बुलेटिन में बात होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में कैसे बरसे बदरा।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
8: खबरें तो आराम।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: CWG में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। पुंछ में अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ किले 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। नौ और दस अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। कावड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। सावन में दिख रहे कावड़ के अद्भुत रंग। मुजफ्फरनगर में पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण के अवतार में निकला कावड़िया, बना चर्चा का केंद्र। यूपी में मौसम होगा मेहरबान, 4 से 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट। गर्मी से मिलेगी राहत, 4 से 6 डिग्री गिरेगा तापमान। केरलम में आज भी तेज बारिश का दौर, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस, यातायात पर भी असर।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात उत्तर भारत की कर लेते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस साल उम्मीद से कम बारिश हुई है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जो भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई जगह बादल फटने की वजह से भी हालात मुश्किल हुए हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी पर मिशन जिंदगी भारी है और प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश के अमालापुरम, केरलम के अरणमुला इलाके और असम के शिवसागर में रेस्क्यू मिशन जारी है और बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो देखिए, बाढ़, बारिश और रेस्क्यू के बीच ये राहत की तस्वीरें, किस तरह से लोकल जो लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं और NDRF, SDRF के जवान लगातार लगे हुए हैं रेस्क्यू करने में। बाढ़ और बारिश जैसी स्थिति में ये सुकून देने वाली तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरह से तेज बाढ़ और बारिश में लोग जो हैं उनको रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां, बांदीपुरा और पहलगाम समेत कई जगह पर बादल फटने से कई गांव जलमग्न हो गए। लद्दाख के करगिल में भी कई जगह बाढ़ की स्थिति बन गई। प्रशासन के साथ साथ यहां के लोग भी हिम्मत और हौसले के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। चारों तरफ से प्रयास जारी है, उम्मीद है जल्द इन इलाकों में हालात सामान्य हो जाएंगे। शोपियां में बचाव दलों ने करीब 80 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। SDRF की टीमें प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक मौसम और जलस्तर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बचाव दल तैनात किए जाएंगे।

0: तो केरल में लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। पतनमथिट्टा जिले में खासकर अरांडमुला इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कई जिलों में स्कूल को बंद रखा गया है। प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है, लिहाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस इलाके में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति बनी है। हालात का सामना करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है और आला अधिकारियों की बैठक का दौर भी लगातार जारी है। असम के 7 जिले इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं। करीब 1,28,000 लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं।
1: असम में बाढ़ का पानी तो उतरने लगा है, मगर जो तबाही मची है वो
0: तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित 75,000 से ज्यादा परिवारों के लिए करीब 160 करोड़ रुपए की पहली किश्त अंतरिम राहत के रूप में जारी की है। असम के 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर समेत ज्यादा प्रभावित हैं। राहत की बात यह है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल लोगों के सामने रोजगार का संकट है, खाने पीने की जरूरी चीजों की कमी है, लिहाजा बड़े स्तर पर राहत का काम भी लगातार जारी है। तो हर तरफ से बाढ़ पीड़ितों तक मदद का हाथ पहुंच रहा है। इस मुश्किल हालात में कई नामचीन सितारों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सलमान खान, कार्तिक आर्यन से लेकर रणदीप हुडा तक कई सेलेब्स ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। रणदीप हुडा असम के बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, लंगर सेवा में हिस्सा लिया और पीड़ितों को जरूरी सामान भी बांटा। तो देखिए तस्वीरें हैं असम की, जहां बाढ़ पीड़ितों के बीच रणदीप हुडा पहुंचे। उन्होंने राहत सामग्री उन तक पहुंचाई। लंगर सेवा में भी रणदीप हुडा ने लोगों का हाथ बढ़ाया और कई नामचीन सितारों ने मदद का हाथ इसी के साथ बढ़ाया। और उन्हीं में से एक नाम है रणदीप हुडा का, जो खुद असम पहुंचे और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री की चीजें पहुंचाई।
2: ये पकड़ ले थोड़ा इसके बांध।
3: कोई नहीं, ये किचन का सामान है।
0: तो राजधानी में आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। आइए अब जानते हैं आज आपके राज्य और शहर का मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। तो आज दिल्ली और एनसीआर के आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। इतना ही नहीं, आज दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आलम यह है कि नोएडा और गाजियाबाद में कई जगह बूंदाबांदी भी हुई। वहीं हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तो देखिए किस तरह से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, तो वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी झमाझम बारिश हो रही है और भारी बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं माही का नया लुक। महेंद्र सिंह धोनी के कुछ शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें माही बाइक चलाते नजर आए। दरअसल धोनी चेन्नई के पास इरुंगटू कोटई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुपर बाइक चलाई। इस दौरान माही बिल्कुल प्रोफेशनल रेसर के लुक में नजर आए, तो लोगों को माही का एक अलग ही अवतार देखने को मिला और बाइक चलाते हुए माही नजर आए। चेन्नई में रेसिंग सर्किट का ये वीडियो है। तो देखिए फैंस में माही का क्रेज जो है वो लगातार जारी है और उन्हें देखने की एक्साइटमेंट भी लगातार बरकरार है।

ग्लासगो में जलवा दिखाने के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष एवं महिला मुक्केबाजों और पैरा एथलीट्स का मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचे खिलाड़ियों में महिला बॉक्सिंग की जैस्मिन लांबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी शामिल रही। वहीं पुरुष वर्ग से अंकुश पंघाल और सचिन सेवाज भी टीम के साथ पहुंचे। कई पैरा एथलीट्स भी स्वदेश लौटे, जिनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों पर खुशी जताई और भविष्य में भी देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल करा रही है। करीब एक महीने तक चलने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में गुरेज के करीब 15 गांव के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। लड़कों के साथ साथ इस इवेंट में लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस इवेंट का मकसद नौजवानों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें सही राह दिखाना भी है।

0: होरेस की खूबसूरत वादियों में ये खेल प्रतियोगिता सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने की कोशिश है। गुरेज के हाई ग्राउंड बक्तूर में इस इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भारतीय सेना की राणा बटालियन ने किया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: ये नामी के राणा बटालियन ने यहाँ पे जो ब्लॉक बक्तूर है उसमें एक इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें तकरीबन पूरे ब्लॉक के 15 गांव हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ खेलों में, जैसा कि वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, सभी प्रकार की खेल में हिस्सा ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों के बराबर लड़कियां भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। ये एक नेक शगुन है यहाँ के लिए कि लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर में अभी खेल रही है।
0: मैच फुटबॉल का हो या वॉलीबॉल का, हर खेल में नौजवानों का उत्साह देखने लायक था। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट में स्थानीय गांव की लड़कियों ने भी खेल में अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
2: इंडियन आर्मी के बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने यहां पे इंटर विलेज सपोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का इनकाद जो 16 जुलाई से किया था, उसमें बहुत सारी गेमें कराई गई, जिसमें बॉयज़ का फुटबॉल, गर्ल्स का बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज बॉयज़ का इज़मरक वर्सेस जिलिंडोरा के माबेन वॉलीबॉल खेला गया, तो उसमें इज़मरक ने विन दर्ज की। तो इससे यही दर्शाता है कि यहाँ के बॉयज़ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को आगे लाने के लिए, और इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की ओर न जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो गेम्स में हिस्सा लें।
0: गुरेज में एक महीने तक चलने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी। अब 15 अगस्त के मौके पर इस स्पोर्ट्स इवेंट का भव्य समापन होगा। इस इवेंट में 15 गांव के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी टीम वर्क को और मजबूत करना है। खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ ये फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है। फेस्टिवल के दौरान सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले गांव और सबसे ज्यादा साफ सफाई रखने वाले गांव को भी सम्मानित किया जाएगा।
3: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर गुरेज घाटी में बक्तूर गांव में विलेज सपोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नियंत्रण रेखा पर रहने वाले गांव के बच्चों और बच्चों ने इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लिया। दरअसल ये एक पहल है नशा मुक्त भारत बनाने की, जिसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही किया था। अशरफानी, श्रीनगर।
4: अभी तक आपने एआई रोबोट देखे होंगे, एआई चैटबॉट देखे होंगे, लेकिन अब एआई क्लासरूम में भी ये दस्तक दे रहे हैं, वो भी सरकारी स्कूलों में। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक नए दौर में एंट्री कर चुकी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने सरोजनी नगर में एक स्कूल में ऐसी अत्याधुनिक अनुभव शाला शुरू की है, जहां बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ ही नहीं रहे बल्कि उसे जी भी रहे हैं।

0: कभी ब्लैकबोर्ड, चौक और किताबों तक सीमित रहने वाले क्लासरूम अब पूरी तरह बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई क्रांति ला दी है।
1: There was a question here, like which was the lighter gas than air. So I answered helium, and I have to find out where is helium. Then I have to put it in periodic table.
0: अब स्पेस साइंस जैसी जटिल पढ़ाई हो या फिर गणित के कठिन सवाल, बच्चे इन्हें सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि खुद अनुभव कर रहे हैं। ये तस्वीर किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने सरोजनी नगर में अपने स्कूल में शुरू की है, जिसका नाम अनुभव शाला रखा गया है, जहां आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई को रोमांचक और आसान बनाया गया है।
2: ये इस क्लास का ये लैब है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट लगे हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, एक्सपर्ट है। इस पूरे चीज में ये क्या है और क्या इसमें नई, आप इस तस्वीर को देखिए, इसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि आप स्पेस में हैं। यानी ये बताता है कि यहाँ जो भी है चीजें वो स्पेस से रिलेटेड जानकारी देगी।
0: सरकारी स्कूल के इस क्लासरूम में एंट्री करते ही ऐसा एहसास होता है मानो आप किसी स्पेसशिप में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़े हैं। दीवारों पर ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाओं की दुनिया, छत पर चमकते तारे और चारों ओर डिजिटल तकनीक का अनूठा संगम जो बच्चों की कल्पनाओं को नई उड़ान देता है। खास बात है कि हाईटेक सुविधाओं से लैस ये क्लासरूम पढ़ाई का पूरा तरीका बदल रहा है। चंद्रमा की सतह कैसी दिखती है, अंतरिक्ष यान कैसे काम करता है, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, ग्रहों की गति कैसी होती है, इन सभी सवालों के जवाब अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव के साथ मिल रहे हैं।
2: कैसे अनुभव होता है, आप क्या करते हो जो आपको अनुभव होता है?
1: सर, हमें मून के बारे में पता चलता है कि मून का सरफेस कैसा है और मून में मतलब कौन कौन से मिशन गए थे, जैसे अपोलो 11, चंद्रयान 3।
2: अच्छा, अगर इस इक्विपमेंट की बात करें जो आपके पीछे रखा है, इससे आप कैसे ऑपरेट करते हैं और क्या जानकारी है?
1: सर, ये VRs है जिससे हमें पहन के पता चलता है, हम फील कर पाते हैं कि हम मून पर हैं।
0: इन तस्वीरों से साफ है कि बच्चे अब केवल किताबों में चंद्रमा या ग्रहों की तस्वीरें नहीं देख रहे बल्कि AI तकनीक के जरिए अंतरिक्ष को बेहद करीब से महसूस भी कर रहे हैं।
2: कि अभी ये मून के स्पेस पे है और ये चीजें आमतौर पर अभी तक जो है बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन आप देखिए AI तकनीक के द्वारा इस चीज को अब ये लैब में दिखाया जा रहा है कि कैसे मून में जब हमारा कोई भी चंद्रयान जाता है तो कैसे काम करता है।
0: AI तकनीक बच्चों के सीखने, सोचने, समझने की शक्ति को बढ़ाती है। इससे पढ़ाई न केवल आसान होती है बल्कि बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ती है।
3: कोशिश करी है कि बच्चे सिर्फ किताबों से ना पढ़े, क्योंकि जब से पुराने टाइम की बात करते हैं तो बच्चे रट्टा, जो जिसे हम रट्टा बोलते हैं, किताबों को बस पढ़ते हैं और उसको रटने की कोशिश करते हैं। बट इस लैब में हम एक तरह से एक नई दुनिया में बच्चों को डालते हैं VR हेडसेट्स के थ्रू, और उन्हें वो 3D मतलब अपने सामने बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस जगह पर है।
0: इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम शिक्षा व्यवस्था की नई तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। आज का क्लासरूम सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं रहा बल्कि बच्चों की कल्पनाओं को पंख देने वाली प्रयोगशाला बन चुका है। किताबों से निकलकर अनुभव तक पहुंचती इस नई शिक्षा प्रणाली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्षों में क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होंगे बल्कि ऐसे इनोवेशन सेंटर बनेंगे जहां बच्चे हर विषय को अपनी आंखों से देखेंगे, रोचक अंदाज में समझेंगे और अपने अनुभव से सीखेंगे। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए अली असगर की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: घर पे अकेली हूँ मैं आज।
6: कोई अकेला नहीं होता, भगवान सबके साथ होते
7: हैं।
5: मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है
6: तो बाहर जाओ ढूंढो उन्हें।
5: अरे पागल, मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी गए हैं।
6: कितने लापरवाह पेरेंट्स है तुम्हारे, तुम्हें अकेला छोड़ के बाहर घूमने चले गए, अगर चोरी हो गई तो।
7: बहस करने से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए तुरंत झापड़ मार कर रिश्ते मजबूत करें।
8: खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, और फिर वही करो जो बीवी कहती है।
4: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
12: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
11: Big 12 Radio.
13: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
11: and
13: down.
11: Talk sports.
14: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
11: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
15: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
19: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
22: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
23: Sage University, transforming your passion into profession.
4: CWG में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। में आरायश मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। नौ और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, कांवड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। सावन में दिख रहे हैं कांवड़ के अद्भुत रंग, मुजफ्फरनगर में पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण के अवतार में निकला कांवड़िया, बना चर्चा का केंद्र। यूपी में मौसम होगा मेहरबान, 4 से 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, 4 से 6 डिग्री गिरेगा तापमान। केरला में आज भी तेज बारिश का दौर जारी, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, यातायात पर भी असर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। आज आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात के 10:03 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र रात के 9:54 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:54 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल तथा बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम सावन में शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव जी की पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं और जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना पूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान या विधान पाया जाता है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है
और सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है ये शिवलिंग अपने आप धरती के अंदर से प्रकट होते हैं, इनको स्वयंभू मानते हैं और स्वयंभू मान करके इनकी पूजा की जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, परिवार में अशांति से बचिए, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के भी योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। जब भी आप शिवलिंग पर कोई वस्तु, जल, दूध ये अर्पित करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर अगर आप जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, लिक्विड चीज अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ जैसे फल, बेलपत्र आदि अर्पित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए और मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से शिवलिंग की पूजा ना करें। जब आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो उस समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सामान्यतः जब रुद्राभिषेक किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक होता है, तो रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। अगर आप ये ना कर सकें तो एक विशेष मंत्र पढ़िए और शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करिएगा। मंत्र होगा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं या आप निरंतर नमः शिवाय का जप करते जाएं और शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करें, शिवलिंग का अभिषेक करते जाएं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, यात्रा पर जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें।

होती है। अगर आप शिवलिंग का अभिषेक शहद से करें तो पुरानी से पुरानी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। जल में शक्कर मिला करके शक्कर मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करें तो संतान प्राप्ति आसानी से होती है। शिवलिंग का भस्म से भी अभिषेक होता है और भस्म से अभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है, सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जल से अभिषेक करना। शास्त्र कहता है कि शिव जी जल से, सूर्य देव नमस्कार से और भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप शिवलिंग पर कुछ अर्पित कर सकें या ना कर सकें, नियमित रूप से जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, आंखों का ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में किसी तरह का शस्त्र, चाकू, पिस्तौल आदि या नुकीली चीजें मत रखिए। अगर अपने बेडरूम में कोई शस्त्र रखेंगे, नुकीली चीज रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में विवाद और हिंसा आपके बढ़ सकती है।

अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

हमारे पास आयोजक मंडल और हमारे उद्घोषक महोदय आए, बोले गुरुजी गर्मी भयंकर है, पहले तुम 1-1.5 घंटे की कथा कर लो, फिर दरबार लगा लेना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले आपको दरबार में 2-2.5 घंटा लग जाना, फिर आपका इंजन ही 1-1.5 घंटे में गर्म होता है, सो कथा में 3 घंटे लगाना, रात के 10 बज जाएंगे। तो हमने कहा क्या करें? बोले गुरुजी पहले 1.5-2 घंटे की कथा सुना दो, फिर चाहे जितने बजे तक दरबार लगा लेना। उससे हमने कहा क्या होगा? बोले तब तक कुछ ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था राजस्थान इतना गर्म है, हमारे तो प्राण निकल रहे, सांस सी फूल रही। और हम तो ये बात पे आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग कैसे रह लेते होगे यहां पर भैया कितनी भी गर्मी रहे, हनुमान कथा की शीतलता भी तो दिल को ठंडक पहुंचा रही है। चौपाई कहती है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, इसीलिए आप सभी लोग यह चौपाई पहले गा लीजिए।

मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया, जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत, असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलों, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे हैं, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा,

देवता ध्यान देवे या ना देवे, पर मेरे पागलो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अच्छा देखो तो धनरे अंग्रेजी का जमाना क्या जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी एसी काले भूरे बिलैया छाप ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे, हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे बैल कम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं कुत्तों से सावधान। बताओ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए, चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा।

हनुमान जी कौन? जिन्हें न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराराम धीसम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो

जिनका चारों युगों में प्रताप है, यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में बानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपित ध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है, तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहाँ? अरे भैया कहाँ नहीं, लो हम उत्तर दे देते हैं, कहाँ?

संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो, संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहां? जहां महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो, छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत हैं। बोलो जय सिया राम। देखा, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने, आपको हम बताएं, अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए, 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई, आपको हम प्रमाण सहित देते हैं। पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही। बाल समय रवि

जी ने बाल काल में बचपन में लगाई। ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा, वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए?

हाँ हाँ, पहली छलांग बचपन में सूड खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह वैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई, आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई, जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है, पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने पांचवी छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में, जब राम राजा हो गए, अयोध्या वापस आ गए और राज अभिषेक जब गुरु वशिष्ठ तिलक जैसे ही करते हैं, उसी समय हनुमान जी राम जी में विलय होने के लिए छलांग मार करके कूद पड़ते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। यह हनुमान जी की पांचवी छलांग है। भैया इन पांच छलांगों से सीखना क्या है, हमें जिंदगी में भी ऐसे ही चलना है। पहले ज्ञान लेना है, फिर भक्ति पाना है, फिर वैराग्य पाना है, फिर ध्यान पाना है, फिर भगवान को अपने आप पा जाओगे। इन्हीं पांच छलांगों के बल पर हनुमान जी महाराज को एक बल प्राप्त हुआ, क्या,

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम
3: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द कमर दर्द कंधे का दर्द तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है
4: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूं फौजी 360 इसका नाम है फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है अब घुटने में भी दर्द नहीं है कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है अब मैं जिम करती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द कमर दर्द कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है और ये दावा हम नहीं वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं दौड़ रहे हैं पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा
10: तीन साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था जरा भी नहीं मुड़ता था और आज की स्थिति देखते हैं आप ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से हम रिपोर्ट से समझते हैं देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है पूरी घुटने जकड़ चुके थे जाम हो चुके थे जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द कमर का दर्द कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है
11: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल स्प्रे ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को हड्डियों को मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है
12: ये साहिल जी हैं 2 महीने पहले आए थे कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए फिर मिलते हैं आज आए हैं बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको क्या स्थिति है अभी
11: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
3: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
7: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
15: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
3: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
16: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
3: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
17: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट एक फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
3: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
18: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें, और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
21: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: No.
4: Oh, no.
5: Welcome to Get Real.
3: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
4: Oh, my God.
3: It's got to be deliciously desperate.
6: Why do these girls forgive him?
7: She has a soft spot for troubled men.
3: Boo bloody hoo.
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
4: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
8: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
12: Sage University, transforming your passion into profession.
13: CWG में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। साल का इंतजार हुआ खत्म, बारापुला फेज 3 का कॉरिडोर बनकर तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। पुंछ में आराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, कावड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। सावन में दिख रहे कावड़ के अद्भुत रंग, मुजफ्फरनगर में पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण के अवतार में निकला कावड़िया, बना चर्चा का केंद्र। केरलम में आज भी तेज बारिश का दौर, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, यातायात पर भी असर।
8: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
13: कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ शानदार और भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ किया फैंस ने अपने मेडल वीरों का स्वागत, एयरपोर्ट पर लगे भारत माता के जय के नारे। शान से अपना गोल्ड मेडल पहने नजर आए मुक्केबाज प्रीति पवार, 54 किलो वर्ग में प्रीति ने भारत को दिला है स्वर्ण पदक। महिला 57 किलो वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन लांबोरिया ने कहा, ये किसी सपने के सच होने जैसा, अब अगले लक्ष्य एशियन गेम्स के लिए करेंगे तैयारी। बॉक्सिंग में ही गोल्ड मेडल विनर प्रिया घंगास ने भी वतन वापसी पर जताई खुशी, देश के लिए मेडल की जीतने को बताया जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि।

0: एयरपोर्ट पर अपने विजेता एथलीट्स की एक झलक पाने के लिए लगी होड़, फूलमालाओं से लदे नजर आए सभी गोल्ड मेडल विजेता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में हासिल किया 14 स्थान। भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग रहा, 14 मुक्केबाजों के दल में 10 खिलाड़ी मेडल जीतकर लौटे, इनमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर शामिल रहे। हिसार में मुक्केबाज अंकुश पंघाल का भी हुआ शानदार स्वागत, उन्होंने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के शीटू को हराकर जीता था गोल्ड। पैरा खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया देश का मान, पैरा एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत के अभियान को दी मजबूती। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव के लिए इनाम का ऐलान, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 30 लाख रुपए और जीएसपी पोस्ट देने का किया ऐलान। दिल्ली में आईएसएसएफ शॉटगन रेफरी कोर्स की शुरुआत, निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड तकनीकी अधिकारी तैयार करना कोर्स का मकसद। 7 अगस्त तक चलने वाले ये कोर्स मैच अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, कोर्स में सऊदी अरब और श्रीलंका के लोग भी शामिल। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव, घुटने की चोटों से जूझ रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया। करीब एक साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की वापसी, दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए नॉर्थ जोन की टीम में चुने गए हैं अर्शदीप। आज है सावन का पहला मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा, मां मंगला गौरी देती हैं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। मां मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप, मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट होते हैं दूर। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की थी कठोर तपस्या, कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को किया संपन्न। हरिद्वार कांवड़ मेले में दिखा नया रंग, पैदल कांवड़ के साथ साथ अनोखी और विशाल कांवड़ भी लोगों का खींच रही हैं ध्यान। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र, कांवड़िए शिव, शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते बढ़ रहे हैं आगे कांवड़िए, हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ कर रहे हैं अपनी यात्रा पूरी। झांकियों पर लाखों खर्च कर रहे हैं कांवड़िए, पैसे पूछने पर कांवड़िए बताते हैं सब भोलेनाथ की है कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है संभव। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं कांवड़िए, भगवान शिव में आस्था देती है उन्हें लंबी यात्रा की ताकत। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, आज से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। नूह में सावन का पहला मंगलवार पर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र चंदन दही से किया भोलेनाथ का जलाभिषेक, बोलबम के लगे जयकारे। मैनपुरी में भी सावन पर शिवालय में भक्तों ने किया जलाभिषेक, विधि विधान से की पूजा पाठ। मंदिर में सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतार, लगाए हर हर महादेव के जयकारे। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर कांवड़िए यात्रा के लिए पहुंचे, विधि विधान से पूजा कर कांवड़ पर निकले भक्त। कोटा में 500 साल बाद पुराना अनूठा शिवलिंग, एक ही शिला में शिवलिंग और शीश काटकर भोलेनाथ को समर्पित करते रावण की मूरत। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना यह प्राचीन शिवालय, पूरे महीने यहां जलाभिषेक और दर्शन के लिए लगती है भक्तों की लंबी कतारें। हापुड़ में पूरी श्रद्धा से जारी है कांवड़ यात्रा, यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के अंदर वन वे किए प्रमुख मार्ग। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात, वाहनों को सही मार्ग दिखाने और कांवड़ियों के सुरक्षित मार्ग देने के लिए लगातार दे रहे हैं जानकारी। चंबा के रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। सीएम सुक्खू ने निभाई परंपरा। मेले में सीएम सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस में मंजरी गार्डन तक निकाली गई पारंपरिक शोभा यात्रा का किया नेतृत्व। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मेले में देखी हिमाचल की संस्कृति, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। तिरुचिरापल्ली में आदि पेरुकु उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आदि पेरुकु उत्सव पर नवविवाहित जोड़ों और महिलाओं ने नदी में पीला धागा किया धारण, नैवेद्य और फल किए अर्पित, नदी किनारे विधि विधान से की पूजा। पुंछ में श्रद्धालुओं ने आराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ किले 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरू। पिछले 5 साल से लगातार हो रही है ये पैदल यात्रा। यात्रा के दौरान लगे बम बम भोले के जयकारे, नई पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ना है यात्रा का मकसद। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इस यात्रा में हुए हैं शामिल। भगवान भोले के भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह। 5 साल पहले सिर्फ 11 लोगों से शुरू हुई थी ये यात्रा, अब इस यात्रा में जुड़ चुके हैं 100 से ज्यादा श्रद्धालु। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ कर रहे हैं कदमदार। योगी सरकार आज पेश करेगी अपनी सप्लीमेंट्री बजट, 25,000 करोड़ रुपए के करीब होगा ये बजट। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान संभव। डिब्रूगढ़ में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटी सहायता राशि, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। सैलानियों से गुलजार हुआ डल लेक, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। डल लेक में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी, कारोबारियों में भी खुशी की लहर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं

के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है, बवासीर क्या है। हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार

0: आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: सीडब्ल्यूजी में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। ग्यारह साल का इंतजार हुआ खत्म, बारापुला फेज थ्री का कॉरिडोर बनकर तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। पुंछ में आराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, कावड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। सावन में दिख रहे कावड़ के अद्भुत रंग, मुजफ्फरनगर में पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण के अवतार में निकला कावड़िया, बना चर्चा का केंद्र। केरलम में आज भी तेज बारिश का दौर, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, यातायात पर भी असर।

नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और हमारी इस खास पेशकश में आज बात कावड़ की। सावन का पावन महीना चल रहा है और कावड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कावड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कावड़ यात्रा के शानदार रंग भी देखने को मिलते हैं। अपने आकर्षक कावड़ के साथ जब कावड़िये रास्तों से गुजर रहे होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कावड़ यात्रा की बिखरी छटा को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई दलों में कावड़िये अपना अपना संकल्प लेकर अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव से जुड़े कावड़ लेकर चल रहे हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कावड़ लेकर चल रहा है तो कोई नरसिंह अवतार वाला कावड़, कोई शिव परिवार का कावड़ तो कोई गरुड़ की छांव में विराजमान भगवान शिव का कावड़, कोई हनुमान जी रूपी कावड़ लेकर चल रहा है तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सरों पर सवार शिव जी का अद्भुत कावड़ लेकर चल रहा है। एक कावड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार दिखाया गया है। ऐसे जितने कावड़ हरिद्वार से निकले हैं सभी को कावड़ियों का कोई ना कोई दल लेकर सामूहिक रूप से चल रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आस्था की यात्रा पर निकले कावड़िये अपने अपने कावड़ों को ऐसे अनोखे अंदाज में सजा कर लाए हैं कि देखने वाले बस देखते रह जाएं।

0: सर पर कांवड़, जुबा पर भोलेनाथ का नाम और दिल में अटूट आस्था। सावन की इस यात्रा में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा की पहचान सिर्फ इसकी भव्यता नहीं बल्कि इससे जुड़ी अनोखी परंपराएं भी हैं। हर भक्त अपने अंदाज में अपने संकल्प के साथ इस कांवड़ यात्रा में शामिल होता है। किसी ने महादेव को अर्धनारीश्वर रूप में कंधे पर रखा है, तो किसी ने नोटों से कांवड़ को सजा रखा है। इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ रिश्तों के बीच की अटूट भक्ति भी नजर आती है। कोई अपनी बूढ़ी माँ को तो कोई अपनी बीमार सास को बाबा के दर्शन के लिए कांवड़ में बिठा कर ले जा रहा है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें इन दिनों कांवड़ के धर्म पथ पर देखने को मिल रही हैं। अब देखिए हरिद्वार से चली आस्था की अनोखी लहर को, जिसने मुजफ्फरनगर में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस अनोखी कांवड़ यात्रा को दिल्ली के शिव भक्त दीपांशु लेकर निकले हैं। वो अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। खास बात ये है कि इस कांवड़ को 10, 20, 50 और 100-100 रुपए के अनगिनत नोटों से सजाया गया है, जिसे देखने के लिए रास्ते भर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। दिल्ली पहुँचने पर दीपांशु इन नोटों से भंडारा करवाएंगे।
1: हमने जल उठाया था 28 जुलाई को।
2: 28 जुलाई
1: जी।
2: कितने किलोमीटर का सफर
1: है? मेरी जो एक कांवड़ यात्रा है ये पूरे 200 किलोमीटर की है। हाँ जी।
2: कब तक पूरी करने के?
1: मैं 10 अगस्त को पहुंचने की पूरी कोशिश है मेरी। ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे।
0: अब देखिए जरा मुंगेर के कच्ची कांवड़िया पथ पर भक्ति की अनोखी तस्वीरों को, जहाँ उज्जैन महाकाल के दिव्य स्वरूप में भक्तों ने कांवड़ निकाली, वहीं जंजीर में जकड़े शिव भक्त की मस्ती सभी को हैरान कर गई। जंजीरों से बंधा शिव भक्त महादेव के जयकारे लगाता हुआ बाबा बैद्यनाथ के लिए धर्म पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ कांवड़ यात्रियों में देशभक्ति की भावना भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही बागपत से आए 26 कांवड़ियों का एक दल भी है, जो कांवड़ के साथ 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर चल रहे हैं। कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा। अब देखिए जिम वाली कांवड़। इस अनोखी कांवड़ में डंबल, वेट प्लेट और एक्सरसाइज का पूरा इंतजाम है। खास बात ये है कि शिव भक्त अमित इस कांवड़ को किसी वाहन से नहीं बल्कि अपने कंधों से खींचकर करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक और ऐसी अनोखी कांवड़ भी पहुंची, जिसने हर किसी को सतयुग के श्रवण कुमार की याद दिला दी। इस कांवड़ को लाने वाला शिव भक्त अपनी कांवड़ के एक पलड़े में अपनी बुजुर्ग माँ तो दूसरे में बुजुर्ग चाचा को बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला। वहीं दिल्ली के विकास नगर निवासी अरविंद ने अपनी बुजुर्ग दादी को कांवड़ से हरिद्वार की यात्रा करवाई। इसे जिस किसी ने भी देखा उसकी नजरों में वो श्रद्धा, सेवा और पारिवारिक संस्कार की पूरी तस्वीर उतर आई। वहीं दिल्ली के शाहदरा निवासी काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सासू माँ चंद्री देवी को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा कर रही हैं। उनका ये संकल्प देखकर भी हर कोई हैरान है।
3: मेरी कोई मन्नत नहीं है, मेरी खाली माता की सेवा करने की मन्नत है। मैं सेवा करना चाहती हूँ उनकी, और मेरी कोई मन्नत नहीं है। जो भारत की नारी है और भारत की नारी कहा जाती है, लेकिन अपने सासू ससुर की, अपने माता पिता की ऐसी सेवा करें जब वो हमारे पास से जाए तो वो हमें ऐसा आशीर्वाद दे के जाए जो हमारे बच्चे भी पले फूले।
0: अलीगढ़ के नरेंद्र भी अपनी अनोखी कांवड़ यात्रा के लिए काफी मशहूर है। श्रद्धालुओं के बीच वो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नरेंद्र हरिद्वार से 11 लीटर गंगा जल की कांवड़ और भगवान शिव की प्रतिमा को अपनी कार के ऊपर बिठाकर दांतों से कार खींचते हुए गांव लौट रहे हैं। उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान के जल अभिषेक का संकल्प लिया है। आस्था की राह पर निकली ये अनोखी कांवड़ यात्राएं बता रही हैं कि परंपराएं समय के साथ नए रंग भी अपना सकती हैं। जहां शिव भक्ति है वहीं सेवा है, संस्कार का संदेश भी वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कांवड़ मार्ग पर सजी धजी कांवड़ों की तस्वीर तो दिखी रही है, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग भी दिख रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकले हैं। 7 नौजवान पोते अपनी 100 साल की दादी को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, तो एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका।

0: समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की ज्योति जलाए हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। सहारनपुर में 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी करवाई। गंगा जल लाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव बन गई। पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रहीं। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का ये अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ को निहारते रह गए। परिवार का कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं और कोई भक्ति नहीं। उनके लिए दादी को कांवड़ यात्रा कराना किसी दायित्व से बढ़कर सौभाग्य और ईश्वर की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
1: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के।
2: जी, कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
1: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, 2 बुआ जी हैं और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है और 4 भाई हैं दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के ऐसे ही रंग झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम के रास्ते में भी दिख रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्केटिंग करने वाले ये युवा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर समस्तीपुर से एक साथ बेगूसराय होते हुए सब बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
3: समस्तीपुर जिले से करीब 1 दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
0: 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
4: 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और 2 से 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
5: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, मगर हम लोग सोचे कुछ अलग करे।
6: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का।
0: बेगूसराय से युवाओं का ये दल सुल्तानगंज से जल भर कर बैद्यनाथ धाम पहुँचेगा और फिर वहाँ बाबा को जल अर्पित करेगा। यूं समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरपुर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: मौका सावन का है, महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग भी देखने को मिलते हैं। अपने आकर्षक कांवड़ के साथ जब कांवड़िए रास्तों से गुजर रहे होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। कांवड़ यात्रा की बिखरी छटा को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

0: ये दिव्य छटा भगवान शिव के प्रिय माह सावन की है। इस माह में शिवालयों से लेकर कांवड़ पथ तक पर दिव्य रंगों के दर्शन होते हैं। एक से बढ़कर एक ऐसा कांवड़ लेकर शिव भक्त जाते दिखाई देते हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ थी, वहीं अब पैदल कांवड़ के साथ भव्य कांवड़ लेकर जाते शिव भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िये हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। अधिकतर कांवड़ में भगवान शिव अलग अलग स्वरूपों में है। कोई भक्त भोले बाबा की बड़ी प्रतिमा के साथ तो कोई भगवान शिव के पूरे परिवार की मूर्तियों की झांकी बनाकर ले जा रहा है। किसी कांवड़ में भगवान नरसिंह तो किसी में रावण की झांकी भी है। इसके अलावा बाकी देव देवता भी इन कांवड़ों में विराजमान दिखाई देते हैं।
1: हमारे भोलेनाथ शिव लगवा रखी है, अपने शिव परिवार जोड़ा है हमारे पास।
0: अब कांवड़ यात्रा में शिव भक्त रावण को देखिए, जो पुष्पक विमान पर सवार है। ये ई रिक्शा की वो पुष्पक विमान है जिस पर सवार होकर रावण ने हरिद्वार से जल भरकर दिल्ली के लिए कूच किया। रावण का स्वरूप धरे शिव भक्त मूलचंद त्यागी जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूं और दिल्ली पहुंचूंगा, मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूं। पुष्पक विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: मूलचंद त्यागी हरिद्वार से कांवड़ उठाकर 1 अगस्त को अपने इस पुष्पक विमान पर सवार होकर निकले। ये दिल्ली में समयपुर बादली पहुंचकर शिवरात्रि पर शिवालय में भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही तो है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, शिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा तक महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भर कर भी लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक इतिहास की बेहद गहराई तक जाती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा की। हाँ, लेकिन हर बार हर युग में इस यात्रा के केंद्र में महादेव रहे, यानी कांवड़ यात्री कोई भी रहा हो, आस्था और समर्पण का ये मार्ग पहुंचा भोलेनाथ तक ही। चलिए आपको सुनाते हैं युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी।

0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर पड़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण के इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था, तब वे कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
1: भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है, और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं, इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है।
0: तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बैठा कर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी।
1: श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था, और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुंचे तब उन्होंने वहां जलाभिषेक किया, तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई ऐसा कहा जा सकता है।
0: तो वहीं वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्रीराम से भी जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे, लेकिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जाह्नवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्रीराम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया
0: कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोलबम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िये के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस से झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िये कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कांवड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िये महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा कर रहे हैं। पवित्र नदियों के तटों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिए कांवड़िये इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
6: मिली एक नॉटी बच्चे से जो अपनी काम करती माँ के काम को कुछ यूं एंजॉय कर रहा है। माँ अनाज भटकने और चालने का काम कर रही है, बच्चा माँ के एक्शन को रिदम मान बिल्कुल उसी तरह नाच रहा है, मानो कोई संगीत की धुन बज रही है। जैसे ही अनाज भटका जाता बच्चा भी जंप करता, और जैसे ही अनाज को चाला जाता है बच्चा भी वैसे ही थिरकने लगता है। माँ को लगता तो है कि पीठ पीछे कुछ चल रहा है, लेकिन बच्चा माँ को पता नहीं चलने देता। अब इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसके बहाने अपने बचपन की शरारतें याद कर रहे हैं। अगस्त का महीना आ गया है और स्वतंत्रता दिवस का इंतजार किया जा रहा है। खास तौर पर बच्चे अपनी आजादी के जश्न को हमेशा अलग ढंग से मनाते हैं। इन बच्चियों को देखिए, इन्होंने तिरंगे के रंग के कपड़ों के इस्तेमाल से एक तिरंगा फूल बनाया और उसका खुशी से प्रदर्शन कर रही हैं। इन बच्चियों की ये वायरल तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर हर कोई इंडिया इंडिया इंडिया कर रहा है। बच्चों के साथ रहने से ही हंसी खुशी और यादें बनती है। इन छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े सपने हैं और सपनों के साथ है ढेर सारी मस्ती। ये जेंजी के बाद की जनरेशन जेन अल्फा है, जो इन तस्वीरों के जरिए जेंजी के रास्ते पर चल रहे हैं, और इनके खुशमिजाज नन्हे दिल अपने लिए कुछ नए पल रच रहे हैं और दूसरों का दिन रोमांचक बना रहे हैं। जेंजी की वायरल रील पर जेन अल्फा बच्चों का ये प्रयोग भी सबको लुभा रहा है और हर एक चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: Today banata hai.
9: Good news today.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
13: Sage University, transforming your passion into profession.
5: भदोही में तेजी से बनेंगे जूट के नए कालीन, JCI आउटलेट से उद्योग को मिलेगा बड़ा सहारा, जूट कारोबारियों में खुशी की लहर। पीडब्ल्यूजी में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। ग्यारह साल का इंतजार हुआ खत्म, बारापुला फेज थ्री का कॉरिडोर बनकर तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। पुंछ में अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे। नौ और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, कांवड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
5: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और लंच टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पहले मंगलवार मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व। हरिद्वार में भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र, कांवड़िए शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, आज से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। मैनपुरी में भी सावन पर शिवालयों में भक्तों ने किया जलाभिषेक, विधि विधान से की पूजा पाठ। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालु, विधि विधान से पूजा कर कांवड़ पर निकले भक्त। कोटा में 500 साल पुराना अनूठा शिवलिंग, एक ही शिला में शिवलिंग और शीश काटकर भोलेनाथ को समर्पित करते रावण की मूरत। चंबा के रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न, सीएम सुक्खू ने निभाई परंपरा। तिरुचिरापल्ली में आदि पेरुकू उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सीडब्ल्यूजी में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं। अब 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, बारापुला फेज 3 का कॉरिडोर बनकर तैयार, इसी महीने उद्घाटन संभव। सैलानियों से गुजार हुई डल लेक, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, शिकारा राइड का ले रहे आनंद। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ का सहस्त्रकुंड झरना हुआ ओवरफ्लो, झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। केरलम में आज भी तेज बारिश का दौर जारी, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। डिब्रूगढ़ में सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटी सहायता राशि, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। फिल्म घोसला का घोसला की स्टारकास्ट के साथ अनुपम खेर की रील को मिले 100 मिलियन व्यूज, रणवीर शौरी ने किया शुक्रिया। भारत के सिनेमाघरों पर स्पाइडरमैन ने मचाया तहलका, टॉम हॉलैंड की सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू ने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। तमिलनाडु के सीएम और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म जन नायगन बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धूम, 12 दिन में 210 करोड़ के करीब पहुंचा फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन। फिल्म गोकुल 1797 का पोस्टर जारी, 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित। फिल्म एलियास रुक्मिणी का वीडियो जारी, फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। चीन की चाकासाल लेक को कहा जाता है आसमान का आईना, ये झील इतनी साफ और चमकदार है कि इसमें पूरा आसमान आईने की तरह दिखाई देता है। चीन के तियानजिन में अनोखा समर कैंप शुरू, यहां बच्चे और उनके परिवार म्यूजियम के अंदर टेंट लगाकर पूरी रात बिताते हैं। समुद्री जीवों के बीच सीखने का मौका, बच्चे जेलीफिश, व्हेल, शार्क और दूसरे समुद्री जीवों के बारे में मजेदार तरीके से जानकारी लेते हैं। इटली के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा, गर्मी से लोगों को बचाने के लिए 25 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, सिर्फ 36 मिनट में पिघल गया बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए, खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। भारत का नाम रोशन कर देश वापस आए सभी खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मयूर विहार फेज 3 का कॉरिडोर बनकर लगभग तैयार, इसी महीने हो सकता है उद्घाटन। बूढ़ा अमरनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू, भक्तों में दिख रहा है उत्साह, बम बम भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं। 12 अगस्त को गाजियाबाद में कावड़ यात्रा के चलते स्कूल रहेंगे बंद, मेरठ में भी कावड़ रूट के सभी स्कूल कॉलेजेस रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन कर जमकर होगी बरसात, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।

सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्तों की अटूट आस्था और समर्पण का महीना। एक तरफ भोले के भक्त महादेव की भक्ति में खोए हैं, तो दूसरी ओर सावन में कुदरत भी मानो कावड़ियों का पूरा ख्याल रख रही है। मतलब ये कि सावन में मॉनसून की मेहरबानी ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। सावन के पहले सोमवार को उत्तर भारत में आसमान से हुई रिमझिम बारिश मंगलवार को भी जारी है। आज दिल्ली, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, मथुरा, प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना बना दिया। जलाभिषेक के लिए निकले कांवड़ियों को भी इस बारिश से काफी राहत मिली। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अगस्त के महीने में राहत की बारिश आगे भी जारी रहने की संभावनाएं हैं, जिससे मौसम के कूल बने रहने के आसार हैं।

0: सावन के पहले मंगलवार को मौसम मेहरबान क्या हुआ, फिजा की रंगत ही बदल गई। बारिश की रिमझिम फुहारों ने तन मन को भिगोया तो मानो माहौल भी रोमानी हो गया। जम्मू से लेकर दिल्ली, पंजाब से लेकर प्रयागराज, अम्बाला मथुरा से लेकर हैदराबाद, सावन की शुरुआत में ही मॉनसून ने अपनी रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। पिछले कई दिनों से सूखे को समाप्त करते हुए कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। पंजाब में एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को अंबाला, मोहाली, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और चंडीगढ़ में तेज बारिश हुई, जबकि पठानकोट, फरीदकोट में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब के 10 जिलों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून मेहरबान हुआ है। मौसम की ये मेहरबानी शिवभक्त कांवड़ियों के लिए भी खुशी की सौगात लेकर आई है। तपती जलती गर्मी और उमस से कांवड़ियों को राहत मिली तो वो खुशी से झूम उठे। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में देश में कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वजह प्रशांत महासागर में सक्रिय मध्यम तीव्रता का अल नीनो है, जो मानसून की रफ्तार को धीमा कर रहा है। हालांकि अगस्त के पहले हफ्ते में कई राज्यों में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। दिल्ली में अल नीनो का प्रभाव न के बराबर पड़ने की संभावना है। राजधानी में सामान्य से अधिक बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं, जिससे दिल्ली NCR में इस महीने अधिकतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता, बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर होने वाली बारिश के चलते दिन के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि रात के समय राहत मिलने की संभावना कम है। लगातार बनी रहने वाली नमी और उमस की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। ऐसे में दिन की तुलना में रात में उमस ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केरलम, कर्नाटक, गुजरात समेत देश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत राहत की बारिश में सुकून महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। हालांकि अच्छी बारिश का अब भी इंतजार है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिल सके। आइए अब जानते हैं आज आपके राज्य और शहर का मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो आज दिल्ली और NCR के आसमान में काले बादल छाए रह सकते हैं। इतना ही नहीं, आज दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आलम यह है कि नोएडा और गाजियाबाद में कई जगह बूंदाबांदी भी हुई। वहीं हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह हिमाचल

0: तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस साल उम्मीद से कम बारिश हुई है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जो भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई जगह बादल फटने की वजह से भी हालात मुश्किल हुए हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी पर मिशन जिंदगी भारी है और प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश के अमालापुरम, केरल के अरांडमुला इलाके और असम के शिवसागर में रेस्क्यू मिशन जारी है और बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए पांच तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बाढ़ बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और बाढ़ की वजह से जहाँ लोग परेशान हैं, लोगों जो है उन्हें दिक्कत हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसी बीच NDRF, SDRF और जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो लगातार रेस्क्यू जो है कर रहे हैं लोगों का। और ये मिशन जिंदगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असम पर आई प्राकृतिक आपदा ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदलकर रख दी। बाढ़ ने घर, खेत और रोजगार सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन संकट की इस घड़ी में मदद के लिए कई हाथ ऐसे भी हैं जो आगे आए हैं। भारतीय सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी सामान की व्यवस्था भी की जा रही है।
1: असम में बाढ़ ने भले ही बड़ी चुनौती खड़ी की हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में राहत और बचाव का ऐसा अभियान चल रहा है जिसने हजारों लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौटा दी है। सेना, NDRF, SDRF, राज्य सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। इस मुश्किल हालात में कई नामचीन सितारों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सलमान खान, कार्तिक आर्यन से लेकर रणदीप हुडा तक कई सेलेब्स ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। अभिनेता रणदीप हुडा खुद असम के बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद का हाथ बढ़ाते हुए नजर आए। रणदीप हुडा नाव के जरिए वो जलमग्न गाँव तक पहुँचे और लोगों के घर घर जाकर राहत सामग्री पहुँचाई। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। रणदीप हुडा की ये पहल सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो मुश्किल हालात से जूझ रहे लोगों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। राहत अभियान के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों में लंगर की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक समय पर खाना पहुंचाया जा सके।
2: मैं काफी टाइम से देख रहा था टीवी पे क्या चल रहा है और मैं ग्लोबल सिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो टीम यहाँ पे पहले ही आ चुकी थी एक हफ्ता पहले और उन्होंने रेस्क्यू और उस रेस्क्यू के बाद जो बेसिक मटेरियल है, जो रोजमर्रा की यूज का जो चीजें हैं वो उन्होंने रिलीफ में बांटनी शुरू की है। तो मैं आज उन्हीं के साथ आया हूँ और काफी दर्द हो रहा है देख के कि कितना नुकसान हो गया है, कितना पानी आ गया है, कितने गांव डूब गए हैं। तो सभी को आगे आके हेल्प करनी चाहिए और मैं ग्लोबल सिक्स के माध्यम से यहां पे आके जो मुझसे बन पाए मैं करने के लिए आया हूं।
1: वैसे केवल रणदीप हुडा ही नहीं, असम में आए विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए कार्तिक आर्यन और सलमान खान समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी मदद के लिए आगे आए। सलमान खान ने अपनी चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमंस के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लेवल का राहत अभियान शुरू किया था। वहीं कार्तिक आर्यन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की राशि दी।

0: इसके अलावा सिंगर गुरु रंधावा और एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी मदद की अपील की है और भूमि ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया और लोगों से कहा कि वो असम में चल रहे संकट को नजरअंदाज न करे। एक्टर ने भारत डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए डोनेशन का लिंक भी शेयर किया और लोगों से अपील की कि वो जितना हो सके उतना योगदान दे। असम में बाढ़ का कहर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां करीब 1,28,000 लोग इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा लगातार प्रभावित इलाकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित 75,000 से ज्यादा परिवारों के लिए करीब 160 करोड़ रुपए की पहली किस्त अंतरिम राहत के तौर पर जारी कर दी है, ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता मिल सके। असम में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर शामिल है। राहत की बात की जाए तो कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में नेता अभिनेता के अलावा आम लोग और तमाम एनजीओ भी मदद के लिए आगे आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी अनवर खान भी इस दूर दराज बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री लेकर पहुंचे। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री और रोजमर्रा के उपयोग का सामान बांटा।
1: यहाँ पे देखिए, अच्छे वक्त पे तो हर आदमी रहता है, लेकिन बुरे वक्त पे आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा मैं आया हूँ यूपी से, वैसे बहुत सारे तमाम भाई लोग आ रहे हैं, और जो लोग नहीं भी आ पाए उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आइए, यहाँ का मंजर देखिए कि कितना खतरनाक मंजर है। किसी ने अपने फादर को खो दिया, किसी ने अपने मदर को खो दिया, किसी फादर मदर ने अपने बेटों को खो दिया। तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना हो सके आप लोगों से उतना आप यहाँ पे हेल्प करें।
0: स्वयंसेवकों के साथ मिलकर आम लोग जरूरतमंद तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश बताती है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती, न भाषा मायने रखती है, न धर्म और न ही राज्य की दूरी। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में असम को सिर्फ राहत सामग्री ही नहीं, बल्कि देश भर से मिल रहा विश्वास और सहयोग भी नई ताकत दे रहा है, और यही एकजुटता इस आपदा से उबरने की सबसे बड़ी उम्मीद है। जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया, बांदीपुरा और पहलगाम समेत कई जगह पर बादल फटने से कई गांव जलमग्न हो गए। लद्दाख के कारगिल में भी कई जगह बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन के साथ साथ यहाँ के लोग भी हिम्मत और हौसले के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। चारों तरफ से प्रयास जारी है, उम्मीद है जल्द ही इन इलाकों में हालात सामान्य हो जाएंगे। शोपिया में बचाव दलों ने करीब 80 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। SDRF की टीमें प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक मौसम और जलस्तर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ही अतिरिक्त बचाव दल तैनात किए जाएंगे। तो केरल में लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। पतनमथिट्टा जिले में खासकर अरांडमुला इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में स्कूलों को बंद रखा गया है। प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है, लिहाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस इलाके में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। हालात का सामना करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है और आला अधिकारियों की बैठक का दौर भी लगातार जारी है। शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा महीना सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में भोलेनाथ के भक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है। अब बारिश के मौसम में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी भी हो रही है, जिसे देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए NDRF की तैनाती कर दी गई है। NDRF की टीम अत्याधुनिक बचाव उपकरणों, मोटर बोट्स, वाटर एम्बुलेंस और दूसरे जीवन रक्षक संसाधनों के साथ 24/7 तैनात है।
3: ये तैयारी है शिव भक्तों की हिफाजत की। वाराणसी में सावन के पावन माह में हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित करने के लिए जुटे हैं। बारिश के मौसम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लिहाजा पानी के तेज बहाव में शिव भक्तों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वाराणसी के गंगा घाटों पर NDRF के जवान मुस्तैद हैं। मोटर बोट, वाटर एम्बुलेंस और आधुनिक बचाव उपकरणों के साथ NDRF की पूरी टीम गंगा घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
4: वाराणसी में 11 NDRF अपने पूरे दलबल के साथ देख सकते हैं कि गंगा में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को हिदायत दे रही है कि गहरे पानी से बचे, बैरिकेटिंग के दायरे में ही रह के वे स्नान करें और पूजन अर्चन करें। देख सकते हैं लगातार ये ड्रिल चल रही है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। सावन की शुरुआत चुकी हो गई है और लोगों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है NDRF के लिए, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं।
3: दर्जनों मोटर बोट के साथ साथ हाई स्पीड बोट भी घाटों के लगातार चक्कर लगाकर श्रद्धालुओं को सतर्क कर रही है। NDRF की 11वीं वाहिनी के जवान लोगों को जागरूक करने के साथ साथ किसी भी अनहोनी को टालने के लिए तैयार हैं।
5: 11 NDRF की एक टीम यहाँ हमेशा 24/7 डिप्लॉय रहती है। चूंकि सावन है, सावन का माह शुरू हो गया है, बहुत सारे श्रद्धालुगण देश विदेश से यहाँ आते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक टीम और एडिशनल टीम यहाँ डिप्लॉय करी है। वो टीम बार बार लोगों को एडवाइस देती रहती है कि नदी के किनारे ज़्यादा गहरे में जो है स्नान ना करें। जो बोट चालक हैं वो बोटों में जिन लोगों के श्रद्धालुओं को बैठाते हैं उनको लाइफ सेविंग जैकेट पहनाएं ताकि कुछ दुर्घटना होने पर बचाव किया जा सके। इसके अलावा हमारी NDRF की टीमें हमेशा तैयार हैं 24/7 किसी भी इमरजेंसी के लिए।
3: घाटों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के साथ साथ NDRF की टीम स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल बनाकर चल रही है। कोशिश यही है कि वाराणसी आने वाले हर भक्त की तीर्थ यात्रा पूरी सुरक्षा और सहूलियत के साथ पूरी हो और बाबा विश्वनाथ के दर्शन की ये यात्रा सभी शिव भक्तों के लिए यादगार बन जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां इन दिनों शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में कांवड़िए जल भरने पहुंच रहे हैं। इस बीच गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बढ़ते जलस्तर का असर अब घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। अरैल क्षेत्र के पक्के घाट की ज्यादातर सीढ़ियां पानी में डूब चुकी है और घाट पर बने तीनों गुंबदों तक नदी का पानी पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बाढ़ राहत चौकियां बना दी गई हैं, NDRF की टीमों की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी लगातार दी जा रही है।
6: प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम इस वक्त अरैल घाट पर हैं और ये पक्का घाट है जहां पर बाढ़ का पानी अरैल घाट की पक्की सीढ़ियों पर आ गया है और लोग सीढ़ियों में ही स्नान कर रहे हैं और ये जो गुंबद है इन तक पानी आ गया है। लोग यहाँ पर बैठते हैं और यहीं पर स्नान करते हैं और लोग जो है यहाँ पर सीढ़ियों में ही स्नान कर रहे हैं। तीन गुंबद यहाँ बने हैं, तीनों गुंबदों तक पानी आ गया है। फिलहाल दोनों नदियों का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल DM लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और बाढ़ राहत चौकियाँ भी बनाई गई हैं और यहाँ पर सलोरी बघाड़ा जैसे निचले इलाके हैं, दारागंज जैसे इलाके हैं, वहाँ पर जब बाढ़ आती है तो वहाँ लोगों के घर तब डूब जाते हैं। फिलहाल बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं और यहां पर NDRF की तैनाती भी कर दी गई है। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज।
2: और चलिए आपको दिखाते हैं सावन में शिव भक्तों की आस्था के रंग।

सावन का पावन महीना चल रहा है, जहां हर सोमवार हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। वहीं मंगलवार भी मां गौरी की आराधना से भक्ति का रंग और भी गहरा हो रहा है। आज सावन का पहला मंगलवार है, यानी मंगला गौरी महाव्रत का पावन मौका। ये व्रत विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि मां मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन, पति की दीर्घायु तथा परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन श्रद्धालु मां गौरी से अपने परिवार के कल्याण, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द तथा जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यानी आज महादेव के साथ साथ महागौरी की आराधना से दोनों का आशीर्वाद पाने का शुभ मौका है।

0: सावन का पहला सोमवार हर सुहागिन के लिए एक संदेश लेकर आया है। यदि सोमवार शिव की असीम कृपा का द्वार है तो मंगलवार माँ गौरी के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद है। शिव की करुणा और शक्ति की कृपा जब एक साथ मिलती है तभी जीवन पूर्ण मंगलमय और आनंदमय बनता है।
1: शिव के बिना या शक्ति के बिना शिव सौ के समान है, तो केवल शिव पूजा से लाभ नहीं मिलता। श्रावण में सोमवार को भगवान महादेव की और मंगलवार को मंगला गौरी की जो पूजा होती है वो जीवन में मंगल का अर्थ होता है, जीवन में मंगल कामनाएं और कल्याण, मंगल कल्याण करने के लिए यह जो मंगला गौरी का सावन के महीने में जो पूजन है, व्रत है, तो भगवान शिव का सोमवार को और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने से गौरी शंकर की जब कृपा होती है तो जीवन में समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और सर्वदा मंगल और कल्याण होता है।
0: जिस तरह सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना गया है, उसी तरह इस पवित्र महीने का हर मंगलवार भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आज सावन का पहला मंगलवार है, आज मंगला गौरी व्रत की धूम है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे मंगलकारी व्रतों में से एक माना जाता है। आज सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य, परिवार की समृद्धि और देवी की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि आज के दिन श्रद्धा और विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर देवी की विशेष कृपा बरसती है और उनका सुहाग अटल बना रहता है।
2: श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का जो व्रत होता है माता गौरी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है ऐसा माना जाता है। विवाहित महिलाएं दाम्पत्य जीवन की शुभता, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं तथा कुमारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं।
0: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कठिन व्रत, उपवास और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को प्रसन्न किया। उसी तप, त्याग, धैर्य और समर्पण की याद में सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है।
1: मंगला गौरी की पूजा में लाल वस्त्र पहन करके मंगला गौरी के मंदिर में जाएं और सौभाग्यवती स्त्री अगर है तो उसे सौभाग्य के द्रव्य और पांच प्रकार के फल भगवती मंगला गौरी को अर्पण करने चाहिए। लाल चूड़ियाँ हैं, सिंदूर है, ये सब चीज़ें भगवती को, लाल फल है, लाल रंग की मिठाई है, लाल रंग का फूल है, क्योंकि यह जो भगवती गौरी हैं यह इनको रक्त वर्ण की वस्तुएं या पीले रंग की वस्तुएं, आप पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पहन करके सौभाग्यवती स्त्रियां अगर महादेव का और मंगला गौरी दोनों का पूजन करती हैं तो जीवन में उनके हमेशा सौभाग्य बना रहता है।
0: माँ मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप है। ये सौभाग्य, समृद्धि, प्रेम, धैर्य, मातृत्व और शक्ति की अधिशास्त्री मानी जाती है। मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है, इसी कारण उन्हें इस सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है।
1: माँ मंगला गौरी की एक कथा आती है स्कंद पुराण में और पुराणों में। एक सेठ और एक उसके पत्नी की भक्ति कथा है कि बहुत प्रकार से उस सेठ के लिए संतान नहीं थी और संतान के उसने नाना प्रकार के उपाय किए लेकिन संतान अल्पायु थी, तो उसकी पत्नी ने मंगलवार का व्रत करके अपने संतान को दीर्घजीवी बनाया। इसीलिए श्रावण के महीने में मंगला गौरी का यह जो व्रत है यह संतान के लिए बहुत ही लाभदायक और कामना परक होता है।
0: सावन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यही है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक और अगले ही दिन मंगलवार को माँ मंगला गौरी का पूजन, ये क्रम केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन का संतुलन सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए महाकाल का नगर भ्रमण।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
2: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
1: Savvy, Steven.
2: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
1: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
3: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
4: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: साल का इंतजार हुआ खत्म, बारापुला फेज 3 का कॉरिडोर बनकर तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। सीडब्ल्यूजी में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। अब भदोही में तेजी से बनेंगे जूट के नए कालीन, जेसीआई आउटलेट से उद्योग को मिलेगा बड़ा सहारा, जूट कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्साह से जारी है हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम यात्रा, अब तक बद्रीनाथ धाम में 15,57,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, हेमकुंड में 2,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नौ और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, कावड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
8: अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लंच टाइम में, और चलिए आपको लेकर चलते हैं उज्जैन नगरी, जहां महाकाल का भव्य दरबार भक्तों की आस्था और विश्वास से जगमगा रहा है। बाबा के दर्शन पूजन के लिए लाखों लोग महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं, और सावन में उमड़ रही भक्तों की अटूट आस्था को देखते हुए बाबा महाकाल भी अपने भक्तों को समय से पहले दर्शन दे रहे हैं। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल मंदिर के पट खुलते ही भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सुबह सवेरे भगवान महाकाल की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती होती है। इस दिव्य अनुष्ठान की शुरुआत सबसे पहले पंचामृत अभिषेक से होती है, दूध दही घी शहद और शक्कर से बाबा महाकाल का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद पवित्र जल से स्नान, विशेष श्रृंगार और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भस्म आरती संपन्न होती है। मान्यता है कि बाबा महाकाल की इस अलौकिक भस्म आरती के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है।

0: महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन का महीना पूरे श्रद्धा उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस पावन महीने में धर्म आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं और इस महीने की खासियत है कि बाबा महाकाल स्वयं अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पारंपरिक शाही सवारी के दौरान भगवान महाकाल विभिन्न स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं।
1: उज्जैन के राजा जब अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं तो पूरी नगरी शिवमय हो जाती है। महाकाल के जय घोष की गूंज के बीच हर गली, हर चौक चौराहा और रास्ता अपने राजा की झलक पाने के लिए भक्तों से भर उठता है। सावन मास के पहले सोमवार को रजत पालकी में सवार होकर भगवान महाकाल अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रजत पालकी के मंदिर से बाहर आते ही पुलिस बैंड की धुन पर भगवान महाकाल को सलामी दी गई और फिर शुरू हुआ नगर भ्रमण। आगे आगे पुलिस का घुड़सवार दल, पीछे भजनों की धुन बजाता पुलिस बैंड और सवारी की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस के सशस्त्र बल की टुकड़ी। बाबा की सवारी जब निकली तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वैदिक उद्घोष की थीम पर निकाली गई इस पहली सवारी में महाकालेश्वर मंदिर का बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहा। बोलबम के जयकारे लगाते संत महंत और बाबा के भक्त नगरवासियों को भगवान के आगमन की सूचना देते चलते रहे। सवारी में गण विषाधरी और भजन मंडलियां माहौल को और भक्तिमय बना रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ खड़े श्रद्धालु भगवान की एक झलक पाने के लिए पालकी की ओर टकटकी लगाए दिखे और पालकी के पास आते ही जय महाकाल के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। महाकाल की इस भव्य सवारी में साधु संत, मंत्री से लेकर अफसर, कर्मचारी समेत सभी आम और खास साथ साथ चल रहे थे। सबके सब बाबा के दर्शन कर भाव विभोर दिखे।
2: कंटिन्यू दर्शन करने आते हैं, इंदौर से आते हैं और जो दर्शन होते हैं उसका शब्दों में व्याख्यान ही नहीं हो सकता सर। बहुत अच्छा लगा
3: बाबा के दर्शन करके, बड़ा आनंद आया, बहुत प्यारा लगा।
1: भगवान महाकाल ने मन महेश स्वरूप में प्रजा को दर्शन दिए। नगर में अलग अलग मार्गों से होते हुए सवारी क्षिप्रा नदी पहुँची। क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक पूजन हुआ। बटुकों ने शंखनाद के साथ वेद पाठ किया और फिर पूजा के बाद सवारी तय मार्ग से वापस मंदिर के लिए चली।
4: राजा हैं यहाँ के, तो नगर भ्रमण के लिए स्वयं ही अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलते हैं। हर सोमवार को सावन के सोमवार है, इस बार चार सोमवार को बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और दो भादव की है, तो ऐसे 7 सितंबर तक 6 सवारियाँ निकाली जाएगी, निकलेगी बाबा की। और बाबा महाकाल से शाम को 4 बजे निकलते हैं और नदी पे शिप्रा मैया का जल से अभिषेक किया जाता है, फिर नगर भ्रमण होते हुए पुनः शाम को मंदिर में आते हैं और भगवान की आरती पूजा की जाती है।
1: भगवान महाकाल को इस प्राचीन नगरी का एकमात्र और अधिपति राजा माना जाता है। सावन भादो मास के सोमवार को मंदिर से बाहर निकलकर वो अपनी प्रजा का हाल जानते हैं और इस अवसर पर यहाँ की छटा अद्भुत होती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: आपको दिखाते हैं सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड का धनबाद किस तरह शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र सरोवर बेकार बांध में भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान तेज बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस आयोजन में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर बनारस से आए आचार्यों ने दिव्य शिव गंगा महाआरती संपन्न कराई। दीपों की अलौकिक छटा, वैदिक मंत्रोच्चार, डमरू और घंटियों की गूंज ने राजेंद्र सरोवर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। भारी बारिश के बीच भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ आरती में शामिल होते रहे।
5: ये निस्वार्थ भाव से जीता ये कार्यक्रम करता आ रहा है और ये पांचवा वर्ष है। आप देखे होंगे कि जब बारिश शुरू हुआ तो भी श्रद्धालु हटे नहीं, डटे रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आरती के समय बाबा भोले बारिश को रोक दिए और पूरा आरती संपन्न कराए।
6: ये लग रहा था कि काशी विश्वनाथ की नगरी में है। सावन के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई और धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बसाए, यही हम लोगों की कामना है।
0: सावन में आस्था और भक्ति के रंग तो आप देख ही रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं सावन में गहरेबाजी के रंग। प्रयागराज में इक्कों की रेस यानी गहरेबाजी हुई। सावन की पूजा के साथ इक्कों की रेस की यह परंपरा बेहद पुरानी है। इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे।

0: सावन के पहले सोमवार पर आस्था के साथ दिखी विरासत की रफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज में सदियों पुरानी घरेबाजी की परंपरा एक बार फिर जीवंत उठी।
1: इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सावन चूंकि देवाधिदेव महादेव का दिन पूरा एक महीना रहता है, हम लोग इसी घोड़े से गंगा स्नान करते थे, शिवकुटी महादेव में भोलेनाथ की पूजन करते थे और उसके बाद गहरेबाजी में अपना आनंद लेते थे। बहुत पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है।
0: अरैल क्षेत्र में आयोजित पारंपरिक इक्का दौड़ ने लोगों को रोमांच और संस्कृति का अनूठा संगम देखने का अवसर दिया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में घोड़ों ने अपनी शानदार चाल, संतुलन और अनुशासन का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।
2: सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एक पुरानी परंपरा है इक्का दौड़ की, जिसे यहाँ पर गहरेबाजी कहा जाता है। तो तमाम घोड़े, एक से एक नस्ल के घोड़े यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम जो इक्का चालक हैं अपने अपने घोड़ों को लेकर के आए हैं और तमाम वैरायटी के घोड़े हैं और यहाँ इक्का दौड़ हो रही है। इसको देखने के लिए तमाम दूर दराज से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये नया यमुना पुल है, यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है इस इक्का दौड़ को देखने के लिए आई है। तो यहाँ पर जो इक्के हैं इनकी चाल से इनको जाना और पहचाना जाता है। तो इस इक्का दौड़ में दूर दराज से लोग आते हैं, अपने घोड़ों का और इक्कों का प्रदर्शन करते हैं।
0: प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर इक्का दौड़ आयोजित करने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। इस प्रतियोगिता में जीत केवल तेज रफ्तार से नहीं बल्कि घोड़े की नपी तुली चाल, संतुलन और प्रस्तुति से तय होती है। खासकर सिंधी नस्ल के घोड़े अपनी आकर्षक और लयबद्ध चाल के लिए विशेष पहचान रखते हैं।
2: चाल देखी जाती है क्या?
3: चाल देखी जाती है, सिंधी चाल जो प्योर चाल है, बिगाड़े नहीं घोड़े। स्पीड कम ज्यादा रहे लेकिन चाल ज्यादा बिगड़े ना, भागे ना, फॉरवर्ड ना हो।
2: अच्छा, नस्ल क्या होती है घोड़ों?
3: नस्ल इसमें सिंधी बढ़िया चाल में दौड़ते हैं, जो मिक्स रहते हैं वो थोड़ा भागने लगते हैं बीच बीच में।
2: कितने सालों से इस इक्का दौड़ में शामिल हो रहे हैं आप?
3: कई साल से शामिल हो रहे हैं। घोड़ा हमारा अभी साल भर का है, बाकी पहले बहुत पुराना शौक है हमारे लोगों का हराना में।
0: प्रतियोगिता के दौरान चौटाला, दुगामा, सिंधी और माधुरी जैसी पारंपरिक चालों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं उड़ान और हीरा नाम के घोड़ों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी।
1: इसमें देखिए ज्यादातर तो सिंधी घोड़े होते हैं, सिंधी नस्ल के घोड़े होते हैं और उनकी चाल चौटाला होती है, दुगामा चाल भी होती है, लेकिन घोड़े ज्यादातर इसमें सिंधी नस्ल के ही आपको मिलेंगे, मारवाड़ी कम मिलते हैं इसमें।
0: स्थानीय लोगों के लिए गहरेबाजी केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रयागराज की सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। आज भी ये परंपरा पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है और नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने का सशक्त माध्यम बनी हुई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
4: जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना का एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया जा रहा है। करीब एक महीने तक चलने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में गुरेज के करीब 15 गांव के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। लड़कों के साथ साथ इस इवेंट में लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस इवेंट का मकसद नौजवानों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें सही राह दिखाना भी है।

0: कोरेज की खूबसूरत वादियों में ये खेल प्रतियोगिता सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने की कोशिश है। गुरेज के हाई ग्राउंड बकतूर में इस इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भारतीय सेना की राणा बटालियन ने किया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: नामी के राणा बटालियन ने यहाँ पे जो ब्लॉक बकतूर है उसमें एक इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें तकरीबन पूरे ब्लॉक के 15 गांव हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ खेलों में, जैसा कि वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, सभी प्रकार की खेल में हिस्सा ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों के बराबर लड़कियां भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। ये एक नेक शगुन है यहाँ के लिए कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर में अभी खेल रही है।
0: मैच फुटबॉल का हो या वॉलीबॉल का, हर खेल में नौजवानों का उत्साह देखने लायक था। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट में स्थानीय गांव की लड़कियों ने भी खेल में अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
2: इंडियन आर्मी के बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने यहाँ पे इंटर विलेज सपोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का इनका जो 16 जुलाई से किया था, उसमें बहुत सारी गेम्स कराई गई, जिसमें बॉयज़ का फुटबॉल, गर्ल्स का बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज बॉयज़ का इज़मरक वर्सेस जिलिंडोरा के माबेन वॉलीबॉल खेला गया, तो उसमें इज़मरक ने विन दर्ज की। तो इससे यही दर्शाता है कि यहाँ के बॉयज़ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को आगे लाने के लिए, और इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की ओर न जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो गेम्स में हिस्सा लें।
0: गुरेज में एक महीने तक चलने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी। अब 15 अगस्त के मौके पर इस स्पोर्ट्स इवेंट का भव्य समापन होगा। इस इवेंट में 15 गांव के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी टीम वर्क को और मजबूत करना है। खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ ये फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है। फेस्टिवल के दौरान सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले गांव और सबसे ज्यादा साफ सफाई रखने वाले गांव को भी सम्मानित किया जाएगा।
3: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर गुरेज घाटी में बकतूर गांव में विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नियंत्रण रेखा पर रहने वाले गांव के बच्चों और बच्चों ने इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लिया। दरअसल ये एक पहल है नशा मुक्त भारत बनाने की, जिसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही किया था। अशरफानी, श्रीनगर।
4: लंच टाइम में इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
7: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
8: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: ग्लासगो में जलवा दिखाने के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष एवं महिला मुक्केबाजों और पैरा एथलीट्स का मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचे खिलाड़ियों में महिला बॉक्सिंग की जैस्मिन लांबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी शामिल रही। वहीं पुरुष वर्ग से अंकुश पंघाल, सचिन सेवाज भी टीम के साथ पहुंचे। कई पैरा एथलीट भी स्वदेश लौटे जिनका जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों पर खुशी जताई और भविष्य में भी देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का भरोसा दिया। तो देखिए किस तरह से एथलीट्स का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जिसमें बॉक्सर्स और पैरा एथलीट्स शामिल थे। एयरपोर्ट पर लोगों ने बड़े ही ग्रैंड तरीके से इन एथलीट्स का स्वागत किया।
10: लग रहा है हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आए, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
11: अगला लक्ष्य आपको क्या?
10: सर अगला लक्ष्य है कि मैं जिस तरह से भी मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में किया वैसे जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन है मेजर कॉम्पिटिशन ऐसे ही मैं आगे और मेडल लाती रहूँ।
12: जो ये मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अगला लक्ष्य है अभी नेक्स्ट मंथ में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, फिर से भारत का तिरंगा ले रहा। तिरंगा ऊपर जा रहा था तो ऐसा लगा था कि आज सब सारी मेहनत काम आई और ये मेडल मेरा नहीं पूरे देश का मेडल है।
13: बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है ये, तो थैंक यू एवरीवन।
4: और लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
14: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
15: Swing and a foul out of play off to the left.
14: Big 12 Radio.
16: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
14: Talk Sport.
17: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
14: And more. Search sports to find the stations covering your team.
8: अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
23: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स,
24: Sage University, transforming your passion into profession.
4: 11 साल का इंतजार हुआ, खत्म बारापुला फेज 3 का कॉरिडोर बनकर तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। सीडब्ल्यूजी में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। अब भदोही में तेजी से बनेंगे जूट के नए कालीन, JCI आउटलेट से उद्योग को मिलेगा बड़ा सहारा, जूट कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्साह से जारी है हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम यात्रा, अब तक बद्रीनाथ धाम में 15,57,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड में 2,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, कांवड़ के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: आज है सावन का पहला मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन, सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज से मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा, मां मंगला गौरी देती है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। मां मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप, मान्यता है कि इनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट होते हैं दूर। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की कठोर तपस्या, कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को किया प्रसन्न। आस्था और शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह सरोबोर नजर आई धनबाद की नगरी, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर बनारस से आए आचार्यों ने संपन्न कराई दिव्य शिवगंगा महाआरती। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र सरोवर में आयोजित हुई भव्य शिव महाआरती, हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में हुए शामिल। सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रखा गया ये धार्मिक आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाना था महाआरती का उद्देश्य। सवाई माधोपुर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, सालाना भव्य महाभगवा कावड़ यात्रा का हुआ आयोजन। शहर के रामद्वारा से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए दंडवीर बालाजी मंदिर में हुई संपन्न। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ कावड़ यात्रा का स्वागत। सावन के महीने में अलग अलग कावड़ यात्रा खींच रहे लोगों का ध्यान। सहारनपुर में निकली बाहुबली वाली कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। 9 फीट ऊंची है श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कावड़। बजरंगबली के साथ अगड़नाथ जी की आकृतियां भी मौजूद। भगवान शिव की विशाल आकृति वाली सुनहरी कावड़ भी लोगों के बीच हुई लोकप्रिय। भोलेनाथ की प्रतिमा के दोनों ओर बनाए गए हैं सुंदर मोर। बिजनौर के एक कावड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल। एक तरफ 90 साल की दादी और दूसरी तरफ गंगाजल लेकर कावड़ यात्रा को निकला पोता। हरिद्वार से हापुड़ लेकर सोनू कर रहे हैं 250 किलोमीटर की ज्यादा की यात्रा। रोज लगभग 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं सोनू। दादी की कावड़ यात्रा की इच्छा पूरी करना है उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। 9 अगस्त को बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ। 10 अगस्त को गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में हेलीकॉप्टर से बरसाएंगे जाएंगे फूल। कांवड़ यात्रा अलर्ट मोड पर रेलवे। दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन से बनाया गया वॉर रूम। तमाम स्टेशन पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। कांवड़ियों और आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ अतिरिक्त रेल कर्मियों की तैनाती। बड़ी संख्या में बैद्यनाथ धाम की तरफ रवाना होंगे भक्त। सुरक्षा के साथ कांवड़ियों के आराम का भी रखा जा रहा है ध्यान। स्टेशन पर सात्विक भोजन और मेडिकल टीम की भी व्यवस्था। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त। आज से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। सावन का पहला मंगलवार, शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, चंदन, दही से किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। बोलबम के लगाए जयकारे। मैनपुरी में भी सावन पर शिवालय में भक्तों ने किया जलाभिषेक। विधि विधान से की पूजा पाठ। मंदिर में सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतार। लगाए गए हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार में भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। कांवड़िये शिव शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगाजल ले जा रहे हैं। कोटा में 500 साल पुराना अनूठा शिवलिंग। एक ही शिला में शिवलिंग और शीश काटकर भोलेनाथ को समर्पित करते रावण की मूरत। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना ये प्राचीन शिवालय। पूरे महीने यहां जलाभिषेक और दर्शन के लिए लगती है भक्तों की लंबी कतार। हापुड़ में पूरी श्रद्धा से जारी कांवड़ यात्रा। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के अंदर वन वे किए प्रमुख मार्ग। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात। वाहनों को सही मार्ग दिखाने और कांवड़ियों को सुरक्षित मार्ग देने के लिए लगातार दे रहे हैं जानकारी। चंबा के रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। सीएम सुक्खू ने निभाई परंपरा। मेले में सीएम सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस में मंजरी गार्डन तक निकाली पारंपरिक शोभा यात्रा का नेतृत्व भी किया। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। में देखिए हिमाचल की संस्कृति कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। तिरुचिरापल्ली में आधी पेरुकू उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आधी पेरुकू उत्सव पर नवविवाहित जोड़े और महिलाओं ने नदी में पीला धागा किया अर्पित, नैवेद्य और फल किए अर्पित, नदी किनारे विधि विधान से की पूजा। पुंछ में श्रद्धालुओं ने अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। पिछले 5 साल से लगातार हो रही है पैदल यात्रा। यात्रा के दौरान लगे बम बम भोले के जयकारे, नई पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ना है यात्रा का मकसद। दस साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इस यात्रा में होते हैं शामिल, भगवान भोले के भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह। 5 साल पहले सिर्फ 11 लोगों से शुरू हुई थी ये यात्रा, अब इस यात्रा में जुड़ चुके हैं 100 से ज्यादा श्रद्धालु। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ कर रहे हैं कदमदार। विश्व प्रसिद्ध भदोही के कालीन उद्योग को अब मिलेगी नई गति, कपड़ा मंत्रालय के अधीन आने वाले जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भदोही में खोला अपना आउटलेट। जूट से अलग अलग तरह की कालीन बनाने और उसके लिए जूट आसानी से करा जाएगा उपलब्ध, वूल और जूट मिक्सिंग से पर्यावरण के अनुकूल कालीन बनाने की भी उम्मीद। आगरा के जाबाज कांस्टेबल संदीप यादव ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में लहराया परचम, जीता कांस्य पदक। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में किया उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व, इंडोनेशियन मार्शल आर्ट खेल के रेगु इवेंट में जीता ब्रॉन्ज। दिल्ली में आईएसएसएफ शॉटगन रेफरी कोर्स की शुरुआत, निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड तकनीकी अधिकारी तैयार करना कोर्स का मकसद। इंडिगो ने पूरे के 20 साल 2030 तक 550 विमानों और 3000 दैनिक उड़ानों का लक्ष्य। आज से 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। डिब्रूगढ़ में सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटी सहायता राशि, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। सैलानियों से गुलजार हुई डल लेक, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। डल लेक में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी, कारोबारियों में भी खुशी की लहर। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी में मौसम होगा मेहरबान, 4 से 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, 4 से 6 डिग्री गिरेगा तापमान। पंजाब के राजपुरा में भी जमकर बरसे बदरा, सड़कों पर भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भी सुबह सुबह हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। हरियाणा के झज्जर में जोरदार बारिश, बरसात से मौसम हुआ सुहाना। मथुरा में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित।

0: तक किया गया बंद। सड़कों से हटाया जा रहा है मलबा, प्रशासन ने की लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ शानदार और भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ किया फैंस ने अपने मेडल वीरों का स्वागत, एयरपोर्ट पर लगे भारत माता के जय के नारे। अपना गोल्ड मेडल पहने नजर आए मुक्केबाज प्रीति पवार, 54 किलो वर्ग में प्रीति ने भारत को दिलाया है स्वर्ण पदक। महिला 57 किलो वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मीन लांबोरिया ने कहा, यह किसी सपने के सच होने जैसा है, अब अगले लक्ष्य जो है हमारा एशियन गेम्स के लिए तैयारी करना। बॉक्सिंग में ही गोल्ड मेडल विनर प्रिया घंगास ने भी वतन वापसी पर जताई खुशी, देश के लिए मेडल की जीत को बताया जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। एयरपोर्ट पर अपने विजेता एथलीट्स की एक झलक पाने के लिए लगी होड़, फूल मालाओं से लदे नजर आए सभी गोल्ड मेडल विजेता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में हासिल किया चौथा स्थान। भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग रहा, 14 मुक्केबाजों के दल में से 10 खिलाड़ी मेडल जीतकर लौटे, इसमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर शामिल रहे। हिसार में मुक्केबाज अंकुश पंगाल का भी हुआ शानदार स्वागत, उन्होंने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के शीटू को हराकर जीता था गोल्ड। पैरा खिलाड़ियों ने भी बढ़ा देश का मान, पैरा एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत के अभिमान को दी मजबूती।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Tune-ins how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी, राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाकघर में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटर प्रूफ राखी के लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने

0: विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए की कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम मोली मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
1: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुँचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
0: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
1: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: 11 साल का इंतजार हुआ खत्म, बारापुला फेज 3 का कॉरिडोर बनकर तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। सीडब्ल्यूजी में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं, बजाए गए ढोल नगाड़े। अब भदोही में तेजी से बनेंगे जूट के नए कालीन, जेसीआई आउटलेट से उद्योग को मिलेगा बड़ा सहारा, जूट कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्साह से जारी है हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम की यात्रा, अब तक बद्रीनाथ धाम में 15,57,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड में 2,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। सावन में दिख रहे हैं कावड़ के अद्भुत रंग, मुजफ्फरनगर में कांधे पर गोल्डन बाबा को लेकर निकला कावड़िया, सहारनपुर में निकली 9 फीट ऊंची बाहुबली वाली कावड़।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: बारिश का ये मौसम होता है ना कितना प्यारा, कितना सुहाना, बिल्कुल आपके और हमारे इस रिश्ते की तरह। तो आज तो इस सुहाने मौसम के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें, और उसके साथ साथ चर्चा होगी एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर खबर पर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
10: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, ईशान से प्यार का इनकार करेगी नयनिका, चुनेगी बेटी टिन्नी को।
11: हम बहुत शरीफ लोग हैं, मेरा परिवार बहुत शरीफ लोग है, मुझे समाज में मुंह दिखाना होता है।
10: वृंदा को लगेगी चोट, सहारा बनेगी स्वाति।

कभी तो जी भर के बरसना, कभी बूंद बूंद के लिए तरसना, ए बारिश तेरी आदतें मेरे यार सी हैं। ओ माय गॉड, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर सूरज। ईशा, क्या आप सुन रही हैं सूरज की बातें? वैसे कहानी में काफी उलट पुलट हो गया है, कहानी में हमने जैसा सोचा था उससे एकदम अलग हो गया है, लेकिन क्या फिर भी कहानी में हो जाएगा सब कुछ ठीक। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।

0: तेरी तू है, सूरज और ईशा का प्यार लगता है, तू है तो। शुरू हुई मियां बीवी की तकरार,
1: तू ना तो घर घर नहीं लगता।
0: सौतन अवनी बनेगी रिश्ते में दीवार,
1: लगता तू है तो।
0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में इन दिनों ईशा बेहद परेशान रह रही है, क्योंकि उसे अवनी रास नहीं आ रही। इतना ही नहीं, आज वो ऑफिस से आने के बाद डिनर टेबल पर खाना तो खा रही है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ हलचल चल रही है, वो भी अवनी को लेकर। ऐसे में बिना कंट्रोल वो खाना खाए जा रही है कि इसी बीच वहाँ पर आ जाता है सूरज, जिसे देखकर ईशा शुरू कर देती है अपनी डिमांड, और सूरज मानने लगता है उसकी हर बातें।

0: तब जी दो।
1: तेरे साथ मैं मुसाफिर,
0: रोटी भी चाहिए
1: इस मोहब्बत के सफर।
2: तो पहला तो ईशा के माइंड में यही है कि पहला तो दादा भाई बन गया है, तब से ही ईशा का वो थोड़ा सा वो रह कि सूरज दादा भाई क्यों बना ऐसा। और दूसरा फैसला सूरज ने ये ले लिया कि अवनी के बच्चे को अपना नाम देगा, अवनी की जिम्मेदारी ले ली, तो वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हिट करती है चीज़ें। एंड अब ईशा का माइंड अलग जा रहा है कि अवनी पे शक कि अवनी फ़ोन तोड़ रही है, तोड़ रही है। और ऑफकोर्स ईशा ने एक बार सूरज को कहने की कोशिश भी की कि अवनी ये सब है वो क्यों, तो दादा भाई सूरज नहीं मानता। ईशा भाई कहती है वो मैं भूल ही गई थी कि ये मेरा सूरज नहीं दादा भाई, अवनी का रक्षक जो कुछ सुनेगा नहीं उसके बारे में। तो उसी में ईशा अपने में वो कैसे सूरज ने जैसे व्यू भी लिया कि ईशा जब बेचैन होती है तो बहुत खाती है, तो इसलिए ईशा वहीं डाइनिंग टेबल पर आके केस सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, क्या है क्या नहीं वो पजल सॉल्व कर रही है। तो उसी बीच खा रही हूँ बहुत कुछ खाते जा रही हूँ तो सूरज आता है, तो मैं सूरज को भी बोलती हूँ ये ले आओ वो ले आओ, तो वो भी खिला रहे हैं और मैं अपने जोन में ही हूँ कि यार ये सब क्या कर रहे हो।
3: अब ईशा भले ही अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करती हो लेकिन सूरज वो बखूबी समझ रहा है, तभी तो देखिए कैसे उसके बगल में बैठकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। इतना ही नहीं उसकी तरफ दही की कटोरी भी खिसका रहा है। ऐसे में ईशा जैसे ही दही खाती है तो उसे वो दही खट्टी लगने लगती है। बस फिर क्या, सूरज के अंदर का फिल्मी हीरो जाग उठता है और देखिए कैसे वो चम्मच से दही लेकर पहले तो ईशा के होंठों पर छुआता है और फिर वही चम्मच दही में मिला देता है और बताता है कि दही मीठी हो गई है।

ऐसे में ईशा चुपचाप सूरज की बातें मान तो लेती है, लेकिन उसके बाल खाते वक्त उसे परेशान करते हैं और सूरज ये देख भी लेता है और फिर बालों में लगा देता है छोटी छोटी क्लिप्स, जिसके चलते ईशा को भरोसा हो रहा है कि सूरज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी अवनी को लेकर वो परेशान है और यही परेशानी सूरज के आगे आ भी जाती है।

0: क्यों ऐशा जी, आप खा क्यों नहीं रही? इतनी मेहनत करती हैं आप और इतना ही खाया। चलिए ये लीजिए, ये पूरा खत्म कीजिए।
1: हाँ तुम तो चाहते ही हो ना कि मुझे खिला खिला के मोटी कर दो, और फिर तुम और वो
0: ऐसे इंसान को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता जो पति पत्नी के बीच आ जाए। मैं भी अपना आपा खो बैठा था जब मैंने आपको आकाश के साथ देखा था। खून खोल गया था मेरा, गुस्सा आता था, दिल करता था कि आप भी बिल्कुल उसी जलन और गुस्से से गुजर रही है। मैं समझ सकता हूँ। ईशा जी, आज आप अपनी के साथ ज्यादा ही सख्त हो गए।
1: वो काम ही ऐसा करती है, गुस्सा तो आएगा ही ना, वो ऐसे कैसे तुम्हें मुझसे
2: रहती कहां, मेरी बाहों में रहती उनको बता।
3: जेलिस फैक्टर ईशा को ऑफकोर्स आएगा ही कि अवनी इतना कुछ हक जमा रही है, मतलब ऐसे नेगेटिव वे से नहीं आ रहा, पर ऑफकोर्स ईशा को ये आता है ना कि मेरा पति है, उसे मंदिर में ले जा रही है, फिर बच्चे का नाम भी ले लिया, तो ये मेरी जगह ना ले ले। पापा जी के कमरे में जाकर उनके मेडिसिन देने जा रही थी तब भी ईशा ने उसे कहा कि मेरा हक मत लो, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ करना हो तो हमसे पूछ कर करो। तो वो ईशा को एक पत्नी के तौर पे वो चीज़ तो चुभेगी ना कि मेरे पति से इतना ये सब करवा रही है।
4: भाई सूरज तो निकला समझदार पति, बड़ी ही समझदारी से उसने ईशा को समझा दिया और तो और अपने दिल पर हाथ रखकर कसम भी खा ली कि वो सिर्फ ईशा को ही पसंद करता है। ऐसे में ईशा ये सुनकर खुश तो है लेकिन अवनी को लेकर उसके मन में अब भी डाउट है। इसी बीच ईशा उठने लगती है कि सूरज और ईशा के बीच शुरू हो जाती है थाली को लेकर किचकिच।
0: ईशा जी, मैं रख दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा?
1: पड़ेगा सूरज, छोड़ो।
0: मैं कह रहा हूँ ना दीजिए।
1: मैं कह रही हूँ ना छोड़ो।
0: ईशा जी
1: सूरज तुम समझते हो?
4: वैसे मियां और बीवी की इस तूतू मेमे से पहले एक सीन और फिल्माया गया जहां पर ईशा तैयार है अपनी वर्दी पहनकर काम पर जाने के लिए और सूरज उसके लिए ले आता है एक कप चाय की प्याली। ऐसे में ईशा वो चाय पी लेती है और मुस्कुराती हुई वहां से जाती है और वहीं दूर खड़ी अवनी ये देखकर जल रही है। इसी बीच ईशा निकल नहीं लगती है कि तभी उसकी नजर पड़ जाती है एक गमले के पास पड़े टूटे हुए मोबाइल पर, जिसे देखकर ईशा बेहद हैरान है क्योंकि वो मोबाइल अवनी का है।
3: तो पहले कैसे ईशा का अवनी के लिए थोड़ा सा मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे वो हेल्प कर रही थी, साथ दे रही थी, पर अब ईशा का सिर्फ ही वो शक शक शुरू हो गया कि कुछ तो है, इतने साफ झूठ बोलती है कि कोई पकड़ भी ना पाए। तो ये था,
4: अब ईशा तो ठहरी आईपीएस ऑफिसर, बड़ी ही बारीकी से सब सबूतों को देखती है और उसे पता चल गया है कि ये मोबाइल जानबूझकर तोड़ा गया है। इसी बीच वहाँ पर सूरज आ जाता है और ईशा उस मोबाइल के बारे में सूरज को बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर आ जाती है अवनी।
0: मैं
5: खबर है कि आप इंतजार नहीं परेशान करते। मैं रिया जी और काव्या जी के साथ चली हूँ, तुम्हें बताना
4: अब अवनी ने झांसा देकर सूरज को अपने साथ चलने के लिए तैयार तो कर लिया है, लेकिन ईशा उसकी नज़र अवनी पर ही है और सूरज ने वो भांप भी लिया है। अब देखना होगा क्या सूरज को पता चल पाएगा कि ईशा जो कह रही थी वो सच है।
6: मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ,
7: तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। चुन लो किसे बचाना चाहती है, आईपीएस का फर्ज या सूरज के लिए अपना पत्नी था।
8: ईशा जी जो आपका फैसला होगा मैं आपके साथ।
4: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
9: बचपन की वो अमीरी ना जाने कहाँ चली गई, वरना बारिश के पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे। वाह वाह वाह वाह क्या बात है। ओहो बचपन के वो दिन थे ना दी बेस्ट। और आज बचपन के दिनों को याद कर रही हैं यहाँ पर हमारी रूहानी। वैसे रूहानी मैं जानती हूँ आप काफ़ी परेशान हैं, स्पेशली जब से तेजू आई हैं आप दोनों की ज़िंदगी में और क्रिएट कर रही हैं यहाँ पर बस कन्फ्यूजन्स और गलत फहमियाँ। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज, क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई एंटरटेनिंग ट्विस्ट? लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर।

0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी गौतम से शादी का ड्रामा कर रही है, लेकिन अकेले में गुरु और रूहानी को तो सच पता ही है और आज इन्हें मौका मिल गया है एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम बिताने का। तभी तो देखिए कैसे आज रूहानी के सर पर ये लाल चुनरी उड़ा रहा है गुरु। भाई रूहानी इन सब चीजों की वजह से परेशान है, ऐसे में गुरु बना है उसका सहारा और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। रूहानी परेशान है, ऐसे में गुरु उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक होगा और गुरु सच का पता लगा कर ही रहेगा।
1: किसी की हरकत नहीं करोगे, फिर मेरे पास जल्दी लौटोगे।

0: का रोमांस खत्म हुआ कि वहाँ पहुँच गया गौतम और देखिए कैसे फिर एक बार गौतम को अपनी बातों में उलझा लिया रूहानी ने।
1: रिश्तों का खेल ऐसे उलझा हुआ है।
0: यानी कि अब जल्द ही शुरू होंगी शादी की रस्में और होने वाली है गौतम और रूहानी की सगाई की रस्म। लेकिन इसे रोकने के लिए ही गुरु ने प्लान बनाया है। ऐसे में गुरु ने कर लिया है पुष्पी को किडनैप, ये जानने के लिए कि आखिरकार पीए मिश्रा जिंदा है तो कहाँ है, उसे कहाँ छुपाया गया है। ऐसे में वो अलग अलग तिगड़म लगा रहा है ताकि शिल्पी सच बोल दे।

0: अपने घर से बाहर निकाल कर तुमको चैन नहीं पड़ा जो यहाँ पे जानवर की तरह लाके बंद कर दिया मैं?
1: अरे बिल्ली कौन सी, इसे कैसे आपको जानवर की कुकरे खाने छोड़ देती? अंदर के एक हिस्सा है

0: आदमी है।
1: हाँ आएगा।
2: भाई अब शिल्पी नशे में धुत है और ऐसे में एक ही सवाल गुरु शिल्पी से पूछ रहा है कि पीए मिश्रा कहाँ है। ऐसे में वो कह भी देती है कि पीए मिश्रा का पता उसकी वाइफ को है, लेकिन लगता है कि शिल्पी ने अभी भी झूठ बोला है। लेकिन फिर भी गुरु निकल पड़ा है पीए मिश्रा को ढूंढने के लिए।
1: अरे पता है हमें, वो बताओ जो नहीं जानते हैं। कहाँ छुपा है पीए मिश्रा?
2: तो भाई अब देखना होगा कि क्या गुरु सच का पता लगा पाएगा और क्या पीए मिश्रा को ढूंढ पाएगा या नहीं, क्योंकि तभी तो रूहानी और गौतम की शादी रुकेगी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो हमारी सास बहू और बेटा की एयरलाइन भी कर रही है आपके लिए एंटरटेनमेंट की झमाझम बारिश। एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज यहाँ कर रही हैं, आप सबका इंतजार खुले हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के नॉन स्टॉप सफर पर, जहाँ पर हर स्टॉप है मनोरंजन से भरपूर। कैसे? ऐसे।
4: तो पूरा मोहल्ला आ गया था तमाचा देखने, और अब देखो एक बच्चन का शेर आ गया है वापस।
2: कलर्स टीवी के सीरियल बरेली के बच्चन में अजब सिंह जेल से छूटकर घर आ गया है और देखे कैसे वो काका और मोहल्ले वालों को चीख चीख कर ये बात बता रहा है और खुशी भी जाहिर कर रहा है कि कैसे उसने जेल में अपना खुशी वाला टाइम स्पेंड किया है।
4: अरे कहाँ भाग रहे तुम दबाते हैं, हम रहने की खुशी में चाय पिलाओ।
2: ऐसे में अजब सिंह की ये हरकतें देखकर घर वाले भी अचंभे में हैं।

0: आ गए तुम दबाते, हमारे हने की खुशी में चाय पिलाओ। चलो हम बताते काका हुआ खाने में, दूसरी तरफ ही बना दे किसान है। हमारा हथकड़ी लग रही थी तो पूरा मोहल्ला आ गया था तमाचा देखने, और अब देखो ये बच्चन का शेर आ गया है वापस। अब सारे चूहे बिल में तुम दबाते घुस गए हैं। चूहो निकलो बाहर और देखो हम आए हैं। देखो आने से आ गए हम घर वापस है। बड़े रोते रोते आए थे दोनों मियां बीवी, पकड़ पुलिस को लाए, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ लिया।
1: भाई चीख चिल्लाने के बाद देखिए कैसे शांति से चेयर पर बैठकर अजब सिंह गाने सुनता है, और ऐसे में करता है फरमाइश खाने और चाय की, और ये भी बताता है कि कैसे पुलिस स्टेशन में एक सीटी पर ही सब कुछ हाजिर हो जाता था। ये बातें सुनकर संगम तो हैरान रह गई है।
0: हम तो भूल गए थे कि हम घर पे आ गए हैं। इस साल कोतवाली में एक ही रात में आदत खराब कर दिया सारे पुलिस वालों ने। सीटी मारो खाना हाजिर, सीटी मारो चाय हाजिर, सीटी मारो कहाँ चाहिए जनाब, और इधर कोई सुन ही नहीं रहा है।
1: वहीं अब आने वाली है नई मुसीबत, जहां पर संगम कृष्णा से कहेगी कि उसे गंगा की कंपनी में काम करना है, जो कंपनी है ही नहीं, क्योंकि कृष्णा ने तो ये झूठ कहा था। अब शुरू होगा असली ड्रामा।
2: भैया काम पर जा रहे हैं, हमारा मतलब ऐसे पजामे और कमछे में घर के कपड़े पहनकर ऑफिस जा रहे हैं।
3: ऑफिस?
2: हाँ, आपने ही तो कहा था भैया आर्किटेक्ट हैं। उनके कपड़े देखे थे आपने, बिल्कुल मिस्त्री वाले थे, और बैग भी उनका बिल्कुल वैसा ही लग रहा था।
1: स्टार प्लस की सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में, जहां एक तरफ अपराजिता काफी परेशान है क्योंकि रक्षित ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया है, ऐसे में देखिए कैसे वो चिंता में है। तो वहीं दूसरी तरफ रक्षित और ईरा की शादी कराना चाहती है, जिस बात के लिए वो रक्षित के पीछे पड़ी है, लेकिन रक्षित ऐसा करने से इनकार कर रहा है। लेकिन देखिए कैसे यहां रक्षित पर चल रहा है इमोशनल अत्याचार।
4: लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ ना, उसकी माँ हूँ। सुधा नहीं चाहती कि एक तलाकशुदा लड़की से उसकी शादी हो, और वो भी ऐसी लड़की जो उसके प्यार का इजहार ही नहीं कर रही है। रक्षित को ना हाँ कहती है ना ना कहती है, बस नचाते रहती है, और रक्षित है कि बस उसके पीछे पागल हो रहा है। और इधर ईरा है जो अपने प्यार तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, रक्षित को खुश देखने के लिए। तो सुधा को जाहिर सी बातें लगता है कि यही सच्चा प्यार है ना, जो अपना प्यार भूलकर भी जा रहा है ताकि सामने वाला जिससे प्यार करता है वो खुश रहे। इसीलिए ईरा को चुना है सुधा ने उसके लिए, और हर हैसियत से उसे उसकी बराबरी की लगती है, और तलाकशुदा नहीं है, तो शी इज इन फेवर ऑफ ईरा।
1: वैसे इसी के साथ अब देखने को मिलेगी रक्षित और अपराजिता की टशनेबाजी और टूटता नजर आएगा दोनों का रिश्ता। अब देखना होगा कि क्या वाकई ये रिश्ता टूटेगा या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा।
3: ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर।
2: जब मन किया दोस्त बना लिया, जब मन किया नौकरी दे दी, जब मन किया नौकरी से निकाल दी। ऐसा नहीं होगा रक्षित सर, ना मैं ये नौकरी छोड़ रही ना आप मुझे इस नौकरी से निकाल रहे। आज रक्षित सर से दूर जाने का ख्याल ही।
5: क्या ये एक फैसला उनके प्यार की बनेगी शुरुआत?
6: बारिश का ये मौसम यानी टेम्पटेशन का मौसम हम सबकी भूख भर जाती है। मेरा तो हर समय मन करता है कुछ ना कुछ चटपटा खाने का। वैसे आपको एक बात बताऊं, इतनी ही चटपटी है हमारी ये अगली खबर जिसमें है एंटरटेनमेंट का मसाला। अब आपके पेट में हो गया है दर्द तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर। लेट्स चेक इट आउट।
1: खुशी से झूमे जीत और सौम्या,
7: रील बनाते हैं तुम पे जाल उठाते हैं।
1: जीत और सौम्या का सेल्फी वाला डांस, टीवी की नई जोड़ी पर चढ़ा रील बनाने का फितूर।

स्टार प्लस पर जल्द ही आने वाला है नया सीरियल फितूर, और फितूर के जीत और सौम्या पर सीरियल के आने से पहले ही डांस का फितूर चढ़ गया है। जरा देखिए कैसे आज जीत और सौम्या अपना मोबाइल लिए मोबाइल की लाइट जलाकर बीच मोहल्ले में जमकर डांस कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं और

0: देखिए मेरा तो ये सपना है, मैं सपना ही देख रही हूँ, क्योंकि सौम्या तो नहीं कर सकती है, देव चंद्रिमा कर सकती है, तो सपने में हम सब कुछ कर लेते हैं।
1: हाँ, ये इनका सपना है, तो इन्हीं से पूछो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों सपना लिया?
0: मुझे क्या पता, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये सपना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है।
1: चार स्टेप और सीख गया। धीरे धीरे धीरे धीरे मैं पूरा फुल फ्लेज्ड डांसर बन जाऊंगा। अब अगले 2-3 साल बाद इस शो के बाद मुझे लग रहा है ABCD 4-5 ABCD एक मूवी आती है ना, मैं ही कर रहा हूँ, देखना इतना तगड़ा डांसर बन जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सपना देखने के लिए।
0: सपना देखने के लिए देखिए पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता है, सुबह से जितना पता चला है कि मैं बैठी हूँ, एक रील देख रही हूँ, और रील देखते देखते वो सोच में मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ जहाँ पे चलना रील बनाते हैं।
1: जो रियल में होता है ना, ये वही है, हम लोगों की नेचुरल एक्टिंग ही निकलती
0: है। हाँ, मैं बोलती चलो ना एक रील बनाते हैं।
1: लोग कर पाएंगे रिलेट, है ना? आप भी रिलेट बहुत अच्छे से कर पा रही होंगी।
0: मैंने अभी बोला कि मुझे भी ऐसी एक रील बनानी है जहाँ पे मैं बोलूंगी चलो ना एक रील बनाते हैं। बोलो।
1: मैं मुझे नहीं बनानी, मैं नहीं बनाता।
0: नहीं, हर बात पे नहीं, अभी नहीं, हमेशा नहीं।
1: अगर ये रील बनाते हैं मतलब कायदे से तो रील बनवा दी ना मुझसे, अगर ये भी करवा लिया तो।
0: स्मार्ट हूँ।
1: स्मार्ट हो, अच्छा।
2: यूँ तो सीरियल में जीत और सौम्या का रिश्ता शुरुआत में टशन से शुरू होगा, लेकिन ये टशन जल्द ही दोस्ती में बदलेगी, और यही दोस्ती आज इस म्यूजिक वीडियो के जरिए दर्शकों के सामने दिखाई जा रही है।
1: ये देखिए, ये प्रोमो है, ये आई गेस इट्स लाइक अ म्यूजिक वीडियो, प्रॉपर एक म्यूजिक वीडियो नहीं कह सकता बिकॉज हमें इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन ये कायदे से देखा जाए तो एक म्यूजिक वीडियो प्लस इट्स लाइक अ प्रोमोशनल वीडियो। तो आप लोगों को अच्छा लगे फॉर अ चेंज, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द ऑडियंस।
0: आप लोग भी बनाना, चलना रील बनाते हैं। रील तो कट होगा ना इससे, तो मैं यही बोलूंगी कि रील बनाना प्लीज।
1: मेरी तरह मत बनना, रील जो नहीं बनाता
0: प्लीज बनाना,
1: प्लीज बनाना, दीप चंद्रिमा जैसे बनना। ये देखो क्या ये क्या क्या बन के बैठी
0: है, ना मेरे बाल ऐसे ऐसे होंगे। ये लड़कों को पता नहीं होता है, छोड़ो यार।
1: आप लोगों को फाड़ू स्टोरी मिलेगी, फाड़ू कैरेक्टर है, फाड़ू हीरोइन है, फाड़ू हीरो है, फाड़ू सारे कैरेक्टर है। फाड़ू मीन्स दमदार, धड़ल्लेदार स्टोरी है, इवन इम्पैक्ट है, हर सीन का उतना ही इम्पैक्ट है जितना हम लोग फील कर रहे हैं, उतना ही आपको स्क्रीन तक पहुंचेगा उतना इम्पैक्ट है। बहुत ही सिंसियरली सीरियसली सभी काम कर रहे हैं, स्पेशली ये हमारी हीरोइन बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग इनसे रोज सीखते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ऐसे ही ये सारी मेहनत जो ये कर रही हैं, जो हमें सिखा रही हैं, जो दिखा रही हैं, ये कैमरे तक पहुंच रही है और ये आपकी टीवी स्क्रीन तक बहुत जल्द पहुंचेगी, देखना मत भूलेगा।
0: देखिए ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, यहाँ बहुत सारे इमोशंस है, जैसे मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दबी हुई है। एक होता है ना अनजान इंसान आपके पास आता है जो आपको नहीं पता चलता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उसको सामने से दिख जाता है। तो जीत है, उसको बहुत कुछ पता चल जाएगा जो कोई और समझ नहीं पाया है। तो सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्यार की कहानी है, प्यार के साथ साथ आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो प्लीज देखना हमारा शो। अच्छा, ये कोलकाता से के ज्यादा सबाई देखो, प्लीज हमारे शो देखो, ये फितूर तेरा 8:30 समय आज में स्टार प्लस। हाँ, समझ आया?
1: वही
0: बोलो,
1: वही को क्या बोलते हैं?
0: ओई
1: ओई
0: नहीं, ये बोलो आमादेर
1: है,
0: आमादेर
1: आमादेर
0: शो
1: शो
0: देख बे
1: देख दिन
0: देख बिन
1: देख दिन
0: तत बिन देख बिन
1: तत दिन तत धनाधन तत धनाधन तत धनाधन।
2: भाई इस प्रोमो शूट के दौरान जीत और सौम्या ने अपने डांस का टशन दिखाया तो दिखाया, बल्कि इस गाने के रिलीजिंग से पहले ही ये गाना मुंबई के क्लब्स में बजाया गया है, और वहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँच गए हैं जीत और सौम्या, और देखिए कैसे जेंजीज के बीच में जीत और सौम्या जमकर थिरक रहे हैं, और दौर इस गाने के उन्हें

0: Amit Trivedi is such a big name in the music industry, and it's an honor to work with Sir. बहुत अच्छा लगा है हमें, और ये जो गाना है मुझे तो पहली बार सुन के बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक द ऑडियंस इज गोइंग टू लव दिस सॉन्ग.
1: हमें खुशी है कि आप लोगों को ऐसे ही अच्छा लगेगा जैसे हमें अच्छा लग रहा है. हमें बहुत मजा आ रहा है. हम लोगों ने बहुत सारे प्रमोशनल इवेंट्स कर लिए अभी, और अब हम बहुत एक्साइटेड हैं. बहुत सारी अपेक्षाएं हमें शो से, ये मिथुन 13 से, और हम बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं स्टार प्लस को, हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारी क्रिएटिव टीम को, हमारे डायरेक्शन टीम को, कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया.
2: फितूर के इस नए गाने पर क्लब में मौजूद सभी दर्शकों ने जमकर एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद दर्शकों की फरमाइश पर देव चंद्रमा और ईशान दोनों ने जमकर बॉलीवुड गानों पर डांस

भाई इस गाने ने तो आने से पहले ही धूम मचा दी है। वैसे बता दें कि ये गाना किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी का है। देख लीजिए नज़ारे उनके म्यूजिक स्टूडियो के, जहां पर इस गाने को बनाया जा रहा है, लिरिक्स को समझा जा रहा है और इस गाने को गाया है दृधा ने।

दूर से तके वाए वाए मारना मुझ पे ट्राई शाय, मैं तो तुझ पे जान छिड़कती, तू क्यों इतना ड्राई ड्राई। इश्क मोहब्बत वाले कोई डील बनाते हैं, इश्क मोहब्बत वाले कोई डील बनाते हैं, चलना रील बनाते हैं, हाय चलना रील बनाते हैं, थोड़ी फील बनाते हैं, चलना रील बनाते हैं। ये फितूर तेरा, ये फितूर तेरा, बात बात पे काहे तेरा मुंह सड़ जाता है।

थोड़ी फील बनाते हैं, चलना रील बनाते हैं, चलना रील बनाते हैं, थोड़ी फील बनाते हैं, थोड़ी फील बनाते हैं। दूर से ताके वाय वाय, मारना मुझ पे ट्राय शाय, मैं तो तुझ पे जान छिड़कती, तू क्यों इतना ड्राय ड्राय। इश्क मोहब्बत वाले कोई डील बनाते हैं, इश्क मोहब्बत वाले कोई डील बनाते हैं, चलना रील बनाते हैं, हाँ चलना रील बनाते हैं। थोड़ी फील

0: उठाते हैं।
1: भाई जितना एंजॉय इस गाने को बनाते वक्त अमित त्रिवेदी और गाना गाते वक्त दृधा ने किया है, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये गाना कई ज्यादा पसंद आया हो। इसी के साथ इंतजार रहेगा सीरियल फितूर का, जो 5 तारीख को स्टार प्लस पर रिलीज होगा। देखना होगा कि दर्शकों को जीत और सौम्या का ये फितूर कितना रास आएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

अब बारिश के इस मौसम के साथ साथ आते हैं बारिश के साइड इफेक्ट्स, जैसे कि वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक, सर्दी, खांसी, वायरल। खैर, इन सब साइड इफेक्ट्स को तो झेलना पड़ता है, लेकिन कैसे झेलेंगे इन तमाम ट्विस्ट को जो आ पहुंचे हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में? वेल, हंसते मुस्कुराते झेलेंगे, क्योंकि यही ट्विस्ट तो बदलते हैं इन कहानियों का मूड, लेकर आते हैं हमारे लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट, वो भी एक साथ।

स्टाफलेस के सिरे ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई आज मनाया जा रहा है मायरा का 18th बर्थडे और देखिए कैसे पूरा परिवार यहाँ पर खुशियों में डूबा हुआ है।

वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि भाई मायरा का 18th बर्थडे मनाने के लिए पूरा पोतदार परिवार एक विला में आया है, और यहाँ पर देखिए कैसे इस फैमिली का प्यार देखकर आप भी यही कहेंगे कि भाई इन्हें किसी की नजर ना लगे।

0: Happy birthday.
1: Happy birthday. Nice.
0: Wow, pretty girl.
2: लेकिन भाई ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी, क्योंकि इनकी कहानी में भी आने वाला है नया ट्विस्ट, क्योंकि कहानी में हो चुकी है नए परिवार और दुश्मन की एंट्री। भाई इन सब के बीच अबीरा और अरमान को भी मौका मिल गया है एक दूसरे के साथ आशिकी करने का, और भाई आज तो बारी है स्विमिंग पूल में प्यार जताने की।
3: के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है।
4: तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे पूल में धकेल दोगी, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा? तुम्हें पानी में नहीं खींचूंगा।
3: ये करना जरूरी था।
4: कभी कभी आग लगाने के लिए भी पानी में उतरना पड़ता है।

0: हमारी डील याद है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रोमांस भी बढ़ेगा।
1: Yes, ma'am. Mahadev and Sons.
2: Colors TV के सीरियल महादेव एंड सन्स में भैया आज पूरा परिवार बेहद खुश है क्योंकि नर्मदा बहुत जल्द मम्मी जो बनने वाली है, और इसी खुशी में देखिए कैसे पूरा परिवार झूम कर नाच रहा है और यहाँ महादेव और विद्या भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
3: अरे बिटिया, भगवान तुझे सुंदर और स्वस्थ बच्चा दे। क्यों सखियो, ऐसा बच्चा हो कि देखते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए।

कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब घर में हो जाती है एक अनजान शख्स की एंट्री, जो नर्मदा को आकर एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।

0: Sí.
1: घनघोर संकट, काली रात के साए से भी काला संकट। कोई है जो तुम्हारी कोख उजाड़ देना चाहता है? इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी जीवन ज्योत बुझा देना चाहता है। बस तुम अपनी ममता पे भरोसा रखना, और किसी पे नहीं।

0: नाजिमा आप जो कुछ भी कर
1: नहीं तो धुआं कहां से आ रहा है ये

0: हमिद भैया वो खिड़की खोलिए जल्दी।
1: भाई रशीदा असलम सबके लिए पानी लाओ जल्दी। रशीदा सबको पानी दो, जाओ जाओ जाओ सबको पानी दो।
2: ऐसे में देखिए कैसे हुस्ना ने पानी में जहरीली दवाई मिलाई और उसे माहिद तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही माहिद इस पानी को पीने वाला होता है वहां पहुंच जाती है उसकी हमसफर यानी कि सहर, जो उसे इस पानी को पीने से रोक लेती है। साथ ही साथ टल जाता है माहिद की जान का खतरा।

0: क्या था ये, क्यों किया आपने?
1: मैं हमें लग रहा है कि आपके पानी में किसी ने कुछ मिलाया था।
0: क्या
2: कुछ मिलाया? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं कि मुफ्ती साहब को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हम सब पर शक कर रही हैं?
0: नहीं मौलाना साहब, शहर को इल्जाम नहीं लगा रही है। शहर बिना वजह हमें रोकेगी नहीं, हमें यकीन है।
3: ऐसे में इन सभी के बीच माहिद को शहर पर पूरा भरोसा है। तभी तो देखिए कैसे उसने सभी के सामने शहर को ये प्रूफ करने के लिए कह दिया कि क्या वाकई पानी में कुछ मिला हुआ था। और देखिए कैसे शहर ने इस बात को प्रूफ भी कर दिया।
1: एक मिनट,

बारिश का ये मौसम होता है ना कितना प्यारा, कितना सुहाना होता है, एब्सोल्युटली रॉकिंग। लेकिन बारिश के मौसम के साथ साथ आते हैं बारिश के मौसम के साइड इफेक्ट्स, जैसे सर्दी, खांसी, वायरल, और हो जाता है हमारे लिए शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।

पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की, जो पहुंच गई है अपनी फैमिली संग वेकेशन मनाने के लिए, जहां से उन्होंने शेयर किया है अपने वेकेशन का ये वीडियो।

0: साल का रिलेशन एक पल में तोड़ के चला गया।
1: कलर्स टीवी पर जल्द शुरू होने जा रहा है नया शो जिसका नाम है शायद यही प्यार है, जिसमें नजर आ रही हैं अदिति शर्मा और उनके साथ हैं दक्ष पुरी। देख लीजिए शो का पहला प्रोमो जहां उम्र की दीवार पार कर शुरू होगी नई प्रेम कहानी।
0: तुम थे क्या? मुझे लगा कोई और ही है। तुम वापस कब आए?
2: मैं तुमसे दूर गया ही कब था?
0: तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, मेरी फ्रेंड के छोटे भाई हो, वरना बहुत

0: क्या प्यार में गिर जाती है उम्र की दीवार, शायद यही है प्यार इस सितंबर।
1: ये देखिए हमारी वृंदा क्या बना रही है।
2: तो हीरे दिल में के सेट से सामने आए हैं ये BTS नजारे, जहां पर वृंदा सेट पर हलवा बनाती नजर आ रही है। भाई यही तो है इनका फन बैंटर।
3: दो ही गुड लुकिंग लोग उठाए इस बार आपने, एक अविनाश एक फराना भट्ट, आपको एक ही उठा लेना चाहिए था।
2: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर खतरों से तो खिलाड़ी खेल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चल रही है स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल की कॉमेडी भी।
3: मेरी माँ का फोन आया, रोहित शेट्टी ठीक है, मैंने कहा वही ठीक है, बाकी सबकी लगी पड़ी।
4: वेलकम टू आंगन, मनीषा रानी, लेट्स गो। My first home in Mumbai.
2: मनीषा रानी ने मुंबई में खरीदा है अपना नया घर, ऐसे में वो फैंस को करवा रही हैं इस नए घर की सैर, और इनके चेहरे की खुशी देखने लायक है।

अंदर एंटर करने से पहले अगर आप अपने घर में लगाओगे तो आप बहुत अमीर बनोगे। कुछ बड़े बड़े लोग ये सब काम किए हैं। अगर आप देखोगे कि मेरे पूरे घर में कहीं भी, तो हमने अलग से एक स्टैंड बना दिया। लड़कों के मामले में गलत हो जाना, ये इसके पीछे है मेरी जान। मतलब मेरा रूम क्वीन का रूम है।

एस्बेस्ट डांसर के सेट के बाहर नजर आए अनु मलिक, कुमार सानू, करिश्मा कपूर, गीता कपूर और टेरेंस लुइस यानी कि खास मेहमान बनकर आ रहे हैं अनु मलिक और कुमार सानू, और साथ ही साथ होगा खूब सारा एंटरटेनमेंट।

0: बंगाल में सलमान खान खास मेहमान बनकर आए थे। ऐसे में उन्होंने रितेश देशमुख पर एक कमेंट किया था और इसी जवाब में एकता कपूर ने ये पोस्ट डाला है जहां वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। आप भी डाल लीजिए इस पोस्ट पर एक नज़र।
1: छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी किसान बारिश को दुआ देता है। ओ माय गॉड, कितना डीप मीनिंग है ना इस कहानी में। वैसे ऐसे ही इस कहानी के इमोशंस हमें टच करते हैं। मैं तो बात कर रही हूँ ईशान और नोएनिका यानी सैराग की, इस कहानी की जिसने हमें ऑलरेडी बांध लिया है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन दोनों के पास और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है आज ये कहानी। क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा?
0: नोएनिका और ईशान के रिश्ते में पड़ी दरार। ईशान के आगे टिन्नी को चुनती नोएनिका।
2: बोल दो कि इसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। हम बहुत शरीफ लोग हैं ईशान, मेरा परिवार बहुत शरीफ लोग, मुझे समाज में मुंह दिखाना होता है, इसलिए कोई एक्शन
0: नहीं। नोएनिका ने किया प्यार से इनकार। जो तुम

0: हम चाहते हैं कि आपको अपनी बेटी की बहुत चिंता थी, आप बहुत चिंता कर रहे थे, हम आपसे बात करके वापस चले जाएंगे। बस
1: ये बात फोन तो कर लेती,
2: बोल दो कि इसके साथ आपको कोई रिश्ता नहीं, हम बहुत शरीफ लोग हैं, मेरा परिवार बहुत शरीफ लोग, मुझे समाज में मुंह दिखाना होता है, इसलिए तो फिर कोई एक्शन नहीं। मैं तो तुम्हारे पास पूछा कि फोन लेकर आई थी, लेकिन तुमने अचानक से मेरी मांग ली, मुझे इन सबके बारे में कुछ नहीं पता था ईशा, और मैंने किसने फोटो ले ली, कैसे पोस्ट कर दी, मेरी बेटी के पास वो फोटो कैसे चलेगी, मुझे कुछ नहीं पता।
3: आप न्यूज पेपर में इश्तेहार निकलवा दीजिए, न्यूज पेपर में कुछ भी करवा दीजिए, मुझे नहीं पड़ता था।
4: ऑब्वियसली जिस तरह के लड़के हो तुम, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे स्कैंडल से तुम्हारे लिए आम बात होगी।
3: जिस तरह का मैं लड़का हूँ ना, उस तरह के आदमी आप कभी बन भी नहीं सकते, आपके जैसा नहीं हुए। मैं प्यार में बहन में यकीन करता हूँ, मैं सच्ची मोहब्बत में यकीन करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ
5: नौनिका आती है और नौनिका बोलती है कि तुम्हारे वजह से टिन्नी इस हालत में है, और नौनिका अपनी बेटी के दबाव में आकर ईशान को फिर से घर से बाहर भेज देते हैं।
6: तो भाई फिर एक बार नौनिका और ईशान जुदा हो चुके हैं। अब इस लव स्टोरी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट, देखना होगा कि क्या ईशान नौनिका को फिर से मना पाता है या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सिद्धेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: अब वैसे तो बारिश का मौसम होता है बहुत ही सुहाना, लेकिन कभी कभी ना बारिश भी हमारे साथ बहुत ड्रामा करती है। कभी तो एकदम तेज हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, और एकदम से धूप निकल आती है। वैसे ड्रामा की कमी नहीं है हमारी इस अगली कहानी में भी, क्योंकि देखिए जैसे ही कहानी में आता है ड्रामा, वैसे ही आता है हमारे लिए मनोरंजन। तो क्या कुछ हो रहा है हमारी इस अगली कहानी में, आज चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ।

0: छोटी बनी वृंदा का सहारा। देखा स्वाति और वृंदा का इमोशनल बॉन्ड।
1: ये

0: टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज हो रहा है इमोशनल ड्रामा। असल में वृंदा किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन जब वो घर लौटी है तो देखिए उसकी हालत कितनी खराब है। उसे जगह जगह चोटें लगी हुई हैं, वो अपने होश में नहीं है। ऐसे में ये हालत जब स्वाति वृंदा की देखती है तो वो बुरी तरह से घबरा जाती है। ऐसे में देखिए कैसे स्वाति वृंदा की मरहम पट्टी कर रही है। इतना ही नहीं, आज तो वो उसका सहारा बन गई है, उसे अपनी गोद में सुला रही है, उसके साथ आंसू बहा रही है। और वृंदा की यह हालत देखकर स्वाति भी टूट गई है।
1: यही हूँ मैं, यही हूँ ना, ये देखो, यही हूँ,
2: ओके जी।

Okay, ini sari.

ini happy, Mak. Sampai saatnya, Mak. Terima kasih.

0: और वृंदा को भी स्वाति का साथ पाकर अच्छा लग रहा है। ऐसे में स्वाति ने फैसला कर लिया है कि आज वो वृंदा के साथ ही रहेगी, कहीं वृंदा और भी ज्यादा घबरा ना जाए। भाई इस मुश्किल घड़ी में स्वाति ही है जो बहन की तरह वृंदा का पूरा पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर है कि कहीं वृंदा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो।
1: निकल जा।
2: पता नहीं कहाँ गई थी, किसके साथ मुंह मार के आई है।
1: मैम, मैंने ना कभी अपनी माँ का सर झुकाया है, ना कभी आपका सर झुकाऊंगी।
2: जा यहाँ से। एक और बार नॉक किया ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, फिर तुझे पकड़ेंगी, तेरे पति को ढूंढेंगी, तेरे घर वालों को ढूंढेंगी, तुझे उसी की गटर में फेंक कर आएंगी जहाँ से तू आई है।
1: बर्फ लगाती है, बर्फ लगाती है, तो काफी हमारा एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट मिलता है। और इसमें सबसे इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस भी होता है क्योंकि वो मुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं। और बहन के साथ कुछ बुरा हुआ, कपड़े फटे हुए थे और ना जाने, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो ये होता है ना कि हम जब किसी के साथ कुछ देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसको चोट लगी है, फिर लड़की के कपड़े फटे हुए, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो यही होता है ना कि नहीं, उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, किसी ने उसे मोलेस्ट करा है या फिर किसी ने उसे हैरेस करा है, तो उसके दिमाग में वही थॉट्स चल रहे होते हैं और मैं बहुत ट्रॉमाइज होती हूँ, पूरा काँप रही होती हूँ, शिवर कर रही होती हूँ। और मतलब मुझे, मैं एक पैनिक मोड में होती हूँ जो मुझे वो संभालती है, सुलाती है दवाई देकर, सेडेटिव देकर, और खुद भी मेरे पास ही सोती है कि मैं आज इसके साथ ही रहूँगी ताकि अगर इसको बुरा सपना भी आया है, अगर ये कहीं अटक भी जाए, कहीं इसको प्रॉब्लम हो या फिर वापस से इसको सब कुछ याद आने लगे, तो मैं इसके साथ रहूँ, उसे संभाल लेंगे। तो वो भी एज अ डॉक्टर
0: वहीं दूसरी तरफ संजय भी यहाँ आता है और संजय को भी वृंदा की हालत स्वाति बता रही है, लेकिन सभी सच से अनजान है।
3: घर के बाहर पे होश मिली थी
4: क्या
3: संजू? मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ है, पर वो सही हालत में नहीं आई है। वो अपने मंगलसूत्र को पकड़ के कुछ सब बोल रही थी कि मुझे छोड़ो मत, छोड़ो मत। सुनो, आई थिंक वो अपने पति से मिलने गई थी। कैसे छोड़ सकते हैं वो उसको, कैसे छोड़ सकता है? सुनो, कुछ उसके पति को ढूंढना होगा।
0: भाई अब जब वृंदा होश में आएगी तभी सच का पता चलेगा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। अब देखना होगा कि कैसे वृंदा की लड़ाई स्वाति लड़ती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब देखिए, बारिश का होना तो है हमारे वेदर के लिए बहुत ही जरूरी, ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल में करता है, क्योंकि अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर ग्राउंड वाटर किस तरह इकट्ठा होगा और हमें पीने को पानी किस तरह मिलेगा। बारिश होती है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन जब हो जाती है एक्सेस बारिश तो हो जाता है उल्टा, क्योंकि हो जाती है लैंडस्लाइड्स, आ जाती है बाढ़ और हो जाता है हम सबके लिए शॉकिंग। तो किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में होना भी ठीक नहीं है, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखा रहे हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: इसी के साथ अलायंस में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म SVC 63 के लिए 16 kg लूज किए हैं।
6: 12 kilos.
7: I'm down to 16.
6: Oh wow.
8: किसी को पुकारना तो दूर की बात, तू खुद को भी नहीं बचा पाएगा।
0: नजर डाल लीजिए मन्नत के नए प्रोमो पर, जहां पर धैर्य चलेगा विक्रांत के खिलाफ खूनी चाल, लेकिन विक्रांत की याददाश्त लौट आएगी।
9: विक्रांत की याददाश्त, क्या किस्मत फिर से मन्नत और विक्रांत को मिला पाएगी?
0: रश्मिका मंदाना ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस जब सेट पर उन्हें 3 बार चोट लगी थी। ऐसे में उन्होंने बताई है अपनी इंजरी की कहानी।

0: ना अच्छी पत्नी बन सकी, ना अच्छी बहू और ना ही अच्छी माँ। तुम्हारी जैसी बीमारी का एक ही इलाज है।
1: डॉक्टर आरंभी का नया प्रोमो देख लीजिए, जहाँ पर विश्वास दे रहा है आरंभी को तलाक। तो क्या उसकी जिंदगी की ध्रुव के साथ होगी नई शुरुआत?
0: खो तो तुमने दिया है आज अपना सब कुछ।
2: सब कुछ खत्म होने के बाद क्या आरंभी के जीवन में होगी नई शुरुआत?
3: आपको घर पे प्यार से किस नाम से बुलाते?
1: अदिति भाटिया ने शेयर किया है ये वीडियो, जहां वो अपनी नानी संग फन बैंटर करती नजर आई। मिर्जापुर मूवी आने वाली है, ऐसे में इसका प्रोमो शूट हो रहा है और इस शूट पर नजर आए अभिषेक बैनर्जी, श्वेता त्रिपाठी, अली फजल और रसिका दुक्कल। इसी के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है एक्सेल म्यूजिक और इनका पहला गाना है फिल्म मिर्जापुर से।

0: ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਜਲ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਡੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਲ 'ਚ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ।
1: आ रहा है पंजाबी रियलिटी शो जिसका नाम है कर्मा दा खेल, और इस घर में होंगे डेविल्स एंड एंजल्स। देख लीजिए इस रियलिटी शो की एक झलक।
0: तड़े पोनों भी बता सकता है ते तड़े पाप नूं, जिथे ताकत मिलूगी पर हर ताकत दी एक कीमत होगी, जिथे दोस्ती भी होगी पर वो दोस्ती कदे भी धोखा बन सकती है। इथे लोग सिर्फ खेडणगे नहीं, इथे लोग अपने आप नाल लड़नगे, अपने हंकार नाल, अपनिया कमजोरियां नाल, अपने अंदर दे डेवल ते एंजल नाल। ते जदों पाप ते पुन दा कड़ा भर जूगा तां फैसला करूगा एह घर।
2: द हाउस ऑफ डेविल्स एंड एंजल्स।
1: इन प्ले ओटीटी पर आने वाली है नई सीरीज जिसका नाम है द मॉम, जिसका हिस्सा बन गए हैं कृप सूरी। वैसे इनके अलावा इस सीरीज में नजर आएंगी स्नेहा लता और निहारिका रॉय।

0: वैसे बारिश हो या तूफान, हमारे स्टार रिपोर्टर्स तो हमेशा रहते हैं ऑन ड्यूटी और लेकर आते हैं आपके लिए आपकी फेवरेट कहानियों के ताजा ताजा अपडेट्स। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी अगली कहानी की ओर, जिसमें हो रही है आपके लिए एंटरटेनमेंट की बारिश, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ड्रामा। मैं जानती हूँ अब आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, तो फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
1: As per decided, old batch में से करण और विशाल, न्यू बैच में से गौरव एंड शगुन, आप लोग ये स्टंट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपके पास है फियर फंदा। स्टंट सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कोई आएगा, मैं उसे पहले बुला लेता हूँ। अब होगा ये, आप चारों को 1 2 3 4 उस लाइन में खड़े होना है अपनी पीठ दिखा के, एंड ये आप पे रबर बुलेट्स मारना शुरू करेंगे बारी बारी। ग्रेजुअली उसका डिस्टेंस कम होना शुरू होगा। आप लोगों को पेन बेयर करते रहना है, चाहे आज पूरा दिन निकल जाए।
2: हाँ?
1: जब तक पहले 2 खिलाड़ी अबॉर्ट नहीं करेंगे तब तक ये फायरिंग चलती रहेगी।
2: ओह माय गॉड,
3: बहुत मजा आएगा सर।
4: यू विल बी फाइन।
5: यस,
4: यू गॉट दिस।
5: यस,
4: विमेन गिव बर्थ।
5: Yes.
4: That's the most painful thing you'll go through. This is nothing.
5: Yes.
6: Amazing, Ori. I love yes. that line.
4: It's Thank true. You.
6: It's true.
1: जो 2 खिलाड़ी अबॉर्ट करेंगे, वो करेंगे हमारा अगला स्टंट, जो होगा हमारा एलिमिनेशन स्टंट, और उन 2 खिलाड़ियों में से कोई एक आज घर वापस जाएगा। तैयार चारों?
7: Yes, sir.
1: आओ.
8: This is something completely new. A good thing is they've given us a spine protector.
9: दर्द हमें से कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जैसे ही हमें कोई दर्द होता है हम इमरजेंसी भागते हैं, तो इंटेंशनली दर्द बर्दाश्त करना, माय गॉड, जैसा इस बार की टैगलाइन थी डर का नया दौर, दिस इज एक्चुअली दैट।
10: ये पीठ वाली गोलियां जो है ना बहुत पेनफुल होंगी, मुझे पता है, बट ठीक है यार, खतरों के खिलाड़ी में आए हैं तो खतरों से नहीं खेलेंगे तो फिर खिलाड़ी कैसे कहलाएंगे।
9: मैं इस वाले स्टंट के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पेन एंड्योरेंस थोड़ा है, तो इवन इफ आई फील लाइक गिविंग अप, मैं देखूंगी कि आसपास के लोगों ने नहीं किया तो मैं टिकी रहूंगी।
1: प्रिटी गाइस, टू आवर व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, प्लीज डू नॉट ट्राई आवर स्टंट्स एट होम। हमारे शो पे दिखाए गए स्टंट्स एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में किए जाते हैं, इन्हें करने की कोशिश ना करें। रेडी? गोइंग फॉर स्टंट, गो।
11: बहुत बढ़िया भाई, कमांड भाई, बहुत बढ़िया बेटे।

0: Oh. Come on, come on. Okay.
1: Ow. Oh.
2: Shagun, you're there.

0: पूछते हैं ना आप कि कितना प्यार है हमें आपसे, अब गिन लीजिए इन बारिश की बूंदों को। आहा, वाह वाह वाह वाह वाह, बस हमारा और आपका प्यार यूं ही सलामत रहे, इसी तरह लेकर आए हम आपके लिए रोजाना एंटरटेनमेंट जोरदार। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: क्या सावन में अपने घर पर रहकर के ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जा सकती है? ज्योतिर्लिंगों की पूजा का क्या होगा विधान और ज्योतिर्लिंगों की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
10: Sage University, transforming your passion into profession.
11: 11 साल का इंतजार हुआ खत्म, बारापुला फेज 3 का कॉरिडोर बनकर हुआ तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। CWG में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, बजाए ढोल। अब भदोही में तेजी से बनेंगे जूट के नए कालीन, JCI आउटलेट से उद्योग को मिलेगा बड़ा सहारा, जूट कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्साह से जारी है हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम यात्रा, अब तक बद्रीनाथ धाम में 15,57,000 से ज्यादा, हेमकुंड में 2,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सावन में दिख रहे हैं कांवड़ के अद्भुत रंग, मुजफ्फरनगर में कांधे पर गोल्डन बाबा को लेकर निकला कांवड़िया, सहारनपुर में निकली 9 फीट ऊंची बाहुबली वाली कांवड़।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही है बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम यात्रा का उत्साह लगातार बरकरार। उपंती अलकनंदा नदी के बीच भी जारी है पवित्र यात्रा। मौसम की चुनौतियों के बावजूद सुचारू रूप से जारी है बद्रीनाथ धाम यात्रा। अब तक 1,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी पूरे जोश के साथ जारी है श्रद्धालुओं का आना। अब तक 2,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। पुंछ में श्रद्धालुओं ने शुरू की अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ कर रहे हैं कदम का। सावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अजब गजब रंग। मुजफ्फरनगर में गहनों से लदे शिवभक्त और भोलेनाथ की कांवड़ देखकर सब हैरान। गोल्ड प्लेटेड हैं भगवान शंकर और कांवड़ियों के गले में पड़े गहने। हरिद्वार से सोनीपत तक तकरीबन 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं रोहित शर्मा। कांवड़ यात्रा में नजर आ रहे हैं हर आयु वर्ग के कांवड़। हरिद्वार से जल लेकर यात्रा रही बच्चों की ये नन्ही कांवड़ फौज। लगभग 50 दिन से कांवड़ यात्रा में फरीदाबाद के दो भाई हैं। एक भाई ने उठाया 110 लीटर जल तो दूसरा 81 लीटर गंगा जल के साथ कर रहा है कांवड़ यात्रा। आस्था और शिवभक्ति के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आया धनबाद। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर बनारस से आए आचार्यों ने संपन्न कराई दिव्य शिव गंगा महाआरती। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र सरोवर में आयोजित हुई भव्य शिव महाआरती। सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रखा गया था ये धार्मिक आयोजन। सवाईमाधोपुर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सालाना भव्य महा भगवा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के रामद्वार से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए दंडवीर बालाजी मंदिर में हुई संपन्न। जगह जगह पुष्प वर्षा। सावन के महीने में अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रही है लोगों का ध्यान। सहारनपुर में निकली बाहुबली वाली कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। टॉफी टू जी श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़। भगवान शिव की विशाल आकृति वाली सुनहरी कांवड़ भी लोगों के बीच लोकप्रिय। भोलेनाथ की प्रतिमा के दोनों ओर बनाए गए हैं सुंदर मोर। बिजनौर की एक कांवड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल। एक तरफ 90 साल की दादी दूसरी तरफ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला पोता। हरिद्वार से हापुड़ लेकर सोनू कर रहे हैं 250 किलोमीटर की यात्रा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारियां। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। 9 अगस्त को बागपत सहारनपुर मुजफ्फरनगर और मेरठ। 10 अगस्त को गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा अलर्ट मोड पर है रेलवे। दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन में बनाया गया है वॉर रूम। कांवड़ियों और आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ आरक्षित रेल कर्मियों की भी तैनाती। सुरक्षा के साथ साथ कांवड़ियों के आराम का भी रखा जा रहा है विशेष ख्याल। स्टेशन पर सात्विक भोजन और मेडिकल टीम भी तैनात। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त। आज से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। नू में सावन का पहला मंगलवार पर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र चंदन दही से किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। मैनपुरी में भी सावन पर शिवालयों में भक्तों का जलाभिषेक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगाए जा रहे हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार में भगवान शिव के अलग अलग रूपों में झांकियां बनी, आकर्षण का मुख्य केंद्र कांवड़िए। शिव, शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगाजल ले जा रहे हैं। कोटा में 500 साल पुराना अनूठा शिवलिंग, एक ही शिला में शिवलिंग और शीश काटकर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं रावण की मूर्ति। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना यह प्राचीन शिवालय। अपने पूरी श्रद्धा के साथ जारी है कांवड़ यात्रा। यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के अंदर वन भी प्रमुख मार्ग कांवड़ मार्ग पर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात, वाहनों को सही मार्ग दिखाने और कांवड़ को सुरक्षित मार्ग देने के लिए लगातार जानकारी। चंबा के रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हुआ संपन्न। मेले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक निकाली पारंपरिक शोभा यात्रा। मेले में देखिए हिमाचल की संस्कृति कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। तिरुचिरापल्ली में आदि पेरुक्कु उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में शामिल हुए। आदि पेरुक्कु उत्सव पर नवविवाहित जोड़ों और महिलाओं ने नदी में पीला धागा, अवैध नैवेद्य और फल की अर्पित।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको

महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है।
इसलिए ये

0: बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र। ये गंधपुरा पत्र में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजन करी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: क्या सावन में अपने घर पर रहकर के ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जा सकती है? ज्योतिर्लिंगों की पूजा का क्या होगा विधान और ज्योतिर्लिंगों की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: 11 साल का इंतजार हुआ खत्म, बारापुला फेज 3 का कॉरिडोर बनकर हुआ तैयार, 20 मिनट में तय होगा मयूर विहार से दिल्ली एम्स का सफर, उद्घाटन इसी महीने संभव। CWG में देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटे पदक विजेताओं का, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं, बजाए गए ढोल। अब भदोही में तेजी से बनेंगे जूट के नए कालीन, JCI आउटलेट से उद्योग को मिलेगा बड़ा सहारा, जूट कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्साह से जा रही है हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम यात्रा, तक बद्रीनाथ धाम में 15,57,000 से ज्यादा, हेमकुंड में 2,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सावन में दिख रहे हैं कांवड़ के अद्भुत रंग, मुजफ्फरनगर में कांधे पर गोल्डन बाबा को लेकर निकला कांवड़िया, सहारनपुर में निकली 9 फीट ऊंची बाहुबली वाली कांवड़।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मान्यता है कि सावन का हर दिन वरदान देने वाला होता है, सोमवार की तिथि महादेव को समर्पित है, तो सावन के मंगलवार को होती है माँ मंगला गौरी की पूजन। धर्मग्रंथ के जानकार ये मानते हैं कि जहां शिव हैं, वहां शक्ति भी हैं। शिव के साथ शक्ति की आराधना इस पूरे सावन आपके जीवन की कई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि माँ मंगला गौरी का विधिवत पूजन करने और एक महा उपाय करने से आपके जीवन की कई मुश्किलों का अंत हो सकता है।

0: मनवांछित वर की कामना का महाव्रत, जीवन साथी की मंगल कामना का अनुष्ठान, सावन में फलकारी है शिव शक्ति की साधना, मांगलिक दोष से मुक्ति दिलाएगी मां मंगला गौरी, बड़ा ही पावन और फलदाई है सावन का मंगलवार। जैसे सावन के सोमवार को महादेव की स्तुति की जाती है, उसी तरह से सावन के मंगलवार को मां मंगला गौरी की उपासना का विधान है। माना जाता है कि मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में इस व्रत का इतना प्रताप माना गया है कि इससे घर में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सावन को कामना पूर्ति का माह माना जाता है। माना जाता है कि मां मंगला गौरी के व्रत और पूजन से शादी विवाह से जुड़ी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है।
1: सोमवार को भगवान महादेव की और मंगलवार को मंगला गौरी की जो पूजा होती है, या जो मंगला गौरी का सावन के महीने में जो पूजन है, व्रत है, तो भगवान शिव का सोमवार को और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने से गौरी शंकर की जब कृपा होती है तो जीवन में समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और सर्वदा मंगल और कल्याण होता है।
0: सावन के मंगलवार को माँ गौरी की उपासना की जाती है। सावन में माँ गौरी की पूजा मंगलकारी होती है, इसलिए इस पूजा को मंगला गौरी कहा जाता है। माँ गौरी की उपासना से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। माँ की कृपा से वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। मंगल दोष अगर समस्या दे रहा हो तो इस दिन की पूजा बहुत लाभदायी होती है।

0: सावन में शिव के साथ शक्ति की पूजा परम फलदायी मानी गई है। माना जाता है कि सावन के हर मंगलवार को माँ पार्वती मंगला गौरी बनकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान शंकर तो मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का विधान बताया गया है। पंचांग में इस बार मंगला गौरी व्रत की 4 तिथियां हैं। चार अगस्त पहला मंगल गौरी व्रत, 11 अगस्त दूसरा मंगल गौरी व्रत, 18 अगस्त तीसरा मंगला गौरी व्रत, 25 अगस्त चौथा मंगला गौरी व्रत।
1: मंगला गौरी की पूजा में लाल वस्त्र पहन करके मंगला गौरी के मंदिर में जाएं। आप पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पहन करके सौभाग्यवती स्त्रियां अगर महादेव का और मंगला गौरी दोनों का पूजन करती हैं तो जीवन में उनके हमेशा सौभाग्य बना रहता है। और जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हों उनको भी 5 फल प्रति मंगलवार को मंगला गौरी को अर्पण करने से जीवन में उनके जो जीवन साथी मिलता है उनको मनोनुकूल प्राप्त होता है।
0: तो देखा आपने कितने कल्याणकारी है ये पावन तिथि। जब शिव और शक्ति का एक साथ मिलेगा वरदान तो भक्तों के बन जाएंगे बिगड़े काम। चलिए अब आपको माँ मंगला गौरी से जुड़ी वो पौराणिक कथा भी बताते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी देवी सती ने शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। कथा कहती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के माह में कठोर तप किया था। कहते हैं कि शिव जी ने इसी माह में देवी पार्वती से विवाह किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को सावन का माह बहुत प्रिय है। इसलिए इस माह में कामना पूर्ति के महाप्रयोग भी किए जा सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सावन के मंगलवार को किए जाने वाले उपाय और पूजन आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। तो अब आपको समझाते हैं मंगला गौरी की पूजन विधि क्या है। स्नान करके माँ गौरी की पूजा का संकल्प लें। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता मंगला गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। एक चौमुखी घी का दीपक जलाएं। माता मंगला गौरी को लाल रंग के वस्त्र 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से उपासना करें। उनको धूप दीप पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें। ओम मंगलाय नमः या ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ गौरी को 16 सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें। माँ गौरी को अर्पित की गई चुनरी स्वयं के पास रख लें। खीर पूड़ी हलवा मीठा पान नारियल जैसे पकवानों का भोग लगाएं। पूजा के बाद व्रत का प्रसाद घर और अन्य सदस्यों में बांटें।
1: मंगला गौरी के व्रत से जुड़े उपायों में अगर देखा जाए तो मंगलवार को नमक का त्याग करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए, मीठा भोजन करके और भगवती की आराधना करनी चाहिए और सौभाग्य की वस्तुएं अगर अर्पण करते हैं तो भगवती मंगला गौरी के लिए कन्याओं के विवाह के लिए यह बहुत सुंदर उपाय है कि हल्दी चढ़ावें और भगवती को सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ावें, 5 फल चढ़ावें, तो यह महा उपाय के नाम से इसको आप कर सकते हैं और कामना पूर्ति आपकी हो जाती है।
0: तो आप भी ज्योतिषी द्वारा बताए गए विधान के अनुसार ही माँ मंगला गौरी का पूजन करें जिससे आपका जीवन संकटों से मुक्त हो सकेगा। पूरे सावन में अगर आप माँ मंगला गौरी की विधिवत पूजन करेंगे तो कौन कौन से लाभ माँ मंगला गौरी के पूजन से उठा सकते हैं और माँ की कृपा पाने के लिए किस तरह से महा उपाय आपको करने होंगे वो सब आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं कि माँ मंगला गौरी माँ पार्वती ही हैं और सावन के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी की आराधना का विधान है। माना जाता है कि जिसके भी जीवन में विवाह की बाधा हो वो माँ की पूजा से दूर हो जाती है। तो माँ मंगला गौरी की कृपा पाने के लिए कौन से महा उपाय आपको करने होंगे गौर से देखिए।

0: जब शिव संग करेंगे शक्ति का आह्वान, तब विवाह संबंधी हर बाधा का हो जाएगा निदान। जीवन से सारे विघ्नों के मिट जाएंगे निशान। मां मंगला गौरी की कृपा से होगा आपका उत्थान। शास्त्रों में मां मंगला गौरी के व्रत को अचूक माना गया है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत रखती हैं, जबकि कन्याएं मनवांछित वर की कामना में इस व्रत का पालन करती हैं। माना जाता है कि मां मंगला गौरी का व्रत करने से दाम्पत्य के जीवन में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर बने रहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या कुंडली में मांगलिक दोष हो, तो ऐसे भक्त विधि विधान से मां मंगला गौरी की उपासना करें, जिससे उनकी विवाह संबंधी सभी दोषों का अंत मां की कृपा से हो सकता है।
1: मंगलो भूमि पुत्रश्च, मंगल भूमि का स्वामी है, उसी भूमि पर हमको निवास करना है। तो जो भूमि का स्वामी है उनका पुत्र मंगल है, और मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रख करके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं।
0: जानकार बताते हैं कि इस दिन किए जाने वाले उपाय और पूजन अपार सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। चलिए आपको ज्योतिष में बताया वो महाप्रयोग बताते हैं जब विवाह में बाधा आ रही हो, तब कौन सा महा उपाय किया जा सकता है। सावन के मंगलवार को सुबह या शाम माँ गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाएं। माँ को 16 फूल या 16 तरह के फूल चढ़ाएं। माँ गौरी को लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। माँ को लाल रंग की चुनरी और लौंग अर्पित करें। ओम ह्रीं गौरिये नमः मंत्र का जाप करें। जाप के बाद जल्दी विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। अभी आपने देखा कि अगर आपका विवाह न हो रहा हो तब किस तरह से मां मंगला गौरी की उपासना करनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन तब क्या करें जब वैवाहिक जीवन में ढेरों बाधाएं हो, दाम्पत्य जीवन में मिठास न हो। चलिए हम आपको इसका भी एक खास उपाय बताते हैं, जिसका पालन करने से मां मंगला गौरी की कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शाम में माँ गौरी की पूजा करें। माँ गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएं। माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। माँ को इत्र समर्पित करें और 16 इलायची चढ़ाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का 11 माला जाप करें। इलायची को अपने पास रख लें और प्रसाद की तरह खाते रहें।
1: माँ मंगला गौरी का सर्वोत्तम मंत्र सभी लोग जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र में एक श्लोक है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह सर्वोत्तम मंत्र है। यह मंत्र मंगल करने के लिए है। सब कुछ आपका है, ऐसा भाव रख करके समर्पण के भाव से जाकर के मंगला गौरी की अगर प्रार्थना और वंदना करते हैं तो उनके जीवन में सदा मंगल और कल्याण होता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब भी आप मां मंगला गौरी का पूजन करें तो पूजा के अंत में भगवान शिव और मां पार्वती से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना अवश्य करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। जो महिलाएं संतान की इच्छा रखती हैं, उनके लिए भी ये व्रत संतान प्राप्ति में सहायक माना जाता है। तो आप भी सच्चे मन और नियम संयम से मां मंगला गौरी की करें उपासना, जिससे आपका जीवन समृद्धि से भर जाए। बस आप मां को मनाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। ज्योतिष के बताए इन उपायों को अपनाइए, फिर देखिए मां की कृपा से आपका जीवन किस प्रकार सुखमय हो जाएगा।
2: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के अलौकिक दरबार।

अद्भुत है सावन का मंगलवार, जब आस्था शिव शक्ति की संयुक्त कृपा पाने के लिए लालायित रहती है। परम फलकारी है सावन का मंगलवार, जब मां मंगला गौरी संग पूजे जाते हैं देवाधिदेव महादेव,

0: मनोकामना पूर्ति की सबसे मंगलकारी तिथि है सावन का मंगलवार, जब माँ मंगला गौरी की कृपा से पूर्ण होती है भक्तों की सभी कामनाएं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में गौरी पूजन का बताया गया है, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता, यह जो दो चौपाइयां बताई गई हैं, इनको बाम अंग फरकन लगे। दोहा नंबर 234 से लेकर 236 तक का पाठ करने से गौरी माता प्रसन्न होकर के शीघ्र वरदान देती हैं।
0: यह आस्था का उद्घोष है, विश्वास की जय जयकार है, प्रार्थना की वो लहर है जो महादेव के चरणों का स्पर्श कर खुद को धन्य समझती है। दिल्ली के चांदनी चौक में बना है 800 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर, जहां शिव अर्ध नारीश्वर रूप में विराजमान हैं, जहां लगता है भगवान गौरी शंकर का दरबार।

मान्यता है कि आदिकाल से यहाँ विराजमान हैं भोलेनाथ। ये स्वयंभू शिवलिंग है। चांदी के सर्प से घिरे शंभुनाथ की ये अलौकिक छटा अद्भुत है। माँ गौरी और भगवान शिव का छोटा सा विग्रह भक्तों का मन मोह लेने वाला है। यहाँ उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर पवित्र भस्म आरती की जाती है। इस मंदिर के बेसमेंट में भगवान शिव की सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिरूप यानी रिप्लिका मौजूद है।

माना जाता है कि ये मंदिर एक भक्त की सच्ची आराधना और पूर्ण निष्ठा की साक्षात गवाही देता है। महाकाल के प्रति विश्वास इतना अटूट जो काल पर भी जीत दिलाते। मान्यता है कि इस मंदिर को मराठा सैनिक अप्पा गंगाधर ने बनवाया था, जो बाबा शिव के परम भक्त थे।

गौरी शंकर मंदिर में रोज भगवान शिव का बेहद खूबसूरत श्रृंगार किया जाता है। देखिए कैसे चंदन, अबीर, गुलाल और फूलों से सुसज्जित हो रहे हैं औघट तानी।

0: माना जाता है कि गौरी शंकर के इस दरबार में गणेश और कार्तिकेय भी विराजमान हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं कहती हैं कि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति और सुहागिने संतान और पति की लंबी आयु की कामना लेकर यहां आती हैं।
1: जितने प्रकार की कामनाएं हैं हमारे जीवन में वह पूर्ण होती हैं। खट विकार, मानव का जो शरीर है इसमें 6 प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यह जो 6 विकार हैं, यह विकार भी मंगला गौरी दूर कर देती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है।
0: माना जाता है कि सावन में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गौरी शंकर की आराधना करता है, ईश्वर की कृपा से उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सावन में भगवान गौरी शंकर की उपासना करने से वैवाहिक बाधा को लेकर कुंडली दोष तक का निवारण संभव है।

0: गौरी शंकर मंदिर भारत के शैव संप्रदाय के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ना कोई बंधन, ना कोई रोक, लेकिन शर्त सिर्फ एक, मन में गौरी शंकर के प्रति सच्ची आस्था। ये महादेव की महिमा का गुणगान है, ये शिव शंकर की करुणा का बखान है। अविनाशी शिव तीनों लोक में सबसे महान है। ये संसार शिव के चरणों में ही तो समाया है और शिव को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आशुतोष तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोलियां भर जाती हैं। तो आप भी सावन में भगवान गौरी शंकर की आराधना करें, जिससे आपकी भी कामना हो सके पूर्ण।
1: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी, क्योंकि देखिए राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाक घरों में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम, मोली, मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
8: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स। Sage University, transforming your passion into profession.
7: बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं से गुलजार पूरी घाटी। मौसम की चुनौतियों पर भक्तों की आशा भारी, अब तक करीब 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर में कंधे पर गोल्डन बाबा को लेकर निकला कांवड़िया। सहारनपुर में निकली 9 फीट ऊंची बाहुबली वाली कांवड़। वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह की वतन वापसी। अमृतसर एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है सिल्वर मेडल। अब अधोई में तेजी से बनेंगे जूट के नए कालीन। JCI आउटलेट से उद्योग को मिलेगा बड़ा सहारा। जूट कारोबारियों में खुशी की लहर। यूरोप में बढ़ती गर्मी के बीच बेजुबानों के लिए राहत के इंतजाम। बैना चिड़ियाघर में पानी की फुहारों का मजा ले रहा नन्हा हाथी। देखरेख में लगे हैं कर्मचारी।

वाले एआई से क्यों डर गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल एआई का जिक्र हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। एआई तकनीक का इस्तेमाल करने के मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत सबसे आगे है। लेकिन इसी बीच दुनिया में एक चर्चा बहुत तेज हो गई और ये चर्चा एआई की ग्रोथ को लेकर हो रही है। तो किसने की? ट्रंप से बेकाबू एआई की शिकायत। एआई की ग्रोथ स्लो करने की मांग क्यों उठ रही है? क्यों घबराए हैं जाने माने टेक एक्सपर्ट? और एआई बनाने वाले ही एआई से क्यों डर गए हैं? इन तमाम पहलुओं पर आज हम देश के जाने माने टेक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे।

0: एआई की शिकायत की गई है। अब क्यों शिकायत की, क्या है उस शिकायत में और इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका में एआई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की अपील की जा रही है। कई एआई कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी सरकार को एक ओपन लेटर लिखा है। ये एक्सपर्ट्स ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल डीप माइंड से जुड़े हुए हैं और इनमें 1100 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व एक्सपर्ट दोनों शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि आने वाले समय में एआई खुद पर रिसर्च करने लगेगा। नई एआई तकनीक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो सकती है। अब ऐसे में इंसानों के लिए एआई के खतरे बनने की आशंका जताई जा रही है। कहा वैसे ये भी जा रहा है कि नई तकनीक से इंसानों के पास एआई के असर से सुरक्षा इंतजाम की कमी हो सकती है। तो क्या एआई इंसानों के लिए खतरा, इसको लेकर चर्चा हालांकि बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन अब जब टेक एक्सपर्ट ही इसको लेकर सरकार को खत लिखे तो मामला गंभीर हो जाता है। लिहाजा अमेरिका को दूसरे देशों के साथ कानूनी तकनीकी सिस्टम तैयार करने का एक सुझाव भी दिया गया है। तो हाल ही में टेस्टिंग के दौरान एक एडवांस एआई मॉडल ने सिक्योरिटी लिमिट क्रॉस की। हालांकि ओपन एआई ने कहा था कि किसी यूजर का डेटा प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे मामले के बाद एआई सुरक्षा को लेकर यकीनन एक बहस जरूर छिड़ गई है, बहस तेज भी हो गई है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या एआई के विकास की स्पीड को थोड़ा सा थामना चाहिए, थोड़ा स्लो कर देना चाहिए, क्या एआई के लिए अब ग्लोबली कोई कानूनी सिस्टम जरूरी हो गया है, क्या अब ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो इन सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, हमारे साथ होंगे जाने माने टेक एक्सपर्ट जिनसे चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। भवन दुग्गल जी एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के हैं और साथ ही साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। शुभम सिंह साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अमित मल्होत्रा भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कुछ ही देर में मयंक राज जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन जी मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, ये जो खत लिखा है कहीं ना कहीं जब एआई आया चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि क्या इंसानों को रिप्लेस कर देगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईटी सेक्टर में वाकई एआई एक बड़ा रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन अब एआई बनाने वाले ही एआई से डर गए हैं।
1: देखिए डर इसलिए गए हैं क्योंकि जिस तेज रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है ये बहुत जल्दी मानव मात्र के लिए एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो जाएगा। एलन मस्क तो ऑलरेडी अब एआई को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहे हैं, हमारे वजूद का अब सवाल खड़ा हो गया है। क्यों इतनी तेज रफ्तार से चीजें बढ़ रही हैं, और अब तो क्लॉड ने खुद एडमिट कर लिया है कि उसके जो सिस्टम्स हैं वो रिकर्सिवली सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब खुद ब खुद अपने आप ही अपने सिस्टम में जो खामियां उसको देखते हैं, उस खामियों को भरपाई करते हैं और अपने सिस्टम्स को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो इस संदर्भ में अब इस तरीके से जब ऑटोनोमस एआई आ गई है, एजेंटिक एआई पर इतना जोर हो गया है, एआई एजेंट्स आपसे बिना पूछे काम करने लग गए हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने लग गए हैं, तो आवश्यकता भी ये बनती है कि इनको अब जिम्मेवार कैसे ठहराया जाए। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून एआई को लेकर मौजूद नहीं है और उसको अकाउंटेबिलिटी को के संदर्भ में भी कोई कानून अभी मौजूद नहीं है। मैंने जनवरी में एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया था जो लीगल कानूनी सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से आप एआई को कानूनी मान्यता दे सकते हैं और उसे अकाउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन चीजें बहुत तेज रफ्तार से आगे अग्रसर हो रही हैं। तो अप्रैल में मैंने एजेंटिक एआई लायबिलिटी फ्रेमवर्क भी रिलीज किया कि आप किस तरीके से एआई एजेंट्स को आप कानूनी तौर पर जिम्मेवार और लायबल बना सकते हैं। अब ये सिद्धांत है, इनके आधार पर सरकारें अपने कानून बना सकती हैं, लेकिन जब तक कानून बने तब तक ये लोग जो विशेषज्ञ कह रहे हैं साहब थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए। अच्छा उनकी जो कॉल है नई नहीं है, 2022 30 नवंबर को चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, मार्च 2023 में ही फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसी सिमिलर कॉल दी थी कि साहब आपका एआई बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, कृपया थोड़ा थम जाइए, 6 महीने तक एक स्टैंड ऑफ कर लीजिए ताकि कानून को हम इसके दायरे तक लेकर आ सके, लेकिन किसी ने सुना नहीं और एक आर्म्स रेस चलता रहा। आज जब एआई इतना खतरनाक विकराल स्वरूप लेकर आ गया है तो उस कॉल को दोबारा से रिट्रीट किया गया है।
0: पवन जी आप खतरनाक स्वरूप की बात कर रहे हैं, मैं उस खतरनाक की डेफिनेशन, अमित जी अगर आप बता पाए उस खतरनाक की डेफिनेशन क्या है। रोकने की बात हो रही है, ठीक है, कानून बनाने को लेकर चर्चा हो रही है, पवन जी कह रहे हैं बहुत लंबे समय से कह रहे थे इसको लेकर और यकीनन चर्चाएं चल भी रही है बहुत समय से, लेकिन अब अमेरिका, वहां जहां पर एआई का इजाद हुआ, जहां सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल होता है, वहीं पर टेक एक्सपर्ट, 1100 से ज्यादा टेक एक्सपर्ट खुद ट्रंप सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि फिलहाल इसको रोक लीजिए, थोड़ा सा थम जाइए और इस वक्त एक ग्लोबली एक कानून बनाने की जरूरत है। अमित जी, खतरा कहां पर नजर आता है? अमित मल्होत्रा जी,
2: मिसयूज का खतरा मैम सबसे ज्यादा बड़ा है कि एक एआई जो इतना पावरफुल टूल है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके फेक वीडियोस जैसे डीप फेक्स वगैरह बना रहा है, फेक वॉइस कॉल्स, फिशिंग ईमेल्स और ऑफिस के अंदर फ्रॉड्स और साइबर अटैक्स के लिए। तो प्रॉब्लम एआई नहीं है बल्कि उससे गलत इस्तेमाल होने वाली चीजों के खतरे आगे, ठीक है। रूल्स और लॉज भी अभी पीछे है हमारे, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है तो उनकी स्पीड बहुत कम स्लो डेवलप हो रही है। तो इसी वजह से एक्सपर्ट्स सबसे पहले चाहते हैं कि जो सेफ्टी का फ्रेमवर्क है वो है पहले बन जाए, उसके बाद एआई आगे बढ़े तो बेटर है, क्योंकि ह्यूमन के कंट्रोल का भी कंसर्न है। अगर मान लेते हैं एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि एआई हमेशा ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, उनके लॉज को फॉलो करे, लेकिन अगर फ्यूचर में जो एआई है सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया तो उनके डिसीजंस जो भी है वो नहीं समझता, जब उनके कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आगे जाके। तो यही सब खतरे मैम जो कि मतलब लोग चाह रहे हैं कि एआई का एक बहुत बड़ा खतरा जो है सामने आ रहा है।
0: मायन जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कोई भी तकनीक जब आती है हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, प्लस पॉइंट हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जब एआई आया तो चर्चा इसी बात को, सबसे बड़ी चर्चा तो यही थी कि क्या इंसानों के लिए खतरा है, इंसानों नौकरियों के लिए कितना बड़ा खतरा है आने वाले समय में। एक कॉमन सा सवाल अगर हम देखें तो आने वाले समय में अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि नौकरियां लोगों की जा सकती है, एआई लोगों की नौकरियां ले सकता है, रिप्लेस कर सकता है एआई, लेकिन यहां पर और दूसरे खतरे भी हैं। अब ऐसे में जबकि एआई तकनीक का इस्तेमाल तकरीबन हर क्षेत्र में हो रहा है, खासतौर पर अगर हम डिफेंस सेक्टर की भी बात करें तो।
3: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समस्या एआई नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड एआई, राइट। और ये बात और गंभीर हो जाती है जब, जैसे कि हम माने जिसने इंजन बनाया है वो ही ब्रेक लगाने की बात करे, तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है, राइट। बिकॉज एआई अब कंट्रोल से बाहर है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है उस पर ब्रेक लगाने की और कंट्रोल्ड एआई को एक तरह से पिक्चर में लाने की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई आज के समय में सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रह गया। आप फ्री बैठ सकते हो एआई को अपना डेली ऑटोनोमस टास्क देके, वो आपके बिहाफ पे सारे टास्क करेगा, मेजरली इन द आईटी इंडस्ट्री, ऑल द पॉसिबल टास्क, सारे पॉसिबल टास्क वो कर रहा है।
0: मैं जी स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछूं, जब ये 1100 टेक एक्सपर्ट चिट्ठी लिखते हैं सरकार को, तो जाहिर सी बात है कि किसी खतरे का अंदेशा बताते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट आपसे पूछूं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां के लिए एआई बहुत ज्यादा खतरनाक है?
3: देखिए, एआई ने आज के समय में किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा हुआ है, वो सारे सेक्टर में है और उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज है, वो हर एक टास्क को ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर वो उसको ऑटोनोमस एग्जीक्यूट करने की पावर है तो उसको कुछ भी करने की पावर है। तो द मेजर पॉइंट इज कि उसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, उसको मॉनिटर करने की, जैसे दुग्गल साहब ने कहा, उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है कि अगर ये हुआ तो किसने किया, क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। आज के समय में जिम्मेदार कोई नहीं है अगर एआई कुछ भी करता है। कंपनीज खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि एआई अब उनका काम खुद कर रहा है, खुद ही कोड लिख रहा है, खुद ही वैलिडेट कर रहा है, खुद ही फीचर डेवलप कर रहा है, हमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी भागती हुई गाड़ी है जिसमें ब्रेक अभी नहीं है और हम उसमें ब्रेक्स लगाने की संभावना कर, ब्रेक लगाने की वो रखते हैं,
0: ब्रेक लगाने को लेकर बात हो रही है, कानून बनाने को लेकर बात हो रही है। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, 1100 टेक एक्सपर्ट ने चिट्ठी लिखी है ट्रम्प को कि एआई खतरा बनता जा रहा है, बेकाबू एआई को काबू में करने की जरूरत है। पहले तो इस पर आपकी राय और इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह हो सकती है?
4: देखिए, एआई के थ्रू बहुत सारे सेक्टर्स में, जिस तरीके से हम डिस्कशन सुन रहे थे, हर एक सेक्टर में अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग, और बहुत ही एडवांस एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और ये थ्रेट्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये इसमें कंट्रोल लाने की जरूरत तो है कि एक मॉडरेशन हो, एक लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, जैसे कि एक स्विच किल की जहां पे बात हो रही है, इस तरीके से एक मॉडरेशन हो जो कंट्रोल कर पाए जो भी एआई के द्वारा जो भी क्राइम हो रहे हैं उस चीज को।
0: ठीक है, एक बार दुग्गल जी आपको इंक्लूड करूंगी। अब यहां से अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, जब हम सेक्टर वाइज बात करते हैं, आपने एक और बात कही कि एआई जो है वो खुद का इंजीनियर भी बन रहा है, ये एक सबसे बड़ा खतरा है शुरुआत में जब आपने चर्चा की थी। इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स हैं, अब बात साथ ही साथ उस पर भी करते हैं कि क्या इस पर लगाम लगाई जा सकती है। देखिए, मैं सीधे तौर पर ये जानना चाहूंगी दुग्गल जी आपसे, आपका इतना एक्सपीरियंस है, जब भी कोई तकनीक आती है, कंप्यूटर जब भी आया था, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो जाहिर सी बात है अगर उसका फायदा हुआ तो उसका नुकसान भी हुआ, वो हमने देखा पूरी दुनिया ने कहा अलग अलग सेक्टर्स में हुआ। एआई उससे भी ज्यादा स्मार्ट, उससे भी ज्यादा एडवांस है, जाहिर सी बात है ये हम सब वाकिफ थे इस बात से कि एआई का भी मिसयूज होगा जो कि हो रहा है, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस पर लगाम लगानी चाहिए। सेक्टर्स कौन से हैं, कैसे इस पर आगे काम किया जा सकता है?
1: कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां पर एआई अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। हर सेक्टर ह्यूमन एक्टिविटी और एंडेवर का अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरीके से प्रभावित होने के रिश्ते में है, और कुछ ही समय दे दीजिए लोग ऑलरेडी आश्रित हो जाएंगे। और साथ ही साथ तो मैं तो भारतवर्ष में एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछले 9 महीनों में जो मैं काम करता हूँ एआई को लेकर, तो मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में अभी एक यू टर्न शुरू हो गया है। अभी 78 साल हुए थे भारत को स्वतंत्र हुए, और अब पिछले 9 महीनों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भारतवासी और कंपनियां कह रही हैं मुझे आपका गुलाम बनने में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरा बस काम कर लीजिए। तो कॉग्निटिव कलोनियलिज्म आ गया है, हमारी जो कॉग्निटिव सोचने की क्षमताएं हैं वो क्षीण होती जा रही हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई सब कुछ एआई से ले लो, अब हमें सोचने की क्या जरूरत है। तो जब इस संदर्भ में इतनी जबरदस्त रिलायंस, ब्लाइंड फोल्डेड रिलायंस हो गई है, ये जानते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बोलता है, गप्पे मारता है, हेलुसिनेट करता है, आपको गुमराह करता है और आपकी प्रोफाइल बनाता है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने एआई को ना केवल एक लाइफ कोच के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसको अपना लाइफ कंपेनियन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है
0: डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है।
1: जी हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों में

0: कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरत हो गई है कि नए कानून की आवश्यकता है। मैं काफी देर से भारतीय सरकार को हिदायत दे रहा हूं कि आप भारतवर्ष में एक डेडिकेटेड समर्पित कानून लेकर आइए, एआई और एआई अकाउंटेबिलिटी को लेकर। अच्छी बात यह है कि अब हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब वो एक डेडिकेटेड लॉ पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि हम बहुत देर में जग रहे हैं,
1: लेकिन
0: तो
1: इसके साथ
0: जब तक
1: साथ
0: हम
1: दुग्गल जी
0: करेंगे।
1: प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि कानून बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आते आते वहां पर बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं। आप तो जानकार है इस चीज के, भारत में साइबर को लेकर कितने सारे कानून हैं लेकिन लूपहोल्स उसमें बहुत ज्यादा है।
0: लूपहोल्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि चलिए चिड़िया चुग जाए खेत फिर हम जगेंगे, ये बात तो हो नहीं सकती। और आज की तारीख में भी भारतवर्ष में जितना भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, अधिकांश फ्रॉड जो है एआई फ्रॉड की ओर जा चुका है। यहाँ तक कि डिजिटल अरेस्ट भी अधिकांश तौर पर अब एआई के माध्यम से किया जा रहा है। डार्कनेट पर जाइए तो एक नया ट्रेंड है, साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई तो एक ऐसा रंग है जिसके रंग में लगभग लगभग हर रंग जो है रंगे जा रहे हैं, तो इसलिए उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। लेकिन जब तक नियंत्रित ना हो, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि साहब एटलीस्ट हमें थोड़ा समय दे दें। एक्चुअली हमको ना किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है। अलग अलग राष्ट्रों ने कानून तो बनाए हैं एआई को लेकर, लेकिन जो बुनियादी हाथी कमरे में है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। और हाथी ये है कि क्या आप एआई को लीगैलिटी प्रदान करना चाहते हैं या नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत जल्दी आपको एआई को कंडीशनल पर्सनहुड देना पड़ेगा। अगर हम भारतवर्ष में नदियों को, भगवान को, मंदिरों को, हिमालय को हम लीगल एंटिटी दे सकते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीगल एंटिटी क्यों नहीं दर्जा प्रदान कर सकते। वो इसलिए भी जरूरी होगा ताकि एआई को हम ज्यादा जिम्मेवार बनाएंगे, ज्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे और ज्यादा लायबल भी बनाएंगे। लेकिन आज की तारीख में तो कुछ कानून ही नहीं है। आज की तारीख में एआई आपके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या नहीं लीगल किसी को नहीं पता। आपका एआई एजेंट लीगल है नहीं लीगल है ये भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो लीगल अनसर्टेनिटी वाला दौर चल रहा है, उसमें मुझे लगता है भारत को अपनी नींद से जगना होगा, नया कानून लाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 राष्ट्र नए कानून ला चुके हैं
1: हाँ,
0: और इंप्लीमेंट कर चुके हैं।
1: एंड इन द मीनवाइल जो कहा जा रहा है कि फिलहाल इस पर रोक भी लगाई जाए, और अगर इसके सालाना मार्केट की बात करें तो 30% की ग्रोथ के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। मैं जी आपके पास आना चाहूंगी, अब जब ये 30% ग्रोथ के साथ लगातार एआई बढ़ रहा है, तमाम देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे तरीके से भी हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, तो इस पर बेकाबू ग्रोथ पर काबू पाया कैसे जाएगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा?
2: देखिए, बेकाबू जो भी चीज हमने पास्ट में हमेशा से देखा है, जो चीज ही बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ऊपर जाती है उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा अटैच होता है। और ये इस केस में, एआई के केस में, रिस्क फैक्टर इज सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, राइट। कि अगर आप कोई चीज बहुत तेज, ये उसी तरह ठीक, मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को, ये बहुत तेज भागती हुई गाड़ी है, उस भागती हुई गाड़ी पे हमें ब्रेक का मैकेनिज्म अप्लाई करना है कि किसी तरीके से उसमें ब्रेक का अप्लाई करें, क्योंकि हम इस बात को नहीं नकार सकते कि आने वाला समय एआई का ही होगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन अंतिम निर्णय इंसान का ही होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबल एआई कैसे हो, कि कैसे हम उसका अकाउंटेबल बनाए। बिकॉज आप ये देखो, आज एआई आपके बिहाफ पे सारा काम कर रहा है। अगर हम एआई का दौर छोड़ दें तो लेट सपोज हम पुराने जमाने में चले जाते हैं, हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो ये हमारा काम कर रहा है हमारे बिहाफ पे, तो उसके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अटैच होती है कि वो इस तरीके से काम करेगा। सेम उसी तरीके से आज एआई है हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अटैच नहीं है। वो कुछ भी अपने मन से कोई भी डिसीजन लेके कोई भी काम कर सकता है आपके बिहाफ पे, उसकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। तो काम हो जाने के बाद में, अच्छा होना, खराब होने के बाद में, अच्छा हो गया तो वेरी गुड, खराब हो गया तो आई एम नॉट अकाउंटेबल, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज है कि बिकॉज कैपेबिलिटीज इतनी तेजी से आगे भाग रही हैं और सेफ्टी पीछे छूटती चली जा रही है, तो कहीं इतना बड़ा गैप ना हो जाए कि हमारे हाथ से चीजें निकल जाए। इसी वजह से जिन्होंने बनाया है इसको, वही इसको आज लेके खड़े हुए हैं कि हमने एक गाड़ी बनाई थी, उसे ब्रेक्स लगाने की अब जरूरत महसूस हो रही है हमें।
1: तो क्या सीधे तौर पर फिर ये समझे मायंक जी कि आने वाले समय में एआई ही इंसानों पर हावी हो जाएगा या हो रहा है, ये खतरा सबसे बड़ा है?
2: उसी लिए दुग्गल साहब इस कानून को बनाने की बात कर रहे हैं कि ये हमें ना देख, ये दिन हमें ना देखना पड़े, एआई हमारे ऊपर काबू हावी हो जाए, ऐसा हमने पहले भी काफी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन में देखा है, कोई चीजें आई हैं।

0: तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि हो सकता है हमारे ऊपर हावी हो जाए ये चीजें, बट अब मुझे ये भरोसा है कि हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एआई को हम चाहना स्टार्ट करेंगे,
1: बिल्कुल, चीजें हाथ से
0: बिकॉज
1: ना निकल जाए
0: बिकॉज
1: उससे पहले ही
0: इनो
1: कंट्रोल करने,
0: या
1: हाँ उससे पहले कंट्रोल
0: बिकॉज
1: करने की
0: इनोवे
1: जरूरत है।
0: या बिकॉज इनोवेशन विदाउट रेगुलेशन भविष्य का सबसे बड़ा जोखिम है। अगर
1: और
0: इनोवेशन किसी रेगुलेशन
1: इसी में अगर हम एआई का ही जिक्र कर ले, तो सबसे बड़ी बात जो जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, मुझे आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, सैन्य सुरक्षा जिसके लिए खतरा है। देखिए एआई से जुड़े तमाम हथियार बन रहे हैं और उसका इस्तेमाल कोई भी कहीं भी किसी भी मुल्क के खिलाफ कर सकता है। आपका डेटा आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वो कितना सुरक्षित है, क्या वो खत्म हो रहा है, क्या वो लीक हो रहा है, वहां पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और जो एआई से संचालित हथियार हैं जो तमाम देशों के पास हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है अमित जी। तो क्या सीधे तौर पर ये माना जाए कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा इंसानों के लिए एआई?
0: मैम, देखिए एआई जो है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो ये जो आपने बताया सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। अगर हमने इसके ऊपर अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे जाके हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा खतरा हमारा बढ़ जाए, क्योंकि एआई के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एआई एक कमांड बेस है, अपने आप को रेगुलर अपडेट कर रहा है, एआई भी खुद अपने मॉडल्स को अपडेट कर रहा है, ठीक है। बहुत फास्ट इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। मिसयूज इसलिए माना जा रहा है इसको क्योंकि एआई जो है हम उसके ऊपर अगर अभी से लगाम नहीं देंगे, जैसे कि अभी बताया कि अगर हमने ब्रेक नहीं लगाई तो वो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि ह्यूमन के कंट्रोल से खुद से ही बाहर हो जाएगा। उसको बनाने वाले ही उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको रोक ही नहीं पाएंगे। और जब जाके जैसे कि एक मूवी आई थी ट्रिटी, उसमें उसने उसके अंदर इमोशंस डाल दिए, सब कुछ डाल दिए रोबोट के अंदर, और वो बाद में उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो सेम चीज वो मतलब रियल लाइफ में भी हो सकती है अगर हमने इसके ऊपर आज कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि एआई इतना पावरफुल अपने अंदर अपने आप को बना लेगा, इतना स्ट्रांग कर लेगा अपने अंदर से कि हम उसको चाह के भी नहीं रोक पाएंगे फिर।
1: ठीक है शुभम, थोड़ा सा समझाइए, एंड ऑफ द डे एआई के अंदर जो डेटा डल रहा है वो भी तो इंसान ही डाल रहे हैं ना, अभी तक तो इंसानों के ही कंट्रोल में है। जिस खतरे की बात यहां पर कही जा रही है, जिसको लेकर तमाम बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जिन्होंने एआई को बनाया है वो ट्रंप सरकार को चिट्ठी लिख रही हैं, क्या ये माना जाए कि वो पूरी तरह से लाचार हो चुकी, या फिर आने वाले समय में इतना डेटा डाल दिया जाएगा कि उसके बाद एआई को इंसान की जरूरत नहीं होगी और वो खुद को ऑटोमेटिक कर लेगा?
2: देखिए, डे बाय डे यूज में हम सब चैट जीपीटी और बहुत सारे कॉमन चैट जीपीटी का यूज करते हैं। एक मॉडल जनरेशन हो रहे हैं, हम एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन देके और उससे आउटपुट लेके। बट जो फ्रॉडस्टर्स हैं, कुछ डार्क मार्केट है, डार्क नेट है उस प्लेटफॉर्म पर, जैसे फ्रॉड जीपीटी, वॉर्म जीपीटी, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसका उपयोग सिर्फ क्राइम एक्टिविटीज के लिए होती है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। तो जो ऐसे प्लेटफॉर्म है इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, और इस पे एक मॉडरेशन होना चाहिए कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज के लिए एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो उस पे रोक लानी चाहिए, और उस पे लॉ एक लाइक एक गवर्नेंस बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज को मॉनिटर करे।
1: पवन जी, क्या आने वाले समय में, क्योंकि कमांड तो अभी इंसान ही दे रहा है ना एआई को, एआई के अंदर जितना भी डेटा डाल रहा है वो इंसान ही डाल रहा है, तो क्या आने वाले समय में एआई को इंसानों की भी जरूरत नहीं होगी?
3: आने वाले समय में एआई इंसानों को रिडंडेंट बना देगा। आज एआई सिर्फ एक कलेक्शन मोड में, जितनी जानकारी वो ले सके उतना ले ले, और ऑलरेडी उसने अपने जो रही असली रंग हैं दिखाने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे एआई अब रोग होने लग गए हैं, तो बहुत जल्दी अब इंसान जब गुलाम बन जाएगा और एआई जब स्वामी बन जाएगा तो बहुत ही विचित्र प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। वो ना हो इस संदर्भ में ही ये कॉल की गई है कि साहब एटलीस्ट रोक लगाइए, एटलीस्ट लॉ को आप डेटा नहीं दीजिए, अप्रोप्रिएट जो आपके अकाउंटेबिलिटी मेजर्स हैं, लॉ को डेवलपमेंट वाले काम है उनको करने दीजिए। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तब तक रहेगी जब तक वो इंसानों के कंट्रोल में है। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी इंसानों के कंट्रोल के बाहर चली गई तो इंसान तो ऑलरेडी ये गेम लूज कर ही जाएंगे, वो बैक सीट पर बैठ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ जाएगा एआई, और ये एआई आपको ध्वंसकारी रूप भी दिखा सकता है, पूरे मानव मात्र का नाश करने की क्षमता भी रखता है। तो इसलिए उसकी जो डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज हैं उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साहब लॉ तो लेकर आइए, अब अभी तो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, सबको लगता है बस मस्ती का आलम है, कोई कानून नहीं है ही नहीं है, जो करना चाहो कर लो। भाई अल्टीमेटली आज जब एआई आपको से बातें कर रहा है, आप एआई से बातें कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप अभी भी एआई को जनरेटिव एआई सोच रहे हैं, चैट जीपीटी के जमाने का सोच रहे हैं, आज एआई वो आ गया है जहां पर उसे होश आना शुरू हो गया है, कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो गई है। तो उसका मतलब ये है उसे कॉन्टेक्स्ट पता है, उसे ये पता है कि किस परिस्थिति में क्या बात करनी है और किस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको सपोर्ट करना है, आपको टारगेट करना है। तो जब उसे एआई को कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो गई है, जब रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूविंग सिस्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जब हम ऑलरेडी एजीआई की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि साहब कुछ हो या ना हो, अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी लाइफ को सही बैलेंस रखना है तो इस टेक्नोलॉजी को आज रेगुलेट करने का। आज ये वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चलो साइबर आया कोई बात नहीं, इंटरनेट आया बाद में निपट लेंगे, आज तो ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, आप नहीं निपटोगे टाइम से तो ये निपट लेगी आपको। तो जितनी जल्दी आप लीगल फ्रेमवर्क्स लेकर आएंगे उतना अच्छा है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एआई ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, आपको अगर इसे इफेक्टिवली टारगेट करना है तो ग्लोबल मैकेनिज्म्स होने पड़ेंगे ताकि एआई को रिस्पॉन्सिबल बना सके। आज दो चार कंपनियां ही पूरे मानव मात्र की फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती, हर राष्ट्र की अपनी प्रभुता अखंडता सुरक्षा है, जैसे भारत की, और भारत की सोवरेनिटी के अंदर शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोवरेनिटी। तो इसलिए हर राष्ट्र को नए कानून बनाने होंगे, कंपनियों को विवश करना होगा, ये हमें नहीं सुनना कि साहब आपको नहीं पता कि आपका प्रोग्राम कैसे काम करता है, ब्लैक बॉक्स होगा आपके लिए होगा हमारे लिए नहीं है। अगर आपका एआई कुछ गड़बड़ मचाता है, इंसानों को उसका नुकसान पहुंचाता है, तो जिम्मेवारी आपकी होगी और आपको भुगतान करना पड़ेगा परिस्थितियों का। ये बुनियादी तौर पर एक ट्रेंड इमर्ज कर रहा है।
1: दुगल जी, दो चीजें आप सही कह रहे हैं कि कानून इस पर बनना चाहिए, और जो चिट्ठी लिखी गई उसमें बकायदा इस बात का जिक्र है कि एआई के लिए ग्लोबली कानूनी सिस्टम की जरूरत है। जब हम इस ग्लोबली कानूनी सिस्टम की बात करते हैं ऐसे समय में जब एआई को लेकर ही कई मुल्कों में टग ऑफ वॉर चल रही है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन बैठेगी?
3: देखिए, कोऑर्डिनेशन तो आपको बिठानी पड़ेगी, वरना तो आपका वजूद मिट जाने वाला है। और ये बात कोई बहुत दशकों की बात नहीं है, कुछ सालों की बात है। तो अब सवाल यह है कि या तो आप छोटे संकीर्ण मानसिकता को देखते हुए छोटे छोटे इश्यूज पर टारगेट करें, या बिगर सवाल देख लेंगे साहब एआई तो है वो तो पूरे मानव मात्र को ही मिटाने की दिशा में जाने वाला है, तो हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। देखिए, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के बगैर कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो कि आपने अपना राष्ट्र में कानून बना लिया है, हम एआई पर विजय प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आज केवल दो राष्ट्र हैं पूरी दुनिया भर में जो शॉट्स कॉल कर रहे हैं, एक अमेरिका और एक चीन। और चीन ने हाल ही में जो किमी 3.0 लॉन्च कर दिया है, उसने जो फासला चीन और अमेरिका में था उसको बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। तो अब ये दो कंट्रीज हैं जो डिसाइड कर रही हैं। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉर्मेट को बनाने में, स्टैंडर्ड्स को इवॉल्व करने में अब चाइना लग चुका है। तो इस संदर्भ में जो ग्लोबल साउथ है उसको की भी जिम्मेवारी बनती है कि साहब आप अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। भारत में अगर हम थॉट लीडरशिप लेकर आए इस दिशा में तो अच्छी बात होगी। वैसे भी ग्लोबल साउथ लीगल आर्किटेक्चर और एआई लॉ एंड गवर्नेंस ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, एंडोर्स हो चुका है ग्लोबल साउथ लीगल डायलॉग में। मुझे लगता है इस तरह के बुनियादी सिद्धांतों को, बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हुए अगर राष्ट्र आगे बढ़ेंगे तो अपनी प्रभुता अखंडता सुरक्षा को सशक्त रूप से आगे बढ़ा।
1: बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी को लेकर जैसे यूएस में टेक एक्सपर्ट ने चिंता जताई है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, खासतौर पर अगर हम भारत की भी बात करें और ग्लोबली, इन सभी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: एआई से क्यों डरे, क्यों लिखी ट्रंप को चिट्ठी और क्या वक्त आ गया है कि एआई पर कानून बने, लगाम लगाई जाए और कितना जरूरी है आज के समय में इस पर लगाम लगाना और वो लगेगी कैसे, इसी को लेकर चर्चा कर रहे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मैं जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब लगाम लगाने की बात होती है, दुगल साहब बता रहे हैं कि ऐसे लॉज बनाने की भी जरूरत है और ग्लोबली इसको लेकर चर्चा जरूर होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए, कैसे इस पर लगाम लगेगी?
1: देखिए, लगाम लगाने के लिए सबसे पहले ये हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे दुगल साहब ने भी बताया कि जो फ्रेमवर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो लॉज की वो प्रपोज कर रहे हैं, वो इन्फोर्स अगर हो जाते हैं तो हमने अपने एंड से शुरुआत कर दी कि आपको जी आप हमारे देश में एआई चलाना है, हमारे देश का डेटा यूज करना है, हमारे देश के नागरिकों के बिहाफ पे कोई काम करना है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। देन जिस तरीके से हम अलग अलग समिट का नेतृत्व कर रहे हैं, एआई का भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें हम इस बात को नहीं पीछे छोड़ सकते, इस बात को नहीं नजरअंदाज कर सकते कि एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चाइना है। ये दोनों ही एआई की रेस में बहुत तेज आगे भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हालांकि हम ज्यादातर यूजेज अमेरिका के टूल्स का करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं जब डेटा देखता हूँ, कंपैरिजन रिजल्ट्स देखता हूँ, परफॉर्मेंस देखता हूँ उनके मॉडल्स की, उनकी कैपेबिलिटीज की, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कम से कम इस सेक्टर में चाइना पीछे छोड़ देगा। तो कल को ये ही टूल हमारी कंट्री के खिलाफ किसी एक्ट ऑफ वॉर में ना यूज हो, इससे इसको ज्यादा नुकसान ना हो जाए। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं एक बीमारी का। फैटी लीवर एक बीमारी है जो कि जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, एंड स्टेज पे नहीं पहुंच जाती, तब तक परेशान नहीं करती आपको। आपके अंदर परेशानी है, दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, बस हम नजरअंदाज करते रहते हैं, जो कि अभी हम एआई के साथ कर रहे हैं। कल को जब ऐसी स्टेट आ जाती है जब आपको कुछ ना कुछ सर्जरी करानी पड़ जाती है मजबूरी मजबूरी में, तो वो स्टेज यहां भी ना आ जाए। एक्सपर्ट्स बार बार इस चीज पे इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप लॉ लाइए। आप जिस तरह से, मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ काम करता हूँ, जैसे एक मेट्रो यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रन करते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस सेंटर का। तो ये सब करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज जो लोग तैयार हो रहे हैं नो डाउट वो डे टू डे एक्टिविटी में अपना काम करवाने के लिए एआई का यूज करेंगे ही करेंगे, तो उनका अवेयर होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने साइबर अवेयरनेस चलाई कि आपका डेटा ना लॉस हो जाए, आपको एज अ स्पेस कोट ना यूज कर लिया जाए इंटरनेट पे, आपके बिहाफ पे कुछ और प्रोजेक्ट ना किया जाए, इसी तरीके से इंप्रूव्ड और कंट्रोल्ड एआई का एक तरह से आप वो चलाने की जरूरत है, कि अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सख्त कानून लाने की, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं कि सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी के, जी आप ही जिम्मेदार हो, आपके टूल्स के द्वारा ये हुआ है तो आप ही जिम्मेदार हो। कंट्रोल कैसे करोगे, आपने ही बनाया है, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है।
0: बिल्कुल अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक्सपर्ट्स की चिंता है एआई को लेकर और सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप?
2: वर्ल्ड में किसी ने भी एआई को बैन नहीं किया, सारी कंट्रीज एआई को चला रही हैं, लेकिन चाइना ने और कई कंट्रीज ने एआई के ऊपर कुछ कानून बनाए, कुछ लगाम दी। जैसे कि एआई जनरेटेड फोटोज, वीडियोज या कोई भी कंटेंट होता है उनके ऊपर लेबलिंग करना जरूरी है ताकि जनता को पता चल सके ये वीडियो या फोटो एआई के द्वारा बनाई गई है। चाइना ने कुछ एआई कंपेनियन भी बनाए, जैसे इमोशन बेस्ड चैटबॉट्स भी बनाए, ठीक है, उनके ऊपर भी मेंशन हुआ। जब कहीं एआई की सर्विसेज भी जो लॉन्च कर करेगी तो उनसे पहले उनकी टेस्टिंग हुई, रजिस्ट्रेशन हुई, रिव्यूज हुए, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कानून बनाए गए जो कि एआई का खतरा थोड़ा सा कम करते जा रही है, क्योंकि एआई अपने आप में एक बड़ी बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में कोई भी अगर क्राइम करके एक एआई से जनरेटेड वीडियो अगर पेश कर दे तो उसको पहचानने में, डिफर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब जो भी लोग हैं उनको एआई और नॉर्मल फोटो में कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पहचानने में, क्योंकि एआई इतना स्मार्ट हो गया है। कल क्या बात मानोगे, मैंने एक जगह पे एक गाड़ी को खरीद करके एआई को जैसे जैसे कमांड दी उसने बिल्कुल रियल बना दी, कि मैं रियल फोटो को साथ में कंपेयर करके पहचान भी नहीं पा रहा था कि कौन सी रियल है। तो एआई इतना फास्ट काम कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग अपना लेवल तो दे रहे हैं लेकिन वो लेवल हट सकता है। कोई ऐसा लेबलिंग होनी चाहिए जिससे हमें पता चले ये एआई जनरेटेड वीडियो है या एआई जनरेटेड ये है, ताकि ताकि मतलब लोग उसको देखें तो पहचान जाए।
0: पर ऐसा पॉसिबल है क्या, इतनी पारदर्शिता लाई जा सकती है?
2: क्योंकि मैम एआई क्या है कि एआई तो अपने आप को देता जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम चल पाएगा। क्योंकि काफी सारी कंट्री है, जैसे कि इटली की बात करते हैं, उसने 2003 में 2023 में सॉरी चैट जीपीटी को टेम्परेरी बंद कर दिया था, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। 2023 में उसने टेम्परेरी बंद किया, फिर जब उसने रेगुलेशंस देखे और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई तो उसने उसको स्टार्टअप किया। तो इस टाइप से अगर कंट्रीज चाहती हैं तो अपने अपने हक के लिए एक कानून बना सकती हैं, जो कि एआई को हम लोग सेफ एंड सिक्योर यूज कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। एक बार शुभम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने एआई को बनाया, जिन्होंने कहा कि फिलहाल इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, चाहे इसको लेकर कानून बनाया जाए या फिर सॉल्यूशन कोई और सरकार निकाले, लेकिन सर जब बात सॉल्यूशन की आती है तो ये वही कंपनी है जिन्होंने एआई बनाया, ये वही कंपनी है जो आपस में कंपीट कर रही है एआई को लेकर कि कौन सा एआई अच्छा है कौन सा एआई खराब है, तो ऐसे में एक समान कानून कैसे बनेगा?
3: देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज हर तरीके से होता है, अच्छी चीजों में भी हो रहा है, बुरी चीजों में भी हो रहा है। तो एक जैसे कि गवर्नमेंट, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव कर रही है जहां पर एआई का सही उपयोग हो रहा है, बॉट के थ्रू, नेट ग्रिड सिस्टम के थ्रू, और ऐसे बहुत सारे टूल्स डेवलप किए गए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन पर्पस और बहुत सारे चीजों में बेनिफिट हो रहा है। बट जहां हम बात करें, जो कंपनियां ऐसे टूल्स डेवलप करती हैं, वहां पर मॉडरेशन और डेटा मेंटेनिंग, जैसे कि जो लॉग्स क्रिएट होते हैं उसको मेंटेन रखना, और इन्वेस्टिगेशन पर्पस में जब कोई लॉ एनफोर्समेंट उनसे कुछ डेटा की प्रोवाइड, डेटा रिक्वायरमेंट हो, वो इंफॉर्मेशन मांगे, तो वो उन तक पहुंचे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि जो एलईए एक्सेस है हमारा लॉ एनफोर्समेंट का, वो डेटा प्रोवाइड नहीं करते या उनके पास वो मॉडरेशन लेवल नहीं है, इसकी वजह से ये रोक है। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके एआई मॉडल्स हैं, एआई टूल्स हैं, उनको एक रेगुलेशन उनके लिए होना चाहिए, उसके बाद ही इसे हम कहीं कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं इस पर।
0: दुबल जी, एआई की ग्रोथ को कंट्रोल करने की बात तो हो रही है, लेकिन ये कंपनियां खुद भी तो एक दूसरे से आगे निकलना चाह रही हैं। सर ऑडियो म्यूट है आपका।
4: प्रॉब्लम तो यह है कि कोई कंपनी रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे मालूम है कि वो रुक जाएगी तो बाकी उसके जो कंपिटिटर्स हैं उससे आगे निकल जाएंगे,
0: वही
4: उसका
0: वही
4: शायद वो
0: सवाल।
4: रेस में चल
0: और
4: रही
0: यहाँ
4: है।
0: पर सर कंपनी के साथ साथ आप देश भी ले लीजिए। जब आप जिक्र कर रहे थे कि ग्लोबली इसको लेकर चर्चा करने की जरूरत है, और उस लेटर में भी ये बात लिखी गई है कि ग्लोबली कानून बने, तो कौन आगे आएगा, कौन इस बात को मानेगा?
4: देखिए, चिकन एंड एग सिचुएशन है, कहीं ना कहीं तो इस जो ट्रैप है उसको तोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो तोड़ने के जो रास्ते हैं वो सरकारों के पास है। अगर सरकार कह सके कि साहब आप फिलहाल रोक लीजिए, अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है तभी ये लेटर केवल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंचा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका में डेवलपमेंट हो रही है एआई को लेकर। तो अगर वो इस पर कहीं ना कहीं विलंब लगाते हैं तो हो सकता है कि लीगल जो प्रोसेसेस हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाएं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि कंपनियों के पैसे लगे हुए हैं। कंपनियां तो रोज रोज नए पैसे कमाना चाह रही हैं। आज अगर आप देखिए, भारतवर्ष में भी वो आपको 399 रुपए में वर्ल्ड क्लास पैकेट दे रही हैं, पैकेज दे रही हैं एक पूरे महीने के लिए। 399 रुपए में दो पिज्जा भी नहीं आते हैं, तो वो इसलिए महीने तक वो चाहती है कि आपका जो डेटा है वो एकत्रित कर सकें और फिर उसका इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को ज्यादा ट्रेन कर सकें। तो अल्टीमेटली आपको वापस जाना पड़ेगा एआई लॉ रेगुलेशन, और मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी जो है प्राइमरी चीज होगी। तो बोलिए, भारतवर्ष अगर एक एआई अकाउंटेबिलिटी कानून लेकर आ जाए, जो कहे साहब इन सिद्धांतों के ऊपर हम डिटरमिन करेंगे कि साहब आपका एआई अकाउंटेबल कैसे होने वाला है, क्योंकि नुकसान तो होने लग गया है। मेरे पास केस आया है जहाँ पर एक 17 साल के बच्चे ने सेंट्रल इंडिया में खुदकुशी करने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि वो लगातार एआई से एडवाइस मांग रहा था, एडवाइस कामयाब नहीं हो रही थी बुलिंग को लेने के लिए। फिर जब उसने फुल प्रूफ एडवाइस एआई से मांगी तो एआई ने कहा, भैया बेस्ट तरीका है खुदकुशी कर लो और अपनी दोनों नसें अच्छी तरीके से काट लो ताकि ऊपर चले जाओगे। उसने अपने नसें काटी लेकिन वो ऊपर नहीं गया, वो बच गया, लेकिन अब हाथ पूरी तरीके से पैरालिसिस हो चुके हैं। तो इन केसेस में जिम्मेवारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अब ये कंपनियां तो नहीं कह सकती साहब मैंने आपको ब्लैक बॉक्स दिया था, आपको बोला था साहब अपना पर्सनल डेटा इसमें ना डालिए। आज अधिकांश भारतवासी एक नई क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं, मैं उसे बोलता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति। क्यों? भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की एआई के ऊपर, एआई को अपना मित्र, अपना जीवन संगनी, अपना स्वप्न सुंदरी मांग रहे हैं, मान रहे हैं बिना सोचे समझे कि एआई तो एक डेटा राक्षस है, वो कॉन्स्टेंटली आपका डेटा एकत्रित कर रहा है। जिस दिन उसको आपका सारा डेटा मिल गया, उसने आपके डेटा का इस्तेमाल आपके बरखिलाफ कर देने वाला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है दायित्व सरकारों का हो जाता है कि वो विशिष्ट प्रकार के कानूनी प्रावधान लाए। हाँ, कानून लाने में समय ही लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। भारत की सरकार के पास एक और विकल्प है, सेक्शन 87 आईटी एक्ट में, वो आज की तारीख में नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है ताकि वो डिटरमिन कर सके कि जब आप एआई के सिस्टम्स को लॉन्च करते हैं या एआई सर्विसेज प्रदान करते हैं तो किस प्रकार की सावधानी, ड्यू डिलिजेंस, अकाउंटेबिलिटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो शुरुआती तो दौर पर सबकी नजरें सरकार के ऊपर होंगी, लेकिन सरकार के साथ साथ अब मुझे लगता है लोगों में भी जागरूकता लानी पड़ेगी। भाई एआई को आज 100% आंखें बंद करते हुए आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो अपनी कब्र खुद ही खो देंगे, क्योंकि एआई तो कह रहा है कि साहब को गलती हो गई, सॉरी अब मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। लेकिन अगर आपने उसकी गलत आंसर के ऊपर रिलाई करते हुए कुछ कदम उठा लिया, नुकसान आपको, आपकी छवि को, आपकी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी को होने वाला है और व्यक्तिगत तौर पर आपको फिजिकली नुकसान हो सकता है, आपके डेटा को नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट मयंक जी, बिल्कुल आखिरी कमेंट मयंक जी, चलिए जब तक कानून नहीं बनता है तब तक कितना भरोसा एआई पर किया जाए?
1: जैसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, बिकॉज अवेयरनेस है नहीं। बिकॉज मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है, अगर हम देखें बड़ी से बड़ी शक्तिशाली मशीन्स में भी इमरजेंसी स्टॉप बटन है, राइट? जब कंप्यूटर्स आए थे यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि क्या होगा क्या होगा, उसमें भी एक इमरजेंसी पावर बटन है, आप बंद कर सकते हो। आई डोंट सी दैट हियर, एआई में नहीं है। तो एक इतनी विशालकाय रूप से इतनी तेज आगे बढ़ रहा है तो इमरजेंसी कंट्रोल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो खुद से हमें अवेयर होना पड़ेगा कि एआई को कितना यूज करें। अगर मैं दुग्गल साहब की बात पे जाऊं, कितना डेटा एआई के पास है वो आपको बिल्कुल जानता है, आपका रेप्लिका बना सकता है। वर्चुअल रियलिटी जिस दिन एग्जिस्टेंस में आ गई कंप्लीटली, तो आपको कहीं भी होने की जरूरत नहीं है, आप बेड पे आराम से लेटे रहिए, सोते रहिए, आपका एक रेप्लिका वर्चुअल रियलिटी में कहीं भी होगा, आपके ही एक्सप्रेशन में बात करेगा, आपकी चीज की तरह सोचेगा, क्योंकि इतने साल से आप उसको अपना डेटा दे रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उससे बता रहे हो आप क्या सोचते हो, वो कुछ बताता है तो आप उससे कहते हो नहीं ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, तो आपके बारे में सब कुछ जान चुका है। तो आपकी आइडेंटिटी कहीं और रेप्लिकेट हो रही होगी और आपके बिहा पे वो कुछ भी कर रहा होगा, और तब वो अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट होगा, अनकंट्रोल्ड एआई होगा, हमारे कंट्रोल में शायद ना रहे।
0: शायद इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि इसको कंट्रोल किया जाए। गांव-गांव में भी चर्चा यही होने लगी कि एआई क्या है और कैसा दिखता है, इन तमाम बातों को लेकर वहां भी चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चिट्ठी लिखी गई है ट्रंप सरकार को, और साथ ही साथ सोचने वाली बात तमाम देशों के लिए भी है कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका सही इस्तेमाल किस तरीके से हो और अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पावन महीने में जहां हर सोमवार भोलेनाथ के जय घोष से गूंज उठता है पूरा माहौल, वहीं हर मंगलवार मां गौरी की आराधना से आस्था और भक्ति का रंग और गहरा हो जाता है। आज सावन का पहला मंगलवार है, यानी कि मंगला गौरी महाव्रत का दिन है। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की समृद्धि का ये सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है।

0: सावन का पहला सोमवार हर सुहागिन के लिए एक संदेश लेकर आया है। यदि सोमवार शिव की असीम कृपा का द्वार है तो मंगलवार माँ गौरी के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद है। शिव की करुणा और शक्ति की कृपा जब एक साथ मिलती है तभी जीवन पूर्ण मंगलमय और आनंदमय बनता है।
1: शिव के बिना या शक्ति के बिना शिव सौ के समान है। तो केवल शिव पूजा से लाभ नहीं मिलता, श्रावण में सोमवार को भगवान महादेव की और मंगलवार को मंगला गौरी की जो पूजा होती है वो जीवन में मंगल का अर्थ होता है जीवन में मंगल कामनाएं और कल्याण, मंगल कल्याण करने के लिए यह जो मंगला गौरी का सावन के महीने में जो पूजन है व्रत है, तो भगवान शिव का सोमवार को और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने से गौरी शंकर की जब कृपा होती है तो जीवन में समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और सर्वदा मंगल और कल्याण होता है।
0: जिस तरह सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना गया है उसी तरह इस पवित्र महीने का हर मंगलवार भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आज सावन का पहला मंगलवार है, आज मंगला गौरी व्रत की धूम है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे मंगलकारी व्रतों में से एक माना जाता है। आज सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य, परिवार की समृद्धि और देवी की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि आज के दिन श्रद्धा और विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर देवी की विशेष कृपा बरसती है और उनका सुहाग अटल बना रहता है।
2: श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का जो व्रत होता है माता गौरी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है ऐसा माना जाता है। विवाहित महिलाएं दाम्पत्य जीवन की शुभता, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं तथा कुमारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं।
0: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कठिन व्रत, उपवास और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को प्रसन्न किया। उसी तप, त्याग, धैर्य और समर्पण की याद में सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है।
1: मंगला गौरी की पूजा में लाल वस्त्र पहन करके मंगला गौरी के मंदिर में जाएं और सौभाग्यवती स्त्री अगर है तो उसे सौभाग्य के द्रव्य और पांच प्रकार के फल भगवती मंगला गौरी को अर्पण करने चाहिए। लाल चूड़ियां हैं, सिंदूर है, ये सब चीज़ें भगवती को, लाल फल है, लाल रंग की मिठाई है, लाल रंग का फूल है, क्योंकि यह जो भगवती गौरी हैं यह इनको रक्त वर्ण की वस्तुएं या पीले रंग की वस्तुएं, आप पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पहन करके सौभाग्यवती स्त्रियां अगर महादेव का और मंगला गौरी दोनों का पूजन करती हैं तो जीवन में उनके हमेशा सौभाग्य बना रहता है।
0: माँ मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप है। ये सौभाग्य, समृद्धि, प्रेम, धैर्य, मातृत्व और शक्ति की अधिशास्त्री मानी जाती है। मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है, इसी कारण उन्हें इस सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है।
1: माँ मंगला गौरी की एक कथा आती है स्कंद पुराण में और पुराणों में। एक सेठ और एक उसके पत्नी की भक्ति कथा है कि बहुत प्रकार से उस सेठ के लिए संतान नहीं थी और संतान के उसने नाना प्रकार के उपाय किए लेकिन संतान अल्पायु थी। तो उसकी पत्नी ने मंगलवार का व्रत करके अपने संतान को दीर्घजीवी बनाया। इसीलिए श्रावण के महीने में मंगला गौरी का यह जो व्रत है यह संतान के लिए बहुत ही लाभदायक और कामना परक होता है।
0: सावन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यही है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक और अगले ही दिन मंगलवार को माँ मंगला गौरी का पूजन, यह क्रम केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन का संतुलन सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: क्या सावन में अपने घर पर रहकर के ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जा सकती है? ज्योतिर्लिंगों की पूजा का क्या होगा विधान और ज्योतिर्लिंगों की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
0: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। 5 बज गए हैं, टाइम तो वैसे चाय का है, लेकिन मौसम चाय वाला है कि नहीं ये बताइए आप बाहर से आ रहे।
8: बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है, लेकिन मौसम बिल्कुल चाय का है।
0: कैसी है
8: ह्यूमिडिटी? तो है थोड़ी, लेकिन चाय तो कभी भी चलते हैं ना,
0: चाय पी सकते हैं। ऑफकोर्स एसी में हम लोग बैठे तो चाय का मजा लेंगे, लेकिन जमकर बारिश होनी चाहिए तब और मजा आएगा चाय और पकौड़े का। फिलहाल ये पार्टी वाला माहौल तो बना हुआ है, क्योंकि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस की घर वापसी हो गई है और वेलकम हुआ उनका जोरदार। कैसे आईजीओ एयरपोर्ट पर उनका वेलकम हुआ, विक्ट्री तस्वीरें आज हम आपको चाय पर चर्चा में आगे दिखाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए इसकी तस्वीरें तो होगी विक्ट्री की, क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है भाई ग्लासगो में। जो झंडा महिलाओं ने, हमारी बेटियों ने फहराया है, उसका जश्न तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ सावन के महीने में भोले की भक्ति अपार है, मंदिरों में सजा है बाबा का दरबार। ऐसे में जारी कावड़ यात्रा में अनोखे कावड़ और कावड़ियों से आपको हम रूबरू कराएंगे। वहीं पावन नदी किनारे बसे मंदिरों में पहुंच रहे भोले के भक्तों की 24 घंटे सुरक्षा को लेकर राहत बचाव एजेंसियां कैसे काम कर रही है, इसकी जानकारी और तस्वीरें भी आपको देंगे और होंगी कई इंटरेस्टिंग खबरें। लेकिन पहले हेडलाइंस
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कावड़ यात्रा में दिख रहे आस्था के अनूठे रंग, सहारनपुर में मां को कावड़ में बैठाकर यात्रा कर रहा परिवार, नोएडा में 5 बच्चों की टोली बनी आकर्षण का केंद्र। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं से गुलजार, मौसम की चुनौतियों पर भक्तों की आस्था भारी, अब तक करीब 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह की वतन वापसी, अमृतसर एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है सिल्वर मेडल। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूरोप में बढ़ती गर्मी के बीच बेजुबानों के लिए राहत के इंतजाम, वियना चिड़ियाघर में पानी के फुहार का आनंद ले रहा नन्हा हाथी, देखरेख में लगे कर्मचारी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
8: कार चाय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे जश्न की तस्वीरों और खबरों के साथ, क्योंकि आपको बता दें कि उन पदक वीरों की आज हम बात करने वाले हैं जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शान बढ़ाई है। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत 39 मेडल हमने जीते हैं। और वाकई जो तस्वीरें आई हैं खास करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो देखने लायक थी ढोल नगाड़ों के साथ। जैसे ही आपको बता दें कि हमारे पदकवीर पहुंचे हैं, वैसे ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पुरुषों ने तो अच्छा किया ही नवजोत, लेकिन महिलाओं ने जो किया है ना वो कमाल है।
0: बहुत ही अच्छी तस्वीरें, देखिए अगर हम अपनी बेटियों की बात करें तो काफी मेडल उन्होंने भी जीते हैं, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार टीम छोटी थी, टीम छोटी होने के बावजूद इतने सारे मेडल्स हमने जीते हैं, और अब अगला कॉमनवेल्थ तो भारत में ही होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं सबसे। और वो खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा दीजिए जो आज आईजीआई एयरपोर्ट पर नजर आई हैं।
8: बिल्कुल, तो चलिए आप भी देखिए वो तस्वीरें, जब जैसे ही हमारे पदकवीर जब पहुंचे हैं तो किस तरह से उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ उनके फैंस और साथ ही साथ उनके परिजनों की तरफ से।

0: ये अथक प्रयासों के बाद मिली सफलता का जश्न है, ये जी तोड़ मेहनत का मीठा फल है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद जब हमारे खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन चैंपियंस का शानदार और भव्य स्वागत हुआ। अपने चैंपियंस की जीत की खुशी ऐसी कि एयरपोर्ट पर ही ढोल नगाड़ों की गूंज ने माहौल बना दिया। भारत माता की जयकारों के बीच फूलमालाओं से लदे इन मेडल वीरों का स्वागत क्या खूब हुआ। फैंस के बीच तो अपने विनर एथलीट्स की एक झलक पाने की मानो होड़ सी लगी रही। इन पदक वीरों में शान से अपना गोल्ड मेडल पहने नजर आई मुक्केबाज प्रीति पवार, जिन्होंने 54 किलो वर्ग में भारत की झोली में गोल्ड डाला। बॉक्सिंग में ही एक और गोल्ड मेडल विनर प्रिया घंगास अपने जोरदार स्वागत को देखकर काफी खुश हुई और ग्लासगो कॉमनवेल्थ की तरह ही एशियन गेम्स में भी देश के लिए गोल्ड जीतने का संकल्प लिया। इस बार के ग्लासगो कॉमनवेल्थ में महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट रही जैस्मीन लंबोरिया भी, उनके लिए तो ये जीत किसी सपने के सच होने जैसी रही और अब एशियन गेम्स उनका अगला लक्ष्य है।
1: सब लोग आए हैं हमें यहाँ पे रिसीव करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रीति को बोलते गर्ल विद गोल्डन पंच, तो अगला लक्ष्य क्या है?
1: नेक्स्ट अभी एशियन गेम्स है और LA 2028।
3: मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, मैं कोचिज को, फैमिली को और गांव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
2: आपका अगला लक्ष्य क्या है?
3: अगला लक्ष्य है अभी नेक्स्ट मंथ में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, फिर से भारत का तिरंगा लहराना।
4: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है, इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स की, हमारे 10 मेडल आए जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, तो ये भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। जी अभी एशियन गेम्स हैं, हम उसके लिए तैयारी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे ही मेंटेन करें।
0: दरअसल ग्लासगो में भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग स्पर्धा ही रही। 14 मुक्केबाजों की टीम में से 10 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, इसमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर शामिल हैं। इन सफल भारतीय मुक्केबाजों में हिसार के अंकुश पंघाल भी रहे। अंकुश ने ग्लासगो में पुरुष 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को मात दी थी, उनका भी एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ।
5: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी स्पोर्ट बनाए रखे और आगे भी ऐसी मेडल आते रहेंगे देश के लिए। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ में देश के पैरा एथलीट्स ने भी खूब कमाल दिखाया, अपने देश का तिरंगा इन खिलाड़ियों ने भी खूब लहराया।
6: बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है,
7: बहुत खुशी हो रही है। पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीतकर और अपने देश का तिरंगा लहराकर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: ऐसे ही पदक वीरों की बेशुमार मेहनत और हौसले के बूते ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन रहा। 13 गोल्ड समेत कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। अब इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य है एशियन गेम्स, जिसकी तैयारी में अब भारत की ये चैंपियंस जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
8: बहुत खूबसूरत तस्वीरें और ये जिस वक्त तमाम चैंपियंस पहुंचे हैं भारत, उनका जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीरें आईजीओ एयरपोर्ट से भी आ रही हैं और अमृतसर एयरपोर्ट भी कुछ खिलाड़ी पहुंचे, वहां भी उनका स्वागत हुआ जोरदार। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं बारिश के स्वागत का, वो कब तक आएगी?
9: देखिए कई इलाकों में तो जोरदार बारिश हो रही है और
8: कई इलाके समझ नहीं पाती हूँ। हम दिल्ली NCR में रहते हैं, दिल्ली NCR में जैसा हम बहुत दिन पहले से कह रहे थे ना सेक्टर वाइज, मुझे लग रहा है आज भी सेक्टर वाइज हो रही है।
9: हाँ आज भी सेक्टर वाइज ही हो रही है। जब मैं अपने घर से निकली तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, ऑफिस के पास पहुंची तो हल्की बारिश हो रही थी, तो आज भी सेक्टर वाइज हो रही है। लेकिन हाँ फिलहाल जहां हम मौजूद हैं यहाँ बाहर का मौसम कूल है, तो थोड़ा बहुत तो फील ले ही सकते हैं
8: थोड़ा सा बस, हम क्योंकि हमें अंदर एसी में बैठे इसलिए हमें बाहर का फील बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। लेकिन ये वाकई ये सही बात है कि इस बार जमकर बादल नहीं बरसे, केवल एक ही दिन जमकर बरसे थे और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम मेहरबान हो दिल्ली NCR पर अच्छे और सही तरीके से। तो भले ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस साल उम्मीद के मुताबिक कम बारिश हुई है, लेकिन देश के ऐसे भी बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर जमकर बादल बरस रहे हैं। काफी भारी बारिश हो रही है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई है, जिस वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई, कई जगह पर बादल फटने की वजह से मुश्किल हालात भी बने हुए हैं।
9: लेकिन आपको बता दें, इन इलाकों में मौसम की बेरुखी पर मिशन जिंदगी भारी है और प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश के अमलापुरम, केरल के आर्णमुला, असम के शिवसागर में मिशन रेस्क्यू जारी है और बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और असम पर आई प्राकृतिक आपदा ने यहां के हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। बाढ़ ने घर, खेत और रोजगार सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन संकट की इस घड़ी में मदद के लिए कई हाथ भी आगे आए हैं।
8: बिल्कुल, भारतीय सेना लगातार वहां पर लोगों की मदद के लिए मौजूद है। हमारी एजेंसियां, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, दोनों टीमें वहां पर राहत और बचाव के अभियान में लगातार जुटी हुई हैं। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां, तमाम जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।
10: असम में बाढ़ ने भले ही बड़ी चुनौती खड़ी की हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में राहत और बचाव का ऐसा अभियान चल रहा है जिसने हजारों लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौटा दी है। सेना, NDRF, SDRF, राज्य सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। इस मुश्किल हालात में कई नामचीन सितारों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सलमान खान, कार्तिक आर्यन से लेकर रणदीप हुडा तक कई सेलेब्स ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। अभिनेता रणदीप हुडा खुद असम के बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद का हाथ बढ़ाते हुए नजर आए। रणदीप हुडा नाव के जरिए वो जलमग्न गांव तक पहुंचे और लोगों के घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाई। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। रणदीप हुडा की ये पहल सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो मुश्किल हालात से जूझ रहे लोगों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। राहत अभियान के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों में लंगर की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक समय पर खाना पहुंचाया जा सके।
11: काफी टाइम से देख रहा था टीवी पे क्या चल रहा है और मैं ग्लोबल सिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो टीम यहाँ पे पहले ही आ चुकी थी एक हफ्ता पहले और उन्होंने रेस्क्यू, और उस रेस्क्यू के बाद जो बेसिक मटेरियल है, जो रोजमर्रा की यूज का जो चीजें हैं, वो उन्होंने रिलीफ में बांटनी शुरू की है। तो मैं आज उन्हीं के साथ आया हूँ और काफी दर्द हो रहा है देख के कि कितना नुकसान हो गया है, कितना पानी आ गया है, कितने गांव डूब गए हैं। तो सभी को आगे आके हेल्प करनी चाहिए और मैं ग्लोबल सिक्स के माध्यम से यहां पे आके जो मुझसे बन पाए मैं करने के लिए आया हूं।
10: वैसे केवल रणदीप हुडा ही नहीं, असम में आए विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए कार्तिक आर्यन और सलमान खान समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी मदद के लिए आगे आए। सलमान खान ने अपनी चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमंस के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लेवल का राहत अभियान शुरू किया था। वहीं कार्तिक आर्यन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की राशि दी। इसके अलावा सिंगर गुरु रंधावा और एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी मदद की अपील की है और भूमि ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया और लोगों से कहा कि वो असम में चल रहे संकट को नजरअंदाज न करें। एक्टर ने भारत डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए डोनेशन का लिंक भी शेयर किया और लोगों से अपील की कि वो जितना हो सके उतना योगदान दे। उद्योगपति और समाज सेवी अनन्या बिरला भी इस नेक काम में पीछे नहीं रही। अनन्या ने असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अपनी टीम के साथ मिलकर स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार को राशन, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री बांटी। बड़ी बात यह है कि अनन्या बिरला खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची और खाने पीने समेत जरूरी राहत सामग्री बांटी। अनन्या ने कहा कि आपदा के समय केवल राहत सामग्री पहुंचाना ही नहीं बल्कि लोगों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। असम में बाढ़ का कहर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां करीब 1,28,000 लोग इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा लगातार प्रभावित इलाकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित 75,000 से ज्यादा परिवारों के लिए करीब 160 करोड़ रुपए की पहली किस्त अंतरिम राहत के तौर पर जारी कर दी है, ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता मिल सके। असम में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर शामिल है। राहत की बात की जाए तो कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में नेता अभिनेता के अलावा आम लोग और तमाम एनजीओ भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी अनवर खान भी इस दूर दराज बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री लेकर पहुंचे। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के बीच खाक सामग्री और रोजमर्रा के उपयोग का सामान बांटा।
12: जी, यहाँ पे देखिए, अच्छे वक्त पे तो हर आदमी रहता है, लेकिन बुरे वक्त पे आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा मैं आया हूँ यूपी से, वैसे बहुत सारे तमाम भाई लोग आ रहे हैं, और जो लोग नहीं भी आ पाए उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आइए, यहाँ का मंजर देखिए कि कितना खतरनाक मंजर है। किसी ने अपने फादर को खो दिया, किसी ने अपने मदर को खो दिया, किसी फादर मदर ने अपने बेटों को खो दिया। तो यहाँ पे आप आए, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना हो सके आप लोगों से उतना आप यहाँ पे हेल्प करें।
10: स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ मिलकर आम लोग जरूरतमंद तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश बताती है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती, न भाषा मायने रखती है, न धर्म और न ही राज्य की दूरी। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में असम को सिर्फ राहत सामग्री ही नहीं बल्कि देश भर से मिल रहा विश्वास और सहयोग भी नई ताकत दे रहा है, और यही एकजुटता इस आपदा से उबरने की सबसे बड़ी उम्मीद है। जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो है जम्मू कश्मीर के शोपियां, बांदीपोरा और पहलगाम से, जहां पर आसपास के तमाम इलाके भी इस वक्त इसी बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बादल फटने से कई गांव जलमग्न हो गए। लद्दाख के करगिल में भी कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन के साथ साथ यहां के लोग भी हिम्मत और हौसले के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। चारों तरफ से प्रयास जारी है।
9: तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली होती है। लद्दाख के करगिल की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरह से फ्लैश फ्लड की वजह से एकदम से बादल फटा, और उसके बाद किस तरह से पूरा का पूरा इलाका जो होता है ना, वो पूरा धुल जाता है, बह जाता है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन इलाकों में हालात सामान्य हो पाएंगे। शोपियां में बचाव दलों ने करीब 80 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।

0: और आइए अब खबर केरला से। आपको बता दें कि केरल में भी लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। पत्तनमथिट्टा जिले में खास करके अरानमुला इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है।
1: प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है, लिहाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। रेस्क्यू भी उनको किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे इलाके में 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालात का सामना करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। आला अधिकारियों की बैठक लगातार चल रही है। पूरे देश का मौसम तो आपने देख लिया, कहीं बारिश बाढ़ की वजह से स्थितियां तनावपूर्ण है, जहां पर लगातार हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं लोगों को राहत पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए। लेकिन महीना सावन का है, तो ऐसे में आस्था का जिक्र होना बहुत जरूरी है। तो सावन के महीने में वैसे तो देखिए तमाम शिवालयों पर आस्था का अपार नजारा देखने को मिल रहा है। छोटे बड़े तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी लोग पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पर गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं गंगा घाटों और नदी की लहरों पर श्रद्धालुओं की सेफ्टी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
0: बिल्कुल, आपको बता दें कि ऐसे में एनडीआरएफ भी खास करके गंगा नदी पर अपनी मुस्तैदी बनाए हुए है। दरअसल यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही गंगा घाटों और जल क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए ही वाराणसी की 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जल संबंधी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक अतिरिक्त बाढ़ और जल राहत टीम की तैनाती की है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे एनडीआरएफ गंगा में पेट्रोलिंग कर रही है।
2: ये तैयारी है शिव भक्तों की हिफाजत की।
3: बाहर जाके स्नान न करें।
2: वाराणसी में सावन के पावन माह में हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित करने के लिए जुटे हैं। बारिश के मौसम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लिहाजा पानी के तेज बहाव में शिव भक्तों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वाराणसी के गंगा घाटों पर एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। मोटर बोट, वाटर एम्बुलेंस और आधुनिक बचाव उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की पूरी टीम गंगा घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
4: वाराणसी में 11 एनडीआरएफ अपने पूरे दलबल के साथ देख सकते हैं कि गंगा में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को हिदायत दे रही है कि गहरे पानी से बचे, बैरिकेडिंग के दायरे में ही रह के वे स्नान करें और पूजन अर्चन करें। देख सकते हैं लगातार ये ड्रिल चल रही है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। सावन की शुरुआत चुकी हो गई है और लोगों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है एनडीआरएफ के लिए। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं।
2: दर्जनों मोटर बोट के साथ साथ हाई स्पीड बोट भी घाटों के लगातार चक्कर लगाकर श्रद्धालुओं को सतर्क कर रही है। एनडीआरएफ की 11वीं वाहिनी के जवान लोगों को जागरूक करने के साथ साथ किसी भी अनहोनी को टालने के लिए तैयार हैं।
5: 11 एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ हमेशा 24/7 डिप्लॉय रहती है। चूंकि सावन है, सावन का माह शुरू हो गया है, बहुत सारे श्रद्धालुगण देश विदेश से यहाँ आते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक टीम और एडिशनल टीम यहाँ डिप्लॉय करी है। वो टीम बार बार लोगों को एडवाइस देती रहती है कि नदी के किनारे ज़्यादा गहरे में स्नान ना करें। जो बोट चालक हैं वो बोटों में जिन लोगों के श्रद्धालुओं को बैठाते हैं उनको लाइफ सेविंग जैकेट पहनाएं ताकि कुछ दुर्घटना होने पर बचाव किया जा सके। इसके अलावा हमारी एनडीआरएफ की टीमें हमेशा तैयार हैं 24/7 किसी भी इमरजेंसी के लिए।
2: घाटों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल बनाकर चल रही है। कोशिश यही है कि वाराणसी आने वाले हर भक्त की तीर्थ यात्रा पूरी सुरक्षा और सहूलियत के साथ पूरी हो और बाबा विश्वनाथ के दर्शन की ये यात्रा सभी शिव भक्तों के लिए यादगार बन जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दशा में महादेव के भक्त का

0: कावड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कावड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने आकर्षक कावड़ के साथ जब कावड़िए रास्तों से गुजर रहे होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं।
1: हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कावड़ यात्रा की छटा बिखरी हुई है, जिसको देखकर लोग भी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। कई दलों में कांवड़िए अपना अपना संकल्प लेकर अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव से जुड़े कांवड़ लेकर चल रहे हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे 10 ऐसी तस्वीरें जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रंग अनोखे रूप देखने को मिल रहा है। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चला है तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़ लिए चल रहा है, कोई गरुड़ की छाव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़।

0: सर पर कांवड़, जुबा पर भोलेनाथ का नाम और दिल में अटूट आस्था। सावन की इस यात्रा में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा की पहचान सिर्फ इसकी भव्यता नहीं बल्कि इससे जुड़ी अनोखी परंपराएं भी हैं। हर भक्त अपने अंदाज में अपने संकल्प के साथ इस कांवड़ यात्रा में शामिल होता है। किसी ने महादेव को अर्धनारीश्वर रूप में कंधे पर रखा है तो किसी ने नोटों से कांवड़ को सजा रखा है। इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ रिश्तों के बीच की अटूट भक्ति भी नजर आती है। कोई अपनी बूढ़ी माँ को तो कोई अपनी बीमार सास को बाबा के दर्शन के लिए कांवड़ में बिठा कर ले जा रहा है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें इन दिनों कांवड़ के धर्म पथ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए जरा मुंगेर के कच्ची कावड़िया पथ पर भक्ति की इन अनोखी तस्वीरों को, जहां उज्जैन महाकाल के दिव्य स्वरूप में भक्तों ने कावड़ निकाली, वहीं जंजीर में जकड़े शिव भक्त की मस्ती सभी को हैरान कर गई। जंजीरों से बंधा शिव भक्त महादेव के जयकारे लगाता हुआ बाबा बैद्यनाथ के लिए धर्म पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ कांवड़ यात्रियों में देशभक्ति की भावना भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही बागपत से आए 26 कांवड़ियों का एक दल भी है जो कांवड़ के साथ 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर चल रहे हैं। कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा। अब देखिए जिम वाली कांवड़। इस अनोखी कांवड़ में डम्बल, वेट प्लेट और एक्सरसाइज का पूरा इंतजाम है। खास बात यह है कि शिव भक्त अमित इस कांवड़ को किसी वाहन से नहीं बल्कि अपने कंधों से खींचकर करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक और ऐसी अनोखी कांवड़ भी पहुंची जिसने हर किसी को सतयुग के श्रवण कुमार की याद दिला दी। इस कांवड़ को लाने वाला शिव भक्त अपनी कांवड़ के एक पलड़े में अपनी बुजुर्ग माँ तो दूसरे में बुजुर्ग चाचा को बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला। वहीं दिल्ली के विकास नगर निवासी अरविंद ने अपनी बुजुर्ग दादी को कांवड़ से हरिद्वार की यात्रा करवाई। इसे जिस किसी ने भी देखा उसकी नजरों में वो श्रद्धा, सेवा और पारिवारिक संस्कार की पूरी तस्वीर उतर आई। अलीगढ़ के नरेंद्र भी अपनी अनोखी कांवड़ यात्रा के लिए काफी मशहूर हैं। श्रद्धालुओं के बीच वो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नरेंद्र हरिद्वार से 11 लीटर गंगा जल की कांवड़ और भगवान शिव की प्रतिमा को अपनी कार के ऊपर बिठाकर दांतों से कार खींचते हुए गांव लौट रहे हैं। उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान के जल अभिषेक का संकल्प लिया है। आस्था की राह पर निकली ये अनोखी कांवड़ यात्राएं बता रही हैं कि परंपराएं समय के साथ नए रंग भी अपना सकती हैं। जहां शिव भक्ति है वहीं सेवा है, संस्कार का संदेश भी वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बहुत से रंग भी कांवड़ यात्रा के दौरान नजर आ रहे हैं और वो रंग लगातार हम आपको गुड न्यूज टुडे के जरिए दिखा भी रहे हैं। कई यात्री अपनी आधी से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। सफर में शरीर पर आए कई जख्म भी दिखते हैं, लेकिन बोलबम का जयकारा इनकी हर पीड़ा को छूमंतर कर देता है। ऐसे कुछ बोले नजर आए नोएडा में शनि मंदिर शिविर में।
2: आपको बता दें, इनमें से फरीदाबाद के दो भाई भी कांवड़ यात्रा में पहुंचे और बिल्कुल निराले और अलग अंदाज में लगभग 50 दिन से ये दोनों भाई कांवड़ यात्रा पर हैं। एक भाई ने 110 लीटर जल उठाया हुआ है तो दूसरे ने 81 लीटर। बड़ी बात यह है कि 81 लीटर जल लेकर चलने वाला भाई पहली बार जल लेकर आ रहा है। दोनों ने ही 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी।
3: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हमें कई सारे कांवड़िए रास्ते में मिल रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के शनिदेव मंदिर पर हैं और यहाँ पर भी एक शिविर बनाया गया है जहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए आकर विश्राम कर रहे हैं, वापस से अपने शरीर की ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दो भाई मिले हैं, दोनों कजिन हैं और दोनों ही महादेव के पक्के वाले भक्त हैं। हरिद्वार से जल लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, नोएडा तक पहुँच गए हैं। एक ने 81 लीटर जल ले रखा है और दूसरे ने 111 लीटर जल ले रखा है। दोनों भाई मेरे साथ में हैं, हम दोनों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
4: उमेश।
3: उमेश, आप छोटे हो, आपने लिया है 81 लीटर जल।
4: लीटर।
3: आपका नाम?
5: चिराग।
3: चिराग, आपने लिया है
5: 111 लीटर जल।
3: 111 लीटर जल। तो कितने दिन हो गए जिस यात्रा को शुरू किए हुए, कब गए थे आप लोग फरीदाबाद से? हो आप लोग कब गए थे हरिद्वार?
4: आज 51 दिन हो गए, 15 जून को निकले थे हम और 16 जून को हमने शाम को जल उठाया था 6 बजे, और आज चलते चलते चलते चलते 51 दिन हो गए, महादेव कृपा से यहाँ तक पहुँच गए। 25-26 किलोमीटर रह गया, 7 दिन का सफर रह गया, इतना कट गया, महादेव और पार लगाएंगे।
3: आप चिराग के पैर देख लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी शिद्दत से यात्रा कर रहे हैं। 110 लीटर जल लेकर चलना, 111 लीटर जल, आसान काम नहीं है। तो चिराग, आप कितने सालों से आप कर रहे हो यात्रा?
5: बोले ये मेरी चौथी कांवड़ यात्रा है।
3: चौथी यात्रा?
5: हाँ जी, ये मेरी चौथी कांवड़ यात्रा है आपकी बार, जो कि 111 लीटर जल है।
3: कब शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी? पहली बार किसने कहा था शुरू करने की थी?
5: बोले पहली बार हम यार दोस्त ऐसे आए थे घूमने के लिए, तो हमारा मन था झूला कांवड़ लेके आने का, जिसमें हमारे राम भैया हैं वो आज भी हमारे साथ हैं अभी भी, तो वो सब कलसा उठा रहे थे। मैं ये पिट्ठू कांवड़ जैसी होती है, इनको उठाना चाह रहा था, पर मैंने कहा चलो कलसा उठाते हैं। पहली बार में थोड़ी दिक्कत आई, उसके बाद वेट बढ़ता रहा, तो अब जाके भगवान की कृपा और माँ बाप के आशीर्वाद से 111 लीटर जल उठाया है मैंने।
3: पहली कांवड़ कितने लीटर की थी?
5: बोले पहली मेरी 11 लीटर की थी।
3: 11 लीटर से 4 साल में 111 लीटर पर?
5: जी बिल्कुल बिल्कुल। बोले
3: आप ये बताओ, आपका पहली बार है तो भाई से ही इंस्पिरेशन मिली या फिर कुछ और?
4: भाई से ही इंस्पिरेशन मिली थी। पहले तो मेरे मन में थी कि मैं 41 लूंगा, अब हमारे राम भाई कह रहे थे 51 ले आइयो, अब 51 से मेरे पास कल से आ गए। फिर एक भाई ने बोले चल 51 तो लाई रहा, 20 किलो और बढ़ा ले, 20 लीटर 71 करवा दिया उन्होंने, बैनर पे भी 71 लगवा दिया। मैं चलो कोई नहीं, अब कल से आगे मेरे पास 10 लीटर के वो लिया मैं 8, वो हो गया 81, अब वो 41 से दुगना होके 81 हो गया। अब टोटल हमारा वेट है 100 मेरे में है और इनका जाएगा 135 तक।
3: बाप रे, तो ये भी महादेव की इच्छा थी कि आप 70-60 नहीं 40 नहीं 81 लेके?
4: महादेव की इच्छा थी, 41 से सोची थी और 81 और टोटल वेट 100, तो ये बाबा की इच्छा थी और घर वालों का आशीर्वाद था, माँ बापों का, उनके सहारे से ही चल रहे बस।
3: क्या करते हो आप?
5: बोले मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब का।
3: करते हो आप?
4: मैं कॉलेज करता हूँ BA।
3: ठीक है, तो अब ये पहली बार है आपका, आगे भी क्या लेकर जाओगी?
4: आगे अब 2028 में आऊंगा जी।
3: 28
4: में आऊंगा, पर तैयारी से आऊंगा।
3: तैयारी मतलब कितना?
4: तैयारी से आऊंगा, प्रैक्टिस करके आऊंगा, सब चीज बढ़िया करके।
5: 150 ही रहेगा, 150 प्लस होएगा आपकी बार,
3: 150 प्लस जाएगा,
5: 150 प्लस होएगा 2028 या 29 में,
3: इसमें होएगा
5: कम बैक है, 150 या 161 आराम से आएगा, नॉर्मली आएगा बाबा।
4: अगर भाई अगर दोनों आएंगे तो दोनों ही लाएंगे, 150 प्लस में आएगा, फिर अगर मैं ही आऊंगा तो फिर 130 या फिर 150 तक ही आएगा।
3: नहीं, क्या बात है, टारगेट कर लिया है आपने। तो ये दोनों भाई हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ी, आप देखेंगे जो इनके साथी इनके साथ चल रहे हैं इनको ट्रेन करते हुए, तो उनकी गाड़ी पर आप देखेंगे तो कई सारे मेडल बने हुए हैं, लगे हुए हैं, कई सारी ट्रॉफीज रखी हुई हैं, ये लोगों ने उन्हें सम्मान दिया है। मतलब भक्ति की शक्ति को हर कोई जो रास्ते में मिल रहा है वो भी सैल्यूट करता चल रहा है, और इस उम्र में ये लोग इतना भारी जल लेकर वहाँ से चले हैं। ज़रूर हम यही दुआ कर रहे हैं कि जो भी मनोकामना इनकी हो वो इस यात्रा में पूरी हो। कैमरा मैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।
1: यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे दिल्ली के एक ऐसे रिक्शा वाले से जिन्हें लोग लैंग्वेज एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तो चाय पर चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं आस्था के अनूठे रंग, सहारनपुर में मां को कांवड़ में बिठाकर यात्रा कर रहा परिवार, नोएडा में 5 बच्चों की टोली बनी आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। आरा के टीचर रवि कुमार ने बताया विश्व रिकॉर्ड बनाया, हाथ से लिखी सबसे तेज अंग्रेजी वर्णमाला, महज 9.15 सेकंड में रचा इतिहास। पहाड़ पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
2: आमतौर पर 18 साल की उम्र में युवा कॉलेज की पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले नेथन थॉमस ने इस उम्र में कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। महज 18 साल और 346 दिन की उम्र में वे मियामी डेड कॉलेज में इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर बने और दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर का 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1717 से महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक कॉलिन मैकलॉरिन के नाम था, जो 19 साल की उम्र में प्रोफेसर बने थे।
4: नेथन की उपलब्धि सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, उनकी पूरी यात्रा भी काफी प्रेरणादायक है। इंजीनियर माता पिता के बेटे नेथन ने 10 साल की उम्र में ही स्कूल के साथ कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी।
5: चांदनी चौक जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये इलाका ऐतिहासिक धरोहरों, चहल पहल भरे बाजारों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। इस इलाके की तंग गलियों में एक ऐसा आदमी भी है जिसने अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई है। इनका नाम है असलम। असलम पेशे से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अंदाज ऐसा कि पर्यटक उन्हें चलता फिरता लैंग्वेज गाइड कहते हैं।
6: दिल्ली के चांदनी चौक की गलियां अपने खाने और शादी ब्याह की मार्केटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन आजकल चांदनी चौक की गलियां एक इंसान की वजह से ज्यादा मशहूर हैं, जिनका नाम है असलम। असलम यूं तो चांदनी चौक के आसपास रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो कई भाषाएं बोल लेते हैं, जर्मन बोल लेते हैं, इटालियन बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, और इसी वजह से आजकल वो बहुत वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम भी चांदनी चौक पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे असलम से और जानेंगे कि जितना वीडियो में बोलते हैं उतना ही है या फिर कुछ आगे का भी ज्ञान वो ले रहे हैं।
5: असलम की अंग्रेजी पर शानदार पकड़ है और वो जर्मन, फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में पर्यटकों से अच्छे बात भी कर लेते हैं। यही खासियत उन्हें चांदनी चौक की भीड़ में सबसे अलग पहचान दिला रही है।
7: सर, आई एम रिक्शा ड्राइवर असलम, रिक्शा वाला, ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक। So, and the spice market is very famous, the all of the Asia number one, and Chandni Chowk, the Moonlight Street, and Shahjahanabad, and also different market, this street, and the old Delhi, in the Wedding Street, Sari Street, Silver Street, and so many narrow line, the small street, and also very beautiful the temples, so Jain temples, Hindu temple, and the Sikh temple, and also big mosque, biggest mosque to India, and Jama Masjid, and also this Central Krishna Prabhu Church.
5: असलम विदेशी मेहमानों से बेझिझक उनकी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। उन्हें चांदनी चौक की गलियों से लेकर दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत तक का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
7: ओल्ड दिल्ली रिक्शा इज मच बेटर, यू आर वॉकिंग अलोन, नेवर आइडिया, आई नो वेरी वेल योर होम, आई नो वेरी वेल आई एम दिल्ली, सो रिक्शा इज मच बेटर स्पीकिंग एंड ड्राइवर ऑल टुगेदर, सो यू आर हैप्पी, सो आई एम हैप्पी सर, यू आर माई गेस्ट।
5: कहते हैं कि अगर सीखने की लगन हो तो जिंदगी खुद सबसे बड़ी पाठशाला बन जाती है। न कोई बड़ी डिग्री, न किसी महंगे संस्थान की ट्रेनिंग, सिर्फ जिज्ञासा, मेहनत और सीखने का जुनून। यही कहानी है चांदनी चौक के असलम की।
7: हम जो है फॉरनर के साथ जो है हम सीखे हैं और उन्हीं में ढल गए, इसलिए हमें थोड़ा बोलना सीखना आ गया, पढ़ने लिखने नहीं आता है।
5: आज यही मेहनत और सीखने का जुनून उन्हें आम रिक्शा चलाने वालों से अलग पहचान दिला रहा है।
7: आई एम बिचकले ड्राइवर, सो बिचकलेता एंड रिक्शा बोलते हैं रिक्शा को, सो बिचकलेता एंड 220 दिल्ली, ऑल इज द ऑल द मरकातो, मरकातो स्पाइसिया, मरकातो प्लाटा, मरकातो सारी, आला मिस्किता, टेम्पलो जैन, टेम्पलो हिंदू एंड ऑल्सो पिकोलो पिकोलो बाजार, सो इटालियन सो इज द स्पीक।
5: असलम की ये यात्रा संदेश दे रही है कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: ये देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम कभी इटली जाएं और हमारा जो ड्राइवर हो वो हिंदी बोलने लग जाए?
1: ऐसा वैसे होता है, अगर आपको अगर आप कोई टूरिस्ट सिटीज में जाते हैं, मुझे जहाँ तक याद, अगर आपने देखा हो जब आगरा में लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं, ऐसे बहुत से गाइड वहां पर होते हैं जो उनकी भाषा बोलते हैं,
0: बिल्कुल,
1: ऐसे कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं,
0: सीख लेते हैं,
1: लेकिन इस रिक्शे वाले की वाकई दाद देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर बहुत हिट है,
0: वायरल है आजकल, तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं चांदनी चौक तो इससे असलम से, असलम नाम बताया ना इन्होंने, उनसे मिल लीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे मिलने का और उनसे बात करने का। चलिए बढ़ते आगे, और आपको बता दें कि देखिए आम तौर पर अक्सर ये होता है कि 18 साल की जब उम्र होती है तो युवा कॉलेज की पढ़ाई शुरू करते हैं तब से, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले नाथन थॉमस ने इस उम्र में कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। महज 18 साल और 346 दिन की उम्र में वे मायामी डेट कॉलेज में इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर बने और दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर का 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1717 से महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक कॉलिन मैकलॉरन के नाम था, जो कि 19 साल की उम्र में प्रोफेसर बने थे।
1: नेतन की उपलब्धि सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, उनकी पूरी यात्रा प्रेरणादायक है। इंजीनियर माता पिता के बेटे नेथन ने 10 साल की उम्र में ही स्कूल के साथ कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। महज 14 साल की उम्र तक वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अगस्त 2023 से वो कॉलेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, जहां उनकी क्लास में कई छात्र हैं जो उनके हम उम्र भी हैं, कई ऐसे भी हैं जो उनसे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तमाम तरह के छात्र हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि क्लासरूम में उम्र नहीं बल्कि ज्ञान और सीखने की इच्छा ज्यादा मायने रखती है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां गुरेज में सेना एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवा रही है और करीब एक महीने तक चलने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में गुरेज के करीब 15 गांव के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं।
0: लड़कों के साथ साथ इस इवेंट में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस इवेंट का मकसद नौजवानों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें सही राह दिखाना भी है।
2: गुरेज की खूबसूरत वादियों में ये खेल प्रतियोगिता सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने की कोशिश है। गुरेज के हाई ग्राउंड बक्तूर में इस इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भारतीय सेना की राणा बटालियन ने किया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
3: नामी के राणा बटालियन ने यहाँ पे जो ब्लॉक बक्तूर है उसमें एक इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें तकरीबन पूरे ब्लॉक के 15 गांव हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ खेलों में, जैसा कि वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, सभी प्रकार की खेल में हिस्सा ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों के बराबर लड़कियां भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। ये एक नेक शगुन है यहाँ के लिए कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर में अभी खेल रही है।
2: मैच फुटबॉल का हो या वॉलीबॉल का, हर खेल में नौजवानों का उत्साह देखने लायक था। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट में स्थानीय गांव की लड़कियों ने भी खेल में अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
4: इंडियन आर्मी के बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने यहाँ पे इंटर विलेज सपोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का इनेकाद जो 16 जुलाई से किया था, उसमें बहुत सारी गेमें कराई गई, जिसमें बॉयज़ का फुटबॉल, गर्ल्स का बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज बॉयज़ का इज़मरक वर्सेस जिलिंडोरा के माबेन वॉलीबॉल खेला गया, तो उसमें इज़मरक ने विन दर्ज की। तो इससे यही दर्शाता है कि यहाँ के बॉयज़ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को आगे लाने के लिए, और इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की ओर न जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो गेम्स में हिस्सा लें।
2: गुरेज में एक महीने तक चलने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी। अब 15 अगस्त के मौके पर इस स्पोर्ट्स इवेंट का भव्य समापन होगा। इस इवेंट में 15 गांव के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी टीम वर्क को और मजबूत करना है। खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ ये फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है। फेस्टिवल के दौरान सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले गांव और सबसे ज्यादा साफ सफाई रखने वाले गांव को भी सम्मानित किया जाएगा।
5: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर गुरेज घाटी में बख्तूर गांव में विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नियंत्रण रेखा पर रहने वाले गांव के बच्चों और बच्चों ने इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लिया। दरअसल ये एक पहल है नशा मुक्त भारत बनाने की, जिसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही किया था। अशरफ वानी, श्रीनगर।
0: और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मौसम की तीन बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं जंगल धधक रहे हैं तो कहीं भीषण गर्मी से राहत देने की कोशिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। आपके सामने ये तीनों तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नीदरलैंड के लिम्बर्ग प्रांत की है, जहां पर जंगल की आग ने करीब 100 हेक्टेयर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कैंप साइट खाली कराने पड़े और ट्रेन सेवाएं भी रोकनी पड़ी।
1: तो वहीं दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खास अभियान चलाना पड़ा है। सियोल के जोजोगबांग इलाके में पानी की फुहारें छोड़कर आर्टिफिशियल ठंडी धुंध बनाई गई ताकि तापमान का असर कम हो सके। वहीं न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर में समुद्र तल तक हुई बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तो एक तरफ दुनिया के कई देश गर्मी से परेशान है, वहीं आर्कटिक का बर्फीले हवा ने न्यूजीलैंड को जमा दिया। हालात ऐसे हो गए कि समुद्री किनारे तक बर्फ बिछ गई है, सड़कें बंद हैं, बसें थम गई हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। अंटार्कटिका से आया पोलर ब्लास्ट न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर भारी पड़ रहा है।
0: डुनेडिन शहर में समुद्र तल तक बर्फ गिरने से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। पुलिस ने लोगों से बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। भारी बर्फबारी के चलते शहर के सभी बस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। तेज हवाओं के कारण नॉर्थ और साउथ आइलैंड के बीच फेरी सेवा भी रोक दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रह सकता है। और यूरोप में जारी भीषण हीट वेव के बीच ऑस्ट्रिया के वियना चिड़ियाघर का करीब 1 साल का नन्हा हाथी इन दिनों सबका दिल जीत रहा है। 20 अगस्त को 1 साल का होने जा रहा यह हाथी अपनी मां और एक बड़ी मादा हाथी के साथ तालाब में उतरकर नहाना सीख रहा है। चिड़ियाघर के रखवालों के मुताबिक ये नन्हा हाथी अपनी पसंदीदा आंटी के पीछे पीछे पानी में जाता है और हर बार ये जानने की कोशिश करता है कि वो कितनी गहराई तक जा सकता है।
1: नहाने के बाद उसका अगला पड़ाव होता है कीचड़, फिर रेत, और यही तरीका हाथियों को भीषण गर्मी से राहत देता है और उनकी त्वचा को कीड़ों से भी बचाता है। करीब 400 किलो वजनी यह नन्हा हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल करना भी बड़े हाथियों से सीख रहा है। वियना चिड़ियाघर का ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब दिल जीत रहा है। एक और दम कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। 70 साल पहले जिस बाघ की दहाड़ मध्य एशिया के जंगलों से हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, अब उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। कजाकिस्तान ने एक खास मिशन के तहत रूस से लाई गई अमूर टाइग्रिस अमित को खुले जंगल में छोड़ दिया है। उम्मीद यह है कि यही बाघिन आने वाले वर्षों में मध्य एशिया में बाघों की नई पीढ़ी की नींव रखेगी।
0: कजाकिस्तान के खास नेचर रिजर्व में पिंट्रे का दरवाजा खुलते ही ये मादा टाइगर तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ी और कुछ ही पलों में घास के बीच ओझल हो गई। उमित को जंगल में छोड़ना एक लंबे समय से चल रहे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद मध्य एशिया में विलुप्त हो चुके कैस्पियन टाइगर की वापसी कराना है। एक्सपर्ट का मानना है कि मध्य एशिया में बाघों की स्थायी आबादी बसाने में कई दशक लगेंगे। ये संरक्षण अभियान अगले 25 वर्षों तक जारी रहेगा ताकि एक बार फिर इन जंगलों में बाघों की दहाड़ सुनाई दे सके। चलिए यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे आपको दिखाएंगे वो खूबसूरत तस्वीर जब अमेरिका में गूंजा गीता सा।
6: गुडनी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके।
7: सावन में अपने घर पर रहकर के ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जा सकती है। ज्योतिर्लिंगों की पूजा का क्या होगा विधान और ज्योतिर्लिंगों की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी है, इसका एक अद्भुत और प्रेरणादायक नजारा अमेरिका के टेक्सास में देखने को मिला। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि सनातन केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार बन चुका है। दरअसल टेक्सास में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा हुए और श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। यह तस्वीर इतनी भव्य थी कि हर तरफ गीता के श्लोकों की गूंज सुनाई दे रही थी।
2: विदेशी धरती पर सनातन संस्कृति के प्रति ये समर्पण इस बात का प्रमाण है कि भारतीय आध्यात्मिक विरासत सीमाओं की मोहताज नहीं है। गीता का संदेश कर्तव्य, कर्म, सत्य और मानवता आज भी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखते हैं।

0: इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरें अभी जारी हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: चलिए आपको दिखाते हैं माही का नया लुक। महेंद्र सिंह धोनी के कुछ शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इनमें माही बाइक चलाते नजर आ रहे हैं।
2: दरअसल धोनी चेन्नई के पास इरुंगट्टू कोट्टई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुपर बाइक चलाई। इस दौरान माही बिल्कुल प्रोफेशनल रेसर के लुक में नजर आए। 102 डिग्री बुखार, अस्पताल पहुंचने की जल्दबाजी और उसी बीच खो गया पर्स। लेकिन हैदराबाद के एक ऑटो ड्राइवर ने जो किया, उसने इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर दिया। पर्व शर्मा अस्पताल से बाहर निकले तो पता चला कि उनका वॉलेट ऑटो में छूट गया है। घबराकर उन्होंने ड्राइवर को फोन किया। ड्राइवर ने न सिर्फ वॉलेट मिलने की पुष्टि की, बल्कि कई घंटों तक अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर उन्हें भरोसा दिलाता रहा कि उनका पर्स सुरक्षित है।
1: आखिरकार वो खुद वॉलेट लौटाने पहुंचा। इस नेक दिली से भावुक होकर अपने ऑटो ड्राइवर की ट्रांसपोर्ट कंपनी से उस ईमानदार ड्राइवर को सम्मानित करने की अपील की। सोशल मीडिया पर भी लोग इस ड्राइवर की ईमानदारी और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: पैनिक कि वो अवेलेबल है, मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, अभी वो आने वाला है बंदा। बट सीरियसली यार, मेरे वैसे ही ऑलरेडी सर फट रहा था, एंड अगर ये एक और चीज हो जाती कि मेरा वॉलेट भी हो जाता, ईमानदारी जब मेरे को दिखती है ना भाई, आई विल मेक श्योर दैट आई रिवॉर्ड दैट पर्सन। बट अगर रैपिडो ये वीडियो देख रहा है भाई, ये बंदे को प्लीज हेल्प करो आपकी।
1: ड्राइवर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे चाय पर एक बार फिर से मुलाकात होगी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं आस्था के अनूठे रंग, सहारनपुर में मां को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कर रहा है परिवार, नोएडा में 5 बच्चों की टोली बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। आरा के टीचर रवि कुमार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, हाथ से लिखी सबसे तेज अंग्रेजी वर्णमाला, महज 9.15 सेकंड में रच दिया इतिहास। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटीए स्पेशल। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ साथ जब कांवड़िया रास्ते से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा मार्ग में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कई दलों में कांवड़िए अपना संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव के से जुड़े जो कांवड़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई करुण की छांव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़ और कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर लगातार चल रहा है। तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सिरों पर सवार शिवजी का अद्भुत कांवड़ लेकर चल रहा है और एक कांवड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार बाकायदा दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या रंग देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कांवड़ों के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था।

इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कांवड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कांवड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई है। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदियोगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, हर हर।
0: महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कावड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कावड़ को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कावड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
2: और बोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कावड़ लेने। तीसरा साल है मेरा, 18वीं कावड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा बोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
3: कितने लोग आए होते?
2: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी बहुत सारी, 12-13।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो पुत्र है,
5: पहले भी कभी लेके।
4: हाँ पहले भी
2: परिवार को पूरे सब फूलों को अच्छा रखे, बस हमें ये
5: लेके जाओगे
2: नहीं बोले अभी तक, तो कोई कष्ट आया नहीं। बाकी और बाबा जी

हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

देखिए अलग अलग अंदाज में सजी कांवड़ों की झांकी तो आपने देख ली, अब आपको सजे धजे कांवड़िए भी दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग जहां कुछ कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार अच्छे से जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी आज भी किसी ना किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है।

0: ये संभव नहीं कि कांवड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण, एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा को पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है या फिर किसी विशाल कावड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजा

0: पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कावड़ यात्रा को देख रहा है, एक बार को थम जरूर रहा है।
1: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूँ और दिल्ली पहुँचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। पुष्पक विमान इसलिए लेके आए भोले, क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कावड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती है। कावड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कावड़िए का मनोरथ एक। बोल बम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले चार दिनों से कांवड़ मेला चल रहा है और अब इस मेले की रौनक अपने चरम पर देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए अब तक हर की पैड़ी से जल उठा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज हरिद्वार में इन कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बाकायदा कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर कांवड़ियों का स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, उन्हें पटका पहनाया और फल फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ कांवड़ियों की सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन आज हरिद्वार में किया गया और नजदीक ही कांवड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने भंडारे में कांवड़ियों को भोजन परोसा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, औपचारिक रूप से कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए कई कांवड़िए अपने अपने शहरों से पहले ही निकल जाते हैं और अब ये तमाम कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कई अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। दिल्ली NCR के रास्तों में अब कांवड़िए दिखने लगे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने नोएडा पहुंचे कांवड़ियों से मुलाकात की।

0: अलग अलग कावड़ में आपको अलग अलग रंग, अलग अलग भक्ति, अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं। यूं तो हर कावड़ में हर जल के कलश के ऊपर आपको भोलेनाथ दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन इस खास कावड़ में आप देखेंगे तो कलश के ऊपर प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई गई है। ये कांवड़ बरसाने से आ रही है, बरसाने जाएगी, बरसाने के लोग इस जल को हरिद्वार से लेकर वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। बरसाने में नंदगांव इनका गांव है और नंदगांव में जो भोलेनाथ का मंदिर है कहते हैं वो भी बहुत खास है। भोलेनाथ जब नंदगांव में आए थे तो वो दर्शन करना चाहते थे श्री कृष्ण के, लेकिन माता यशोदा ने मना कर दिया कि बच्चा डर जाएगा। उसके बाद उन्होंने वहां तपस्या की और तपस्या करने के बाद नंदगांव में जो मंदिर बना भोलेनाथ का, उस मंदिर में अब ये बच्चे जल लेकर जा रहे हैं और वहां चढ़ाएंगे। ये दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे हैं और ये दोनों एक साथ इस कांवड़ को लेकर आ रहे हैं। प्रेमानंद जी की फोटो उस पर आपने देख ली है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो कहानी इन लोगों ने मुझे सुनाई थी। क्या नाम है आपका?
1: सचिन।
0: सचिन और
1: विष्णु।
0: सचिन और विष्णु, पहली बार है आप लोग का?
1: आज पहली बार है।
0: पहली बार है। और कितना जल लिया है?
1: हमने 41 प्लस लिया है।
0: 41 लीटर से ज्यादा जल है इनके पास, पहली बार निकले।
1: 55 के आसपास है।
0: 55 के आसपास पूरा वेट होगा?
1: पूरा वेट होगा।
0: कितनी उम्र है
1: हमारी? 19.5।
0: 19.5 साल के हैं और ये 20 साल के हैं, 6 महीने बड़े हैं आपसे, है ना? और पहली बार जल लेकर निकले हैं। पहली बार में ही इन्होंने 41 लीटर से ज्यादा का जल उठाया है। घर वाले मान गए थे कि उठा लो इतना पानी पहली बार?
1: घर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया था कि 11 से ऊपर मत लाना। तो फिर हमने कोशिश करी कि ले, दोनों भाइयों ने मैंने कि उठा लेंगे कोई नहीं, पर हम 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे 11 से पहले हम पहुंच जाएंगे। तो हमने एक ही बार में 41 प्लस कर ही दिया डाय।
0: भोले के छोटे भक्तों से आपको मिलवा रहा हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, इनके कंधे पे कांवड़ है, जल लेकर ये निकले हैं।

0: साथ में उनके बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन इन बच्चों का जज्बा देखिए आप, किसी की उम्र 9 साल है, किसी की 11, किसी की 13, बारी बारी से इनसे बात करते हैं। जल लेकर आए हैं, नोएडा में हमसे इनकी मुलाकात हो रही है और चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, जबकि इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं। चलो पहले एक बार कस के जगह लगा देते हैं, ठीक है? हर हर महादेव की गूंज लेकर हरिद्वार से ये बच्चे चले थे।
1: हम पलवल से आगे 10 किलोमीटर फुलवाड़ी गांव हरियाणा।
0: बच्चे थके तो नहीं रास्ते में, परेशान तो नहीं कर रहे?
1: कुछ भी दिक्कत नहीं,
0: बहुत बढ़िया है। तो पिता हैं साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इतने छोटे बच्चों को आप कांवर की यात्रा में देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता की एक भी लकीर इनमें से किसी बच्चे के माथे पर दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भोलेनाथ के जयकारों के साथ, गूंज के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
2: और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पुलिस ने पकड़ा तो जूता मारकर भागा युवा। सीजेपी के संसद मार्च में पुलिस वाले पर जूते से वार। बाढ़ में डूबी मस्जिद से अजान। माँ के सपने को बेटे ने दी उड़ान। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या सावन में अपने घर पर रहकर के ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जा सकती है? ज्योतिर्लिंगों की पूजा का क्या होगा विधान और ज्योतिर्लिंगों की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं आस्था के अनूठे रंग, सहारनपुर में मां को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कर रहा है परिवार। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की भारी डिमांड। आरा के टीचर रवि कुमार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, हाथ से लिखी सबसे तेज अंग्रेजी वर्णमाला, महज 9.15 सेकंड में रच दिया इतिहास। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार। शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: श्रीमद भगवद गीता के श्लोकों की ध्वनि से गूंजा अमेरिका का डेलस। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्रीमद भगवद गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। कार्यक्रम में श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया गया। श्रीमद भगवद गीता पारायण और विश्व शांति प्रार्थना के तौर पर किया गया ये भव्य आयोजन। मैसूर के अवधूत दत्त पीठम के पीठाधीश श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम में 18 देशों के 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु और हजारों छात्र शामिल हुए। वसुधैव कुटुंबकम था कार्यक्रम का मुख्य विषय। सैकड़ों प्रशिक्षित बच्चों ने बिना देखे सभी 700 श्लोकों का सस्वर पाठ किया। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही है बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में यात्रा का उत्साह जबरदस्त। फंती अलकनंदा नदी के बावजूद जारी है पवित्र यात्रा। मौसम की चुनौतियों के बावजूद सुचारू रूप से जारी है बद्रीनाथ धाम यात्रा। अब तक 15,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी पूरे जोश के साथ लगातार जारी है श्रद्धालुओं का आना। अब तक 2,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। कुंभ में श्रद्धालुओं ने शुरू की अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ कर रहे हैं कदमताल। सावन के महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अजब गजब रंग। मुजफ्फरनगर में गहरों से लदे शिव भक्त और भोलेनाथ के कांवड़ देखकर सब हैरान। गोल्ड प्लेटेड हैं भगवान शंकर और कंवड़िए के धारण गहने तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। हरिद्वार से सोनीपत तक तकरीबन 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं रोहित शर्मा। अपने कंधे पर बाबा भोलेनाथ को बैठाकर प्रतिदिन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं हर वर्ग के कांवड़िए। हरिद्वार से जल लेकर यात्रा करती दिखी बच्चों की टोली। लगभग 50 दिन से कांवड़ यात्रा में फरीदाबाद से दो भाई एक का उठा रखा है। उन्होंने 110 लीटर जल तो दूसरे ने 81 लीटर गंगा जल सिक्के साथ कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। आस्था और शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आया धनबाद। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर बनारस से आए आचार्यों ने संपन्न कराई दिव्य शिव गंगा महाआरती। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र सरोवर में आयोजित हुई भव्य शिव महाआरती। सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रखा गया था धार्मिक आयोजन। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। सवाई माधोपुर में बड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। सालाना भव्य महाभगवा कांवड़ यात्रा का आयोजन। शहर के रामद्वार से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए दंडवीर बालाजी मंदिर में संपन्न। सावन के महीने में अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रही है लोगों का अपनी ओर ध्यान। आज सहारनपुर में निकली बाहुबली वाली कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। 9 फीट ऊंची है श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़। भगवान शिव की विशाल आकृति वाली सुनहरी कांवड़ भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय। भोलेनाथ की प्रतिमा दोनों बनाए गए हैं सुंदरपुर। बिजनौर की एक कांवड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल। एक तरफ 90 साल की दादी दूसरी तरफ गंगा जल। हरिद्वार से हापुड़ लेकर सोनू कर रहे हैं 250 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा। रोज लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारियां। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। 9 अगस्त को बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर में, मेरठ और 10 अगस्त को गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड में रेलवे, दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन में बनाया गया वॉर रूम। कांवड़ियों और आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ अतिरिक्त रेल कर्मियों की तैनाती। सुरक्षा के साथ साथ कांवड़ियों के आराम का भी रखा जा रहा विशेष ख्याल। स्टेशन पर सात्विक भोजन और मेडिकल टीम भी तैनात। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त। आज से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। हरियाणा के नुहू में सावन के पहले मंगलवार पर शिव मंदिर में आस्था का जनसैलाब और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, चंदन, दही से किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। भोले बम के लगे जयकारे। मैनपुरी में भी शिवालयों में भक्तों ने किया जलाभिषेक, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें, लगाए जा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार में भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। कांवड़िए शिव, शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगाजल ले जा रहे हैं। कोटा में 500 साल पुराना अनूठा शिवलिंग, एक ही शिला में शिवलिंग और शीश काटकर भोलेनाथ को समर्पित करते हुए रावण की मूरत। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना ये प्राचीन शिवालय। पूरे महीने यहां जलाभिषेक और दर्शन करने के लिए लगती है भक्तों की लंबी कतारें। हापुड़ में पूरी श्रद्धा से जारी है कांवड़ यात्रा। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के अंदर वन वे किया। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात। वाहनों को सही मार्ग दिखाने और कांवड़ियों को सुरक्षित मार्ग दिखाने के लिए लगातार जानकारी दी जा रही है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच चहलुम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट। कांवड़ यात्रा और चहलुम जुलूस साथ साथ निकालने के लिए दो भाग में बांटी सड़क। पुलिस ने सड़क के बीच में लगवाए 10-10 फीट ऊंचे टेंट के पर्दे। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक रवि कुमार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। सिर्फ 9.15 सेकंड में ए से जेड लिखकर बने दुनिया के सबसे तेज अल्फाबेट राइटर। रवि कुमार ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। रवि ने 26 मई को बनाया था रिकॉर्ड। चंबा के रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हुआ संपन्न। मेले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक निकाली पारंपरिक शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। मेले में देखिए हिमाचल की संस्कृति कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। तिरुचिरापल्ली में आदि पेरुक्कू महोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आदि पेरुक्कू उत्सव पर नवविवाहित जोड़े और महिलाओं ने नदी किनारे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। विश्व प्रसिद्ध भदोही के कालीन उद्योग को मिलेगी नई गति। कपड़ा मंत्रालय के अधीन आने वाली जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भदोही में खोला अपना आउटलेट। जूट से अलग अलग तरह की कालीन बनाने और उसके लिए जूट आसानी से कराया जाएगा उपलब्ध। आगरा के जामा कांस्टेबल संदीप यादव ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का लहराया परचम। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के पुलिस का प्रतिनिधित्व इंडोनेशिया मार्शल आर्ट खेल के रेगू इवेंट में जीता ब्रॉन्ज। दिल्ली में ISSF शॉटगन रेफरी कोर्स की हो गई शुरुआत। बगहा में तमसा नदी से अनोखा रेस्क्यू, युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाई नेपाल से लौट रहे 11 श्रद्धालुओं की जान। लगातार बारिश के चलते घनसाली के चारधाम मोटर मार्ग पर भैंसवाड़ा पुल और NH 507 पर पहाड़ी से गिरा था मलबा। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ रही है गंगा और यमुना का जलस्तर, कई निचले घाट पानी में डूब गए। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ का सहस्त्रकुंड झरना हुआ ओवरफ्लो। श्रीनगर में लोगों के लिए राहत बनकर आई बारिश, बारिश से गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। इंडिगो ने पूरे किए 20 साल, 2030 तक 550 विमानों और 3000 दैनिक उड़ानों का लक्ष्य। आज से 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटा सहायता राशि। सैलानियों से गुलजार हुई डल लेक का, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। डल लेक में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी, कारोबारियों में भी खुशी की लहर। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तर प्रदेश में मौसम होगा मेहरबान, 4-5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, 4-6 डिग्री गिरेगा तापमान। पंजाब के राजपुरा में भी जमकर बरसे बदरा, सड़कों पर भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भी सुबह सुबह ही भारी बारिश, लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिली। हरियाणा के झज्जर में जबरदस्त बारिश, बरसात से मौसम हुआ सुहाना। मथुरा में बारिश से सड़कों पर जमा पानी, कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित। पहाड़ों पर भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है संगम का पानी, निचले इलाके जलमग्न। हैदराबाद में भी बदल गया मौसम का मिजाज, सुबह सुबह जबरदस्त बारिश। केरलम में आज भी तेज बारिश का दौर, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजेस। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से जलजमाव, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित। बेलगाम में अचानक आई बाढ़, नुनवान यात्रा बेस कैंप की बाउंड्री वॉल गिर गई। बाढ़ का पानी नुनवान यात्रा बेस कैंप परिसर में घुसा, एसडीआरएफ की राहत बचाव कार्य लगातार जारी। कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटा, कई इलाकों में बाढ़, वुलर झील का भी बढ़ा जलस्तर। राजौरी के मंजाकूट में अचानक आई बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त, कई सड़कों को किया गया बंद। सड़कों से हटाया जा रहा मलबा, प्रशासन ने लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शिवसागर जिले में बाढ़ पीड़ित इलाकों और राहत शिविरों का दौरा किया। मुख्यमंत्री हेमंत ने बाढ़ पीड़ितों को अंतरिम वित्तीय सहायता के लिए चेक भी सौंपे, अफसरों को घर घर जाकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने अरनमुला के चेरियरपम एलपी बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। राजस्थान के अलवर शहर में लेपर्ड देखने से लोगों में डर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, तेंदुए की लोकेशन पता करने में जुटे वन विभाग के कर्मचारी। वन विभाग ने लोगों के लिए जारी कर दी एडवाइजरी, अंधेरे में बाहर निकलने की अपील की। सरिस्का बफर जोन से खाने की तलाश में शहर में आ जाते हैं तेंदुए। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ किया गया, फैंस ने अपने मेडल वीरों का स्वागत, एयरपोर्ट पर लगे भारत माता के जयकारे। शान से अपना गोल्ड मेडल पहने नजर आई मुक्केबाज प्रीति पवार। 54 किलो वर्ग में प्रीति ने भारत को दिलाया है स्वर्ण। महिला 57 किलो वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन ने कहा, ये किसी सपने के सच होने जैसा है, अब अगले लक्ष्य एशियन गेम्स के लिए करेंगे तैयारी। बॉक्सिंग में ही गोल्ड मेडल विनर प्रिया घंगास ने भी वतन वापसी पर जताई खुशी। देश के लिए मेडल जीतने को बताया जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। एयरपोर्ट पर अपने विजेता एथलीट्स की एक झलक पाने के लिए लगी होड़, फूल मालाओं से लदे नजर आए सभी गोल्ड मेडलिस्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड समेत 39 पदक अपने नाम किए। भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग रहा, 14 मुक्केबाजों के दल में 10 खिलाड़ी मेडल जीतकर लौटे, इसमें से 7 गोल्ड 3 सिल्वर। हिसार में मुक्केबाज अंकुश पंघल का भी शानदार स्वागत किया गया, उन्होंने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के शेटू को हराकर जीता था गोल्ड। पैरा खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया देश का मान, पैरा एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत के अभियान को मजबूती दी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर स्वदेश लौटी वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह का जबरदस्त स्वागत किया गया, अमृतसर हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत। परिवार और गांव वालों ने भांगड़ा करके बनाई खुशी, लवप्रीत बोले अब गोल्ड मेडल जीतना लक्ष्य। हरियाणा में मुक्केबाजी को लेकर पड़ रहा है लड़कियों का रुझान, रोजाना 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके मुक्केबाजी रिंग में पसीना बहा रही हैं बेटियां। देश का नाम रोशन करने के लिए करनाल के कर्ण सिंह स्टेडियम में रोजाना घंटों पसीने बहा रही हैं लड़कियां, सपने पूरे करने के लिए संघर्ष में परिवार का भी बन रहा है सहयोग। यूरोप में बढ़ती गर्मी के बीच अब इस जवानों के लिए राहत का इंतजाम, वियना चिड़ियाघर में पानी की फुहार का आनंद ले रहे हैं हाथी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: पुलिस ने पकड़ा तो जूता मारकर भागा युवा। सीजीपी के संसद मार्च में पुलिस वाले पर जूते से वार। बाढ़ में डूबी मस्जिद से अजान। मां के सपने को बेटे ने दी उड़ान। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: आइए बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मौसम की आंख में चोली लगातार जारी है, कभी बादल कभी बारिश तो कभी धूप। हालांकि बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, तो दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम की मन मर्जियां कब तक चलेंगी? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया।
2: दिल्ली एनसीआर में मौसम की आंख में चोली लगातार जारी है, धूप बादल फिर बारिश और फिर से धूप, लगातार मौसम का यही चक्र तीन चार दिन से चलता आ रहा है। लेकिन अभी का मौसम आप देखिए कि एक बार फिर से आसमान में काले बादल छाए हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि आज सुबह अच्छी खासी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से धूप आई, धूप के बाद गर्मी हुई, उमस हुई और उमस के बाद पूरे दिन के बाद एक बार फिर से अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर के लिए ऐसे ही मौसम की भविष्यवाणी कर रखी है। कहा गया है कि 8 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही मौसम बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, हल्की से मध्यम के बीच में। लेकिन बुरी बात यह है कि ये बारिश रुकते ही दिन की अगर हम बात करें तो फिर से एक बार धूप निकल आती है, उसके बाद उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होता है। क्योंकि अभी भी आप जो बारिश देख रहे हैं, इस बारिश के साथ हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बारिश थमने के बाद भी हवा नहीं है, मतलब मौसम में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। इसकी वजह से जो उमस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए राहत भी तभी तक रहती है जब तक बारिश रहती है। फिलहाल दिन में धूप थी, चिपचिपी गर्मी थी, लेकिन एक बार फिर से शाम होते ही काले बादल छाए हैं और इस तरह से छाए हैं कि शाम में ही रात जैसा माहौल लग रहा है। अभी फिर से एक बार बारिश शुरू हुई है, मतलब उमस और गर्मी से राहत मिलना शुरू हो गई है और 8 अगस्त तक मौसम ऐसे ही लुका छिपी खेलता रहेगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज टुडे, नोएडा।
1: दिल्ली समेत एनसीआर के आसमान में समय बादलों का बहरा है, कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनमोल बाली।
3: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम सुहाना बना हुआ है, घने बादल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में छाए हुए हैं। इस समय मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय बादलों ने हैं पूरे दिल्ली को घेर रखा है। हल्की हल्की दिल्ली में बारिश हो रही है, हालांकि आज सुबह देखा गया कि थोड़ी मिट्टी पर ऐसे ही दोपहर होती है घने बादल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेर लेते हैं और जो इन बादलों का असर है वो देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश पड़नी भी शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट बारिश को देखते हुए इशू किया है दिल्ली में। वहीं अगर मैं बात करूं अभी के नाउकास्ट की तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय आप देख सकते हैं कि देश भर में बारिश को लेकर क्या हालात हो रखे हैं। ज्यादातर इलाकों में आप देख सकते हैं कि येलो अलर्ट है, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर इशू किया गया है, यानी कि पूरे देश में हर कोने में आप देख सकते हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो या चाहे ईस्ट और वेस्ट इंडिया हो, आप देख सकते हैं कि हर कहीं येलो और ऑरेंज अलर्ट आपको नजर आएगा। मतलब हर कहीं इस समय देश में बारिश के जो हालात हैं वो बने हुए हैं और इस समय दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उमस और जो बढ़ती गर्मी से जो इस बारिश के कारण छुटकारा मिल रहा है। पर वहीं अब छुट्टी का भी टाइम है, 5 बजने वाले हैं, जब देखा जाएगा कि लोग अपने घरों से निकलेंगे, अपने काम से निकलेंगे घरों के लिए, तो तब देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं इस बारिश के कारण उनको भारी ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है। कैमरामैन संजय समीर के साथ मोना पाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
1: चीन की मशहूर चाका सॉल्ट लेक इन दिनों अपने अद्भुत नजारों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। डूबता सूरज, उगता चांद, चमकती झील और उसके बीच से गुजरती ट्रेन, हर दृश्य किसी पेंटिंग से कम नजर नहीं आता। प्रकृति ने ऐसा नजारा रचा है कि हर देखने वाला ठहर गया। दरअसल ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं है बल्कि चीन की चाका सॉल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है।
4: कभी कभी प्रकृति ऐसी तस्वीर बनाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक तरफ डूबता सूरज, दूसरी तरफ उगता पूरा चांद, बीच में आईने की तरह चमकती झील और उस पर तैरती हुई सी गुजरती एक ट्रेन। ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं बल्कि चीन की चाका साल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। उत्तर पश्चिम चीन के किंघाई प्रांत में स्थित चाका साल्ट लेक को मिरर ऑफ द स्काई यानी आसमान का आईना कहा जाता है। चाका साल्ट लेक अपनी मोटी नमक की परत और आईने जैसी सतह के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साफ मौसम में ये झील इतनी साफ तस्वीर बनाती है कि इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत साल्ट लेक्स में गिना जाता है। यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक इस जादुई नजारे को अपनी आँखों में कैद करने यहाँ आते हैं। प्रकृति जब अपने रंग बिखेरती है तो शब्द भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। चीन की चाका साल्ट लेक का ये नजारा भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है कि आसमान और धरती के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन।

0: देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कांवड़ यात्रा में दिख रहे आस्था के अनूठे रंग, सहारनपुर में मां को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कर रहा परिवार, नोएडा में 5 बच्चों की टोली बनी आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बापा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। आरा के टीचर रवि कुमार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, हाथ से लिखी सबसे तेज अंग्रेजी वर्णमाला महज 9.15 सेकंड में रचा इतिहास। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज के 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देवघर से लेकर काशी तक, हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक, पूरा देश इन दिनों शिवमय नजर आ रहा है। कहीं बोलबम के जय घोष से वातावरण गूंज रहा है तो कहीं कांवड़ यात्रा में आस्था के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। सावन में चारों ओर शिव भक्ति का रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का समंदर। सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पावन महीना माना जाता है और यही वजह है कि देश भर में सावन के महीने में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। गंगा जल लेकर कांवड़िए बोल बम के जय घोष के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।
2: कांवड़ यात्रा में आस्था का समंदर, यात्रा मार्ग पर अनोखे निराले शिव भक्त, कहीं गोल्डन बाबा तो कहीं बाहुबली कांवड़। देवघर से लेकर काशी तक सावन के अद्भुत रंग बिखरे हैं। लाखों श्रद्धालु बोलबम के जय घोष के साथ बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं गोल्डन बाबा अपनी अनोखी छटा से लोगों का ध्यान खींच ले रहे हैं।
3: बोल शंकर भगवान की जय,
4: बोल नीलकंठ महाराज की जय।
2: तो कहीं बाहुबली थीम की कांवड़ आस्था को नया रूप दे रही है। सावन का ये पावन महीना सिर्फ पूजा अर्चना का नहीं बल्कि शिव भक्ति के अनगिनत और निराले रंगों का भी उत्सव बन गया है। मुजफ्फरनगर में एक शिव भक्त अपने कंधों पर गोल्डन बाबा को बैठाकर यात्रा करता नजर आया। बाबा के पूरे शरीर पर सोने जैसे चमकते आभूषण सजे नजर आए। इतना ही नहीं, कंधे पर लेकर चल रहा शिव भक्त भी गोल्ड ज्वेलरी पहने दिखा। बताया जा रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड 24 कैरेट सोने के आभूषण है जिनकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए है।
5: ये मेरी एक गोल्ड की कावड़ी लगाओ आप, क्योंकि इसके ऊपर जो चैने पहनी है, बोलने मैंने पहनी है, ये गोल्ड प्लेटेड होती है 1 ग्राम।
2: सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा के दौरान एक से बढ़कर एक विशाल और आकर्षक कांवड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे कांवड़ियों की बड़ी बड़ी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कहीं भोलेनाथ के विशाल कांवड़ दिख रहे हैं तो कहीं मोर और अलग अलग धार्मिक आकृतियों से सजी कांवड़ लोगों का ध्यान खींच रही है। इन विशाल कांवड़ों को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ भी जुट रही है। इसी कड़ी में श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कांवड़ में बाहुबली के साथ बंदरों और अगरनाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। कांवड़ को बेहद भव्य तरीके से तैयार किया गया है और इसकी ऊंचाई करीब 9 फुट बताई जा रही है।
6: इनमें बाहुबली हैं, 2 बंदर हैं जी, और 2 कार्तिक गणेश है, 2 घोरी हैं और अगरनाथ जी हैं, 2 बंदर हैं। ये कांवड़ है जी, क्या अपना 9 फिट की है।
2: आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर सवाई माधोपुर में भी देखने को मिल रही है, जहां हर साल की तरह इस बार भी भव्य महाभगवा कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। 13वीं महाभगवा कांवड़ यात्रा शहर के राम द्वारा से शुरू हुई, जो शहर के खंडार 13 सदर बाजार पुलिस चौकी होते हुए मेन रूट से दंडवीर बालाजी मंदिर पहुंची, जहां कांवड़ यात्रा में शामिल साधु संतों का भव्य स्वागत हुआ। कावड़ यात्रा के अद्भुत रंग हरिद्वार में भी बेहद निराले रहते हैं। यहाँ भी कावड़ मेले के प्रथम दौर में जहाँ पैदल और कलश कावड़ लेकर जाने वाले कावड़ियों की भीड़ थी, तो वहीं अब पैदल कावड़ के साथ भव्य कावड़ लेकर जाते भोले दिखाई पड़ रहे हैं। हाईवे पर बड़ी बड़ी कावड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते कावड़िये हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ज्यादातर कावड़ में भगवान शिव अलग अलग स्वरूपों में है, कोई भक्त भोले बाबा की बड़ी प्रतिमा के साथ, तो कोई भगवान शिव के पूरे परिवार की मूर्तियों की झांकी बनाकर ले जा रहा है। ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा भर नहीं, बल्कि शिव भक्ति के अनगिनत रंगों और असीम श्रद्धा का जीवंत उत्सव है। सहारनपुर से राहुल कुमार, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: पूर्वांचल में भी एक तरफ जहां सड़कों पर कावड़िये दिखाई दे रहे हैं जो अपने आराध्य का जलाभिषेक करने के लिए पवित्र जल लेकर मंदिरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों के जरिए भी कावड़िये जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए रेल विभाग की ओर से खास व्यवस्था की गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर रेलवे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले रेलवे के अहम स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ अतिरिक्त रेल कर्मियों की तैनाती भी की गई है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है।
7: आस्था, उमंग और उल्लास से सराबोर ये तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दिनों महादेव के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में कावड़ और जुबा पर बोलबम का जय घोष पूरे स्टेशन को शिवमय बना रहा है। कोई कावड़िया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए काशी की ओर बढ़ रहा है, तो कोई देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम जाने के लिए रवाना हो रहा है, तो कोई पावन गंगा जल लेकर अपने शिवालय की ओर लौट रहा है।
8: बढ़िया व्यवस्था है मंगल सराय दीनदयाल उपाध्याय से, इसलिए पकड़े कि यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया लगता है और यहाँ हम लोग ट्रेन में बहुत सुरक्षित से हैं और बाबा धाम के लिए हम लोग जा रहे हैं।
9: आप पहली बार जा रहे हैं?
8: पहली बार जा रहे हैं। हमारे गाँव के लोग बहुत सारा ऐसे बताते हैं कि कठिन है, लेकिन बहुत बढ़िया से जा रहे हैं हम लोग। अब
10: रेलवे में बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, सभी लोग को कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है। बाबा का नाम लेते हुए बोलबम बोलते हुए सब लोग आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
7: स्टेशन पर मौजूद हर कावड़िये का चेहरा उत्साह से भरा है, हर कदम में भक्ति का जोश है। आस्था के इस रंग में कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए रेलवे विभाग ने भी पूरी तैयारी की हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के मंडल कार्यालय में अत्याधुनिक वॉर रूम स्थापित किया गया है। यहाँ से 24 घंटे सातों दिन ट्रेनों की आवाजाही, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन समेत पूरे मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।
11: इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के दफ्तर में। यहां पर आप देख सकते हैं वार रूम बनाया गया है स्पेशली सावन को देखते हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से बिहार, झारखंड, उड़ीसा की तरफ ट्रेनें आती और जाती हैं। देवघर जाने वाले श्रद्धालु यहां से ट्रेन पकड़ रहे हैं और जो तमाम स्टेशन हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो, गया हो, सासाराम हो, डेहरी आनसोन हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिए गए हैं प्लेटफॉर्म्स, और उसकी मॉनिटरिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के डिविजनल ऑफिस में वार रूम में हो रही है।
7: दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एक अहम रेलवे स्टेशन है और यहां से सुल्तानगंज और भागलपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सवार होकर कांवड़िया देवघर की तरफ रवाना होते हैं। ऐसे में पूरे सावन के महीने भर यहां पर जबरदस्त भीड़ होती है। दूर दराज से चलकर कांवड़िया यहां पहुंचते हैं और यहीं से ट्रेन पकड़कर सुल्तानगंज के लिए रवाना होते हैं, जहां से गंगा जल लेकर कांवड़िये पैदल देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हैं।
12: यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ, जीआरपी व अतिरिक्त रेल कर्मचारियों को तैनात किया है, जिससे कि उनको हर तरीके की सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जा सके। और यात्रियों को या श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ को देखते हुए हमने रेक की उपलब्धता भी अतिरिक्त रेक की उपलब्धता रखी है।
7: सिर्फ सुरक्षा ही नहीं कांवड़ियों की आस्था का भी रेलवे ने पूरा ध्यान रखा है। डीडीयू जंक्शन पर फूड प्लाजा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ बिना प्याज और लहसुन का शुद्ध भोजन परोसा जा रहा है ताकि सावन के व्रत और धार्मिक परंपराओं का पालन करने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो। रेलवे की कोशिश है कि सफर के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ पौष्टिक और सात्विक भोजन आसानी से उपलब्ध हो सके और किसी भी कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
0: शिरडी से एक बड़ी और अनोखी खबर सामने आई है। साईं बाबा मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिरों के निर्माण का फैसला लिया है। साईं भक्ति के केंद्र माने जाने वाले शिरडी में ये पहल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का नया आयाम जोड़ने वाली मानी जा रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। साईं मंदिर परिसर में रामकृष्ण का मंदिर, जी हाँ, आपको बता दें कि साई बाबा के भव्य दिव्य धाम शिरडी में अब केवल साई के दर्शन ही नहीं होंगे बल्कि श्रद्धालुओं को एक ही परिसर में श्री राम और श्री कृष्ण के दर्शन भी हो सकेंगे। शिरडी साई बाबा संस्थान ने मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम के मंदिरों के निर्माण का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंदिर प्रशासन का मानना है कि इस पहल से श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर विभिन्न स्वरूपों में सनातन परंपरा के दर्शन का लाभ मिलेगा। ये निर्णय धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंदिरों के निर्माण की योजना और स्वरूप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। श्रद्धालुओं के बीच इस फैसले को लेकर उत्साह का माहौल है और इसे शिरडी की आध्यात्मिक पहचान को और समृद्ध करने वाला कदम माना जा रहा है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान अच्छी बात है लेकिन अगर ये ज्ञान किसी रिक्शे वाले के पास हो तो कैसा रहेगा। दरअसल दिल्ली के चांदनी चौक में एक ऐसा रिक्शा वाला रहता है जो अंग्रेजी फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाओं में आसानी से बात कर लेता है। उसकी ये उपलब्धि उसे दूसरे रिक्शे वाले से अलग बनाती है। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है वो है विदेशी भाषाओं का ज्ञाता दिल्ली का रिक्शा वाला। खास बात यह है कि फराटे से इन भाषाओं में बात करने वाले इस रिक्शे वाले ने इन भाषाओं की कोई ट्रेनिंग कोई तालीम नहीं ली है और ना ही इनके पास कोई बड़ी डिग्री है। अगर कुछ है तो केवल जिज्ञासा और सीखने का जुनून।
9: चांदनी चौक जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये इलाका ऐतिहासिक धरोहरों चहल पहल भरे बाजारों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। इस इलाके की तंग गलियों में एक ऐसा आदमी भी है जिसने अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई है। इनका नाम है असलम। असलम पेशे से रिक्शा चलाते हैं लेकिन अंदाज ऐसा कि पर्यटक उन्हें चलता फिरता लैंग्वेज गाइड कहते हैं।
13: दिल्ली के चांदनी चौक की गलियां अपने खाने और शादी ब्याह की मार्केटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन आजकल चांदनी चौक की गलियां एक इंसान की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं जिनका नाम है असलम। असलम यूं तो चांदनी चौक के आसपास रिक्शा चलाते हैं लेकिन वो कई भाषाएं बोल लेते हैं, जर्मन बोल लेते हैं, इटालियन बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं और इसी वजह से आजकल वो बहुत वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम भी चांदनी चौक पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे असलम से और जानेंगे कि जितना वीडियो में बोलते हैं उतना ही है या फिर कुछ आगे का भी ज्ञान वो ले रहे हैं।
9: असलम की अंग्रेजी पर शानदार पकड़ है और वो जर्मन फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में पर्यटकों से अच्छे बात भी कर लेते हैं। यही खासियत उन्हें चांदनी चौक की भीड़ में सबसे अलग पहचान दिला रही है। असलम विदेशी मेहमानों से बेझिझक उनकी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। उन्हें चांदनी चौक की गलियों से लेकर दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत तक का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
14: ओल्ड दिल्ली रिक्शा इज मच बेटर, यूर वॉकिंग अलोन नेवर आइडिया, आई नो वेरी वेल योर होम, आई नो वेरी वेल आई एम दिल्ली, सो रिक्शा इज मच बेटर स्पीकिंग एंड ड्राइवर ऑल टुगेदर, सो यू आर हैप्पी, सो आई एम हैप्पी सर, यू आर माई गेस्ट।
9: कहते हैं कि अगर सीखने की लगन हो तो जिंदगी खुद सबसे बड़ी पाठशाला बन जाती है। न कोई बड़ी डिग्री, न किसी महंगे संस्थान की ट्रेनिंग, सिर्फ जिज्ञासा, मेहनत और सीखने का जुनून। यही कहानी है चांदनी चौक के असलम की।
14: हम जो है फॉरनर के साथ जो है हम सीखे हैं और उन्हीं में ढल गए, इसलिए हमें थोड़ा बोलना सीखना आ गया, पढ़ने लिखने नहीं आता है।
9: आज यही मेहनत और सीखने का जुनून उन्हें आम रिक्शा चलाने वालों से अलग पहचान दिला रहा है।
14: आई एम बिचकले ड्राइवर, सो बिचकलेता एंड रिक्शा बोलते हैं रिक्शा को, सो बिचकलेता एंड 220 दिल्ली ऑल इज द ओल्ड मरकातो, मरकातो स्पाइसिया, मरकातो प्लाता, मरकातो सारी, आला मिस्किता, टेम्पलो जैन, टेम्पलो हिंदू एंड ऑल्सो पिकोलो पिकोलो बाजार, सो इटालियन सो इज द स्पीक।
9: असलम की ये यात्रा संदेश दे रही है कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: और दुनिया भर में अपने शानदार कालीनों के लिए मशहूर भदोही अब पर्यावरण के अनुकूल कालीन निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। ऊन के साथ अब जूट की बुनावट भी भदोही के कालीनों को नई पहचान देने वाली है। कपड़ा मंत्रालय के अधीन जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भदोही में अपना आउटलेट शुरू किया है, जिससे कि उद्योग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है, भदोही के कालीन इंडस्ट्री को जूट का बूस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि हजारों करोड़ रुपए के कालीन निर्यात के लिए प्रसिद्ध भदोही का कालीन उद्योग अब एक नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन कार्यरत जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भदोही में अपना पहला आउटलेट शुरू कर दिया है। इस आउटलेट के खुलने से कालीन उद्यमियों और बुनकरों को अब एक ही जगह पर बेहतर गुणवत्ता का जूट आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही उन्हें जूट से कालीन और फ्लोर कवरिंग उत्पाद तैयार करने से जुड़ी तकनीकी जानकारी और सहयोग भी मिलेगा। अब तक भदोही की पहचान मुख्य रूप से ऊनी कालीनों के लिए रही है, लेकिन जूट की उपलब्धता बढ़ने से वूल और जूट के मिश्रण से पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के हिसाब से कालीन तैयार किए जा सकेंगे। सीडब्ल्यूजी में अपने देश का डंका बजाकर हमारे चैंपियंस स्वदेश लौट आए हैं। भारत लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है सीडब्ल्यूजी के धुरंधरों का भव्य स्वागत। जी हाँ, भारत माता के जयकारों के बीच फूल मालाओं से लदे इन मेडल वीरों का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जुटे फैंस के बीच तो इन विजेता खिलाड़ियों की एक झलक पाने की होड़ लगी रही।
1: प्रयासों के बाद मिली सफलता का जश्न है, ये जीत और मेहनत का मीठा फल है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद जब हमारे खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन चैंपियंस का शानदार और भव्य स्वागत हुआ। अपने चैंपियंस की जीत की खुशी ऐसी कि एयरपोर्ट पर ही ढोल नगाड़ों की गूंज ने माहौल बना दिया। भारत माता की जयकारों के बीच फूल मालाओं से लदे इन मेडल वीरों का स्वागत क्या खूब हुआ। फैंस के बीच तो अपने विनर एथलीट्स की एक झलक पाने की मानो होड़ सी लगी रही। इन पदक वीरों में शान से अपना गोल्ड मेडल पहने नजर आई मुक्केबाज प्रीति पवार, जिन्होंने 54 किलो वर्ग में भारत की झोली में गोल्ड डाला। बॉक्सिंग में ही एक और गोल्ड मेडल विनर प्रिया घंगास अपने जोरदार स्वागत को देखकर काफी खुश हुई और ग्लासगो कॉमनवेल्थ की तरह ही एशियन गेम्स में भी देश के लिए गोल्ड जीतने का संकल्प लिया। इस बार के ग्लासगो कॉमनवेल्थ में महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट रही जैस्मीन लंबोरिया भी, उनके लिए तो ये जीत किसी सपने के सच होने

0: स्वागत करने के लिए।
1: आपका अगला लक्ष्य क्या है?
0: अगला लक्ष्य अभी नेक्स्ट मंथ में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, फिर से भारत का तिरंगा लहराना।
2: ऐसा लग रहा है जैसे ही कोई सपना चल रहा है। इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स की। हमारे 10 मेडल आए जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, तो ये भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। जी अभी एशियन गेम्स हैं, हम उसके लिए तैयारी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे ही मेंटेन करें।
3: दरअसल ग्लासगो में भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग स्पर्धा ही रही। 14 मुक्केबाजों की टीम में से 10 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, इसमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर शामिल हैं। इन सफल भारतीय मुक्केबाजों में हिसार के अंकुश पंघाल भी रहे। अंकुश ने ग्लासगो में पुरुष 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को मात दी थी। उनका भी एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में देश के पैरा एथलीट्स ने भी खूब कमाल दिखाया। अपने देश का तिरंगा इन खिलाड़ियों ने भी खूब लहराया। ऐसे ही पदक वीरों की बेशुमार मेहनत और हौसले के बूते ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन रहा। 13 गोल्ड समेत कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत ने 4th स्थान हासिल किया। अब इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य है एशियन गेम्स, जिसकी तैयारी में अब भारत की ये चैंपियंस जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना की राणा बटालियन द्वारा अंतरग्राम खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस आयोजन में खेल भावना, एकता और सामुदायिक विकास के लिए एक शानदार मंच के रूप में उभरा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है गुरेज में ग्रामीण खेल महोत्सव का उत्साह। आपको बता दें कि इस इवेंट में कुल 15 गांव हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और अन्य खेल स्पर्धाओं में मुकाबला कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का मकसद एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, टीम वर्क को बढ़ावा देना और इलाके के युवाओं के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करना है।

0: होरेस की खूबसूरत वादियों में ये खेल प्रतियोगिता सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने की कोशिश है। गुरेज के हाई ग्राउंड बकतूर में इस इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भारतीय सेना की राणा बटालियन ने किया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: ये नामी के राणा बटालियन ने यहाँ पे जो ब्लॉक बकतूर है उसमें एक इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें तकरीबन पूरे ब्लॉक के 15 गांव हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ खेलों में, जैसा कि वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, सभी प्रकार की खेल में हिस्सा ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों के बराबर लड़कियां भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। ये एक नेक शगुन है यहाँ के लिए कि लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर में अभी खेल रही है।
0: मैच फुटबॉल का हो या वॉलीबॉल का, हर खेल में नौजवानों का उत्साह देखने लायक था। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट में स्थानीय गांव की लड़कियों ने भी खेल में अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
2: इंडियन आर्मी के बहुत ही मशहूर हैं, जिन्होंने यहां पे इंटर विलेज सपोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का इनेकाद जो 16 जुलाई से किया था, उसमें बहुत सारी गेमें कराई गई, जिसमें बॉयज़ का फुटबॉल, गर्ल्स का बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज बॉयज़ का इज़मरक वर्सेस जिलिंडोरा के माबेन वॉलीबॉल खेला गया, तो उसमें इज़मरक ने विन दर्ज की। तो इससे यही दर्शाता है कि यहाँ के बॉयज़ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को आगे लाने के लिए, और इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की ओर न जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो गेम्स में हिस्सा लें।
0: गुरेज में एक महीने तक चलने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी। अब 15 अगस्त के मौके पर इस स्पोर्ट्स इवेंट का भव्य समापन होगा। इस इवेंट में 15 गांव के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी टीम वर्क को और मजबूत करना है। खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ ये फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है।

0: फेस्टिवल के दौरान सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले गांव और सबसे ज्यादा साफ सफाई रखने वाले गांव को भी सम्मानित किया जाएगा।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर गुरेजघाटी में बख्तूर गांव में विलेज सपोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नियंत्रण रेखा पर रहने वाले गांव के बच्चों और बच्चों ने इस सपोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लिया। दरअसल ये एक पहल है नशा मुक्त भारत बनाने की, जिसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही किया था।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: पुलिस ने पकड़ा तो जूता मारकर भागा युवा। सीजेपी के संसद मार्च में पुलिस वाले पर जूते से वार। बाढ़ में डूबी मस्जिद से अजान। मां के सपने को बेटे ने दी उड़ान। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगी भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़।
1: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है, नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचो समझे बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली का है, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को जूता मारकर भाग गया, क्या है इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए असम की बाढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया, क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और
1: एक पुलिस वाले को जूते से मारकर भागते लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांग मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नए शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। इन सब के बीच एक पुलिस वाले को जूते से मारकर सरपट भागते लड़के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च के संदर्भ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो में किसी सड़क पर खूब भीड़ दिख रही है और आपाधापी का माहौल है। एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता दिखता है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक हर जगह ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च का बताकर खूब शेयर किया जा रहा है। जहां कई लोग इसे जेंजी की हरकत बताते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने पहले लड़के को लात मारी, इसलिए लड़के की हरकत सही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवक एक पुलिसकर्मी को जूते से मारकर भागते हुए नजर आ रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का वीडियो है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने हालिया संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में एक जगह एसटीईटी और बिहार लिखा हुआ है। यह देखकर हमें लगा कि ये बिहार में एसटीईटी यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े किसी प्रदर्शन से संबंधित हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम की नजर वीडियो में दिख रहे पुलिस वाले की वर्दी के बैच पर भी गई। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस पर बिहार पुलिस लिखा हुआ था। इससे ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो बिहार का ही है। इसके अलावा सर्च के दौरान भी हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल की प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई दिल्ली का ये वीडियो होता तो फिर ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर होती खबर, लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला जहां इसे 16 अगस्त 2025 को पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये पटना में हुए एसटीईटी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। जनसुराज पार्टी ने भी 7 अगस्त 2026 को ये वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में लिखा हुआ था कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने से रोकना है तो जनता को नीतीश बीजेपी को सबक सिखाना होगा। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 7 अगस्त 2025 की छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पटना के जेपी गोलंबर इलाके का है, जहां सैकड़ों अभ्यर्थी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस वजह से इलाके में जाम लग गया था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि ये वीडियो ना तो हाल फिलहाल का है और ना ही दिल्ली का है। ये बिहार की राजधानी पटना का अगस्त 2025 का वीडियो है, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा था। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: असम में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और इसी से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को बाढ़ में डूबी हुई और टूटी हुई मस्जिद पर खड़ा हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम का है, जहां एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: असम में मॉनसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य के 5 प्रमुख जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और चराईदेव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, एक मीनार और गुंबद बचा हुआ है। इसी मीनार के पास खड़े होकर एक शख्स अजान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को असम का बताकर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भीषण बाढ़ में एक मस्जिद बह जाने की कगार पर है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ अजान जारी है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ से मुतासर एक मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जा रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो असम का है, जहां पर बाढ़ में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मस्जिद के एक शख्स अजान देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हाँ, ये बात सच है कि असम में मॉनसूनी सीजन में कई दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण जिले के कई इलाकों में भयानक बाढ़ आई हुई है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और नगांव जिले में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई लोगों की जान भी चली गई है, तो वहीं हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीडियो वायरल हुआ। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में कई ऐसी गलतियां हमें नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो की असलियत पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर बाढ़ के पानी में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है, वीडियो का हर फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है, सही है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 20 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इस पोस्ट में AI का लेबल लगा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के ऊपर गूगल जेमिनी का एक वाटर मार्क भी नजर आ रहा है। ये वाटर मार्क उन वीडियो या तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल AI के जरिए बनाया या एडिट किया जाता है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 99% संभावना बताई। साफ है, वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ। ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: सैलाब संकट से बचाने आया हीरो, सावन शिव और अनोखी कांवड़, तिरंगे का बढ़ाया मान, घर लौटने पर सम्मान। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में।
11: आज की फ्लाइट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों? देखो फिर
12: चलें, फिर लेट नहीं हो सकते आज।
13: एक बेटे ने अपनी माँ के लिए ऐसा खास सरप्राइज तैयार किया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। माँ के चेहरे की खुशी और बेटे की आंखों में दिखता गर्व लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल वीडियो में एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा अपनी जिंदगी का एक यादगार पल शेयर करते नजर आते हैं।
11: बचपन में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था।
13: उन्होंने पहली बार अपनी माँ को उसी विमान में सफर कराया जिसकी कमान खुद उनके हाथों में थी।
14: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रही
11: हूँ। आगे हजारों पैसेंजर्स को उड़ाऊंगा अपने साथ, बट मेरी फेवरेट यात्री तो यही रहेंगी।
13: यह अनुभव केवल एक उड़ान नहीं बल्कि माँ के वर्षों के त्याग और बेटे की मेहनत का खूबसूरत संगम बन गया। वीडियो की शुरुआत तनिष्क के पायलट की वर्दी पहनने से होती है। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। पूरे रास्ते माँ के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई देता है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद दोनों साथ साथ बोर्डिंग गेट तक जाते हैं। उड़ान शुरू होने से पहले तनिष्क अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे। इस पर माँ का जवाब बेहद सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला होता है।
14: आराम से फ्लाई करना।
13: वह कहती हैं, सुरक्षित उड़ान भरना और अपना ध्यान रखना। माँ के इन शब्दों में चिंता, प्यार और आशीर्वाद तीनों साफ झलकते हैं। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उसे प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसमें नन्ना बच्चा जापानी लाइन मेथड की मदद से बेहद आसान तरीके से गुड़ा का सवाल हल करता दिखाई देता है। उसकी समझ, आत्मविश्वास और सवाल हल करने का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में बच्चा अपनी कॉपी पर 234×2 का गुणा करता नजर आता है। पहली नजर में ये नॉर्मल मैथ्स के सवाल जैसा लगता है, लेकिन इसे हल करने का तरीका हर किसी को चौंका देता है।
14: 234×2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8: बच्चा ना तो क्लासिक तरीके से मल्टीप्लाई करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेता है। वह रंग बिरंगे स्केच पेन निकालता है और सबसे पहले पहली संख्या के हर रंग के हिसाब से सीधी लाइनें बनाना शुरू करता है। पहले दो लाइनें, फिर तीन और आखिर में चार लाइनें खींचता है। इसके बाद वह दूसरी संख्या यानी दो के अनुसार दो आड़ी लाइनें बनाता है। ये आड़ी लाइनें पहले से बनी सभी सीधी लाइनों को काटती हुई गुजरती हैं। जब पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है तब बच्चा उन सभी जगहों को गिनना शुरू करता है। जहाँ लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है यानी वे इंटरसेक्शन की संख्या के आधार पर उत्तर निकालता है। गिनती पूरी होते ही वे क्रम से अंक लिखता है और कुछ ही पलों में कॉपी पर 468 लिख देता है।
15: 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4।
8: यही इस सवाल का सही उत्तर भी है। वीडियो देखने वाले कई लोग इस अनोखे तरीके को देखकर हैरान रह गए।
15: 4, 6, 8।
16: गुड बाय,
15: वेलकम।
8: इस बच्ची की वायरल तस्वीर बता रही है कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है। क्रिकेट खेल रही इस बच्ची की शुरुआत की चार बॉल्स तो मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खेल में कमबैक करती है और हर बॉल को उसके मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। दरअसल बच्ची की चार बॉल मिस हो जाने के बाद भी उसकी गिव अप ना करने की हैबिट और उसका कंपोज व्यवहार सबको अट्रैक्ट कर रहा है। इस छोटी बच्ची का कूल व्यक्तित्व सबको लुभा रहा है और यूजर्स उसमें भविष्य का क्रिकेटर देख रहे हैं।

0: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने अपनी अनोखी सोच और बच्चों के प्रति सम्मान भरे व्यवहार से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहा ये वीडियो तंजानिया के बुईगिरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड का बताया जा रहा है। स्कूल में नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक वाक्ती जोसेफ कलोंडा हर सुबह अपने छात्रों का स्वागत एक ऐसे अंदाज में करते हैं जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे धूल भरे रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर आते हैं शिक्षक उनके सामने झुक जाते हैं और एक कपड़े से उनके जूतों की धूल साफ करने लगते हैं। इसके बाद वे हर बच्चे से मुस्कुराकर बात करते हैं और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल में दिन की शुरुआत ही सकारात्मक सोच और सम्मान के साथ होती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: जी, इसके पहले कभी भी जीवन में समुद्र नहीं देखे हैं और मैं समुद्र तट पे लेके आया हूं उनको। बाबूजी का पहला रिएक्शन देखते हैं।
0: एक बुजुर्ग के पहली बार समंदर के किनारे पर घूमने के वीडियो ने इंटरनेट की जनता को एक ही पल में भावुक और खुश कर दिया है। दोनों इमोशन महसूस करा दिए हैं। बेटा अपने पिता को उड़ीसा के कोनार के चंद्रभागा बीच लेकर पहुँचता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर समंदर को नमन करते नजर आते हैं।
1: ठीक है हम लोग।
0: जब पानी बुजुर्ग शख्स के पैर को पहली बार छूता है तब उनका भूलापन देखने को मिलता है। वे झुककर पानी को अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस बीच जब पानी लगातार उनके पाँव को छू रहा होता है तो उनके खुलकर हंसने की आवाज़ सुनने को मिलती है।
1: देखना रह गया था।
2: सपना देखी कभी नहीं हम देखे।
1: चंद्रभागा बीच कोणार्क में और बाबूजी अनुभव ले रहे हैं पहली बार समुद्र के पास। पानी आ गया। पानी।
0: पढ़ने का मतलब यह नहीं कि जुनून भी खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने बास्केटबॉल कोर्ट पर ऐसा कमाल दिखाया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनका शानदार अंदाज और गजब का कॉन्फिडेंस अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बास्केटबॉल दादाजी के हाथों में पहुंचती है उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है वह सचमुच देखने लायक होता है। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बास्केटबॉल को शानदार तरीके से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बॉडी पोस्चर और ड्रिबलिंग स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बरसों के अनुभवी बास्केटबॉल प्लेयर हों। जैसे ही वे बास्केट नेट के पास पहुंचते हैं वे बिना एक पल गवाए गेंद को बास्केट की ओर उछाल देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। पहले तो गेंद बास्केट नेट के रिम पर जाकर टकराती है और फिर वह वहां से बाउंस बैक होकर ठीक दूसरी तरफ लगे बास्केट नेट में जाकर सीधे गोल हो जाती है। इस असंभव से दिखने वाले और बेहद यूनिक शॉट को देख कोर्ट पर मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले दर्शक हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर एक साधारण इंतजार का पल एक यादगार पल में बदल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉबी सलादी नाम का एक आर्टिस्ट एयरपोर्ट पर बैठी एक अनजान महिला का चित्र चुपचाप बना रहा है। स्केच पूरा होने पर कलाकार उसे महिला के बगल में बैठे पुरुष को सौंप देता है जो उसे महिला को दे देता है। अपने चित्र को देखकर वो मुस्कुराते हुए कलाकार को थैंक यू बोलती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: क्या सावन में अपने घर पर रहकर के ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जा सकती है? ज्योतिर्लिंगों की पूजा का क्या होगा विधान और ज्योतिर्लिंगों की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से,
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैसे रेस्क्यू चल रहा है और कौन कौन लोग मदद करने के लिए आ गया है, आज आपको राहत की तस्वीरें दिखाएंगे। सावन में आस्था का अद्भुत नजारा देखिए, अनोखे कावड़ कैसे बने चर्चा का विषय और क्या है संदेश इसके पीछे वो भी जानिए। और वतन वापसी पर कॉमनवेल्थ खेलों में पदक वीरों का सम्मान। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया, सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म।

देशभर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। इस वक्त देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कश्मीर से लेकर केरल तक राहत और बचाव एजेंसियां लोगों की मदद में जुटी हैं। लेकिन बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वोत्तर के राज्य असम में देखने को मिल रहा है, जहां पर 7 जिलों के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी मदद के लिए सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा नेता, अभिनेता, समाजसेवी, उद्योगपति और शिक्षक तक आगे आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक्टर रणदीप हुड्डा की हो रही है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं।

0: बाढ़ संकट से जूझ रहे पूर्वोत्तर के राज्य असम के 7 जिलों में बीते कई दिनों से जिंदगी बचाने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस काम में सेना से लेकर पुलिस तक और एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक लगी हुई है। कहीं लोगों को रेस्क्यू कर राहत कैंपों में पहुंचाया गया है और कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने के सामान और जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। कोशिश यही है कि मुसीबत की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। मदद के इस काम में इन सरकारी एजेंसियों के अलावा कई जाने माने चेहरे भी सामने आए हैं। इन्हीं में एक है अभिनेता रणदीप हुड्डा, जो बीते कई दिनों से बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर लोगों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं। ये तस्वीर शिवसागर जिले की है, जो बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। यहाँ रणदीप हुड्डा ग्लोबल 6 नाम की संस्था के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद कर रहे हैं।
1: यहाँ पे राशन काफी पहुँच गया है लोगों को, बहुत लोगों ने मदद की है, जिससे एवरीबॉडी इज थैंकफुल। पर बाकी चीजें जो ग्लोबल 6 की टीम ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी हैं, जैसे किचन यूटेंसिल्स, चप्पल, एसेंशियल डेली एसेंशियल्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने भी आए हैं।
2: ग्लोबल 6 की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए, जिससे भी पूछा, उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल 6 की बोट आती है लोगों के घर पे, तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है, उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे असम में अपना कंट्रीब्यूशन करने आया हूँ।
0: पर्दे का ये हीरो जब असल जिंदगी में रियल हीरो बनकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा, तो इसकी हर किसी ने तारीफ की। सोशल मीडिया पर रणदीप हुड्डा के इस प्रयास की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने लोगों से अपील की कि वो असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए, ताकि बाढ़ के कारण बेघर हो चुके लोगों की मदद की जा सके।
1: दर्द हो रहा है देख के कि कितना नुकसान हो गया है, कितना पानी आ गया है, कितने गांव डूब गए हैं। तो सभी को आगे आके हेल्प करनी चाहिए, और मैं ग्लोबल 6 के माध्यम से यहाँ पे आके जो मुझसे बन पाए मैं करने के लिए आया हूँ। बॉलीवुड से हूँ चाहे नहीं, सभी को मदद करनी चाहिए। अपने देश का हिस्सा में अगर इतना बड़ा कोई आपदा आती है, तो उसमें सबको आगे आके हेल्प करनी चाहिए। आप कई तरीकों से हेल्प कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप मॉनेटरी हेल्प भेज सकते हैं, आप खुद आके हेल्प कर सकते हैं। वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है।
0: रणदीप हुड्डा की तरह ही बॉलीवुड के कुछ और जाने माने कलाकारों ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जिनमें सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, भूमि पेडनेकर से लेकर गुरु रंधावा जैसे कलाकार शामिल हैं। इन फिल्मी कलाकारों के अलावा कारोबारी अनन्या बिरला और फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें ये जाने माने लोग बाढ़ प्रभावितों के बीच जाकर खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें बांट रहे हैं। इस तरह देश के कई जाने माने उद्योगपतियों ने भी असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो बीते 2 दिनों से चराईदेव और शिवसागर जिले में राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर तो कभी बोट पर सवार होकर वो बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है और जल्द ही बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी।
3: मैं बाढ़ परिस्थिति को अपना आंखों से देखा, लोगों को बहुत मदद का जरूरत है, हम लोग मदद करने का पूरा भरपूर कोशिश करेगा।
4: बात तो बोला है सेमसर ने कि यहाँ पर जो अभी तकलीफ हुआ है, उसके लिए अभी सीएम सर आया था हम लोग इधर में, तो नेपाली खुटी सिग्नल बस्ती में, तो बोला है कि ये तकलीफ जैसा भी हो, आपका घर और जिसका टूट गया है, वो सब ठीक कर देगा।
5: हमारी किताब वगैरह सब खत्म हो चुका है, घर तो है ही नहीं। उनके बारे में बात किया है हमने उनसे, मतलब तो उन्होंने बोला है कि हम देंगे, तो उनके ऊपर ही भरोसा है।
6: मैं तो अभी 12th में हूँ, इस बार मैं फाइनल दूंगी, लेकिन मेरे पास किताब भी नहीं है जो मैं पढ़ के मैं किताब मतलब एग्जाम दूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज में फीस दूँ ये दूँ। तो हम स्टूडेंट्स को भी थोड़ा हेल्प कीजिए, और जिसका घर टूट गया उसको हम लोग को थोड़ा सा हेल्प चाहिए, घर बना दीजिए, बस इतना ही चाहिए हमको।
0: असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों के बीच जिन इलाकों से पानी उतर गया है वहां साफ सफाई का काम भी तेज कर दिया गया है ताकि लोग अपने घरों को लौट सके। हालांकि अभी इस काम में काफी वक्त लग सकता है, ऐसे में लोगों से बीमारियों से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जोरहाट से पूर्णा विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: सावन का पहला सप्ताह, कावड़ यात्रा की रौनक देखने को मिल रही है। भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक है। हरिद्वार हो या फिर सुल्तानगंज, कावड़ियों की अलग ही छटा नजर आ रही है। कावड़ मार्गों पर एक से बढ़कर एक कावड़ देखने को मिल रहे हैं, और इनमें से कुछ अनूठे हैं तो कुछ भव्य और विशाल। कावड़ यात्रा के तमाम अनोखे रंगों को समेटती हमारी रिपोर्ट देखिए।

ये रंग, ये उत्साह, त्याग और साधना सब महादेव के लिए है। पवित्र नदियों का जल पात्रों में भरकर नंगे पांव कावड़ उठाए चल पड़े हैं शिव भक्त। महादेव को रिझाने, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भाव जताने, सावन के पावन माह में कांवड़ियों का ये जोश देखते ही बनता है। पांव में घुंघरू, कांधे पर कांवड़ उठाए, बम बम भोले का जय घोष करते कांवड़िया मानो भगवान शिव का साक्षात्कार करने चले हों। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। और देखने को मिल रही है कांवड़ों की अनोखी सजावट और महादेव में कांवड़ियों की अटूट आस्था के कई रंग। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। माँ गंगा के तट पर यहाँ इन दिनों कांवड़ियों का जमघट है और झांकियां सजी हैं अनूठे और भव्य कांवड़ों की। एक से बढ़कर एक अनूठी, भव्य और विशाल। कोई अपनी कांवड़ यात्रा में भगवान महाकाल को साथ लेकर चले हैं, तो किसी के कांवड़ पर वीर बजरंगी विराजे हैं। कहीं आदि योगी ध्यान में लीन है, तो कहीं भगवान विष्णु का नरसिंह रूप गर्जना कर रहा है। औघड़ दानी शिव का ये रूप देखिए, नरमुंडों के बीच सिर पर चंद्रमा और माथे पर त्रिपुंड सजाए, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो तीनों लोकों की डोर थाम कर बैठे हों। ये कांवड़ जहाँ जहाँ से गुजर रही है देखने वाले सिर झुकाकर महादेव को नमन कर रहे हैं।

0: अध खुली पलकें, होठों पर मंद मुस्कान, माथे पर तिलक, महादेव का ये आनंदमय आदियोगी स्वरूप भक्तों का मन मोह रहा है। भगवान यहाँ अपने महाकाल स्वरूप में भी है। सामने नंदी भी भगवान की सेवा में हाजिर हैं। भगवान के इस आनंदमय स्वरूप को केवल मन में बसा कर ही नहीं, कांवड़ में अपने साथ लेकर चले हैं शिव भक्त। ये कांवड़ अपने आप में अनूठा है। यात्रा भले ही महादेव के लिए है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार वाली कांवड़ सजाई गई है। और भगवान नरसिंह का रूप भी ऐसा मानो दुष्टों पर अभी काल बनकर टूट पड़ेंगे। आवाज नहीं है, लेकिन मूर्ति ऐसी जीवंत की गर्जना सुनाई दे जाए। इस विशाल कांवड़ में भगवान शिव भी संहारकर्ता की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हरि और हर का मेल भी तो अनूठा है। भक्त जिस भाव से भगवान को देखें, मूरत उस भाव में ढल जाती है। इन्होंने भगवान शिव का पूरा परिवार अपने कांवड़ में सजाया है और चाहत यही है कि उनके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे।
1: जी यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ, पहले भी जो मांगा वो मिला है, भोले बाबा से।
2: भगवान की जय।
3: पूरे परिवार को, पूरे सब भोलों को अच्छा रखे, बस हमें यही गुपिता
1: है। लेके जाओगे कुछ?
3: हाँ जी, नहीं बोले अभी तक कोई कष्ट आया नहीं, बाकी और बाबा की कृपा है।
0: एक महादेव के कितने रंग, महादेव की सुंदर छवि देखिए। पीछे गरुड़ सेवा में है और आगे माँ गौरी संग विराजे हैं। इस कांवड़ को सजाने में इस भक्त को करीब 2 लाख रुपए लग गए, लेकिन कोई फिक्र नहीं, महादेव का दिया महादेव को समर्पित। यही भाव लेकर सजा लिया कांवड़। कहते हैं भोलेनाथ का दिया सब कुछ है, कुछ मांगने की क्या जरूरत।
3: लग गया 1.5 से 2 लाख रुपए लग गए हमारे सिर्फ कांवड़ कांवड़ के। डीजे अलग वो सब मिला के।
1: क्या मन में है कांवड़ ले जा रहे हो?
3: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
1: पहले भी आ चुके
3: हो? हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
1: मांगा था जो पूरा हुआ है?
3: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
1: कितने लोग आए हो?
3: भोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी बहुत सारी, 12-13 बच्चे बहुत सारे, सब आ रखे 40-45 बोले हमारे साथ।
0: रावण की गिनती भोलेनाथ के अनन्य भक्तों में होती है, यहाँ उनकी भी झलक देखने को मिल रही है। महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न है और रावण ने कैलाश पर्वत को ही अपने सिर पर उठा लिया है और इस सुंदर दृश्य को एक शिव भक्त ने कांवड़ में सजाकर कांधे पर उठा लिया है। हरिद्वार के इस कांवड़ मेले में अयोध्या और केदारनाथ मंदिर की झांकी वाली कांवड़ भी देखने को मिल रही है और ये है वीर बजरंगी वाली कांवड़ जिसे हरिद्वार से अंबाला ले जाया जा रहा है। ये इनकी पहली विशाल कांवड़ यात्रा है। उनके इस भव्य कांवड़ में 9 फीट ऊंचे बजरंगी विराजे हैं, साथ में औघड़नाथ, माता गौरी, भगवान गणेश और कार्तिकेय भी हैं। और पहरेदार बने हैं 2 बंदर। कोई मन्नत नहीं थी, बस चाह जगी और सजा लिया विशाल कांवड़। चल पड़े हरिद्वार से गंगा जल लेकर, मानो शिव की मर्जी, शिव का बुलावा, हम तो बस निमित्त मात्र हैं।
4: इनमें बाहुबली हैं, 2 बंदर हैं जी, और 2 कार्तिकेय है, 2 गौरी हैं और अघड़नाथ जी हैं, 2 बंदर हैं। ये कांवड़ है जी क्या अपना 9 फीट की है।
0: कोई विशाल कांवड़ लेकर चला है तो कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन राह चुन रहा है। इन 2 भाइयों को देखिए, कोई अपने कांवड़ में 81 लीटर गंगा जल लेकर तो कोई 101 लीटर गंगा जल लेकर हरिद्वार से चले हैं।
5: पहली बार में थोड़ी दिक्कत आई, उसके बाद वेट बढ़ता रहा तो अब जाके भगवान की कृपा और माँ बाप के आशीर्वाद से 111 लीटर जल उठाया है मैंने।
6: पहली कांवड़ कितने लीटर की थी?
5: बोले पहली मेरी 11 लीटर की थी।
6: 11 लीटर से 4 साल में 111 लीटर भरा?
5: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बोले।
6: तो इसके लिए पूरे साल की तैयारी करते हो, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट, क्या तैयारी रहती है?
5: बोले देखो, कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा इन 4 सालों में। भगवान की मर्जी होती है, उठाता हूँ और आ जाता हूँ सीधा उसके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद।
0: चेहरे पर मासूमियत, महाकाल के नाम वाली टी-शर्ट और कुर्ते, कांधे पर कांवड़ उठाए, भगवान भोले के इन नन्हे और बुजुर्ग भक्तों को देखकर तो आप बस यही कहेंगे, महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, सबकी मुराद पूरी हो, महादेव में आस्था बनी रहे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन वापस लौट रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत भी हो रहा है। परिवार, रिश्तेदार, स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेकर आम लोगों तक खिलाड़ियों के स्वागत में उमड़ रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित भी किया।

0: ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है। अपनों के बीच आकर
1: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है। इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे आगे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे।
1: काफी अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आई, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, कोचिज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
0: इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है।
4: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है,
5: इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए। और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है।
6: अगला टारगेट क्या है आपका?
5: अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है।
7: पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीत कर और अपने देश का तिरंगा लहराकर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं, सीना गर्व से चौड़ा हुआ है।
8: पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है

0: मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया।
1: कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे। उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहां से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वहां आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा। वहां आपको देश के न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहां तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ऐसे में वहां के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
2: ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं। इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़ें।
0: जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: क्या सावन में अपने घर पर रहकर के ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जा सकती है? ज्योतिर्लिंगों की पूजा का क्या होगा विधान और ज्योतिर्लिंगों की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबर।

0: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अगर आपको ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने का मौका मिल जाए तो सावन सफल होगा, भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर बैठे बैठे ही, घर पर रह कर के ही ज्योतिर्लिंगों की उपासना कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल तथा बुध फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं और इनकी उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में, निराकार स्वरूप में सबसे ज्यादा होती है। जहां इस लिंग स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर भगवान शिव के द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अधिक उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर रोज सवेरे केवल इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यानी इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी ज्यादा है कि इनका स्मरण करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इन ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनका चित्र लगाकर, इनकी प्रतिकृति लगाकर आप इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। ज्योतिर्लिंगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है।

कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा पर जा सकते हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप अपने घर में शिव जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाना चाहते हैं तो उसके नियम क्या हैं? भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का चित्र पूरब या पश्चिम की दीवार पर लगाइएगा और एक ही ज्योतिर्लिंग का बड़ा सा चित्र लगाएं। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंग का चित्र न लगाएं। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप ज्योतिर्लिंग का चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगाएं या सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि को लगा सकते हैं। जहां पर, जिस दीवार पर इस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, बेहतर होगा कि वहां पर कोई और चित्र या देवी देवता का चित्र स्थापित ना करें। एक दीवार पर एक ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं और पूरे सावन में या सामान्यतः हर सोमवार को इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ज्योतिर्लिंग की घर में पूजा कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने अपने घर की एक दीवार पर ज्योतिर्लिंग का एक बड़ा सा चित्र लगा लिया, अब इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा उपासना कैसे की जाएगी? ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखें, बड़ा सा भगोना या बड़ा सा टब। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें,
इसके बाद उसी पात्र में बेलपत्र, फल, फूल, धूप आदि अर्पित करें और ये भावना करें कि आप बेलपत्र, फल, फूल, धूप उसी ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालें और मन में ये भाव रखें कि आप ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का 3 माला नमः शिवाय का या 11 माला जप करिएगा और जप के बाद भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे अंत में पूजा के समापन पर 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेंगे और तब क्षमा प्रार्थना आप करेंगे और जो टब में सामान इकट्ठा हुआ है, जल, दूध, फल, फूल, ये सब ले जाके जल में प्रवाहित कर दें या पौधों की क्यारी में डाल दें। इस प्रकार से आप सावन में या जब भी चाहें किसी भी सोमवार को ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी, आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर में अपनी अलमारियों को और जूते कपड़ों को अस्त व्यस्त ना रखें। अगर आप जूते, कपड़े, अलमारी अस्त व्यस्त रखेंगे तो आपको अनावश्यक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
प्रातः काल गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: आपको दिखाते हैं सावन में गहरेबाजी के रंग। प्रयागराज में इक्को की रेस यानी कि गहरेबाजी हुई। संगम नगरी में सावन की पूजा के साथ ही इक्को की रेस की ये परंपरा बहुत पुरानी है। इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं।

0: सावन के पहले सोमवार पर आस्था के साथ दिखी विरासत की रफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज में सदियों पुरानी घरेबाजी की परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी।
1: इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सावन चूंकि देवाधिदेव महादेव का दिन पूरा एक महीना रहता है, हम लोग इसी घोड़े से गंगा स्नान करते थे, शिवकुटी महादेव में भोलेनाथ की पूजन करते थे और उसके बाद गहरेबाजी में अपना आनंद लेते थे। बहुत पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है।
0: अरैल क्षेत्र में आयोजित पारंपरिक इक्का दौड़ ने लोगों को रोमांच और संस्कृति का अनूठा संगम देखने का अवसर दिया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में घोड़ों ने अपनी शानदार चाल, संतुलन और अनुशासन का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।
2: सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एक पुरानी परंपरा है इक्का दौड़ की, जिसे यहाँ पर गहरेबाजी कहा जाता है। तो तमाम घोड़े, एक से एक नस्ल के घोड़े यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम जो इक्का चालक हैं अपने अपने घोड़ों को लेकर के आए हैं और तमाम वैरायटी के घोड़े हैं और यहाँ इक्का दौड़ हो रही है। इसको देखने के लिए तमाम दूर दराज से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये नया यमुना पुल है, यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है इस इक्का दौड़ को देखने के लिए आई है। तो यहाँ पर जो इक्के हैं इनकी चाल से इनको जाना और पहचाना जाता है। तो इस इक्का दौड़ में दूर दराज से लोग आते हैं, अपने घोड़ों का और इक्कों का प्रदर्शन करते हैं।
0: प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर इक्का दौड़ आयोजित करने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। इस प्रतियोगिता में जीत केवल तेज रफ्तार से नहीं बल्कि घोड़े की नपी तुली चाल, संतुलन और प्रस्तुति से तय होती है। खासकर सिंधी नस्ल के घोड़े अपनी आकर्षक और लयबद्ध चाल के लिए विशेष पहचान रखते हैं।
2: चाल देखी जाती है क्या?
3: चाल देखी जाती है, सिंधी चाल जो प्योर चाल है, बिगाड़े नहीं घोड़े। स्पीड कम ज्यादा रहे लेकिन चाल ज्यादा बिगड़े ना, भागे ना, फॉरवर्ड ना हो।
2: अच्छा, नस्ल क्या होती है घोड़ों?
3: नस्ल इसमें सिंधी बढ़िया चाल में दौड़ते हैं, जो मिक्स रहते हैं वो थोड़ा भागने लगते हैं बीच बीच में।
2: कितने सालों से इस इक्का दौड़ में शामिल हो रहे हैं आप?
3: कई साल से शामिल हो रहे हैं, घोड़ा हमारा अभी साल भर का है, बाकी पहले बहुत पुराना शौक है हमारे लोगों का हराना में।
0: प्रतियोगिता के दौरान चौटाला, दुगामा, सिंधी और माधुरी जैसी पारंपरिक चालों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं उड़ान और हीरा नाम के घोड़ों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी।
1: इसमें देखिए ज्यादातर तो सिंधी घोड़े होते हैं, सिंधी नस्ल के घोड़े होते हैं और उनकी चाल चौटाला होती है, दुगामा चाल भी होती है, लेकिन घोड़े ज्यादातर इसमें सिंधी नस्ल के ही आपको मिलेंगे, मारवाड़ी कम मिलते हैं इसमें।
0: स्थानीय लोगों के लिए गहरेबाजी केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रयागराज की सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। आज भी ये परंपरा पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है और नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने का सशक्त माध्यम बनी हुई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है? बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है? और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है? क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सोलह अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूर। अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन। देशभर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा भारी बरसात और मुश्किलों के बावजूद हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम के लिए उमड़ रहे श्रद्धालुओं के उत्साह की भी है।
9: पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम यात्रा का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु तमाम मुश्किलों के बाद भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उफनती अलकनंदा नदी के बीच और मौसम की चुनौतियों के बावजूद पवित्र बद्रीनाथ धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 15,57,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालु पूरे जोश से पहुंच रहे हैं। अब तक 2,25,000 से अधिक श्रद्धालु यहां मत्था टेक चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में श्रद्धालुओं ने अराई शिव मंदिर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा शुरू कर दी है। 85 किलोमीटर की ये पवित्र पैदल यात्रा पिछले 5 साल से लगातार हो रही है। आस्था की इस यात्रा में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है और श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे के जोश से आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल हैं। 5 साल पहले सिर्फ 11 लोगों से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 100 से ज्यादा श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। नई पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ना है इस यात्रा का मकसद। इस पवित्र यात्रा के लिए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ बकायदा कदम ताल कर रहे हैं। चंबा के रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ यहां लगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न हो गया है। मेले के आखिरी दिन सीएम सुक्खू ने विसर्जन की परंपरा का निर्वहन किया। मेले में सीएम सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक निकली पारंपरिक शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में हिमाचल की संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। मेले के समापन समारोह में यहां के स्थानीय कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति।

0: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर आदि पेरुक्कू उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें नवविवाहित जोड़ों और महिलाओं ने नदी की पूजा कर पीले धागे, फल और नैवेद्य अर्पित किए। ये त्योहार तमिल महीने आदि के 18वें दिन प्रकृति और जल स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। श्रीरंगम स्थित अम्मा मंडपम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां नवविवाहित जोड़ों ने पारंपरिक सुख और लंबी आयु की प्रार्थना की। साथ ही कावेरी नदी के तट पर केले के पत्तों पर मीठा पोंगल, नींबू चावल और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन भी अर्पित किए गए। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील इन दिनों देश विदेश से पहुंचे पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार है, जहां सैलानी ठंडी हवाओं के बीच पारंपरिक शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं और स्थानीय कारोबारियों व शिकारा चालकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। पर्यटक शांत लहरों पर तैरते शिकारों और खूबसूरत हाउस बोट्स का लुत्फ उठा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कश्मीर की ठंडी वादियों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों के आने से स्थानीय दुकानदारों, होटल मालिकों और नाविकों का व्यापार काफी अच्छा चल रहा है। जबरवान पर्वत श्रृंखला और चारों तरफ फैली हरियाली पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पानी पर तैरते बाजारों से लोग फूल, सब्जियां और हस्तशिल्प खरीद रहे हैं।
1: और अब बात करते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस की। कॉमनवेल्थ गेम्स में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीतने वाले एथलीट्स की भारत वापसी हुई, तो इन चैंपियंस का दिल्ली में भव्य स्वागत देखने लायक रहा। फैंस ने खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान खिलाड़ियों के परिवार वाले भी वहां मौजूद रहे और अब इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स है, जिसमें और अधिक मेडल हासिल कर देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस की जीत की खुशी ऐसी कि ढोल नगाड़ों की धुन से दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट गूंज उठा। भारत माता के जयकारों के बीच फूल मालाओं से लदे इन मेडल वीरों का जोरदार स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। इस दौरान खिलाड़ियों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। भारत पहुंचने पर कई खिलाड़ियों के परिजनों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया और प्रशंसकों में अपने विनर एथलीट्स की एक झलक पाने की होड़ सी लगी रही। ये खिलाड़ियों के अथक प्रयासों के बाद मिली सफलता का जश्न है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद जब हमारे खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन चैंपियंस का शानदार और भव्य स्वागत हुआ। इन मेडल विनर्स में शान से अपना गोल्ड मेडल पहने बॉक्सर प्रीति पवार नजर आए, जिन्होंने 54 किलो वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। बॉक्सिंग में ही एक और गोल्ड मेडल विनर प्रिया घंघास जोरदार स्वागत को देखकर खुशी से झूम उठी और ग्लासगो कॉमनवेल्थ की तरह ही एशियन गेम्स में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का संकल्प लिया। इस बार के ग्लासगो कॉमनवेल्थ में महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी बॉक्सिंग की गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन लंबोरिया रही। उनके लिए गोल्ड मेडल जीतना किसी सपने से कम नहीं था और अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना है।
1: सब लोग आए हैं हमें यहाँ पे रिसीव करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रीति को बोलते गर्ल विद गोल्डन पंच, तो अगला लक्ष्य क्या है?
1: नेक्स्ट अभी एशियन गेम्स है और LA 2028।
3: मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, मैं कोचिज को, फैमिली को और गांव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। अगला लक्ष्य है अभी नेक्स्ट मंथ में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, फिर से भारत का तिरंगा लहराना।
4: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है, इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
5: हाँ जी, ये इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स की। हमारे 10 मेडल आए जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, तो ये भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। जी अभी एशियन गेम्स हैं, हम उसके लिए तैयारी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे ही मेंटेन करें।
0: ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे सफल बॉक्सिंग स्पर्धा रही। 14 मुक्केबाजों की टीम में से 10 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, इसमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर भी शामिल रहे, जबकि CWG 2026 की मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहे भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीते हैं। खास बात ये है कि 13 गोल्ड मेडल में से 8 मेडल बेटियों ने जीते हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, पैरा एथलीट शर्मिला धनकड़ ने शॉट पुट में, अस्मिता डे ने जूडो में, तो वहीं साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंघस और अरुंधति चौधरी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया।
6: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ हमारी टीम की परफॉर्मेंस से। जैसा हमने उम्मीद किया उसमें 2-4% और हम ऐड कर सकते थे, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है वेट लिफ्टिंग की। एक्सेप्शन है मीरा, वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अकेली महिला है जिसने लगातार 4 मेडल लिए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। पूरे विश्व में अकेली महिला है जो उसके डिसिप्लिन और डेडिकेशन से संभव हुआ है, और प्लेयरों को उससे सीखना चाहिए कि एक अगर आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन से काम करते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।
0: इन सफल भारतीय मुक्केबाजों में हिसार के अंकुश पंखाल भी रहे। अंकुश ने ग्लासगो में पुरुष 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को मात दी थी। ग्लासगो से लौटने पर उनका भी एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ।
7: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी स्पोर्ट बनाए रखे और आगे भी ऐसे मेडल आते रहेंगे देश के लिए।
2: यहाँ पर आपका जो नेशनल एंथम बजा विदेशी दर्शकों पर, उस फीलिंग को बताइए, उस दर्शक को बताइए।
7: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में देश के पैरा एथलीट्स ने भी खूब कमाल दिखाया। अपने देश का तिरंगा इन खिलाड़ियों ने भी खूब लहराया।
8: बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है,
9: बहुत खुशी हो रही है। पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीत कर और अपने देश का तिरंगा लहरा कर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: ग्लासगो में भारत को पहला पदक दिलाने वाले झंडू कुमार अब देश लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले इस 28 साल के झंडू कुमार ने गरीबी, पोलियो और आर्थिक तंगी जैसे तमाम चुनौतियों को मात देकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीता। इन्होंने पुरुषों के हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये मेडल जीता।
10: आज तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद, तो आज हमें इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला मेडल हमने इंडिया के लिए दिया, अपना देश की झंडा लहराया, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अब इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स है, जिसकी तैयारी में ये चैंपियंस अब जुट गए हैं। देश के लिए मेडल जीतने का सपना, उसके लिए कड़ी मेहनत और फिर उसे पूरा होते देखना किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे खास और क्या हो सकता है। उनकी कड़ी मेहनत और तपस्या में परिवार की भूमिका भी कम नहीं होती। ऐसे में अब जब मेहनत रंग ले आई है तो खिलाड़ियों के घरों में भी जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: इंडिगो एयरलाइन ने पूरा किया 20 साल का सफर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2006 में अपनी पहली उड़ान भरने वाली इस एयरलाइन ने 2030 तक 550 से ज्यादा विमानों के बेड़े और हर रोज करीब 3000 उड़ानों के संचालन का बड़ा लक्ष्य रखा है। 4 अगस्त 2006 को दिल्ली, गुवाहाटी और इम्फाल मार्ग पर इसने अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। 20 सालों में कंपनी लगभग 90 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा दे चुकी है। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक रवि कुमार ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर धमाल मचा दिया है। वो सिर्फ 9.15 सेकंड में ए से जेड लिखकर बने दुनिया के सबसे तेज अल्फाबेट राइटर बन गए हैं। रवि कुमार ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में फास्टेस्ट टू राइट इंग्लिश अल्फाबेट्स इन अपर केस में रवि कुमार ने नाम दर्ज कराकर देश, राज्य, जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। रवि ने 26 मई को ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। रवि के दस्तावेजों की जांच के बाद उनको इसकी आधिकारिक मान्यता दी गई। पूरे विश्व में हजारों करोड़ की कालीन एक्सपोर्ट करने वाली भदोही के कालीन उद्योग में अब जूट से बने कालीनों के एक्सपोर्ट को नई गति मिलने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन आने वाली जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भदोही में अपना आउटलेट खोल दिया है। यहां से कालीन उद्यमियों को जूट से अलग अलग तरह की कालीन बनाने और उसके लिए जूट आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। अब भदोही में वूल और जूट मिक्सिंग से पर्यावरण के अनुकूल कालीन बनाने की उम्मीद भी जग गई है। आउटलेट के खुलने से अब कालीन निर्माताओं और निर्यातकों को जूट यार्न, जूट ब्लेंड और अन्य जरूरी रॉ मटेरियल्स एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। कावड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर में बाहुबली कावड़ चर्चा में है। श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली ये विशाल कावड़ देख लोग हैरान हैं। इस कावड़ में बाहुबली के साथ बंदरों और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। कावड़ को बेहद भव्य तरीके से तैयार किया गया है और इसकी ऊंचाई करीब 9 फुट बताई जा रही है। कावड़ लेकर चल रहे 12 लोगों की टीम हरिद्वार से गंगा जल लेकर अम्बाला जा रही है। टीम के लोगों का कहना है कि ये उनकी पहली विशाल कावड़ है और भोलेनाथ की इच्छा से उन्होंने इसे तैयार किया है। उनकी कावड़ में हनुमान जी, भगवान गणेश, कार्तिकेय, गौरी और बंदर की आकृतियां बनाई गई हैं।
11: और अब बात असम में बाढ़ और रेस्क्यू की। असम पर आई भीषण बाढ़ से हजारों परिवारों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बाढ़ ने घर, खेत और रोजगार सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन संकट की इस घड़ी में मदद के लिए कई हाथ भी आगे आए हैं और इनकी मदद के लिए सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा नेता, अभिनेता, समाजसेवी, उद्योगपति और शिक्षक तक आगे आए हैं। कारोबारी अनन्या बिरला, एक्टर रणदीप हुड्डा, फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने अपने स्तर पर लोगों की मदद वो कर रहे हैं, तो कंपनियां अपने सीएसआर फंड से दिल खोलकर मदद कर रही है।

0: असम में भीषण बाढ़ ने भले ही बड़ी चुनौती खड़ी की हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में राहत और बचाव का ऐसा अभियान चल रहा है जिसने हजारों लोगों के मुरझाए चेहरे पर उम्मीद लौटा दी है। बाढ़ संकट से जूझ रहे पूर्वोत्तर के राज्य असम के 7 जिलों बीते कई दिनों से जिंदगी बचाने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। कहीं लोगों को रेस्क्यू कर राहत कैंपों में पहुंचाया गया है तो कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें पहुँचाई जा रही है।
1: हम लोग तो घर पर ही था, पानी मतलब इतना स्पीड बढ़ के आया है, मतलब घर का आदमी को हम लोग छोड़ के दूसरे का बचाने लग गए। घर का आदमी पानी में इतना पानी में उन लोग खड़ा था, हम लोग नाव लेके दूसरे का बचा रहा था, फिर भी हम लोग सोचा नहीं घर पर इतना पानी हो गया है।
2: उस दिन मेरे माँ का 16 दिन का काम जो होता है ना, काम का उस दिन था, तो हम लोग का बहुत से लोग मेहमान भी आए थे घर पर, तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। हम लोग सोचा कि पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतना ज्यादा पानी बढ़ सकता है। पंडित भी आ गया था कि हम फिर देखे कि नहीं, ऐसे लहलहा करते थोड़ा जोर बढ़ने लग गया था। पंडित को हम लोग बोले आप जाइए, काम तो आज तो हो नहीं पाएगा, तो हम पंडित जी चले गए। तो हम लोग क्या करें, जितने हमारे घर में मेहमान थे, पानी हद से ज्यादा हो गया, पहले इतना हुआ ही नहीं था। तो हम लोग क्या करें, नाव में उठाए, नाव में उठाकर उन लोग को उसी स्थान में पहुंचा दिए। पहुंचा के वापस आए कि अपना घर का सामान वामान देख कर बचा कर ले जाएंगे, तो देख रहे हैं कि सारा आदमी चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्ला रहा है, चारों तरफ से शोर आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि जो सामान तो हम लोग का था तो जाने दीजिए, अभी वो बचा के भी फायदा नहीं, आदमी को बचाए पहले।
0: इस मुश्किल हालात में कई नामचीन सितारों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सलमान खान, कार्तिक आर्यन से लेकर रणदीप हुड्डा तक कई सेलेब्स ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। अभिनेता रणदीप हुड्डा तो बीते कई दिनों से बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर लोगों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं। रणदीप हुड्डा खुद असम के बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद का हाथ बढ़ाते नजर आए। यहां रणदीप हुड्डा ग्लोबल सिख नाम की संस्था के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा की ये पहल सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो मुश्किल हालात से जूझ रहे लोगों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। राहत अभियान के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों में लंगर की भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक समय पर खाना पहुंचाया जा सके।
3: ग्लोबल सिख की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए, जिससे भी पूछा उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीजें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज्यादा जब ग्लोबल सिख की बोट आती है लोगों के घर पे, तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है, उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे असम में अपना कंट्रीब्यूशन करने आया हूँ।
0: पर्दे का ये हीरो जब असल जिंदगी में रियल हीरो बनकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुँचा तो इसकी हर किसी ने तारीफ की। सोशल मीडिया पर रणदीप हुड्डा के इस प्रयास की लोग तारीफ कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने लोगों से अपील की कि वो असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ताकि बाढ़ संकट के कारण बेघर हो चुके लोगों की मदद की जा सके।
3: दोहराए देख के कि कितना नुकसान हो गया है, कितना पानी आ गया है, कितने गांव डूब गए हैं, तो सभी को आगे आके हेल्प करनी चाहिए। और मैं ग्लोबल सिक्स के माध्यम से यहाँ पे आके जो मुझसे बन पाए मैं करने के लिए आया हूँ। सभी को मदद करनी चाहिए, अपने देश का हिस्सा में अगर इतना बड़ा कोई आपदा आती है तो उसमें सबको आगे आके हेल्प करनी चाहिए। आप कई तरीकों से हेल्प कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप मॉनेटरी हेल्प भेज सकते हैं, आप खुद आके हेल्प कर सकते हैं, वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है।
0: वैसे केवल रणदीप हुड्डा ही नहीं, असम में आई विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए कई और बॉलीवुड सेलेब्स भी मदद के लिए आगे आए हैं, जिनमें सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, भूमि पेडनेकर से लेकर गुरु रंधावा तक शामिल हैं। इन फिल्मी सितारों के अलावा कारोबारी अनन्या बिरला

0: बाढ़ प्रभावितों के बीच जाकर खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें बांट रहे हैं। इसी तरह देश के कई जाने माने उद्योगपतियों ने भी असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। सलमान खान ने अपनी चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान शुरू किया है। वहीं कार्तिक आर्यन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की मदद की। इसके अलावा सिंगर गुरु रंधावा और एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी मदद की अपील की है। और भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया और लोगों से कहा कि वे असम में चल रहे संकट को नजरअंदाज न करें। एक्ट्रेस ने भारत डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए डोनेशन का लिंक भी शेयर किया और लोगों से अपील की कि वे जितना हो सके उतना योगदान दें। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वो बीते 2 दिनों से चराईदेव और शिवसागर जिले में राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर तो कभी बोट पर सवार होकर वो बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल पूछते नजर आए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है और जल्द ही बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी।
1: अपना आंखों से देखा, लोगों को बहुत मदद का जरूरत है, हम लोग मदद करने का पूरा भरपूर कोशिश करेगा।
2: तो बोला है सेमसर ने कि यहाँ पर जो अभी तकलीफ हुआ है उसका लिए अभी सीएम सर आया था हम लोग इधर में, तो नेपाली खुटी सिग्नल बस्ती में, तो बोला है कि ये तकलीफ जैसा भी हो आपका घर और जिसका टूट गया है वो सब ठीक कर देगा।
3: हमारी किताब वगैरह सब खत्म हो चुका है, घर तो है ही नहीं। उनकी मतलब बात किया हमने उनसे, मतलब तो उन्होंने बोला है कि हम देंगे, तो उनके ऊपर ही भरोसा है।
4: मैं तो अभी 12th में हूँ, इस बार मैं फाइनल दूंगी, लेकिन मेरे पास किताब भी नहीं है जो मैं पढ़ के मैं किताब मतलब एग्जाम दूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज में फीस दूँ, ये दूँ, तो हम स्टूडेंट्स को भी थोड़ा हेल्प कीजिए।
0: असम में बाढ़ का कहर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां करीब 1,28,000 लोग इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। असम में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चराईदेव, शिवसागर, धीमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर शामिल हैं। राहत की बात यह है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है और जिन इलाकों से पानी उतर गया है वहां साफ सफाई का काम भी तेज कर दिया गया है ताकि लोग अपने घरों को लौट सकें, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा। जोरहाट से पूर्णा विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पर आ गया है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार 4 अगस्त को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 78,428 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 159 अंकों की गिरावट के साथ 24,614 पर बंद हुआ। मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक 4 अगस्त को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 100 रुपए चढ़कर 1,47,500 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,26,500 रुपए पर ही बनी रही। 4 अगस्त को कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
5: दुनिया भर में कमाई करने वाली स्पाइडरमैन 4 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी किया धमाल। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
6: क्योंकि मैं सिर्फ पीटर पार्कर नहीं हूं, मैं हूं
0: टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन। ब्रांड न्यू डे ने पहले वीकेंड में ही कमाई की सुनामी ला दी है। मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स के बैनर तले बनी ये फिल्म महज 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 927 मिलियन की कमाई कर चुकी है। यही नहीं, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका क्रेज देखने लायक है, जहां इसने 4 दिनों में 306.37 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सबके होश उड़ा दिए हैं। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस इतिहास में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली दूसरी फिल्म बन गई है। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नंबरी अब रिलीज हो गया है, जो फिल्म का माहौल बनाता है। धंधा न्योली वाला के

0: गाए, कंपोज और लिखे गए इस जबरदस्त गाने के साथ एक्सेल म्यूजिक की पहली रिलीज और धंधा का बॉलीवुड डेब्यू हुआ है। फिल्म के 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले इसका ऑफिशियल ट्रेलर 11 अगस्त को जारी किया जाएगा। मिर्जापुर द मूवी हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म खोसला का घोसला 2 की स्टार कास्ट के साथ अनुपम खेर की वायरल रील को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, जिसके बाद अभिनेता रणवीर शौरी ने अनुपम खेर का शुक्रिया अदा किया है। अनुपम खेर ने बोमन ईरानी, रणवीर शौरी और परवीन डबास के साथ मिलकर मेरे महबूब कयामत होगी, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी वाले वायरल जेंजी ट्रेंड पर एक मजेदार रील बनाई। ये वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर छा गया और इसे 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। अनुपम खेर ने इस वीडियो पर कैप्शन दिया, खोसला और खुराना की कभी नहीं बनी, यहाँ भी नहीं, जय हो। दरअसल ये फिल्म प्रमोशन का हिस्सा है, क्योंकि खोसला का घोसला 2 सिनेमाघरों में 28 अगस्त 2026 को रिलीज होने जा रही है। इस सीक्वल में भी पुराने स्टार कास्ट एक बार फिर कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएगी। जाने तू या जाने ना के साथ फिल्मों में कदम रखने वाले इमरान खान कुछ वक्त के लिए लाइमलाइट से दूर हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से स्क्रीन पर चमकने के लिए तैयार हैं। इमरान ने पुष्टि कर दी है कि लगभग एक दशक के बाद वो बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इमरान अधूरे हम अधूरे तुम नाम की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे, जो बड़े लोगों की प्रेम कहानी पर आधारित है। गुरफतेह पीरजादा स्टारर ये फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है और इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है।
1: जो करण अर्जुन में हुआ था।
0: रियलिटी शो बिग बॉस के मेकर्स ने शो के फैंस के लिए एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। सलमान खान के साथ एक दिलचस्प प्रोमो रिलीज करते हुए मेकर्स ने शो की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ ये अनाउंसमेंट किया गया है। मेकर्स ने सलमान खान के होस्ट के तौर पर वापसी के साथ बिग बॉस हिंदी सीजन 20 का पहला टीजर जारी किया है, जिसमें सलमान खान एक घोड़े के साथ एंट्री करते हैं और एक बड़े ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, जो करण अर्जुन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा। इस वीडियो के साथ मेकर्स ने कैप्शन लिखा, एक से भले दो, बिग बॉस 6 सितंबर से शुरू होगा जियो हॉटस्टार और कलर्स पर। वहीं नए सीजन के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा, पहला हिंट पहले ही सामने आ चुका है, बस आपको इसे दो बार देखना होगा। टीजर तो बस शुरुआत है और मैं इंतजार नहीं कर पा रहा कि दर्शक कब सुरागों को जोड़ना शुरू करेंगे, जब बिग बॉस हिंदी सीजन 20 शुरू होगा।
2: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में गीता का भव्य पाठ, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ किया सभी 700 श्लोकों का पाठ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रदर्शन। देशभर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बड़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: मजदूर महिला काम पर बच्चे को साथ लाई है, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा काम की जगह पर अपनी ही मस्ती में डूबा है और माँ न सिर्फ काम तल्लीनता से कर रही है बल्कि बच्चे का भी ध्यान रख रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि सिर्फ माँ ही होती है इस दुनिया में जो बिना स्वार्थ के प्यार करती है और उससे बड़ा योद्धा दुनिया में कोई और नहीं होता। लोग इस वीडियो को खूब देख रहे हैं और मजदूर माँ की तारीफ कर रहे हैं।

अब देखिए आस्था और हिम्मत की अद्भुत तस्वीर। ये शख्स दिव्यांग हैं और हरिद्वार से मथुरा तक पैदल कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। महाकाल के इस भक्त का हर कदम महाकाल के नाम पर है और उसकी हर सांस में माँ गंगा का आशीर्वाद है। यही वजह है कि भक्ति और हिम्मत से भरी उसकी ये यात्रा थकान नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जो भी ये वायरल तस्वीरें देख रहा है यही कह रहा है कि महादेव अपने इस भक्त को और हिम्मत बख्शें। इस वायरल तस्वीर में दो रंग हैं। बरसात में एक माँ बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही है। सड़क पर एक जगह पानी भरा देख बाल मन उस पानी में खेलने लगता है, लेकिन माँ को रहती है उसके स्वास्थ्य की चिंता, तो वो उसे खींच खींच कर पानी से वापस लाती है। और वहीं उसी जगह जब बच्चा पिता के साथ होता है, पिता भी उसके साथ बच्चा बनकर छपाक्षाई करने लगते हैं। लोगों को तस्वीर के ये दो रंग बेहद भा रहे हैं। ये तस्वीर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगी। इस वीडियो में बच्चे अपनी परछाई को देख अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। धूप में बनी अपनी ही शैडो को देख एक बच्चा जहां उसके साथ खेलता है, तो वहीं दूसरे बच्चे उसकी परछाई को देख डर जाते हैं और रोने भी लगते हैं। इन तस्वीरों को देख सबको बेहद हंसी आ रही है और अपना बचपन भी याद आ रहा है। जाहिर है ये बच्चे जब भी अपना ये वीडियो बड़ा होकर देखेंगे तो मुस्कुराएंगे ही।

0: इन तस्वीरों को देख पहले तो आपको भरोसा नहीं होगा कि किसी कलाबाज की तरह सड़क पर साड़ी पहने जो स्केटिंग का धमाल दिखा रही हैं, वो कोई दादी हैं। सड़क पर दादी का ये कमाल देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। पहले तो लोगों को यही भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उम्रदराज, वो भी महिला, इस तरह स्केटिंग कर सकती है। ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं और सबका जोश बढ़ा रही है।
1: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्ट्रीट फूड के लिए चुने गए दुनिया के टॉप शहरों की। इन शहरों में भारत के 3 प्रमुख शहरों को भी जगह मिली। ग्लोबल पब्लिकेशन टाइम आउट ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड शहरों की नई सूची जारी की है। इनमें भारत के 3 प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली और जयपुर ने भी अपनी जगह बनाई। रैंकिंग ऐसे शहरों का सम्मान करती है जहां सड़कों पर मिलने वाले फूड आइटम्स, लोकल पहचान, किफायती मूल्य, आसान पहुंच और शहर की पारंपरिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। टाइम आउट सर्वे के अनुसार वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड के शहर के रूप में पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया का जकार्ता और ताइवान का ताइपे संयुक्त रूप से रहे हैं। टाइम आउट की इस सूची में भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों के शहरों का शामिल होना देश की खान पान की विविधता और अनोखे स्वाद को दर्शाता है। टॉप 20 स्ट्रीट फूड सिटीज की लिस्ट में मुंबई को 10वां स्थान मिला। मुंबई की भागदौड़ भरी जीवन शैली के बीच वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी और सेव पुरी जैसे स्ट्रीट फूड को दुनिया भर में पसंद किया गया है। पिंक सिटी जयपुर को पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों के लिए इस लिस्ट में 15वें नंबर पर वैश्विक पहचान मिली। जयपुर की प्याज कचौड़ी, मिर्ची बड़ा और पारंपरिक मिठाइयों ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया। लिस्ट में 19वें नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली, जिसे अपने ऐतिहासिक और प्रसिद्ध फूड हब्स के लिए सराहा गया है। दिल्ली में चांदनी चौक से लेकर सेंट्रल दिल्ली तक के गोलगप्पे, छोले भटूरे, चाट और लजीज कबाब इस शहर की पहचान। भारत में स्ट्रीट फूड न केवल लोगों के खान पान का मुख्य हिस्सा है, बल्कि ये देश में खाने पीने के पर्यटन को बढ़ावा देने की भी एक बड़ी वजह बन गया है। दुनिया के टॉप 20 स्ट्रीट फूड सिटीज की लिस्ट में भारत के 3 शहरों को जगह मिलने पर हमने दिल्ली और जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: कुछ एनीथिंग जैसे जो मिल जाए खाने को, यानी मोमोज भी, छोले भटूरे भी, राजमा चावल, छोले चावल, बेस्ट।
3: अभी भी आप लोग स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हो?
4: हाँ, बहुत। अभी हमने छोले भटूरे और राजमा चावल, यहाँ के बहुत टेस्टी है।
3: कहाँ पे सबसे ज्यादा खाते हो आप लोग खाने के लिए?
4: हर जगह, हम यहाँ भी गए हुए हैं, यहाँ पे जीटी रोड, ये नजीर, ये हमने टेस्ट किया है सब कुछ, बट लेकिन यहाँ का टेस्ट जो आता है ना, एक देसी मसालों का, वो यही पे आता है।
3: तो दिल्ली में अगर हो तो इंसान को होटल जाना चाहिए, स्ट्रीट फूड ही खाना?
4: नहीं, मैं तो स्ट्रीट फूड जाना पसंद करूंगी। खाना हर तरह का खाना मिलेगा यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है, देखो हर कोई अफोर्ड नहीं करा पाता दिल्ली में आके कि हाई उस क्वालिटी उसको मेंटेन कर पाए तो, बट लेकिन यहाँ पे सारी वैरायटी मिलेगी रीजनेबल प्राइस में।
2: हाँ, सब तरह का पर्सन खा सकता है यहाँ पे आके, लो से हाई तक।
5: दिल्ली का स्ट्रीट फूड सबसे बेस्ट है, राजमा चावल यहाँ के सबसे बेस्ट हैं, छोले भटूरे भी ठीक हैं, बाकी इधर भोगल है उनके भी बहुत अच्छे हैं, बाकी राजमा चावल तो बेस्ट हैं।
6: बहुत बढ़िया स्ट्रीट फूड है, नो डाउट अबाउट दैट। स्पेशली पर्सनली अगर आप मेरी बात करते हो तो मुझे यहाँ की कचौड़ियाँ और मुझे यहाँ के जो बेजड़ की रोटी है, खासकर महावीर की जो है, मुझे बहुत पसंद है।
3: क्या खास लगता है उसके बारे में?
6: क्या खास लगता है, खास ये है कि आलू प्याज की जो सब्जी है दैट्स वेरी यूनिक, एंड जो बेजड़ की रोटी इट्सेल्फ है वो बड़ी यूनिक है, जिसमें मिलेट और वो सब ऐड किया जाता है। नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं है।
2: यहाँ खुटरेटा की जो आलू की कचौड़ी है वो बहुत ही टेस्टी है, और जो स्पाइसेस उसमें डले हैं, जयपुर तो बहुत फेमस है फॉर इट्स स्पाइसेस, तो बहुत ऑथेंटिक स्पाइसेस होते हैं। और जो हमारे ये पाव भाजी है वो भी बहुत स्पेशल मिलती है, पंडित जी की पाव भाजी जो अपने बिरला मंदिर के बाहर मिलती है। और तो आजकल फास्ट फूड्स का बहुत मतलब इंस्टेड अपना पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, फास्ट फूड तो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है। वैशाली में जैसे हमारे काफ़ी फास्ट फूड ये अपने हेल्थ से रिलेटेड, जैसे स्प्राउट्स चाट है, देन अपने ये बेक पराठा इंस्टेड, ये बहुत अच्छे टेस्ट में है, फ्लेवर्स बहुत अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं। और ये चीला, जैसे मूंग का चीला बहुत स्पेशल है यहाँ का, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग आइए और विजिट करिए जयपुर। यहाँ बजाज नगर में बहुत अच्छा मिलता है स्ट्रीट फूड, सभी कुछ बहुत अच्छा है।
3: लोकली जयपुर का जो फूड होता है या राजस्थान का फूड होता है उसमें आपको क्या पसंद है?
2: कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी।
3: तो वो कहाँ की आप सजेस्ट करेंगे?
2: वो अनीता कॉलोनी के बाहर ही एक ठेले वाला है, उसकी कड़ी कचौड़ी बहुत ही औसम होती है एंड हरी चटनी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है उसकी।
7: जयपुर की जितनी भी चाट है वो टॉप एंड है, मतलब आप अगर इंटीरियर में जाओगे, आप चार दीवारी में जाओगे तो जो भी शॉप है एक से बढ़कर एक शॉप्स हैं, और चाहे कितनी भी छोटी हो बेस्ट चाट वहाँ पे मिलती है।
3: आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्यों?
7: मुझे दही बड़े और पपड़ी चाट पसंद है, और वो जो चार दीवारी में जो देते हैं वो एकदम फ्रेश फ्रेश दही और हर चीज़ एकदम फ्रेश मिलती है, ऑथेंटिक मिलती है।
8: तो ऐसे में सिर्फ जयपुर के एक ये मार्केट नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं जहां पर हर शाम लोगों की भीड़ नज़र आती है, क्योंकि इनोवेशन की मैं बात करूं तो इनोवेशन भी जयपुर के अब स्ट्रीट फूड में काफ़ी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शंस भी अब स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं जहां पे इनोवेशन काफ़ी देखने को मिल रही है। जहां पे अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
1: कभी जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री किसी विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि अनुभव से मिलती है। दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाले असलम इसकी जीती जागती मिसाल। असलम रिक्शा चलाते हैं लेकिन हुनर ऐसा कि विदेशी पर्यटकों से उनकी अपनी भाषा में बात करते हैं। वो फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी ही नहीं कई विदेशी भाषाओं में भी पर्यटकों से बातचीत करने का असलम हुनर रखते हैं। अपने इस आर्ट से वो सोशल मीडिया पर भी लोगों का दिल जीत रहे हैं।
9: आयो जलेबी वाला फाटे नगरी, आयो साड़ी मार्केट फाटे नगरी जलेबी वाला।
10: चांदनी चौक जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये इलाका ऐतिहासिक धरोहरों, चहल पहल भरे बाजारों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। इस इलाके की तंग गलियों में एक ऐसा आदमी भी है जिसने अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई है। इनका नाम है असलम। असलम पेशे से रिक्शा चलाते हैं लेकिन अंदाज ऐसा कि पर्यटक उन्हें चलता फिरता लैंग्वेज गाइड कहते हैं।
11: दिल्ली के चांदनी चौक की गलियां अपने खाने और शादी ब्याह की मार्केटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन आजकल चांदनी चौक की गलियां एक इंसान की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं जिनका नाम है असलम। असलम यूं तो चांदनी चौक के आसपास रिक्शा चलाते हैं लेकिन वो कई भाषाएं बोल लेते हैं, जर्मन बोल लेते हैं, इटालियन बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, और इसी वजह से आजकल वो बहुत वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम भी चांदनी चौक पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे असलम से और जानेंगे कि जितना वीडियो में बोलते हैं उतना ही है या फिर कुछ आगे का भी ज्ञान वो ले रहे हैं।
10: असलम की अंग्रेजी पर शानदार पकड़ है और वो जर्मन, फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में पर्यटकों से अच्छे बात भी कर लेते हैं। यही खासियत उन्हें चांदनी चौक की भीड़ में सबसे अलग पहचान दिला रही है।
12: सर, आई एम रिक्शा ड्राइवर असलम, रिक्शा वाला, ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक। So, and Spice Market is very famous, the all of the Asia number one, and Chandni Chowk, the Moonlight Street, and Shahjahanabad, and also different market, the street, and the old Delhi, in the Wedding Street, Sari Street, Silver Street, and so many narrow line, the small street, and also very beautiful, the temples, so Jain temples, Hindu temple, and the Sikh temple, and also big mosque, biggest mosque to India, and Jama Masjid, and also this Central Christian Public Church.
10: असलम विदेशी मेहमानों से बेझिझक उनकी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, उन्हें चांदनी चौक की गलियों से लेकर दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत तक का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
12: ओल्ड दिल्ली रिक्शा इज मच बेटर, यूर वॉकिंग अलोन नेवर आइडिया, आई नो वेरी वेल योर होम, आई नो वेरी वेल आई एम दिल्ली, सो रिक्शा इज मच बेटर स्पीकिंग एंड ड्राइवर ऑल टुगेदर, सो यू आर हैप्पी, सो आई एम हैप्पी सर, यू आर माई गेस्ट।
10: कहते हैं कि अगर सीखने की लगन हो तो जिंदगी खुद सबसे बड़ी पाठशाला बन जाती है। न कोई बड़ी डिग्री, न किसी महंगे संस्थान की ट्रेनिंग, सिर्फ जिज्ञासा, मेहनत और सीखने का जुनून, यही कहानी है चांदनी चौक के असलम की।
12: हम जो है फॉरनर के साथ जो है हम सीखे हैं और उन्हीं में ढल गए, इसलिए हमें थोड़ा बोलना सीखना आ गया, पढ़ने लिखने नहीं आता है।
10: आज यही मेहनत और सीखने का जुनून उन्हें आम रिक्शा चलाने वालों से अलग पहचान दिला रहा है।
12: आई एम बिचकले ड्राइवर, सो बिचकलेता एंड रिक्शा बोलते हैं रिक्शा को, सो बिचकलेता एंड 220 दिल्ली, ऑल इज द ओल्ड मर्काटो, मर्काटो स्पाइसिया, मर्काटो प्लाटा, मर्काटो सारी, आला मिस्किता, टेम्पलो जैन, टेम्पलो हिंदू एंड ऑल्सो पिकोलो पिकोलो बाजार, सो इटालियन सो इज द स्पीक।
10: असलम की ये यात्रा संदेश दे रही है कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: की चाका सॉल्ट लेक दुनिया भर को कर रही अपनी ओर आकर्षित। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: चीन के तियानजिन में अनोखा समर कैंप शुरू किया गया है। यहाँ बच्चे और उनके परिवार म्यूजियम के अंदर टेंट लगाकर पूरी रात बिताते हैं, जहाँ समुद्री जीवों के बीच उन्हें सीखने का मौका मिलता है। म्यूजियम में बच्चे जेलीफिश, वेल, शार्क और दूसरे समुद्री जीवों के बारे में मजेदार तरीके से जानकारी लेते हैं। यहाँ खेल खेल में बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है। कैंप में लाइव शो और छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए बच्चों को समुद्र की दुनिया समझाई जाती है। बच्चों के लिए भी ये एक यादगार अनुभव है। यहाँ बच्चों को बड़ी और गूढ़ बातें भी आसानी से समझाई जा रही है। चीन की मशहूर चाका साल्ट लेक इन दिनों अपने अद्भुत नजारों से दुनिया का ध्यान खींच रही है। डूबता सूरज, उगता चांद, चमकती झील और उसके बीच से गुजरती ट्रेन, यहाँ नजर आने वाला हर दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं। यहाँ प्रकृति ने ऐसा नजारा रचा है कि हर देखने वाला ठहर जाता है। चाका साल्ट लेक को आसमान का आईना कहा जाता है। ये झील इतनी साफ और चमकदार है कि इसमें पूरा आसमान आईने की तरह दिखाई देता है। इस झील की तुलना बोलीविया की मशहूर सालार डी ओयूनी से की जाती है। इसे देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में तापमान 36.7 डिग्री पहुंच गया है। इतने तापमान की वजह से यहां सिर्फ 36 मिनट में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा पिघल गया। वहीं दक्षिण कोरिया के यांगसान शहर में तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। यहां पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तेज गर्मी को देखते हुए सियोल और आसपास के इलाकों में पहली बार सबसे बड़ी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार लोगों से घरों से ना निकलने की अपील कर रही है, तो वहीं भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदी किनारे, वाटर पार्क और ठंडी जगहों पर समय बिता रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के लिए जगह जगह स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया गया है। इटली के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। गर्मी से लोगों को बचाने के लिए 25 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रोम के मशहूर कोलोसियम में गर्मी से परेशान पर्यटक पेड़ों की छांव लेते दिखे, तो वहां मिल रही पानी की बोतल से प्यास बुझाकर गर्मी से राहत लेते नजर आए। माना जा रहा है कि इटली में ये भीषण गर्मी शुक्रवार तक जारी रह सकती है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वैसे भी यूरोप में लगातार गर्मी बढ़ रही है और यहां वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में और गर्मी बढ़ने की आशंका है। अमेरिका के टेक्सास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। ये तस्वीर इतनी भव्य थी कि हर तरफ गीता के श्लोकों की गूंज सुनाई दे रही थी। विदेशी धरती पर सनातन संस्कृति के प्रति ये समर्पण इस बात का प्रमाण है कि भारतीय आध्यात्मिक विरासत सीमाओं की मोहताज नहीं है। गीता का संदेश कर्तव्य, कर्म, सत्य और मानवता आज भी पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि टेक्सास का ये आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव और उसके बढ़ते विस्तार का एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मचाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रोफेशनल रेसर के रूप में नजर आ रहे हैं। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
2: महेंद्र सिंह धोनी के कुछ शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में धोनी बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें चेन्नई की हैं। धोनी चेन्नई के पास मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर पहुंचे थे जहां उन्होंने सुपर बाइक चलाई। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल प्रोफेशनल रेसर के लुक में नजर आए। दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को स्विट्जरलैंड में होने वाली लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। कमर की चोट से वापसी कर रहे नीरज के लिए ये सीजन का तीसरा इवेंट होगा। नीरज के सामने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रमेश पथिराजे, पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम होंगे। ग्लासगो में नीरज ने 85.83 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो फेंक कर सिल्वर मेडल जीता था। नीरज पिछले साल सितंबर के बाद पहली बार जून में दोहा डायमंड लीग में उतरे थे, वहां उन्होंने 85.69 मीटर का थ्रो कर चौथा स्थान हासिल किया था। हरियाणा में मुक्केबाजी के क्षेत्र में लड़कियों का रुझान बढ़ रहा है। करनाल की बेटियां यहां के कर्ण सिंह स्टेडियम में बॉक्सिंग रिंग में रोजाना 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचती हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए रिंग में पसीना बहा रही हैं। उनको अपने सपने पूरे करने के संघर्ष में परिवार के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है जिसमें हरियाणा ने कुल 11 मेडल जीते हैं। यूपी में आगरा के कांस्टेबल संदीप यादव ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में परचम लहराया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में हुई 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में संदीप ने उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए पेंचक सिलाट जो कि इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है उसके रेगु इवेंट में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया है। दिल्ली में ISSF शॉटगन रेफरी कोर्स शुरू हुआ है जो शूटिंग के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग्य तकनीकी अफसरों को तैयार करेगा। ये कोर्स 3 अगस्त से शुरू हुआ है जो 7 अगस्त तक चलेगा। भारत, सऊदी अरब और श्रीलंका तीनों देशों के प्रतिभागियों के लिए आयोजित ये कार्यक्रम अपने अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। क्षेत्र के तकनीकी अधिकारियों को ज्ञान और नियम कायदों के आदान प्रदान के लिए एक बेहतरीन मंच है।
1: तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
3: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।
10: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है, और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। देवघर और हरिद्वार के रास्ते बोलबम के जयघोष गूंज रहे हैं और हरिद्वार में आज ये तस्वीरें और भी भव्य हो गई जब कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा की गई। और आज आपको हरिद्वार की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही यात्रा मार्ग पर रंग बिरंगी और अनोखी कांवड़ भी दिखाएंगे। मिलेंगे उस शिव भक्त से जो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड गहनों से सजी भगवान शिव की प्रतिमा लेकर पैदल यात्रा कर रहा है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में शामिल दशानन यानी रावण का वेश धरे शिव भक्तों से भी आपको मिलवाएंगे और कांवड़ यात्रा से रावण का कनेक्शन भी आपको समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आस्था की अतुलनीय तस्वीरों के साथ। सावन के पावन महीने में शिव भक्ति अपने शिखर पर है। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बकायदा पुष्प वर्षा की गई और इसी तरह कांवड़ पथ पर हर जगह उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए लाखों की तादाद में शिव भक्त इस यात्रा में शामिल है, पर अभी सबसे ज्यादा चर्चा 24 कैरेट सोने वाली शिव भक्ति की हो रही है। चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शिव भक्त से जो गोल्ड प्लेटेड आभूषणों से सजी बाबा की प्रतिमा को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं।

0: श्रद्धा को अगर सोने के पैमाने पर कस के देखें तो ये भक्ति 24 कैरेट वाली है। सोने के गहनों से सजे भगवान शिव की सुनहरी प्रतिमा कावड़ यात्रा में एक नया प्रयोग है। लेकिन ये भी गजब का संयोग है कि सोने का एक नाम कनक है, और कनक उस भांग को भी कहते हैं जो भोले को बहुत पसंद है। हालांकि भस्म रमाने वाले शिव का सोना यानी कि स्वर्ण से वास्ता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि भक्ति में गजब की शक्ति होती है, गहरा आत्मविश्वास होता है। इसीलिए तो जहां कावड़ियों ने अपने आराध्य को नाना वेश में सजाया, वहीं रोहित शर्मा ने एक ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से बाबा का श्रृंगार किया। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा के इस रूप की आभा अद्भुत है। हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, लेकिन जब भक्ति में सोने जैसी चमक हो तो फिर दूर से ही नजर आ जाती है। कावड़ मार्ग पर जिसने भी भोले और भोले के इस भक्त को देखा बस दंग रह गया।
1: ये मेरी एक गोल्ड की कावड़ी लगाओ आप, क्योंकि इसके ऊपर जो चैने पहनी है भोले ने, मैंने पहनी है। ये गोल्ड प्लेटेड होती है 1 ग्राम, इनके ऊपर 24 कैरेट सोने की परत होती है। ये देखो वैसे तो 3-4 किलो गोल्ड है, पर इसके ऊपर जो गोल्ड हो रखा है वो लगा लो 4-5 तोला हो रखा है, लगा लो 10-12 लाख रुपया गोल्ड हो रखा है। ये आप उसे लगा लो 2.5-3 किलो वजन तो है बोले। मनोकामना ये थी कि भाई भोले बाबा से जो मैंने तो मांगी थी कि भाई भगवान मेरा भी बिजनेस हो, मेरा भी काम हो, वो मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी। तो सोचा कि भाई भोले बाबा को भी इस तरह के आभूषण पर आके ले चलूं।
0: बाबा की प्रतिमा पर करीब 20 लाख रुपए के गहने, खुद भी लाखों की गोल्ड ज्वेलरी, चेन, अंगूठी, देखने वालों को ये दिखावा भी लग सकता है। लेकिन इस स्वर्णिम कावड़ यात्रा की भी एक कहानी है जो आस्था से जुड़ी है। असल में सोनीपत के रोहित ने बाबा से कोई काम धंधा शुरू करने की फरियाद की थी। कुछ ही दिनों में उसने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का शोरूम खोल दिया। इसीलिए गहनों से सजाकर कंधे पर उठाकर करीब 250 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोहित बाबा की प्रतिमा को हरिद्वार ले आए।
1: ये मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ। मेरा एक उद्देश्य भी है कि भाई लोगों को, भाई जो सोना बहुत महंगा हो चुका है तो 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहनो, सोने से कम नहीं, कुछ कोई कम नहीं, सबके शौक पूरे होंगे। गरीब आदमी होता सोना पहनने का शौक होता है और पूरे नहीं कर पाता, तो उनको उद्देश्य देना चाहता हूँ कि भाई आज के दिन हर आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी पहन के। पर ये है, ये कम पैसों में बन जाती है, पर ये पूरी फील देती है सोने वाली। नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत अच्छी यात्रा चली हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। लैट्रिन बाथरूम जो मेन समस्या होती है वो हर जगह 500 मीटर पे 700 मीटर पे बहुत अच्छी सुविधा यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी सुविधा है।
0: कहते हैं कि अगर भावना हो तो भोले के लिए जैसी भांग वैसे ही भस्म और वैसे ही गहने। फिलहाल लाखों शिव भक्त महादेव की भक्ति में मदमस्त हैं, देवभूमि में जिनका स्वागत और सम्मान हो रहा है। सड़क पर चलते कावड़ियों पर आसमान से गुलाब के फूल बरसाए जा रहे हैं। हरिद्वार के मेला क्षेत्र में भक्त गदगद हैं। इतना ही नहीं, कावड़ मेले में आने वाले भक्तों का खुद मुख्यमंत्री ने सम्मान किया, पैर धोए, अटका और फल फूल भेंट किए और भंडारे में भोजन भी परोसा। अंदाजा है कि अभी तक हरिद्वार से 1 करोड़ से ज्यादा कावड़िए जल लेकर जा चुके हैं और उम्मीद है कि पूरे सावन में ये आंकड़ा करीब 4 करोड़ तक जाएगा। हरिद्वार की सड़कों पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी से आ रहे शिव भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। आस्था की अद्भुत कावड़ नजर आती है जिसमें शिव के लिए असीम भक्ति है। और इसी भीड़ में नन्हे बच्चों की एक तस्वीर ध्यान खींच लेती है जो छोटी उम्र में बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रही 5 बच्चों की टोली देखकर हर कोई हैरान है, जिसमें सबसे छोटी बच्ची सिर्फ 9 साल की है जबकि बाकी बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के बीच है।
2: भोले के छोटे भक्तों से आपको मिलवा रहा हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, इनके कंधे पे कावड़ है, जल लेकर ये निकले हैं और साथ में उनके बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन इन बच्चों का जज्बा देखिए आप, किसी किसी उम्र 9 साल है, किसी की 11, किसी की 13। बारी बारी से इनसे बात करते हैं, जल लेकर आए हैं नोएडा में, हमसे इनकी मुलाकात हो रही है और चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, जबकि इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं। चलो पहले एक बार कस के जगह लगा देते हैं, ठीक है? हर हर महादेव की गूंज लेकर हरिद्वार से ये बच्चे चले थे, नोएडा आप पहुंच चुके हैं। क्या उम्र है आप, क्या नाम है आपका?
3: दक्ष।
2: दक्ष कितने साल के हो आप?
3: 12।
2: 12। मजे आ रहा रास्ते में? कितना जल्दी है वो तुम दिखाओ एक बार, कह लेना ये। अच्छा कितने जल्दी आए, पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? चलो ठीक है। आपका नाम बेटा?
3: खुशबू।
2: खुशबू जल कितना आपके पास?
3: 10 किलो। 10।
0: जिस उम्र में बच्चे खेल के मैदान में नजर आते हैं, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में कहीं मगन नजर आते हैं, उस उम्र में ये नन्हे शिवभक्त कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है, ये बच्चे लगातार 5 साल से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर अब ये नोएडा तक पहुँचेंगे। कंधों पर कांवड़ का वजन जरूर है, लेकिन चेहरों पर थकान का कोई निशान नहीं। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हौसला बिल्कुल मजबूत है। परिवार के बड़े साथ चल रहे हैं, फिर भी बच्चे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कांवड़ संभाल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में हर बार की तरह युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। इन दिनों जिन्हें जेंजी कहने का चलन चल पड़ा है, उनकी धर्म और संस्कृति में कैसी रुचि है खुद ही देख लीजिए। 19-20 साल के दो भाई घर से कहकर चले थे कि बस 11 लीटर जल लेकर आएंगे, लेकिन जोश ऐसा कि दोनों ने मिलकर 41 लीटर जल उठा लिया।
2: कैसे बच्चे तैयार हुए साथ चलने के लिए?
4: ये जब मैं जाए कर रहा हूँ, जब इतने कह रहे इनको हम भी चले करेंगे, तो ये तो दूसरी बार आई है, ये पांचवी बार आई है।
2: ये तो छोटी है, पांचवी बार आई है, 9 साल की है तो।
4: हाँ,
2: 4 साल की उम्र से आ रहे।
4: हाँ।
1: अरे मास
4: मो 36 साल होगी गौमुख और हरिद्वार जाते जाते।
2: 36 साल से जल ला रहे हो आप?
1: बाप
2: तो अभी जो है सब बच्चे हरिद्वार से पैदल चल के जा रहे हैं।
4: 2017-18 में अपने माँ बाप ने बैठक ले गए।
1: अरे बाप क्या बात है।
2: तो वही संस्कार जो आपके अंदर है, आप कह रहे अपने माँ बाप को बैठा के उन्होंने यात्रा कराई, वही संस्कार आप बच्चों को देने की कोशिश कर?
4: सोच तो यही बात रही।
2: वहाँ से हो आप लोग, कहाँ से चढ़ाओगे?
4: हम पलवल से आगे 10 किलोमीटर फुलवाड़ी गाँव है हरियाणा में।
2: बच्चे थके तो नहीं रास्ते में, परेशान तो नहीं कर रहे?
4: कुछ भी दिक्कत नहीं।
2: ये बहुत बढ़िया है। तो पिता है साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इतने छोटे बच्चों को आप कांवड़ की यात्रा में देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता की एक भी लकीर इनमें से किसी बच्चे के माथे पर दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भोलेनाथ के जयकारों के साथ, गूंज के साथ लगातार आगे बढ़। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे नोएडा।
5: महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं, और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिलते हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ जब कांवड़िया रास्तों से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई गरुड़ की छाव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़, कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है। देखिए कांवड़ यात्रा की अनोखी और दिलचस्प तस्वीरें।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कांवड़ों के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था।

इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कांवड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कांवड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई है। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कांवड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कांवड़ को भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
2: और बोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा बोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
3: कितने लोग आए होते?
2: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी बहुत सारी, 12-13।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे।
5: पहले भी कभी लगे?
4: हाँ पहले भी,
2: पूरे परिवार को, पूरे सब हमारे सब फूलों को अच्छा रखे, बस हमें यही
5: लेके जाओगे?
2: नहीं बोले, अभी तक तो कोई कष्ट आया नहीं, बाकी और बाबा जी।

हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर ये कहानी आज भी किसी ना किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।

0: ये संभव नहीं कि कावड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण। एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है, या फिर किसी विशाल कांवड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है, जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे

0: से हल्का सा दबाव डाला, रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कावड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कावड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कावड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समय पर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कावड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर रहा है।
1: मैं बड़े हरिद्वार से चला हूँ और दिल्ली पहुँचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। पुष्पक विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अबकी बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कावड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती है। कावड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कावड़िये का मनोरथ एक। बोल बम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में तहीं देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सोलह अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की भारी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: श्रीमद् भगवद् गीता के श्लोकों की ध्वनि से गूंजा अमेरिका का दिलासा, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवद् गीता के श्लोकों का किया सामूहिक पाठ। कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद् गीता के सभी 700 श्लोकों का किया गया सामूहिक पाठ, श्रीमद् भगवद् गीता पारायण और विश्व शांति प्रार्थना के तौर पर किया गया भव्य आयोजन। मैसूर के अवधूत दत्ता पीठम के पीठाधीश्वर श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में 18 देशों के 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु और हजारों छात्र हुए शामिल, विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना और श्रीमद् भगवद् गीता के पारायण का भी पाठ किया गया। वसुधैव कुटुंबकम था कार्यक्रम का मुख्य विषय। पहाड़ों पर रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम यात्रा का उत्साह लगातार बरकरार, उपंती अलकनंदा के बीच भी जारी है पवित्र यात्रा। मौसम की चुनौतियों के बावजूद सुचारू रूप से जारी है बद्रीनाथ धाम यात्रा, अब तक 15,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी पूरे जोश के साथ जारी है श्रद्धालुओं का आना। पुंछ में श्रद्धालुओं ने शुरू की अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ कर रहे हैं कदम ताल। सावन में महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अजब गजब रंग, मुजफ्फरनगर में गहनों से लदे शिव भक्त और भोलेनाथ की कांवड़ देखकर सबहरा। गोल्ड प्लेटेड हैं भगवान शंकर और कांवड़िए के धारण किए गए गहने, तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। हरिद्वार से सोनीपत तक तकरीबन 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं रोहित शर्मा, अपने कंधे पर बाबा भोलेनाथ को बैठाकर प्रतिदिन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं हर उम्र हर वर्ग के कांवड़िए, हरिद्वार से जल लेकर यात्रा करती दिखी बच्चों की टोली। लगभग 50 दिन से कांवड़ यात्रा में हैं फरीदाबाद के दो भाई। आस्था और शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आया धनबाद, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में तर्ज पर बनारस से आए आचार्यों ने संपन्न कराई दिव्य शिव गंगा महाआरती। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र सरोवर में आयोजित हुई भव्य शिव महाआरती। सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रखा गया था यह धार्मिक आयोजन, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाना मकसद। सवाईमाधोपुर में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब, सालाना भव्य महाभगवा कांवड़ यात्रा में हुआ आयोजन। शहर के रामद्वार से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी दंडवीर बालाजी मंदिर में संपन्न हुई। सावन के महीने में अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रही है लोगों का ध्यान। सौ फीट ऊंची है श्री हनुमान जी के बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ बजरंगबली के साथ अगड़नाथ जी की आकृतियां भी मौजूद। भगवान शिव की विशाल आकृति वाली ये सुनहरी कांवड़ भी लोगों के बीच चर्चा का मुख्य विषय। भोलेनाथ की प्रतिमा के दोनों ओर बनाए गए सुंदर मोड़। बिजनौर की एक कांवड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल, एक तरफ 90 साल की दादी, दूसरी तरफ गंगा जल। हरिद्वार से हापुड़ लेकर सोनू कर रहे हैं 250 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारियां, 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा, 9 अगस्त को बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ, 10 अगस्त को गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड में रेलवे, दीनदयाल उपाध्याय रेल डिविजन में बनाया गया है वॉर रूम। कांवड़ियों और आम यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ अतिरिक्त रेल कर्मियों की तैनाती। सुरक्षा के साथ साथ कांवड़ियों को आराम भी दिया जा रहा है, स्टेशन पर सात्विक भोजन और मेडिकल स्टाफ। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच चहलुम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में। पुलिस ने सड़क के बीच में लगवाए 10-10 फीट ऊंचे टेंट। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक रवि कुमार ने बना विश्व रिकॉर्ड, सिर्फ 9.15 सेकंड में इस जेड लिखकर बने दुनिया के सबसे तेज अल्फाबेट राइटर। रवि कुमार ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। रवि ने 26 मई को बनाया था रिकॉर्ड। चंबा के रावी नदी में मंजर विसर्जन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न हुआ। पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक निकाली पारंपरिक शोभा यात्रा। मेले में देखी हिमाचल की संस्कृति, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। तिरुचिरापल्ली में आदि पेरुकु उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आदि पेरुकु उत्सव पर नवविवाहित जोड़ों और महिलाओं ने नदी किनारे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। विश्व प्रसिद्ध भदोही के कालीन उद्योग को अब मिलेगी नई गति। कपड़ा मंत्रालय के अधीन आने वाली जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भदोही में खोला अपना आउटलेट। जूट से अलग अलग तरह की कालीन बनाने और उसके लिए जूट आसानी से कराया जाएगा उपलब्ध। आगरा के जांबाज कांस्टेबल संदीप यादव ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में लहराया परचम। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में किया उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व। इंडोनेशिया मार्शल आर्ट खेल के रेगु इवेंट में जीता ब्रॉन्ज। दिल्ली में ISSF शॉटगन रेफरी कोर्स की होगी शुरुआत। निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड तकनीक अधिकारी तैयार करना कोर्स का मकसद। राष्ट्रपति भवन घूमने के इच्छुक लोगों के लिए गुड न्यूज, विजिटर्स के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से ही होगी राष्ट्रपति भवन से अमृत उद्यान में एंट्री। अमृत उद्यान में 29 अगस्त को खिलाड़ियों और 5 सितंबर को शिक्षकों के लिए होगी खास एंट्री। नागपुर में जोरों में चल रही है गणेशोत्सव की तैयारियां। मूर्ति कलाकारों का दावा, निर्माण सामग्री लागत बढ़ने से साल 30% तक महंगी हुई मूर्तियां। इस बार गणेशोत्सव में महाकाल और बाबा खाटू श्याम की भी दिखेगी मूर्ति। ओमान और रूस भी भेजी गई हैं नागपुर के मूर्तिकार राजेश चौरई की बनाई हुई मूर्तियां। 14 सितंबर से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मनाया जाएगा गणेशोत्सव। लद्दाख में जनगणना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लेह में भव्य मैराथन का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लद्दाख सेंसस मैराथन 2027 में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम पर उपलब्धि, देश में 50 लाख से ज्यादा घरों पर लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों में शामिल हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 9 पैसे की तेजी। संसद में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त वर्ष 2029 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। नवी मुंबई हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा की हो गई शुरुआत, एयरलाइंस ने दी जानकारी। सोने की कीमत में आज 100 रुपए की बढ़ोतरी, 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत हुई 1,47,500 रुपए। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने जून तिमाही में पेश किए शानदार नतीजे, टैक्स के बाद 37.3% बढ़कर 8,167 करोड़ रुपए मुनाफा। एयरटेल के मुताबिक कंपनी को भारत और अफ्रीका में कामकाज में हुई बढ़ोतरी की वजह से हुआ है मुनाफा। इंडिगो ने पूरे किए 20 साल, 2030 तक 550 विमानों और 3,000 दैनिक उड़ानों का लक्ष्य। आज से 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर रहा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटी सहायता राशि। सैलानियों से गुलजार हुई डल लेक, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। डल लेक में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी, कारोबारियों की खिले चेहरे। महाराष्ट्र के जालना इलाके में बारिश से निखरा धावड़ा का कुदरती सौंदर्य, झरना बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। धावड़ा का झरना देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, पर्यटकों को पसंद आ रहा है इलाके की ओर हरियाली और मनमोहक नजारा। राजस्थान के अलवर में भी बारिश से अरावली की पहाड़ियों से निकल रहे हैं झरने। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश की वजह से टूटा नेशनल हाईवे से संपर्क। उत्तर प्रदेश के झांसी में गांव के तालाब में घुसे मगरमच्छ का रेस्क्यू हुआ, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बगहा में तमसा नदी में से अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन, युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाई नेपाल से लौट रहे 11 श्रद्धालुओं की जान। लगातार बारिश के चलते घनसाली के चारधाम मोटर मार्ग पर भैंसवाड़ा पुल और NH507 पर पहाड़ी से गिरे मलबा। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ रही है गंगा और यमुना का जलस्तर, कई निचले घाट डूबे। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ का सहस्त्रकुंड झरना हुआ ओवरफ्लो। श्रीनगर में लोगों के लिए राहत बनकर आई बारिश, बारिश से गिरा तापमान। मथुरा में बारिश से सड़कों पर जलजमाव, कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित। पहाड़ों पर भारी बारिश से लगता है बाढ़, संगम का पानी बढ़ रहा है, निचले इलाकों में बसा पानी। हैदराबाद में भी बदल गया मौसम का मिजाज, सुबह सुबह जबरदस्त बारिश। केरलम में आज भी तेज बारिश का दौर, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजेस। केरलम के कोट्टायम में भारी बारिश, जलजमाव, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शिवसागर जिले में बाढ़ पीड़ित इलाकों और राहत शिविरों का दौरा किया। मुख्यमंत्री हेमंत ने बाढ़ पीड़ितों को अंतरिम वित्तीय सहायता के लिए चेक भी सौंपे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने अरनमुला के चिरयरपम एलपी बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया। राजस्थान के अलवर शहर में लेपर्ड देखने से लोगों में डर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, तेंदुए की लोकेशन पता लगाने में जुटे कर्मचारी। वन विभाग ने लोगों के लिए जारी कर दी एडवाइजरी, अंधेरे में बाहर ना निकलें। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत। ढोल लगाड़ों की थाप पर फैंस ने मेडल वीरों का स्वागत किया, एयरपोर्ट पर लगे भारत माता के जयकारे। शान से अपना गोल्ड मेडल पहने नजर आई मुक्केबाज प्रीति पवार। महिला 57 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन ने कहा, यह किसी सपने के सच हो जाने जैसा है। बॉक्सिंग में ही गोल्ड मेडल विनर प्रिया गंगास ने भी वतन वापसी पर जताई खुशी। एयरपोर्ट पर अपने विजेता एथलीट्स की एक झलक पाने के लिए होड़ लगी, फूल मालाओं से लदे नजर आए खिलाड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग रहा, 14 मुक्केबाजों के दल में 10 खिलाड़ी मेडल जीतकर लौटे। इस हार में मुक्केबाज अंकुश पंघल का भी शानदार स्वागत, उन्होंने फाइनल में रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के शिट्टू को हराया। पैरा खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया देश का मान, पैरा एथलीट्स ने कई पदक जीते। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर स्वदेश लौटे वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ। परिवार और गांव वालों ने भांगड़ा करके मनाई खुशी, लवप्रीत बोले अब गोल्ड मेडल जीतना लक्ष्य। हरियाणा में मुक्केबाजी को लेकर बढ़ रही है लड़कियों का रुझान, रोजाना 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके मुक्केबाजी रिंग में पसीना बहा रही हैं बेटियां। देश का नाम रोशन करने के लिए करनाल के कर्ण सिंह स्टेडियम में रोजाना घंटों पसीना बहा रही हैं लड़कियां। यूरोप में बढ़ती गर्मी के बीच बेजुबानों के लिए राहत का इंतजाम, वियना चिड़ियाघर में पानी की फुहार का आनंद ले रहे नन्हे हाथी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: एक तरफ दुनिया के कई देश गर्मी से परेशान है, तो वहीं पर अंटार्कटिका की बर्फीली हवा ने न्यूजीलैंड को जमा दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि समुद्र किनारे तक बर्फ बिछ चुकी है, सड़कें बंद हैं, बसें थम चुकी हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। अंटार्कटिका से आया पोलर ब्लास्ट जो है न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर भारी पड़ रहा है। डुनेडिन शहर में समुद्र तल तक बर्फ गिरने से सड़कें फिसलन भरी हो चुकी हैं और पुलिस ने लोगों से बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की लगातार अपील की है। भारी बर्फबारी के चलते शहर की सभी बस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। तेज हवाओं के कारण नॉर्थ और साउथ आइलैंड के बीच फेरी सेवाएं भी अब रोक दी गई हैं। मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले दो दिन तक कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा। यूरोप में जारी भीषण हीटवेव के बीच ऑस्ट्रेलिया के वियाना चिड़ियाघर का करीब एक साल का नन्हा हाथी इन दिनों सबका दिल जीत रहा है। तस्वीरें देखिए, 20 अगस्त को एक साल का होने जा रहा यह हाथी अपनी मां और एक बड़ी मादा हाथी के साथ तालाब में उतरकर नहाता हुआ नजर आया। चिड़ियाघर के रखवालों के मुताबिक ये नन्हा हाथी अपनी पसंदीदा आंटी के पीछे पीछे पानी में जाता है और हर बार ये जानने की कोशिश करता है कि वो कितनी गहराई तक जा सकता है। नहाने के बाद उसका अगला पड़ाव होता है कीचड़, फिर रेत। यही तरीका हाथियों को भीषण गर्मी से राहत देता है और उनकी त्वचा को कीड़े से भी बचाता है। करीब 400 किलो वजनी ये नन्हा हाथी अभी अपनी सूंड का इस्तेमाल करना भी बड़े हाथियों को देखकर ही सीख रहा है। वियना चिड़ियाघर का ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको एक दंग कर देने वाली तस्वीरें दिखा देते हैं। करीब 70 साल पहले जिस बाघ की दहाड़ मध्य एशिया के जंगलों से हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, अब उसे फिर से जिंदा करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कजाकिस्तान ने एक खास मिशन के तहत रूस से लाई गई अमूर टाइग्रेस उम्मीद को खुले जंगल में छोड़ दिया है। उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि बाघिन आने वाले वर्षों में मध्य एशिया में बाघों की नई पीढ़ी की नींव रखेगी। कजाकिस्तान के एले बल्कशाक नेचर रिजर्व में पिंजरे का दरवाजा खुलते ही ये मादा टाइगर तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ी और कुछ ही पलों में घास के बीच ओझल हो गई। उम्मीद को जंगल में छोड़ना एक लंबे समय से चल रहे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद मध्य एशिया में विलुप्त हो चुके कैस्पियन टाइगर की वापसी कराना है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि मध्य एशिया में बाघों की स्थायी आबादी बसाने में कई दशक लगेंगे। संरक्षण अभियान अगले 25 वर्षों तक यूं ही जारी रहेगा ताकि एक बार फिर से इन जंगलों में बाघों की दहाड़ सुनाई दे। चीन के मशहूर चाका सॉल्ट लेक इन दिनों अपने अद्भुत नजारों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। डूबता सूरज, उगता चांद, चमकती झील और उसके बीच से गुजरती ट्रेन, हर दृश्य किसी पेंटिंग से कम नजर नहीं आता। प्रकृति ने ऐसा नजारा रचा है कि हर देखने वाला ठहर गया। दरअसल ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं है बल्कि चीन की चाका सॉल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा।
2: कभी कभी प्रकृति ऐसी तस्वीर बनाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक तरफ डूबता सूरज, दूसरी तरफ उगता पूरा चांद, बीच में आईने की तरह चमकती झील और उस पर तैरती हुई सी गुजरती एक ट्रेन। ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं बल्कि चीन की चाका साल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। उत्तर पश्चिम चीन के किंघाई प्रांत में स्थित चाका साल्ट लेक को मिरर ऑफ द स्काई यानी आसमान का आईना कहा जाता है। चाका साल्ट लेक अपनी मोटी नमक की परत और आईने जैसी सतह के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साफ मौसम में ये झील इतनी साफ तस्वीर बनाती है कि इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत साल्ट लेक्स में गिना जाता है। यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक इस जादुई नजारे को अपनी आँखों में कैद करने यहाँ आते हैं। प्रकृति जब अपने रंग बिखेरती है तो शब्द भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। चीन की चाका साल्ट लेक का ये नजारा भी कुछ ऐसा ही है, जहां कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है कि आसमान और धरती के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
3: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में। जी हाँ, सावन का पावन महीना चल रहा है और शिवजी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है बेलपत्र। और शिवजी की पूजा भी जब हम करते हैं तो बेलपत्र का उसमें उपयोग करते हैं। तो क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके अद्भुत प्रयोग, इस पर पंडित जी से करेंगे हम विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, सावन में चांदी का एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए। किसी भी दिन शिव जी को अर्पित करिएगा और इसके बाद उस चांदी के बेलपत्र को अपने धन स्थान पर लाकर रख दीजिएगा। अगर आप सावन में ऐसा करते हैं तो सामान्यतः आपको धन की समस्या नहीं होगी।
0: और आइए अब जान लेते हैं 5 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर

0: आना ही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि क्या है बेलपत्र और क्या है इसकी महिमा।
0: देखिए, आज हम आपको बताएंगे बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र का शिव जी की पूजा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बेलपत्र है क्या और इसकी महिमा क्या है? देखिए, बेल नाम के वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है या बिल्व पत्र कहते हैं। तीन पत्तियां एक प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता एक बेलपत्र मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं और सामान्यतः बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग तो होते ही हैं, इसके अलावा इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं और बेलपत्र के प्रयोग से तमाम बीमारियां बड़ी आसानी से गायब की जा सकती हैं। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ करें तो आपको चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। बेलपत्र के बारे में कहा गया, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी एक बेल का पत्र अगर आप भाव से श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके तीन जन्म के पापों का नाश हो जाता है। यानी छोटा सा बेलपत्र आपकी कामनाओं को पूरा करता है और आपके पापों का नाश करता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पहली तीन राशियों के बारे में, यानी कि मेष वृष और मिथुन राशि के बारे में।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जान लेते हैं कि बेलपत्र का चुनाव कैसे करें और इसके प्रयोग की सावधानियां क्या क्या हैं।
0: जब आप पूजा के लिए बेलपत्र लेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह का बेलपत्र पूजा में प्रयोग करेंगे वो भी जानते हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, 1 ऊपर और 2 अगल बगल। पत्तियां टूटी हुई ना हो और पत्तियों में छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करेंगे चिकनी तरफ से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं और बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। वैसे तो एक ही बेलपत्र आप जल से धो करके बार बार चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार में अगर 9 बेलपत्र चढ़ाएं और उसके बाद जल चढ़ाएं तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे।
1: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा पर जा सकते हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न अनमोल कुमार यादव जी ने हमें नेपाल से लिखा है। 7 मार्च 2006 का जन्म है, 8:15 रात को नेपाल। ये कह रहे हैं कि मैंने 12वीं पास कर ली है, क्या मैं आगे ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, विदेश जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनमोल आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपको अभी अपने मैनेजमेंट की, अपने फाइनेंस की पढ़ाई नेपाल या भारत से करनी चाहिए, अभी आपको विदेश जाने की सलाह नहीं देंगे। पढ़ाई करने के बाद लगभग 6 वर्षों के बाद अगर आप विदेश जाना चाहें तब आप विदेश जाकर नौकरी कर सकते हैं, अभी आप भारत या नेपाल से ही पढ़ाई करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, 2027 के अप्रैल तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: अगला प्रश्न श्रीमती मुन्नी गुप्ता ने हमें लिखा है, असम से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 25 जुलाई 1996, 10:45 रात को कोकराझाड़ आसाम। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, क्या शादी आगे चल सकेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। मुन्नी जी आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मेष लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से ये जो उनका पहला विवाह है इसके चलने की संभावना नहीं लग रही है, अगले 10 से 11 महीने में ये शादी ब्रेक होगी, आपकी बेटी को कष्ट से और विवाह से मुक्ति मिलेगी ऐसा लग रहा है। साल 2028 में इनका दूसरा विवाह होगा और दूसरा विवाह इनके लिए कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। एक इनको माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाएं और इनसे बोलें कि रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके विवाह में काफी विलंब हो रहा हो तो कैसे करें बेलपत्र का उपयोग और प्रयोग, आइए जानते हैं पंडित जी से।
0: अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी शादी होने में काफी देरी हो रही है तो बेल पत्र के प्रयोग से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या उपाय करें? अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 35 साल है तो 35 बेल पत्र ले लें। हर बेल पत्र पर चंदन से राम लिखिए और इसके बाद एक एक बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए। हर बेल पत्र के साथ कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कहते हुए एक एक बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और जब सारे बेल पत्र चढ़ा लें तो उसके बाद जल चढ़ाइए और फिर शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। वैसे तो ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन अगर सावन में ये प्रयोग करें तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे।
1: अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो रही हो, आप लगातार बीमार पड़ रहे हो, तो बेलपत्र का कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं।
0: अगर आपको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या है या परिवार में किसी को स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लीजिएगा। एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लीजिएगा। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठिए, एक एक बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाते जाइए और वन बाय वन शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। इसके बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप किसी और के लिए भी ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर ये प्रयोग आप सावन में एक बार भी करते हैं तो गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
1: और वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी, आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर संतान होने में कष्ट हो रहा हो, आपकी संतान ना हो पा रही हो, तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करें, चलिए जान लेते हैं।
0: अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? पति और पत्नी दोनों ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करेंगे। उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक कटोरी में दूध ले लीजिए, एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए। हर बेलपत्र को अर्पित करने के साथ कहेंगे ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ये मंत्र कहते जाएंगे और इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे।

0: बारे में, लेकिन अगर किसी वैद्य से आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर ये प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए बेल के पत्तों का रस आंखों में सुबह के समय टपकाने से राहत मिलती है। कफ से अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो बेल के पत्तों को उबाल कर उसमें शहद मिलाएं, बेल के पत्तों का काढ़ा पिएं, आपको कफ से राहत मिलेगी। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकाल कर सुबह सुबह खाली पेट पीने से कितना ही पुराना सरदर्द क्यों ना हो, सरदर्द ठीक हो जाता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: की, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: अगला प्रश्न अश्लेषा ने हमें लिखा है, नासिक महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। पिता की जन्म तारीख है 11 जनवरी 1962, 5 बजे प्रातः, जलगांव महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की शारीरिक मानसिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और आने वाले समय में उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अश्लेषा, आपके पिताजी की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके पिताजी के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अभी मध्यम समय चल रहा है, थोड़ा सुधार अक्टूबर 2026 के बाद होगा, लेकिन पूरी तरह से जिंदगी रास्ते पे आएगी नवंबर 2027 के बाद।

0: ठीक है, भविष्य में उन्नति करेंगे, नवंबर 27 के बाद उनका बेहतर समय आ रहा है। अपने पिताजी को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और अपने पिताजी से कहें कि रोज सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से ही आज का अंतिम और चौथा प्रश्न, वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न हमें कामिनी अग्रवाल ने लिखा है और कामिनी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1980, शाम के 6 बजे, जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं वाराणसी से। कामिनी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ लगी रहती है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। कामिनी जी, आपकी कुंडली में केवल आपको अपने डाइजेशन का, अपने पेट का ध्यान देना है, बाकी मामले इतने गंभीर नहीं हैं और बेवजह की चिंता करने से बचना है। वैसे कुल मिला के फरवरी 2027 तक थोड़ा सावधानी रखिए, उसके बाद से स्थितियां आपकी बेहतर दिख रही हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बेलपत्र के बारे में, तो हमें पता है कि बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है, तो हम शिव जी की पूजा के वक्त बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो क्या बेलपत्र का किसी और देवी देवता से भी कोई संबंध है?
0: जी देखिए, ये हम सब जानते हैं कि शिव जी की पूजा में बेलपत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बेलपत्र का संबंध माता लक्ष्मी से भी है और बेलपत्र को लक्ष्मी यानी समृद्धि देने वाला माना जाता है। हर शुक्रवार को शाम के समय अगर आप माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके उनकी पूजा करें तो आपको जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त होगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 5 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह के मामलों में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गले में माला पहन करके सोना चाहिए, सो सकते हैं? देखिए, माला धारण करने के पहले उसको अभिमंत्रित कर लिया जाता है, और आप कोई भी माला पहनते हो, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, इस माला को रात को सोने के पहले उतार देना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दोबारा इस माला को धारण कर लेना चाहिए।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज के शुभ पहर यानी कि 5 अगस्त 2026 बुधवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार शुभ पहर का समय है। शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक इस समय में भगवान गणेश की आरती करेंगे। आपकी संतान और विवाह संबंधी समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और अब जानेंगे आज की गुडलक राशि क्या है, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये प्रयोग सावन में शुरू करके लगातार 9 दिन तक करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और इसके बाद शिवलिंग पर दोनों हाथों से चंदन लगाइएगा और इसके बाद सुखद वैवाहिक जीवन की, अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करिएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से आपने महा उपाय तो जान लिया, बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: सावन का पहला सप्ताह है, कांवड़ यात्रा की रौनक देखने लगी है और शिव भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक है। हरिद्वार हो कि सुल्तानगंज, कांवड़ियों की अलग ही छटा नजर आ रही है। कांवड़ मार्ग पर एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कुछ अनूठे हैं तो कुछ भव्य और विशाल। कांवड़ यात्रा के तमाम अनोखे रंगों को देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।

ये रंग, ये उत्साह, त्याग और साधना सब महादेव के लिए है। पवित्र नदियों का जल पात्रों में भरकर नंगे पांव कावड़ उठाए चल पड़े हैं शिव भक्त। महादेव को रिझाने, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भाव जताने, सावन के पावन माह में कांवड़ियों का ये जोश देखते ही बनता है। पांव में घुंघरू, कांधे पर कांवड़ उठाए, बम बम भोले का जय घोष करते कांवड़िया मानो भगवान शिव का साक्षात्कार करने चले हों। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और देखने को मिल रही है कांवड़ों की अनोखी सजावट और महादेव में कांवड़ियों की अटूट आस्था के कई रंग। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। माँ गंगा के तट पर यहाँ इन दिनों कांवड़ियों का जमघट है और झांकियां सजी हैं अनूठे और भव्य कांवड़ों की। एक से बढ़कर एक अनूठी, भव्य और विशाल। कोई अपनी कांवड़ यात्रा में भगवान महाकाल को साथ लेकर चले हैं, तो किसी के कांवड़ पर वीर बजरंगी विराजे हैं। कहीं आदि योगी ध्यान में लीन है, तो कहीं भगवान विष्णु का नरसिंह रूप गर्जना कर रहा है। औघड़ दानी शिव का ये रूप देखिए, नरमुंडों के बीच सिर पर चंद्रमा और माथे पर त्रिपुंड सजाए, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो तीनों लोकों की डोर थाम कर बैठे हों। ये कांवड़ जहाँ जहाँ से गुजर रही है देखने वाले सिर झुकाकर महादेव को नमन कर रहे हैं।

0: अध खुली पलकें, होठों पर मंद मुस्कान, माथे पर तिलक, महादेव का ये आनंदमय आदियोगी स्वरूप भक्तों का मन मोह रहा है। भगवान यहाँ अपने महाकाल स्वरूप में भी है, सामने नंदी भी भगवान की सेवा में हाजिर हैं। भगवान के इस आनंदमय स्वरूप को केवल मन में बसाकर ही नहीं, कांवड़ में अपने साथ लेकर चले हैं शिव भक्त। ये कांवड़ अपने आप में अनूठा है। यात्रा भले ही महादेव के लिए है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार वाली कांवड़ सजाई गई है, और भगवान नरसिंह का रूप भी ऐसा मानो दुष्टों पर अभी काल बनकर टूट पड़ेंगे। आवाज नहीं है, लेकिन मूर्ति ऐसी जीवंत की गर्जना सुनाई दे जाए। इस विशाल कांवड़ में भगवान शिव भी संहारकर्ता की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हरि और हर का मेल भी तो अनूठा है। भक्त जिस भाव से भगवान को देखें, मूरत उस भाव में ढल जाती है। इन्होंने भगवान शिव का पूरा परिवार अपने कांवड़ में सजाया है, और चाहत यही है कि उनके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे।
1: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए, हाँ पहले भी जो मांगा वो मिला है, बोले बाबा से
2: भगवान की जय।
1: पूरे परिवार को, पूरे सब बोलो को अच्छा रखे, बस हमें यही
2: बुकिंग लेके जाओगे?
1: हाँ जी, नहीं बोले अभी तक कोई कष्ट आया नहीं, बाकी और बाबा की कृपा है।
0: एक महादेव के कितने रंग, महादेव की सुंदर छवि देखिए, पीछे गरुड़ सेवा में है और आगे माँ गौरी संग विराजे हैं। इस कांवड़ को सजाने में इस भक्त को करीब 2 लाख रुपए लग गए, लेकिन कोई फिक्र नहीं, महादेव का दिया महादेव को समर्पित, यही भाव लेकर सजा लिया कांवड़। कहते हैं भोलेनाथ का दिया सब कुछ है, कुछ मांगने की क्या जरूरत।
1: लग गया 1.5 से 2 लाख रुपए लग गया हमारे सिर्फ कांवड़ कांवड़ के, डीजे अलग वो सब मिला के।
2: क्या मन में है, कांवड़ ले जा रहे हो?
1: बोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
2: पहले भी आ चुके हो?
1: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
2: मांगा था जो पूरा हुआ है?
1: सब दे रखा बोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
2: कितने लोग आए हो?
1: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलियां भी बहुत सारी, 12-13 बच्चे बहुत सारे, सब आ रखे 40-45 बोले हमारे साथ।
0: रावण की गिनती भोलेनाथ के अनन्य भक्तों में होती है, यहाँ उनकी भी झलक देखने को मिल रही है। महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न है, और रावण ने कैलाश पर्वत को ही अपने सिर पर उठा लिया है, और इस सुंदर दृश्य को एक शिव भक्त ने कांवड़ में सजाकर कांधे पर उठा लिया है। हरिद्वार के इस कांवड़ मेले में अयोध्या और केदारनाथ मंदिर की झांकी वाली कांवड़ भी देखने को मिल रही है, और ये है वीर बजरंगी वाली कांवड़ जिसे हरिद्वार से अंबाला ले जाया जा रहा है। ये इनकी पहली विशाल कांवड़ यात्रा है। उनके इस भव्य कांवड़ में 9 फीट ऊंचे बजरंगी विराजे हैं, साथ में औघड़नाथ, माता गौरी, भगवान गणेश और कार्तिकेय भी हैं, और पहरेदार बने हैं 2 बंदर। कोई मन्नत नहीं थी, बस चाह जगी और सजा लिया विशाल कांवड़। चल पड़े हरिद्वार से गंगा जल लेकर, मानो शिव की मर्जी, शिव का बुलावा, हम तो बस निमित्त मात्र हैं।
3: इनमें बाहुबली हैं, 2 बंदर हैं जी, और 2 कार्तिक गणेश है, 2 गौरी हैं, और अघड़नाथ जी हैं, 2 बंदर हैं। ये कांवड़ है जी क्या अपना 9 फीट की है।
0: कोई विशाल कांवड़ लेकर चला है, तो कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन राह चुन रहा है। इन 2 भाइयों को देखिए, कोई अपने कांवड़ में 81 लीटर गंगा जल लेकर, तो कोई 101 लीटर गंगा जल लेकर हरिद्वार से चले हैं।
4: पहली बार में थोड़ी दिक्कत आई, उसके बाद वेट बढ़ता रहा, तो अब जाके भगवान की कृपा और माँ बाप के आशीर्वाद से 111 लीटर जल उठाया है मैंने।
5: पहली कांवड़ कितने लीटर की थी?
4: बोले पहली मेरी 11 लीटर की थी।
5: 11 लीटर से 4 साल में 111 लीटर पर आ?
4: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बोले।
5: तो इसके लिए पूरे साल की तैयारी करते हो, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट, क्या तैयारी रहती है?
4: बोले देखो, कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा इन 4 सालों में। भगवान की मर्जी होती है, उठाता हूँ और आ जाता हूँ सीधा उसके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद।
0: चेहरे पर मासूमियत, महाकाल के नाम वाली टी शर्ट और कुर्ते, कांधे पर कांवड़ उठाए, भगवान भोले के इन नन्हे और बुजुर्ग भक्तों को देखकर तो आप बस यही कहेंगे, महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, सबकी मुराद पूरी हो, महादेव में आस्था बनी रहे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अब उन पदक वीरों की बात करेंगे जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शान बढ़ाई। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 49 मेडल जीतने वाले इन एथलीट्स की भारत वापसी हुई तो उन चैंपियंस का दिल्ली में भव्य स्वागत देखने को मिला।

0: ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है। अपनों के बीच आकर
1: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है। इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे आगे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे।
1: काफी अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आई, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, कोचिज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
0: इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है।
4: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है,
5: इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए। और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है।
6: अगला टारगेट क्या है
5: आपका? अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है।
7: पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीत कर और अपने देश का तिरंगा लहराकर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं, सीना गर्व से चौड़ा हुआ है।
8: पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आगे आने वाला कॉमनवेल्थ हम इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल भी हम कर सकते हैं। एंड अगेन ये इतना मेडल कभी हमारे को आया नहीं था, इतना 20 साल में हमारा को मिला था टोटल 5 मेडल, इस सिर्फ एक ही कॉमनवेल्थ में हम 7 मेडल जीत लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल जीतने के लिए प्लान कर रहे हैं। 100 मेडल हम जीतेगा, ये अक्टूबर में जापान में होने वाला पैरा एशियन गेम्स में हम लोग मोर देन 100 मेडल जीतेगा।
0: देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का सम्मान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया।
9: कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे, उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहां से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वहां आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा, वहां आपको देश के न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहां तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ऐसे में वहां के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
6: ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए, और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं। इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी, और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़ें।
0: जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री किसी विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि अनुभव से मिलती है। दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाले असलम इसकी जीती जाती मिसाल हैं। असलम रिक्शा चलाते हैं, लेकिन हुनर ऐसा है कि विदेशी पर्यटकों से उनकी अपनी भाषा में बात करते हैं।
0: चांदनी चौक जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये इलाका ऐतिहासिक धरोहरों, चहल पहल भरे बाजारों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। इस इलाके की तंग गलियों में एक ऐसा आदमी भी है जिसने अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई है। इनका नाम है असलम। असलम पेशे से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अंदाज ऐसा कि पर्यटक उन्हें चलता फिरता लैंग्वेज गाइड कहते हैं।
11: दिल्ली के चांदनी चौक की गलियां अपने खाने और शादी ब्याह की मार्केटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन आजकल चांदनी चौक की गलियां एक इंसान की वजह से ज्यादा मशहूर हैं, जिनका नाम है असलम। असलम यूं तो चांदनी चौक के आसपास रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो कई भाषाएं बोल लेते हैं, जर्मन बोल लेते हैं, इटालियन बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, और इसी वजह से आजकल वो बहुत वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम भी चांदनी चौक पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे असलम से और जानेंगे कि जितना वीडियो में बोलते हैं उतना ही है या फिर कुछ आगे का भी ज्ञान वो ले रहे हैं।
0: असलम की अंग्रेजी पर शानदार पकड़ है और वो जर्मन, फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में पर्यटकों से अच्छे बात भी कर लेते हैं। यही खासियत उन्हें चांदनी चौक की भीड़ में सबसे अलग पहचान दिला रही है।
12: सर, आई एम रिक्शा ड्राइवर असलम, रिक्शा वाला, ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक। So, and Spice Market is very famous, the all of the Asia number one, and Chandni Chowk, the Moonlight Street, and Shahjahanabad, and also different market, the street, and the old Delhi, in the Wedding Street, Sari Street, Silver Street, and so many narrow line, the small street, and also very beautiful, the temples, so Jain temples, Hindu temple, and the Sikh temple, and also big mosque, biggest mosque to India, and Jama Masjid, and also this Central Christian Puppet Church.
0: असलम विदेशी मेहमानों से बेझिझक उनकी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। उन्हें चांदनी चौक की गलियों से लेकर दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत तक का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
12: ओल्ड दिल्ली रिक्शा इज मच बेटर, यूर वॉकिंग अलोन, नेवर आइडिया, आई नो वेरी वेल योर होम, आई नो वेरी वेल आई एम दिल्ली, सो रिक्शा इज मच बेटर स्पीकिंग एंड ड्राइवर ऑल टुगेदर, सो यू आर हैप्पी, सो आई एम हैप्पी सर, यू आर माई गेस्ट।
0: कहते हैं कि अगर सीखने की लगन हो तो जिंदगी खुद सबसे बड़ी पाठशाला बन जाती है। न कोई बड़ी डिग्री, न किसी महंगे संस्थान की ट्रेनिंग, सिर्फ जिज्ञासा, मेहनत और सीखने का जुनून। यही कहानी है चांदनी चौक के असलम की।
12: हम जो है फॉरनर के साथ जो है हम सीखे हैं और उन्हीं में ढल गए, इसलिए हमें थोड़ा बोलना सीखना आ गया, पढ़ने लिखने नहीं आता है।
0: आज यही मेहनत और सीखने का जुनून उन्हें आम रिक्शा चलाने वालों से अलग पहचान दिला रहा है।
12: आई एम बिचकले ड्राइवर, सो बिचकलेता एंड रिक्शा बोलते हैं रिक्शा को, सो बिचकलेता एंड 220 दिल्ली, ऑल इज द ओल्ड मरकातो, मरकातो स्पाइसिया, मरकातो प्लाता, मरकातो सारी, आला मिस्किता, टेम्पलो जैन, टेम्पलो हिंदू, एंड ऑल्सो पिकोलो पिकोलो बाजार, सो इटालियन सो इज द स्पीक।
0: असलम की ये यात्रा संदेश दे रही है कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है? बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है? और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है? क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटीए स्पेशल। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ साथ जब कांवड़िए रास्ते से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा मार्ग में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कई दलों में कांवड़िए अपना संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव के से जुड़े जो कांवड़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई करुण की छांव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़ और कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर लगातार चल रहा है। तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सिरों पर सवार शिव जी का अद्भुत कांवड़ लेकर चल रहा है और एक कांवड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार बाकायदा दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या रंग देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कावड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कावड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कावड़ों के साथ ये भोले कावड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था।

इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कांवड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कांवड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कांवड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कांवड़ को भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
2: और भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
3: कितने लोग आए होते?
2: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी है बहुत सारी, 12-13।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो
5: पहले भी ले गए।
4: हाँ पहले भी पूरे परिवार को, पूरे सब हमारे सब को अच्छा रखे, बस हमने ये
5: लेके जाओगे
4: नहीं बोले अभी तक तो कोई कष्ट आया नहीं, बाकी और बाबा जी।

हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

देखिए अलग अलग अंदाज में सजी कांवड़ों की झांकी तो आपने देख ली, अब आपको सजे धजे कांवड़िए भी दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग जहां कुछ कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार अच्छे से जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी आज भी किसी ना किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है।

0: ये संभव नहीं कि कावड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण, एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा को पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है, या फिर किसी विशाल कावड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कावड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है, जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर रहा है।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूँ और दिल्ली पहुंचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। क्योंकि विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अबकी बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कांवड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती है। कांवड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कांवड़िए का मनोरथ एक। बोल बम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले चार दिनों से कांवड़ मेला चल रहा है और अब इस मेले की रौनक अपने चरम पर देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए अब तक हर की पैड़ी से जल उठा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज हरिद्वार में इन कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बाकायदा कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर कांवड़ियों का स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, उन्हें पटका पहनाया और फल फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ कांवड़ियों की सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन आज हरिद्वार में किया गया और नजदीक ही कांवड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने भंडारे में कांवड़ियों को भोजन परोसा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, औपचारिक रूप से कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए कई कांवड़िए अपने अपने शहरों से पहले ही निकल जाते हैं और अब ये तमाम कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कई अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। दिल्ली NCR के रास्तों में अब कांवड़िए दिखने लगे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने नोएडा पहुंचे कांवड़ियों से मुलाकात की।

0: अलग अलग कावड़ में आपको अलग अलग रंग, अलग अलग भक्ति, अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं। यूं तो हर कावड़ में हर जल के कलश के ऊपर आपको भोलेनाथ दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन इस खास कावड़ में आप देखेंगे तो कलश के ऊपर प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई गई है। ये कांवड़ बरसाने से आ रही है, बरसाने जाएगी, बरसाने के लोग इस जल को हरिद्वार से लेकर वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। बरसाने में नंदगांव इनका गांव है और नंदगांव में जो भोलेनाथ का मंदिर है कहते हैं वो भी बहुत खास है। भोलेनाथ जब नंदगांव में आए थे तो वो दर्शन करना चाहते थे श्री कृष्ण के, लेकिन माता यशोदा ने मना कर दिया कि बच्चा डर जाएगा। उसके बाद उन्होंने वहां तपस्या की और तपस्या करने के बाद नंदगांव में जो मंदिर बना भोलेनाथ का, उस मंदिर में अब ये बच्चे जल लेकर जा रहे हैं और वहां चढ़ाएंगे। ये दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे हैं और ये दोनों एक साथ इस कांवड़ को लेकर आ रहे हैं। प्रेमानंद जी की फोटो इस पर आपने देख ली है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो कहानी इन लोगों ने मुझे सुनाई थी। क्या नाम है आपका?
1: सचिन।
0: सचिन और
1: विष्णु।
0: सचिन और विष्णु, पहली बार है आप लोग का?
1: आज पहली बार है।
0: पहली बार है और कितना जल लिया है?
1: हमने 41 प्लस लिया है।
0: 41 लीटर से ज्यादा जल है इनके पास, पहली बार निकले।
1: 55 के आसपास है।
0: 55 के आसपास पूरा वेट होगा?
1: पूरा वेट होगा।
0: कितनी उम्र है?
1: हमारी 19.5।
0: 19.5 साल के हैं और ये 20 साल के हैं, 6 महीने बड़े हैं आपसे, है ना? और पहली बार जल लेकर निकले हैं। पहली बार में ही इन्होंने 41 लीटर से ज्यादा का जल उठाया है। घर वाले मान गए थे कि उठा लो इतना पानी पहली बार?
1: घर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया था कि 11 से ऊपर मत लाना। तो फिर हमने कोशिश करी कि ले, दोनों भाइयों ने मैंने कि उठा लेंगे कोई नहीं, पर हम 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे 11 से पहले हम पहुंच जाएंगे। तो हमने एक ही बार में 41 प्लस कर ही दिया डाय।
0: भोले के छोटे भक्तों से आपको मिलवा रहा हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, इनके कंधे पे कांवड़ है, जल लेकर ये निकले हैं और साथ में उनके बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन इन बच्चों का जज्बा देखिए आप, किसी की उम्र 9 साल है, किसी की 11, किसी की 13। बारी बारी से इनसे बात करते हैं, जल लेकर आए हैं नोएडा में, हमसे इनकी मुलाकात हो रही है और चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, जबकि इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं। चलो पहले एक बार कस के जगह लगा देते हैं, ठीक है? हर हर महादेव की गूंज लेकर हरिद्वार से ये बच्चे चले थे।
2: हम पलवल से आगे 10 किलोमीटर फुलवाड़ी गांव हरियाणा।
0: बच्चे थके तो नहीं रास्ते में, परेशान तो नहीं कर रहे?
2: कुछ भी दिक्कत नहीं,
0: बहुत बढ़िया है। तो पिता हैं साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इतने छोटे बच्चों को आप कांवड़ की यात्रा में देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता की एक भी लकीर इनमें से किसी बच्चे के माथे पर दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भोलेनाथ के जयकारों के साथ, गूंज के साथ लगातार आगे बढ़ रहे। कैमरा मैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे नोएडा।
3: और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई

0: के स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए की कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम, मोली, मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड।

0: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचो समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली का है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को जूता मारकर भाग गया। क्या इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए असम की बाढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: एक पुलिस वाले को जूते से मारकर भागते लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांग मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नए शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। इन सब के बीच एक पुलिस वाले को जूते से मारकर सरपट भागते लड़के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च के संदर्भ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो में किसी सड़क पर खूब भीड़ दिख रही है और आपाधापी का माहौल है। एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता दिखता है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक हर जगह ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च का बताकर खूब शेयर किया जा रहा है। जहां कई लोग इसे जेंजी की हरकत बताते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने पहले लड़के को लात मारी, इसलिए लड़के की हरकत सही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में युवक एक पुलिसकर्मी को जूते से मारकर भागते हुए नजर आ रहा है, और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का वीडियो है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने हालिया संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में एक जगह है STET और बिहार लिखा हुआ है। ये देखकर हमें लगा कि ये बिहार में STET यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े किसी प्रदर्शन से संबंधित हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम की नजर वीडियो में दिख रहे पुलिस वाले की वर्दी के बैज पर भी गई। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस पर बिहार पुलिस लिखा हुआ था। इससे ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो बिहार का ही है। इसके अलावा सर्च के दौरान भी हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल की प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई दिल्ली का ये वीडियो होता तो फिर ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर होती खबर। लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला, जहां इसे 16 अगस्त 2025 को पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये पटना में हुए STET अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। जनसुराज पार्टी ने भी 7 अगस्त 2026 को ये वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में लिखा हुआ था कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने से रोकना है तो जनता को नीतीश बीजेपी को सबक सिखाना होगा। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 7 अगस्त 2025 की छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पटना के जेपी गोलंबर इलाके का है, जहां सैकड़ों अभ्यर्थी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस वजह से इलाके में जाम लग गया था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि ये वीडियो न तो हाल फिलहाल का है और न ही दिल्ली का है। ये बिहार की राजधानी पटना का अगस्त 2025 का वीडियो है, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा था। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: असम में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और इसी से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को बाढ़ में डूबी हुई और टूटी हुई मस्जिद पर खड़ा हुए देखा जा सकता है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम का है, जहां एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: असम में मॉनसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य के 5 प्रमुख जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और चराईदेव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, एक मीनार और गुंबद बचा हुआ है। इसी मीनार के पास खड़े होकर एक शख्स अजान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को असम का बताकर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भीषण बाढ़ में एक मस्जिद बह जाने की कगार पर है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ अजान जारी है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ से मुतासर एक मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जा रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो असम का है, जहां पर बाढ़ में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मस्जिद के एक शख्स अजान देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हाँ, ये बात सच है कि असम में मॉनसूनी सीजन में कई दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण जिले के कई इलाकों में भयानक बाढ़ आई हुई है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और नगांव जिले में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई लोगों की जान भी चली गई है, तो वहीं हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीडियो वायरल हुआ। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में कई ऐसी गलतियां हमें नजर आई, जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो की असलियत पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर बाढ़ के पानी में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है, वीडियो का हर फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है, सही है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 20 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इस पोस्ट में एआई का लेबल लगा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के ऊपर गूगल जेमिनी का एक वाटरमार्क भी नजर आ रहा है। ये वाटरमार्क उन वीडियो या तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल एआई के जरिए बनाया या एडिट किया जाता है। इसके बाद हमने गूगल एआई से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल एआई की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के एआई से बने होने की 99% संभावना बताई। साफ है वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ। ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में।
6: आज की फ्लाइट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों? देखो फिर
7: चलें, फिर लेट नहीं हो सकते आज।
4: एक बेटे ने अपनी माँ के लिए ऐसा खास सरप्राइज तैयार किया जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। माँ के चेहरे की खुशी और बेटे की आंखों में दिखता गर्व लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल वीडियो में एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा अपनी जिंदगी का एक यादगार पल शेयर करते नजर आते हैं।
6: बचपन में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था।
4: उन्होंने पहली बार अपनी माँ को उसी विमान में सफर कराया जिसकी कमान खुद उनके हाथों में थी।
8: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ।
6: आगे हजारों पैसेंजर्स को उड़ाऊंगा अपने साथ, बट मेरी फेवरेट यात्री तो यही रहेंगी।
4: यह अनुभव केवल एक उड़ान नहीं बल्कि माँ के वर्षों के त्याग और बेटे की मेहनत का खूबसूरत संगम बन गया। वीडियो की शुरुआत तनिष के पायलट की वर्दी पहनने से होती है। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। पूरे रास्ते माँ के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई देता है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद दोनों साथ साथ बोर्डिंग गेट तक जाते हैं। उड़ान शुरू होने से पहले तनिष अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे। इस पर माँ का जवाब बेहद सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला होता है।
8: आराम से फ्लाई करना।
4: वह कहती हैं सुरक्षित उड़ान भरना और अपना ध्यान रखना। माँ के इन शब्दों में चिंता, प्यार और आशीर्वाद तीनों साफ झलकते हैं। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उसे प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसमें नन्ना बच्चा जापानी लाइन मेथड की मदद से बेहद आसान तरीके से गुड़ा का सवाल हल करता दिखाई देता है। उसकी समझ, आत्मविश्वास और सवाल हल करने का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
2: थ्री
4: वीडियो में बच्चा अपनी कॉपी पर 234 × 2 का गुणा करता नजर आता है। पहली नजर में ये नॉर्मल मैथ्स के सवाल जैसा लगता है, लेकिन इसे हल करने का तरीका हर किसी को चौंका देता है।
9: 234 × 2
4: बच्चा ना तो क्लासिक तरीके से मल्टीप्लाई करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेता है। वह रंग बिरंगे स्केच पेन निकालता है और सबसे पहले पहली संख्या के हर अंक के हिसाब से सीधी लाइनें बनाना शुरू करता है। पहले 2 लाइनें, फिर 3 और आखिर में 4 लाइनें खींचता है। इसके बाद वह दूसरी संख्या यानी 2 के अनुसार 2 आड़ी लाइनें बनाता है। यह आड़ी लाइनें पहले से बनी सभी सीधी लाइनों को काटती हुई गुजरती हैं। जब पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है तब बच्चा उन सभी जगहों को गिनना शुरू करता है।
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4: जहाँ लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है, यानी वह इंटरसेक्शन की संख्या के आधार पर उत्तर निकालता है। गिनती पूरी होते ही वह क्रम से अंक लिखता है और कुछ ही पलों में कॉपी पर 468 लिख देता है।
9: 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4
4: यही इस सवाल का सही उत्तर भी है। वीडियो देखने वाले कई लोग इस अनोखे तरीके को देखकर हैरान रह गए।
9: 4, 6, 8
10: गुड बाय,
9: वेलकम।
4: इस बच्ची की वायरल तस्वीर बता रही है कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है। क्रिकेट खेल रही इस बच्ची की शुरुआत की 4 बॉल्स तो मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खेल में कमबैक करती है और हर बॉल को उसके मुकाम तक पहुँचा कर ही दम लेती है। दरअसल बच्ची की 4 बॉल मिस हो जाने के बाद भी उसकी गिव अप ना करने की हैबिट और उसका कंपोज व्यवहार सबको अट्रैक्ट कर रहा है। इस छोटी बच्ची का कूल व्यक्तित्व सबको लुभा रहा है और यूजर्स उसमें भविष्य का क्रिकेटर देख रहे हैं।

0: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने अपनी अनोखी सोच और बच्चों के प्रति सम्मान भरे व्यवहार से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहा ये वीडियो तंजानिया के बुईगिरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड का बताया जा रहा है। स्कूल में नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक वाक्ती जोसेफ कलोंडा हर सुबह अपने छात्रों का स्वागत एक ऐसे अंदाज में करते हैं जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे धूल भरे रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर आते हैं शिक्षक उनके सामने झुक जाते हैं और एक कपड़े से उनके जूतों की धूल साफ करने लगते हैं। इसके बाद वे हर बच्चे से मुस्कुराकर बात करते हैं और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल में दिन की शुरुआत ही सकारात्मक सोच और सम्मान के साथ होती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: जी, इसके पहले कभी भी जीवन में समुद्र नहीं देखे हैं और मैं समुद्र तट पे लेके आया हूं उनको। बाबूजी का पहला रिएक्शन देखते हैं।
0: एक बुजुर्ग के पहली बार समंदर के किनारे पर घूमने के वीडियो ने इंटरनेट की जनता को एक ही पल में भावुक और खुश कर दिया है। दोनों इमोशन महसूस करा दिए हैं। बेटा अपने पिता को उड़ीसा के कोनार के चंद्रभागा बीच लेकर पहुँचता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर समंदर को नमन करते नजर आते हैं।
1: ठीक है हम लोग।
0: जब पानी बुजुर्ग शख्स के पैर को पहली बार छूता है तब उनका भूलापन देखने को मिलता है। वे झुककर पानी को अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस बीच जब पानी लगातार उनके पाँव को छू रहा होता है तो उनके खुलकर हंसने की आवाज सुनने को मिलती है।
1: देखना रह गया था।
2: सपना देखी कभी नहीं हम देखे।
1: चंद्रभागा बीच कोणार्क में और बाबूजी अनुभव ले रहे हैं पहली बार समुद्र के पास। पानी आ गया। पानी।
0: उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं कि जुनून भी खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने बास्केटबॉल कोर्ट पर ऐसा कमाल दिखाया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनका शानदार अंदाज और गजब का कॉन्फिडेंस अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बास्केटबॉल दादाजी के हाथों में पहुंचती है उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है वह सचमुच देखने लायक होता है। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बास्केटबॉल को शानदार तरीके से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बॉडी पोस्चर और ड्रिबलिंग स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बरसों के अनुभवी बास्केटबॉल प्लेयर हों। जैसे ही वे बास्केट नेट के पास पहुंचते हैं वे बिना एक पल गवाए गेंद को बास्केट की ओर उछाल देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। पहले तो गेंद बास्केट नेट के रिम पर जाकर टकराती है और फिर वह वहां से बाउंस बैक होकर ठीक दूसरी तरफ लगे बास्केट नेट में जाकर सीधे गोल हो जाती है। इस असंभव से दिखने वाले और बेहद यूनिक शॉट को देख कोर्ट पर मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले दर्शक हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर एक साधारण इंतजार का पल एक यादगार पल में बदल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉबी सलादी नाम का एक आर्टिस्ट एयरपोर्ट पर बैठी एक अनजान महिला का चित्र चुपचाप बना रहा है। स्केच पूरा होने पर कलाकार उसे महिला के बगल में बैठे पुरुष को सौंप देता है जो उसे महिला को दे देता है। अपने चित्र को देखकर वो मुस्कुराते हुए कलाकार को थैंक यू बोलती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अब उन पदक वीरों की बात करेंगे जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शान बढ़ाई। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीतने वाले इन एथलीट्स की भारत वापसी हुई तो उन चैंपियंस का दिल्ली में भव्य स्वागत देखने को मिला।

0: ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है। अपनों के बीच आकर
1: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है। इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे आगे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे।
1: काफी अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आए, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, कोचिज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
0: इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है।
4: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है,
5: इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए। और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है।
6: पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीत कर और अपने देश का तिरंगा लहरा कर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं, सीना गर्व से चौड़ा हुआ है।
7: पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आगे आने वाला कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल भी हम कर सकते हैं। एंड अगेन ये इतना मेडल कभी हमारे को आया नहीं था, इतना 20 साल में हमारा को मिला था टोटल 5 मेडल, इस सिर्फ एक ही कॉमनवेल्थ में हम 7 मेडल जीत लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल जीतने के लिए प्लान कर रहा है। 100 मेडल हम जीतेगा, ये अक्टूबर में जापान में होने वाला पैरा एशियन गेम्स में हम लोग मोर देन 100 मेडल जीतेगा।
0: देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का सम्मान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया।
8: कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे। उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहां से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वहां आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा, वहां आपको देश की न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहां तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ऐसे में वहां के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
9: ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए, और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं। इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी, और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़ें।
0: जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को इसके ऊपर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ साथ जब कांवड़िया रास्ते से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा मार्ग में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कई दलों में कांवड़िए अपना संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव के से जुड़े जो कांवड़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई करुण की छांव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़ और कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर लगातार चल रहा है। तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सिरों पर सवार शिवजी का अद्भुत कांवड़ लेकर चल रहा है और एक कांवड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार बाकायदा दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या रंग देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्टकार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कांवड़ों के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। शिव शंभू रे, शंभू रे, जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था।

इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कांवड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कांवड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है। महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कावड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कावड़ को भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कावड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
1: आज भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कावड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कावड़ है हमारी।
2: मांगा था जो पूरा हुआ है,
1: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
2: कितने लोग आए होते?
1: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी है बहुत सारी, 12-13।
3: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई है वो खुश रहे।
4: पहले भी कभी लेके?
3: हाँ पहले भी
1: लेके जाओगे? नहीं बोले अभी तक, कोई कष्ट आया नहीं। बाकी और बाबा जी

हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

देखिए अलग अलग अंदाज में सजी कांवड़ों की झांकी तो आपने देख ली, अब आपको सजे धजे कांवड़िए भी दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग जहां कुछ कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार अच्छे से जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी आज भी किसी ना किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है।

0: ये संभव नहीं कि कावड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण। एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा को पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है, या फिर किसी विशाल कांवड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समय पर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर रहा है।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूँ और दिल्ली पहुंचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। शक विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कांवड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती हैं। कांवड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कांवड़िए का मनोरथ एक। बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले चार दिनों से कांवड़ मेला चल रहा है और अब इस मेले की रौनक अपने चरम पर देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए अब तक हर की पैड़ी से जल उठा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज हरिद्वार में इन कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बाकायदा कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर कांवड़ियों का स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, उन्हें पटका पहनाया और फल फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ कांवड़ियों की सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन आज हरिद्वार में किया गया और नजदीक ही कांवड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने भंडारे में कांवड़ियों को भोजन परोसा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, औपचारिक रूप से कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए कई कांवड़िए अपने अपने शहरों से पहले ही निकल जाते हैं और अब ये तमाम कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कई अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। दिल्ली NCR के रास्तों में अब कांवड़िए दिखने लगे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने नोएडा पहुंचे कांवड़ियों से मुलाकात की।

0: अलग अलग कावड़ में आपको अलग अलग रंग, अलग अलग भक्ति, अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं। यूं तो हर कावड़ में हर जल के कलश के ऊपर आपको भोलेनाथ दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन इस खास कावड़ में आप देखेंगे तो कलश के ऊपर प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई गई है। ये कांवड़ बरसाने से आ रही है, बरसाने जाएगी, बरसाने के लोग इस जल को हरिद्वार से लेकर वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। बरसाने में नंदगांव इनका गांव है और नंदगांव में जो भोलेनाथ का मंदिर है कहते हैं वो भी बहुत खास है। भोलेनाथ जब नंदगांव में आए थे तो वो दर्शन करना चाहते थे श्री कृष्ण के, लेकिन माता यशोदा ने मना कर दिया कि बच्चा डर जाएगा। उसके बाद उन्होंने वहां तपस्या की और तपस्या करने के बाद नंदगांव में जो मंदिर बना भोलेनाथ का, उस मंदिर में अब ये बच्चे जल लेकर जा रहे हैं और वहां चढ़ाएंगे। ये दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे हैं और ये दोनों एक साथ इस कांवड़ को लेकर आ रहे हैं। प्रेमानंद जी की फोटो उस पर आपने देख ली है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो कहानी इन लोगों ने मुझे सुनाई थी। क्या नाम है आपका?
1: सचिन।
0: सचिन और
1: विष्णु।
0: सचिन और विष्णु, पहली बार है आप लोग का?
1: पहली बार है।
0: पहली बार है। और कितना जल लिया है?
1: हमने 41+ लिया है।
0: 41 लीटर से ज्यादा जल है इनके पास, पहली बार निकले।
1: 55 के आसपास है।
0: 55 के आसपास पूरा वेट होगा?
1: पूरा वेट होगा।
0: कितनी उम्र है?
1: हमारी 19.5।
0: 19.5 साल के हैं और ये 20 साल के हैं, 6 महीने बड़े हैं आपसे, है ना? और पहली बार जल लेकर निकले हैं। पहली बार में ही इन्होंने 41 लीटर से ज्यादा का जल उठाया है। घर वाले मान गए थे कि उठा लो इतना पानी पहली बार?
1: घर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया था कि 11 से ऊपर मत लाना। तो फिर हमने कोशिश करी कि ले, दोनों भाइयों ने मैंने कि उठा लेंगे कोई नहीं, पर हम 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे 11 से पहले हम पहुंच जाएंगे। तो हमने एक ही बार में 41+ कर ही दिया।
0: भोले के छोटे भक्तों से आपको मिलवा रहा हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, इनके कंधे पे कांवड़ है, जल लेकर ये निकले हैं और साथ में उनके बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन इन बच्चों का जज्बा देखिए आप, किसी की उम्र 9 साल है, किसी की 11, किसी की 13, बारी बारी से इनसे बात करते हैं। जल लेकर आए हैं नोएडा में, हमसे इनकी मुलाकात हो रही है और चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, जबकि इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं। चलो पहले एक बार कस के जगह लगा देते हैं, ठीक है? हर हर महादेव की गूंज लेकर हरिद्वार से ये बच्चे चले थे।
2: हम पलवल से आगे 10 किलोमीटर फुलवाड़ी गांव हरियाणा।
0: बच्चे थके तो नहीं रास्ते में? परेशान तो नहीं कर रहे?
2: कुछ भी दिक्कत नहीं।
0: बहुत बढ़िया है। तो पिता है साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इतने छोटे बच्चों को आप कांवड़ की यात्रा में देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता की एक भी लकीर इनमें से किसी बच्चे के माथे पर दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भोलेनाथ के जयकारों के साथ, गूंज के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा मैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे नोएडा।
3: और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी, क्योंकि देखिए राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाकघरों में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक

0: ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स रोली कुमकुम उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए की कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम मोली मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
9: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के

0: दौर में अब खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचो समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली का है, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को जूता मारकर भाग गया। क्या इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए असम की बाढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
0: एक पुलिस वाले को जूते से मारकर भागते लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांग मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नए शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। इन सब के बीच एक पुलिस वाले को जूते से मारकर सरपट भागते लड़के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च के संदर्भ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो में किसी सड़क पर खूब भीड़ दिख रही है और आपाधापी का माहौल है। एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता दिखता है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक हर जगह ये वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च का बताकर खूब शेयर किया जा रहा है। जहां कई लोग इसे जेंजी की हरकत बताते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने पहले लड़के को लात मारी, इसलिए लड़के की हरकत सही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवा के एक पुलिसकर्मी को जूते से मारकर भागते हुए नजर आ रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का वीडियो है, जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने हालिया संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में एक जगह STET और बिहार लिखा हुआ है। ये देखकर हमें लगा कि ये बिहार में STET यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े किसी प्रदर्शन से संबंधित हो सकता है। इसके बाद पाचक टीम की नजर वीडियो में दिख रहे पुलिस वाले की वर्दी के बैज पर भी गई। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस पर बिहार पुलिस लिखा हुआ था। इसे ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो बिहार का ही है। इसके अलावा सर्च के दौरान भी हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल की प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई दिल्ली का ये वीडियो होता तो फिर ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर होती खबर, लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला जहां इसे 16 अगस्त 2025 को पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये पटना में हुए एसटीईटी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। जनसुराज पार्टी ने भी 7 अगस्त 2026 को ये वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में लिखा हुआ था कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने से रोकना है तो जनता को नीतीश बीजेपी को सबक सिखाना होगा। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 7 अगस्त 2025 की छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पटना के जेपी गोलंबर इलाके का है, जहां सैकड़ों अभ्यर्थी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस वजह से इलाके में जाम लग गया था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि ये वीडियो न तो हाल फिलहाल का है और न ही दिल्ली का है। ये बिहार की राजधानी पटना का अगस्त 2025 का वीडियो है, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा था। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: असम में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और इसी से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को बाढ़ में डूबी हुई और टूटी हुई मस्जिद पर खड़ा हुए देखा जा सकता है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम का है, जहां एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: असम में मॉनसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य के 5 प्रमुख जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और चराईदेव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, एक मीनार और गुंबद बचा हुआ है। इसी मीनार के पास खड़े होकर एक शख्स अजान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को असम का बताकर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भीषण बाढ़ में एक मस्जिद बह जाने की कगार पर है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ अजान जारी है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ से मुतासर एक मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जा रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो असम का है, जहां पर बाढ़ में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मस्जिद के एक शख्स अजान देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हाँ, ये बात सच है कि असम में मॉनसूनी सीजन में कई दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण जिले के कई इलाकों में भयानक बाढ़ आई हुई है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और नगांव जिले में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई लोगों की जान भी चली गई है, तो वहीं हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीडियो वायरल हुआ। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में कई ऐसी गलतियां हमें नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो की असलियत पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर बाढ़ के पानी में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है, वीडियो का हर फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है, सही है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 20 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इस पोस्ट में एआई का लेबल लगा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के ऊपर गूगल जेमिनी का एक वाटरमार्क भी नजर आ रहा है। ये वाटरमार्क उन वीडियो या तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल एआई के जरिए बनाया या एडिट किया जाता है। इसके बाद हमने गूगल एआई से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल एआई की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के एआई से बने होने की 99% संभावना बताई। साफ है वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ। ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में।
8: आज की फ्लाइट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों? देखो फिर
9: चलें, फिर लेट नहीं हो सकते आज।
3: एक बेटे ने अपनी माँ के लिए ऐसा खास सरप्राइज तैयार किया जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। माँ के चेहरे की खुशी और बेटे की आंखों में दिखता गर्व लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल वीडियो में एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा अपनी जिंदगी का एक यादगार पल शेयर करते नजर आते हैं।
8: बचपन में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था।
3: उन्होंने पहली बार अपनी माँ को उसी विमान में सफर कराया जिसकी कमान खुद उनके हाथों में थी।
10: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ।
8: आगे हजारों पैसेंजर्स को उड़ाऊंगा अपने साथ, बट मेरी फेवरेट यात्री तो यही रहेंगी।
3: यह अनुभव केवल एक उड़ान नहीं बल्कि माँ के वर्षों के त्याग और बेटे की मेहनत का खूबसूरत संगम बन गया। वीडियो की शुरुआत तनिष के पायलट की वर्दी पहनने से होती है। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। पूरे रास्ते माँ के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई देता है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद दोनों साथ साथ बोर्डिंग गेट तक जाते हैं। उड़ान शुरू होने से पहले तनिष अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे। इस पर माँ का जवाब बेहद सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला होता है।
10: आराम से फ्लाई करना।
3: वह कहती हैं, सुरक्षित उड़ान भरना और अपना ध्यान रखना। माँ के इन शब्दों में चिंता, प्यार और आशीर्वाद तीनों साफ झलकते हैं। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उसे प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसमें नन्ना बच्चा जापानी लाइन मेथड की मदद से बेहद आसान तरीके से गुड़ा का सवाल हल करता दिखाई देता है। उसकी समझ, आत्मविश्वास और सवाल हल करने का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में बच्चा अपनी कॉपी पर 234x2 का गुणा करता नजर आता है। पहली नजर में ये नॉर्मल मैथ्स के सवाल जैसा लगता है लेकिन इसे हल करने का तरीका हर किसी को चौंका देता है।
11: 234x2
7: बच्चा ना तो क्लासिक तरीके से मल्टीप्लाई करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेता है। वह रंग बिरंगे स्केच पेन निकालता है और सबसे पहले पहली संख्या के हर अंक के हिसाब से सीधी लाइनें बनाना शुरू करता है। पहले दो लाइनें, फिर तीन और आखिर में चार लाइनें खींचता है। इसके बाद वह दूसरी संख्या यानी दो के अनुसार दो आड़ी लाइनें बनाता है। यह आड़ी लाइनें पहले से बनी सभी सीधी लाइनों को काटती हुई गुजरती हैं। जब पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है तब बच्चा उन सभी जगहों को गिनना शुरू करता है।
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7: जहाँ लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है यानी वे इंटरसेक्शन की संख्या के आधार पर उत्तर निकालता है। गिनती पूरी होते ही वे क्रम से अंक लिखता है और कुछ ही पलों में कॉपी पर 468 लिख देता है।
11: 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4
7: यही सवाल का सही उत्तर भी है। वीडियो देखने वाले कई लोग इस अनोखे तरीके को देखकर हैरान रह गए।
11: 4, 6, 8
12: गुड बाय,
11: वेलकम।
7: इस बच्ची की वायरल तस्वीर बता रही है कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है। क्रिकेट खेल रही इस बच्ची की शुरुआत की चार बॉल्स तो मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खेल में कमबैक करती है और हर बॉल को उसके मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। दरअसल बच्ची की चार बॉल मिस हो जाने के बाद भी उसकी गिव अप ना करने की हैबिट और उसका कंपोज व्यवहार सबको अट्रैक्ट कर रहा है। इस छोटी बच्ची का कूल व्यक्तित्व सबको लुभा रहा है और यूजर्स उसमें भविष्य का क्रिकेटर देख रहे हैं।

0: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने अपनी अनोखी सोच और बच्चों के प्रति सम्मान भरे व्यवहार से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहा ये वीडियो तंजानिया के बुईगिरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड का बताया जा रहा है। स्कूल में नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक वाक्ती जोसेफ कलोंडा हर सुबह अपने छात्रों का स्वागत एक ऐसे अंदाज में करते हैं जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे धूल भरे रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर आते हैं शिक्षक उनके सामने झुक जाते हैं और एक कपड़े से उनके जूतों की धूल साफ करने लगते हैं। इसके बाद वे हर बच्चे से मुस्कुराकर बात करते हैं और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल में दिन की शुरुआत ही सकारात्मक सोच और सम्मान के साथ होती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: जी, इसके पहले कभी भी जीवन में समुद्र नहीं देखे हैं और मैं समुद्र तट पे लेकर आया उनको। बाबूजी का पहला रिएक्शन देखते हैं।
0: एक बुजुर्ग के पहली बार समंदर के किनारे पर घूमने के वीडियो ने इंटरनेट की जनता को एक ही पल में भावुक और खुश कर दिया है। दोनों इमोशन महसूस करा दिए हैं। बेटा अपने पिता को उड़ीसा के कोनार के चंद्रभागा बीच लेकर पहुँचता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर समंदर को नमन करते नजर आते हैं।
1: ठीक है हम लोग।
0: जब पानी बुजुर्ग शख्स के पैर को पहली बार छूता है तब उनका भूलापन देखने को मिलता है। वे झुककर पानी को अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस बीच जब पानी लगातार उनके पाँव को छू रहा होता है तो उनके खुलकर हंसने की आवाज़ सुनने को मिलती है।
1: देखना रह गया था।
2: सपना देखी कभी नहीं हम देखे।
1: चंद्रभागा बीच कोणार्क में और बाबूजी अनुभव ले रहे हैं पहली बार समुद्र के पास। पानी आ गया। पानी।
0: बढ़ने का मतलब यह नहीं कि जुनून भी खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने बास्केटबॉल कोर्ट पर ऐसा कमाल दिखाया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनका शानदार अंदाज और गजब का कॉन्फिडेंस अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बास्केटबॉल दादाजी के हाथों में पहुंचती है उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है वह सचमुच देखने लायक होता है। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बास्केटबॉल को शानदार तरीके से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बॉडी पोस्चर और ड्रिबलिंग स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बरसों के अनुभवी बास्केटबॉल प्लेयर हों। जैसे ही वे बास्केट नेट के पास पहुंचते हैं वे बिना एक पल गवाए गेंद को बास्केट की ओर उछाल देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। पहले तो गेंद बास्केट नेट के रिम पर जाकर टकराती है और फिर वह वहां से बाउंस बैक होकर ठीक दूसरी तरफ लगे बास्केट नेट में जाकर सीधे गोल हो जाती है। इस असंभव से दिखने वाले और बेहद यूनिक शॉट को देख कोर्ट पर मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले दर्शक हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर एक साधारण इंतजार का पल एक यादगार पल में बदल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉबी सलादी नाम का एक आर्टिस्ट एयरपोर्ट पर बैठी एक अनजान महिला का चित्र चुपचाप बना रहा है। स्केच पूरा होने पर कलाकार उसे महिला के बगल में बैठे पुरुष को सौंप देता है जो उसे महिला को दे देता है। अपने चित्र को देखकर वो मुस्कुराते हुए कलाकार को थैंक यू बोलती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुरली चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अब उन पदक वीरों की बात करेंगे जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शान बढ़ाई। 13 गोल्ड 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 49 मेडल जीतने वाले इन एथलीट्स की भारत वापसी हुई तो उन चैंपियंस का दिल्ली में भव्य स्वागत देखने को मिला।

0: ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है। अपनों के बीच आकर
1: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है। इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे आगे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे।
1: काफी अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आए, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, कोचीज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
0: इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है।
4: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है,
5: इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए। और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है।
6: अगला टारगेट क्या है?
5: अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है।
7: पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीत कर और अपने देश का तिरंगा लहराकर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं, सीना गर्व से चौड़ा हुआ है।
8: पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आगे आने वाला कॉमनवेल्थ हम इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल भी हम कर सकते हैं। एंड अगेन ये इतना मेडल कभी हमारे को आया नहीं था, इतना 20 साल में हमारा को मिला था टोटल 5 मेडल, इस सिर्फ एक ही कॉमनवेल्थ में हम 7 मेडल जीत लिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल जीतने के लिए प्लान कर रहा है। 100 मेडल हम जीतेगा, ये अक्टूबर में जापान में होने वाला पैरा एशियन गेम्स में हम लोग मोर देन 100 मेडल जीतेगा।
0: देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का सम्मान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया।
9: कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे। उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहां से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वहां आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा, वहां आपको देश के न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहां तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं
6: छत्तीसगढ़ के लिए। और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं, इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़ें।
0: जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ साथ जब कांवड़िया रास्ते से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा मार्ग में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कई दलों में कांवड़िए अपना संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव के से जुड़े जो कांवड़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई करुण की छांव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़ और कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर लगातार चल रहा है। तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सिरों पर सवार शिवजी का अद्भुत कांवड़ लेकर चल रहा है और एक कांवड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार बाकायदा दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या रंग देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कावड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कावड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कावड़ों के साथ ये भोले कावड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़ नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुँचा था।

इसी तरह कावड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कावड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कावड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कावड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कावड़ को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कावड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
2: आज बोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कावड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कावड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा बोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
3: कितने लोग आए होते?
2: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी है बहुत सारी, 12-13।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे।
5: पहले भी कभी लेके?
4: हाँ पहले भी
2: पूरे परिवार को, पूरे हमारे सब फूलों को अच्छा रखे, बस हमें यही
5: लेके जाओगे
2: नहीं बोले अभी तक, कोई कष्ट आया नहीं। बाकी और बाबा जी

हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

देखिए, अलग अलग अंदाज में सजी कांवड़ों की झांकी तो आपने देख ली, अब आपको सजे धजे कांवड़िए भी दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग जहां कुछ कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार अच्छे से जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी आज भी किसी ना किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है।

0: ये संभव नहीं कि कांवड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण, एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है, या फिर किसी विशाल कांवड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है, जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर रहा है।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूँ और दिल्ली पहुंचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। ठग विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कांवड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती है। कांवड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कांवड़िए का मनोरथ एक। बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले चार दिनों से कांवड़ मेला चल रहा है और अब इस मेले की रौनक अपने चरम पर देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए अब तक हर की पैड़ी से जल उठा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज हरिद्वार में इन कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बाकायदा कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर कांवड़ियों का स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, उन्हें पटका पहनाया और फल फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ कांवड़ियों की सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन आज हरिद्वार में किया गया और नजदीक ही कांवड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने भंडारे में कांवड़ियों को भोजन परोसा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, औपचारिक रूप से कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए कई कांवड़िए अपने अपने शहरों से पहले ही निकल जाते हैं और अब ये तमाम कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कई अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। दिल्ली NCR के रास्तों में अब कांवड़िए दिखने लगे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने नोएडा पहुंचे कांवड़ियों से मुलाकात की।

0: अलग अलग कावड़ में आपको अलग अलग रंग, अलग अलग भक्ति, अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं। यूं तो हर कावड़ में हर जल के कलश के ऊपर आपको भोलेनाथ दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन इस खास कावड़ में आप देखेंगे तो कलश के ऊपर प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई गई है। ये कांवड़ बरसाने से आ रही है, बरसाने जाएगी, बरसाने के लोग इस जल को हरिद्वार से लेकर वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। बरसाने में नंदगांव इनका गांव है और नंदगांव में जो भोलेनाथ का मंदिर है कहते हैं वो भी बहुत खास है। भोलेनाथ जब नंदगांव में आए थे तो वो दर्शन करना चाहते थे श्री कृष्ण के, लेकिन माता यशोदा ने मना कर दिया कि बच्चा डर जाएगा। उसके बाद उन्होंने वहां तपस्या की और तपस्या करने के बाद नंदगांव में जो मंदिर बना भोलेनाथ का, उस मंदिर में अब ये बच्चे जल लेकर जा रहे हैं और वहां चढ़ाएंगे। ये दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे हैं और ये दोनों एक साथ इस कांवड़ को लेकर आ रहे हैं। प्रेमानंद जी की फोटो उस पर आपने देख ली है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो कहानी इन लोगों ने मुझे सुनाई थी। क्या नाम है आपका?
1: सचिन।
0: सचिन और
1: विष्णु।
0: सचिन और विष्णु, पहली बार है आप लोग का?
1: आज पहली बार है।
0: पहली बार है। और कितना जल लिया है?
1: हमने 41 प्लस लिया है।
0: 41 लीटर से ज्यादा जल है इनके पास, पहली बार निकले।
1: 55 के आसपास है।
0: 55 के आसपास पूरा वेट होगा?
1: पूरा वेट होगा।
0: कितनी उम्र है?
1: हमारी 19.5।
0: 19.5 साल के हैं और ये 20 साल के हैं, 6 महीने बड़े हैं आपसे, है ना? और पहली बार जल लेकर निकले हैं। पहली बार में ही इन्होंने 41 लीटर से ज्यादा का जल उठाया है। घर वाले मान गए थे कि उठा लो इतना पानी पहली बार?
1: घर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया था कि 11 से ऊपर मत लाना। तो फिर हमने कोशिश करी कि ले, दोनों भाइयों ने मैंने कि उठा लेंगे कोई नहीं, पर हम 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे 11 से पहले हम पहुंच जाएंगे। तो हमने एक ही बार में 41 प्लस कर ही दिया डाय।
0: भोले के छोटे भक्तों से आपको मिलवा रहा हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, इनके कंधे पे कांवड़ है, जल लेकर ये निकले हैं और साथ में उनके बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन इन बच्चों का जज्बा देखिए आप, किसी की उम्र 9 साल है, किसी की 11, किसी की 13। बारी बारी से इनसे बात करते हैं, जल लेकर आए हैं। नोएडा में हमसे इनकी मुलाकात हो रही है और चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, जबकि इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं। चलो पहले एक बार कस के जगह लगा देते हैं, ठीक है? हर हर महादेव की गूंज लेकर हरिद्वार से ये बच्चे चले थे।
2: हम पलवल से आगे 10 किलोमीटर फुलवाड़ी गांव हरियाणा।
0: बच्चे थके तो नहीं रास्ते में? परेशान तो नहीं कर रहे?
2: कुछ भी दिक्कत नहीं,
0: बहुत बढ़िया है। तो पिता है साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इतने छोटे बच्चों को आप कांवड़ की यात्रा में देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता की एक भी लकीर इनमें से किसी बच्चे के माथे पर दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भोलेनाथ के जयकारों के साथ, गूंज के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
3: और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी, क्योंकि देखिए राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाक घरों में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में हैं, बड़े

0: जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें बेच सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
1: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
0: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
1: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नवजोत रंधावा, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचो समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती

0: है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली का है जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को जूता मारकर भाग गया। क्या इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए असम की बाढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर असान दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: एक पुलिस वाले को जूते से मारकर भागते लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांग मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नए शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। इन सब के बीच एक पुलिस वाले को जूते से मारकर सरपट भागते लड़के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च के संदर्भ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो में किसी सड़क पर खूब भीड़ दिख रही है और आपाधापी का माहौल है। एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता दिखता है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक हर जगह ये वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च का बताकर खूब शेयर किया जा रहा है। जहां कई लोग इसे जेंजी की हरकत बताते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने पहले लड़के को लात मारी, इसलिए लड़के की हरकत सही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवक एक पुलिसकर्मी को जूते से मारकर भागते हुए नजर आ रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का वीडियो है जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने हालिया संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में एक जगह STET और बिहार लिखा हुआ है। ये देखकर हमें लगा कि ये बिहार में STET यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े किसी प्रदर्शन से संबंधित हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम की नजर वीडियो में दिख रहे पुलिस वाले की वर्दी के बैच पर भी गई। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस पर बिहार पुलिस लिखा हुआ था। इससे ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो बिहार का ही है। इसके अलावा सर्च के दौरान भी हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल की प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई दिल्ली का ये वीडियो होता तो फिर ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर होती खबर, लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला जहां इसे 16 अगस्त 2025 को पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये पटना में हुए STET अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। जनसुराज पार्टी ने भी 7 अगस्त 2026 को ये वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में लिखा हुआ था कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने से रोकना है तो जनता को नीतीश बीजेपी को सबक सिखाना होगा। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 7 अगस्त 2025 की छपी एक रिपोर्ट मिली। जिसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पटना के जेपी गोलंबर इलाके का है, जहां सैकड़ों अभ्यर्थी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस वजह से इलाके में जाम लग गया था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि ये वीडियो ना तो हाल फिलहाल का है और ना ही दिल्ली का है। ये बिहार की राजधानी पटना का अगस्त 2025 का वीडियो है, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा था। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: असम में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और इसी से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को बाढ़ में डूबी हुई और टूटी हुई मस्जिद पर खड़ा हुए देखा जा सकता है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम का है, जहां एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: असम में मॉनसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य के 5 प्रमुख जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और चराईदेव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, एक मीनार और गुंबद बचा हुआ है। इसी मीनार के पास खड़े होकर एक शख्स अजान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को असम का बताकर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भीषण बाढ़ में एक मस्जिद बह जाने की कगार पर है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ अजान जारी है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ से मुतासर एक मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जा रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो असम का है, जहां पर बाढ़ में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मस्जिद के एक शख्स अजान देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हाँ, ये बात सच है कि असम में मॉनसूनी सीजन में कई दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण जिले के कई इलाकों में भयानक बाढ़ आई हुई है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और नगांव जिले में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई लोगों की जान भी चली गई है, तो वहीं हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीडियो वायरल हुआ। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में कई ऐसी गलतियां हमें नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो की असलियत पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर बाढ़ के पानी में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है, वीडियो का हर फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है, सही है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 20 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इस पोस्ट में AI का लेबल लगा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के ऊपर गूगल जेमिनी का एक वाटर मार्क भी नजर आ रहा है। ये वाटर मार्क उन वीडियो या तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल AI के जरिए बनाया या एडिट किया जाता है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 99% संभावना बताई। साफ है वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ। ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में।
8: आज की फ्लाइट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों? देखो फिर
9: चलें, फिर लेट नहीं हो सकते आज।
3: एक बेटे ने अपनी माँ के लिए ऐसा खास सरप्राइज तैयार किया जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। माँ के चेहरे की खुशी और बेटे की आंखों में दिखता गर्व लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल वीडियो में एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा अपनी जिंदगी का एक यादगार पल शेयर करते नजर आते हैं।
8: बचपन में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था।
3: उन्होंने पहली बार अपनी माँ को उसी विमान में सफर कराया जिसकी कमान खुद उनके हाथों में थी।
10: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रही
8: हूँ। आगे हजारों पैसेंजर्स को उड़ाऊंगा अपने साथ, बट मेरी फेवरेट यात्री तो यही रहेंगी।
3: यह अनुभव केवल एक उड़ान नहीं बल्कि माँ के वर्षों के त्याग और बेटे की मेहनत का खूबसूरत संगम बन गया। वीडियो की शुरुआत तनिष्क के पायलट की वर्दी पहनने से होती है। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। पूरे रास्ते माँ के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई देता है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद दोनों साथ साथ बोर्डिंग गेट तक जाते हैं। उड़ान शुरू होने से पहले तनिष्क अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे। इस पर माँ का जवाब बेहद सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला होता है।
10: आराम से फ्लाई करना।
3: वह कहती हैं सुरक्षित उड़ान भरना और अपना ध्यान रखना। माँ के इन शब्दों में चिंता, प्यार और आशीर्वाद तीनों साफ झलकते हैं। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उसे प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसमें नन्ना बच्चा जापानी लाइन मेथड की मदद से बेहद आसान तरीके से गुड़ा का सवाल हल करता दिखाई देता है। उसकी समझ, आत्मविश्वास और सवाल हल करने का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में बच्चा अपनी कॉपी पर 234x2 का गुणा करता नजर आता है। पहली नजर में ये नॉर्मल मैथ्स के सवाल जैसा लगता है लेकिन इसे हल करने का तरीका हर किसी को चौंका देता है।
10: 234x2
3: बच्चा ना तो क्लासिक तरीके से मल्टीप्लाई करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेता है। वह रंग बिरंगे स्केच पेन निकालता है और सबसे पहले पहली संख्या के हर अंक के हिसाब से सीधी लाइनें बनाना शुरू करता है। पहले दो लाइनें, फिर तीन और आखिर में चार लाइनें खींचता है। इसके बाद वे दूसरी संख्या यानी दो के अनुसार दो आड़ी लाइनें बनाता है। ये आड़ी लाइनें पहले से बनी सभी सीधी लाइनों को काटती हुई गुजरती हैं। जब पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है तब बच्चा उन सभी जगहों को गिनना शुरू करता है।
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3: जहाँ लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है यानी वह इंटरसेक्शन की संख्या के आधार पर उत्तर निकालता है। गिनती पूरी होते ही वह क्रम से अंक लिखता है और कुछ ही पलों में कॉपी पर 468 लिख देता है।
10: 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4
3: यही इस सवाल का सही उत्तर भी है। वीडियो देखने वाले कई लोग इस अनोखे तरीके को देखकर हैरान रह गए।
7: 4, 6, 8
11: गुड बाय,
7: वेलकम।
3: इस बच्ची की वायरल तस्वीर बता रही है कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है। क्रिकेट खेल रही इस बच्ची की शुरुआत की 4 बॉल्स तो मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खेल में कमबैक करती है और हर बॉल को उसके मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। दरअसल बच्ची की 4 बॉल मिस हो जाने के बाद भी उसकी गिव अप ना करने की हैबिट और उसका कंपोज व्यवहार सबको अट्रैक्ट कर रहा है। इस छोटी बच्ची का कूल व्यक्तित्व सबको लुभा रहा है और यूजर्स उसमें भविष्य का क्रिकेटर देख रहे हैं।

0: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने अपनी अनोखी सोच और बच्चों के प्रति सम्मान भरे व्यवहार से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहा ये वीडियो तंजानिया के बुईगिरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड का बताया जा रहा है। स्कूल में नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक वाक्ती जोसेफ कलोंडा हर सुबह अपने छात्रों का स्वागत एक ऐसे अंदाज में करते हैं जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे धूल भरे रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर आते हैं शिक्षक उनके सामने झुक जाते हैं और एक कपड़े से उनके जूतों की धूल साफ करने लगते हैं। इसके बाद वे हर बच्चे से मुस्कुराकर बात करते हैं और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल में दिन की शुरुआत ही सकारात्मक सोच और सम्मान के साथ होती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: जी, इसके पहले कभी भी जीवन में समुद्र नहीं देखे हैं और मैं समुद्र तट पे लेकर आया हूं उनको। बाबूजी का पहला रिएक्शन देखते हैं।
0: एक बुजुर्ग के पहली बार समंदर के किनारे पर घूमने के वीडियो ने इंटरनेट की जनता को एक ही पल में भावुक और खुश कर दिया है। दोनों इमोशन महसूस करा दिए हैं। बेटा अपने पिता को उड़ीसा के कोनार के चंद्रभागा बीच लेकर पहुँचता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर समंदर को नमन करते नजर आते हैं।
1: ठीक है हम लोग।
0: जब पानी बुजुर्ग शख्स के पैर को पहली बार छूता है तब उनका भूलापन देखने को मिलता है। वे झुककर पानी को अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस बीच जब पानी लगातार उनके पाँव को छू रहा होता है तो उनके खुलकर हंसने की आवाज सुनने को मिलती है।
1: देखना रह गया था।
2: सपना देखी कभी नहीं हम देखे।
1: चंद्रभागा बीच कोणार्क में और बाबूजी अनुभव ले रहे हैं पहली बार समुद्र के पास। पानी आ गया। पानी।
0: उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं कि जुनून भी खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने बास्केटबॉल कोर्ट पर ऐसा कमाल दिखाया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनका शानदार अंदाज और गजब का कॉन्फिडेंस अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बास्केटबॉल दादाजी के हाथों में पहुंचती है उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है वह सचमुच देखने लायक होता है। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बास्केटबॉल को शानदार तरीके से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बॉडी पोस्चर और ड्रिबलिंग स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बरसों के अनुभवी बास्केटबॉल प्लेयर हों। जैसे ही वे बास्केट नेट के पास पहुंचते हैं वे बिना एक पल गवाए गेंद को बास्केट की ओर उछाल देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। पहले तो गेंद बास्केट नेट के रिम पर जाकर टकराती है और फिर वह वहां से बाउंस बैक होकर ठीक दूसरी तरफ लगे बास्केट नेट में जाकर सीधे गोल हो जाती है। इस असंभव से दिखने वाले और बेहद यूनिक शॉट को देख कोर्ट पर मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले दर्शक हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर एक साधारण इंतजार का पल एक यादगार पल में बदल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉबी सलादी नाम का एक आर्टिस्ट एयरपोर्ट पर बैठी एक अनजान महिला का चित्र चुपचाप बना रहा है। स्केच पूरा होने पर कलाकार उसे महिला के बगल में बैठे पुरुष को सौंप देता है जो उसे महिला को दे देता है। अपने चित्र को देखकर वो मुस्कुराते हुए कलाकार को थैंक यू बोलती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: अब उन पदक वीरों की बात करेंगे जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शान बढ़ाई। 13 गोल्ड 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 49 मेडल जीतने वाले इन एथलीट्स की भारत वापसी हुई तो उन चैंपियंस का दिल्ली में भव्य स्वागत देखने को मिला।

0: ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है, अपनों के बीच आकर
1: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है। इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही आगे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे।
1: काफी अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आए, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, कोचीज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
0: इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है।
4: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है,
5: इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए, और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है।
6: पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीतकर और अपने देश का तिरंगा लहराकर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं, सीना गर्व से चौड़ा हुआ है।
7: पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आगे आने वाला कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल भी हम कर सकते हैं। एंड अगेन, ये इतना मेडल कभी हमारे को आया नहीं था, इतना 20 साल में हमारा को मिला था टोटल 5 मेडल, इस सिर्फ एक ही कॉमनवेल्थ में हम 7 मेडल जीत लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल जीतने के लिए प्लान कर रहे हैं। 100 मेडल हम जीतेगा, ये अक्टूबर में जापान में होने वाला पैरा एशियन गेम्स में हम लोग मोर देन 100 मेडल जीतेगा।
0: देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का सम्मान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया।
8: कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे, उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहां से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वह आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा, वहां आपको देश के न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहां तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ऐसे में वहां के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
9: ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए, और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं। इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी, और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़ें।
0: जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी, बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटीए स्पेशल। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ साथ जब कांवड़िया रास्ते से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा मार्ग में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कई दलों में कांवड़िए अपना संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव के से जुड़े जो कांवड़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई करुण की छांव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़ और कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर लगातार चल रहा है। तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सिरों पर सवार शिव जी का अद्भुत कांवड़ लेकर चल रहा है और एक कांवड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार बाकायदा दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या रंग देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कांवड़ों के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था।

इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कांवड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कांवड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई है। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कावड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कावड़ को भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कावड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
2: आज भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कावड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कावड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
3: कितने लोग आए होते?
2: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी है बहुत सारी, 12-13।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे।
5: पहले भी ले गए?
4: हाँ पहले भी,
6: देखिए अलग अलग अंदाज में सजी कांवड़ों की झांकी तो आपने देख ली। अब आपको सजे धजे कांवड़िए भी दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग जहां कुछ कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार अच्छे से जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी आज भी किसी ना किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है।

ये संभव नहीं कि कांवड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प,

0: समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण, एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है या फिर किसी विशाल कावड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कावड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वही मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समय पर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर रहा है।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चला हूँ और दिल्ली पहुंचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेकर चला हूँ। पुष्पक विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कांवड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती हैं। कांवड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कांवड़िए का मनोरथ एक।

0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले चार दिनों से कांवड़ मेला चल रहा है और अब इस मेले की रौनक अपने चरम पर देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए अब तक हर की पैड़ी से जल उठा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज हरिद्वार में इन कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बाकायदा कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर कांवड़ियों का स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, उन्हें पटका पहनाया और फल फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ कांवड़ियों की सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन आज हरिद्वार में किया गया और नजदीक ही कांवड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने भंडारे में कांवड़ियों को भोजन परोसा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, औपचारिक रूप से कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए कई कांवड़िए अपने अपने शहरों से पहले ही निकल जाते हैं और अब ये तमाम कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कई अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। दिल्ली NCR के रास्तों में अब कांवड़िए दिखने लगे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने नोएडा पहुंचे कांवड़ियों से मुलाकात की।

0: अलग अलग कावड़ में आपको अलग अलग रंग, अलग अलग भक्ति, अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं। यूं तो हर कावड़ में हर जल के कलश के ऊपर आपको भोलेनाथ दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन इस खास कावड़ में आप देखेंगे तो कलश के ऊपर प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई गई है। ये कांवड़ बरसाने से आ रही है, बरसाने जाएगी। बरसाने के लोग इस जल को हरिद्वार से लेकर वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। बरसाने में नंदगांव इनका गांव है, और नंदगांव में जो भोलेनाथ का मंदिर है कहते हैं वो भी बहुत खास है। भोलेनाथ जब नंदगांव में आए थे तो वो दर्शन करना चाहते थे श्री कृष्ण के, लेकिन माता यशोदा ने मना कर दिया कि बच्चा डर जाएगा। उसके बाद उन्होंने वहां तपस्या की, और तपस्या करने के बाद नंदगांव में जो मंदिर बना भोलेनाथ का, उस मंदिर में अब ये बच्चे जल लेकर जा रहे हैं और वहां चढ़ाएंगे। ये दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे हैं, और ये दोनों एक साथ इस कांवड़ को लेकर आ रहे हैं। प्रेमानंद जी की फोटो उस पर आपने देख ली है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो कहानी इन लोगों ने मुझे सुनाई थी। क्या नाम है आपका?
1: सचिन।
0: सचिन और
1: विष्णु।
0: सचिन और विष्णु, पहली बार है आप लोग का?
1: आज पहली बार है।
0: पहली बार है, और कितना जल लिया है?
1: हमने 41 प्लस लिया है।
0: 41 लीटर से ज्यादा जल है इनके पास, पहली बार निकले।
1: 55 के आसपास है।
0: 55 के आसपास पूरा वेट होगा?
1: पूरा वेट होगा।
0: कितनी उम्र है?
1: हमारी 19.5।
0: 19.5 साल के हैं, और ये 20 साल के हैं, 6 महीने बड़े हैं आपसे, है ना? और पहली बार जल लेकर निकले हैं। पहली बार में ही इन्होंने 41 लीटर से ज्यादा का जल उठाया है। घर वाले मान गए थे कि उठा लो इतना पानी पहली बार?
1: घर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया था कि 11 से ऊपर मत लाना। तो फिर हमने कोशिश करी कि ले, दोनों भाइयों ने मैंने कि उठा लेंगे कोई नहीं, पर हम 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे 11 से पहले हम पहुंच जाएंगे। तो हमने एक ही बार में 41 प्लस कर ही दिया डाय।
0: भोले के छोटे भक्तों से आपको मिलवा रहा हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, इनके कंधे पे कावड़ है, जल लेकर ये निकले हैं, और साथ में उनके बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन इन बच्चों का जज्बा देखिए आप, किसी की उम्र 9 साल है, किसी की 11, किसी की 13। बारी बारी से इनसे बात करते हैं, जल लेकर आए हैं। नोएडा में हमसे इनकी मुलाकात हो रही है, और चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, जबकि इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं। चलो पहले एक बार कस के जगह लगा देते हैं, ठीक है? हर हर महादेव की गूंज लेकर हरिद्वार से ये बच्चे चले थे।
2: हम पलवल से आगे 10 किलोमीटर फुलवाड़ी गांव।

0: गाड़ी आ रही है।
1: बच्चे थके तो नहीं, रास्ते में परेशान तो नहीं कर रहे?
0: कुछ भी दिक्कत नहीं।
1: बहुत बढ़िया है। तो पिता है साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इतने छोटे बच्चों को आप कांवड़ की यात्रा में देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता की एक भी लकीर इनमें से किसी बच्चे के माथे पर दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भोलेनाथ के जयकारों के साथ, गूंज के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
2: और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी, क्योंकि देखिए राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाकघरों में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम, मोली, मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह, सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला

0: खबरें तो आ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
2: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है, नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचो समझे बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली का है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को जूता मारकर भाग गया, क्या है इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए असम की बाढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया, क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,
2: एक पुलिस वाले को जूते से मारकर भागते लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है, पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
4: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांग मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नए शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। इन सब के बीच एक पुलिस वाले को जूते से मारकर सरपट भागते लड़के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च के संदर्भ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो में किसी सड़क पर खूब भीड़ दिख रही है और आपाधापी का माहौल है। एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है।

0: पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता दिखता है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक हर जगह ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च का बताकर खूब शेयर किया जा रहा है। जहां कई लोग इसे जेंजी की हरकत बताते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने पहले लड़के को लात मारी, इसलिए लड़के की हरकत सही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवक एक पुलिसकर्मी को जूते से मारकर भागते हुए नजर आ रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये दिल्ली का वीडियो है, जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने हालिया संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में एक जगह STET और बिहार लिखा हुआ है। ये देखकर हमें लगा कि ये बिहार में STET यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े किसी प्रदर्शन से संबंधित हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम की नजर वीडियो में दिख रहे पुलिस वाले की वर्दी के बैच पर भी गई। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस पर बिहार पुलिस लिखा हुआ था। इससे ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो बिहार का ही है। इसके अलावा सर्च के दौरान भी हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल की प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई दिल्ली का ये वीडियो होता तो फिर ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर होती खबर, लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला, जहां इसे 16 अगस्त 2025 को पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये पटना में हुए STET अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। जनसुराज पार्टी ने भी 7 अगस्त 2026 को ये वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में लिखा हुआ था कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने से रोकना है तो जनता को नीतीश बीजेपी को सबक सिखाना होगा। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 7 अगस्त 2025 की छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पटना के JP गोलंबर इलाके का है, जहां सैकड़ों अभ्यर्थी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस वजह से इलाके में जाम लग गया था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि ये वीडियो ना तो हाल फिलहाल का है और न ही दिल्ली का है। ये बिहार की राजधानी पटना का अगस्त 2025 का वीडियो है, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा था। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: असम में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और इसी से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को बाढ़ में डूबी हुई और टूटी हुई मस्जिद पर खड़ा हुए देखा जा सकता है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम का है, जहां एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: असम में मॉनसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य के 5 प्रमुख जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और चराईदेव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, एक मीनार और गुंबद बचा हुआ है। इसी मीनार के पास खड़े होकर एक शख्स अजान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को असम का बताकर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भीषण बाढ़ में एक मस्जिद बह जाने की कगार पर है, लेकिन बावजूद इसके वहां अजान जारी है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ से मुतासर एक मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो असम का है, जहां पर बाढ़ में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मस्जिद के एक शख्स अजान देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हाँ, ये बात सच है कि असम में मानसूनी सीजन में कई दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण जिले के कई इलाकों में भयानक बाढ़ आई हुई है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और नगांव जिले में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई लोगों की जान भी चली गई है, तो वहीं हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीडियो वायरल हुआ। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में कई ऐसी गलतियां हमें नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो की असलियत पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर बाढ़ के पानी में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है, वीडियो का हर फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है, सही है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 20 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इस पोस्ट में AI का लेबल लगा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के ऊपर गूगल जेमिनी का एक वाटर मार्क भी नजर आ रहा है। ये वाटर मार्क उन वीडियो या तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल AI के जरिए बनाया या एडिट किया जाता है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 99% संभावना बताई। साफ है वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ। ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में।
4: आज की फ्लाइट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों, देखो फिर
5: चले, फिर लेट नहीं हो सकते आज।
2: एक बेटे ने अपनी माँ के लिए ऐसा खास सरप्राइज तैयार किया जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। माँ के चेहरे की खुशी और बेटे की आंखों में दिखता गर्व लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल वीडियो में एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा अपनी जिंदगी का एक यादगार पल शेयर करते नजर आते हैं।
4: बचपन में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था।
2: उन्होंने पहली बार अपनी माँ को उसी विमान में सफर कराया जिसकी कमान खुद उनके हाथों में थी।
6: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रही हूं।
4: आगे हजारों पैसेंजर्स को उड़ाऊंगा अपने साथ, बट मेरी फेवरेट यात्री तो यही रहेंगी।
2: ये अनुभव केवल एक उड़ान नहीं बल्कि माँ के वर्षों के त्याग और बेटे की मेहनत का खूबसूरत संगम बन गया। वीडियो की शुरुआत तनिष के पायलट की वर्दी पहनने से होती है। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। पूरे रास्ते माँ के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई देता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दोनों साथ साथ बोर्डिंग गेट तक जाते हैं। उड़ान शुरू होने से पहले तनिष अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे। इस पर माँ का जवाब बेहद सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला होता है।
6: आराम से फ्लाई करना।
2: वह कहती हैं, सुरक्षित उड़ान भरना और अपना ध्यान रखना,
7: माँ के इन शब्दों में चिंता, प्यार और आशीर्वाद तीनों साफ झलकते हैं। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उसे प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसमें नन्ना बच्चा जापानी लाइन मेथड की मदद से बेहद आसान तरीके से गुड़ा का सवाल हल करता दिखाई देता है। उसकी समझ, आत्मविश्वास और सवाल हल करने का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में बच्चा अपनी कॉपी पर 234 इंटू 2 का गुणा करता नजर आता है। पहली नजर में ये नॉर्मल मैथ्स के सवाल जैसा लगता है, लेकिन इसे हल करने का तरीका हर किसी को चौंका देता है।
8: 234 इंटू 2, 2 डबी।
7: बच्चा ना तो क्लासिक तरीके से मल्टीप्लाई करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेता है। वह रंग बिरंगे स्केच पेन निकालता है और सबसे पहली संख्या के हर अंक के हिसाब से सीधी लाइनें बनाना शुरू करता है। पहले 2 लाइनें, फिर 3 और आखिर में 4 लाइनें खींचता है। इसके बाद वह दूसरी संख्या यानी 2 के अनुसार 2 आड़ी लाइनें बनाता है। यह आड़ी लाइनें पहले से बनी सभी सीधी लाइनों को काटती हुई गुजरती हैं। जब पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है तब बच्चा उन सभी जगहों को गिनना शुरू करता है।
8: 4, 5, 6, 7, 8
7: जहाँ लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है, यानी वह इंटरसेक्शन की संख्या के आधार पर उत्तर निकालता है। गिनती पूरी होते ही वह क्रम से अंक लिखता है और कुछ ही पलों में कॉपी पर 468 लिख देता है।
8: 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4।
7: यही सवाल का सही उत्तर भी है। वीडियो देखने वाले कई लोग इस अनोखे तरीके को देखकर हैरान रह गए।
8: 4, 6, 8
9: गुड बाय,
8: वेलकम।
7: इस बच्ची की वायरल तस्वीर बता रही है कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है। क्रिकेट खेल रही इस बच्ची की शुरुआत की 4 बॉल्स तो मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खेल में कमबैक करती है और हर बॉल को उसके मुकाम तक पहुँचा कर ही दम लेती है। दरअसल बच्ची की 4 बॉल मिस हो जाने के बाद भी उसकी गिव अप ना करने की हैबिट और उसका कंपोज व्यवहार सबको अट्रैक्ट कर रहा है। इस छोटी बच्ची का कूल व्यक्तित्व सबको लुभा रहा है और यूजर्स उसमें भविष्य का क्रिकेटर देख रहे हैं।

0: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने अपनी अनोखी सोच और बच्चों के प्रति सम्मान भरे व्यवहार से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहा ये वीडियो तंजानिया के बुईगिरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड का बताया जा रहा है। स्कूल में नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक वाक्ती जोसेफ कलोंडा हर सुबह अपने छात्रों का स्वागत एक ऐसे अंदाज में करते हैं जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे धूल भरे रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर आते हैं, शिक्षक उनके सामने झुक जाते हैं और एक कपड़े से उनके जूतों की धूल साफ करने लगते हैं। इसके बाद वे हर बच्चे से मुस्कुराकर बात करते हैं और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल में दिन की शुरुआत ही सकारात्मक सोच और सम्मान के साथ होती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: जी, इसके पहले कभी भी जीवन में समुद्र नहीं देखे हैं और मैं समुद्र तट पे लेकर आया उनको। बाबूजी का पहला रिएक्शन देखते हैं।
0: एक बुजुर्ग के पहली बार समंदर के किनारे पर घूमने के वीडियो ने इंटरनेट की जनता को एक ही पल में भावुक और खुश कर दिया है। दोनों इमोशन महसूस करा दिए हैं। बेटा अपने पिता को उड़ीसा के कोनार के चंद्रभागा बीच लेकर पहुँचता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर समंदर को नमन करते नजर आते हैं।
1: ठीक है हम लोग।
0: जब पानी बुजुर्ग शख्स के पैर को पहली बार छूता है तब उनका भूलापन देखने को मिलता है। वे झुककर पानी को अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस बीच जब पानी लगातार उनके पाँव को छू रहा होता है तो उनके खुलकर हंसने की आवाज़ सुनने को मिलती है।
1: देखा रह गया था।
2: सपना भी कभी नहीं हम देखे थे।
1: चंद्रभागा बीच कोणार्क में और बाबूजी अनुभव ले रहे हैं पहली बार समुद्र के पास। पानी आ गया। पानी।
0: पढ़ने का मतलब यह नहीं कि जुनून भी खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने बास्केटबॉल कोर्ट पर ऐसा कमाल दिखाया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनका शानदार अंदाज और गजब का कॉन्फिडेंस अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बास्केटबॉल दादाजी के हाथों में पहुंचती है उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है वह सचमुच देखने लायक होता है। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बास्केटबॉल को शानदार तरीके से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बॉडी पोस्चर और ड्रिबलिंग स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बरसों के अनुभवी बास्केटबॉल प्लेयर हों। जैसे ही वे बास्केट नेट के पास पहुंचते हैं वे बिना एक पल गवाए गेंद को बास्केट की ओर उछाल देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। पहले तो गेंद बास्केट नेट के रिम पर जाकर टकराती है और फिर वह वहां से बाउंस बैक होकर ठीक दूसरी तरफ लगे बास्केट नेट में जाकर सीधे गोल हो जाती है। इस असंभव से दिखने वाले और बेहद यूनिक शॉट को देख कोर्ट पर मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले दर्शक हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर एक साधारण इंतजार का पल एक यादगार पल में बदल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉबी सलादी नाम का एक आर्टिस्ट एयरपोर्ट पर बैठी एक अनजान महिला का चित्र चुपचाप बना रहा है। स्केच पूरा होने पर कलाकार उसे महिला के बगल में बैठे पुरुष को सौंप देता है जो उसे महिला को दे देता है। अपने चित्र को देखकर वो मुस्कुराते हुए कलाकार को थैंक यू बोलती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब उन पदक वीरों की बात करेंगे जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शान बढ़ाई। 13 गोल्ड 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीतने वाले इन एथलीट्स की भारत वापसी हुई तो उन चैंपियंस का दिल्ली में भव्य स्वागत देखने को मिला।

0: ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है। अपनों के बीच आकर
1: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है, इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही आगे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे।
1: काफी अच्छा लग रहा है, हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आए, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, मैं कोचीज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
0: इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है।
4: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है,
5: ये इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए, और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है।
6: अगला टारगेट क्या है आपका?
5: अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है।
7: पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीत कर और अपने देश का तिरंगा लहरा कर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं, सीना गर्व से चौड़ा हुआ है।
8: पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आगे आने वाला कॉमनवेल्थ अब इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल भी हम कर सकते हैं। एंड अगेन, ये इतना मेडल कभी हमारे को आया नहीं था, इतना 20 साल में हमारा को मिला था टोटल 5 मेडल, इस सिर्फ एक ही कॉमनवेल्थ में हम 7 मेडल जीत लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल जीतने के लिए प्लान कर रहा है। 100 मेडल हम जीतेगा, ये अक्टूबर में जापान में होने वाला पैरा एशियन गेम्स में हम लोग मोर देन 100 मेडल जीतेगा।
0: देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का सम्मान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया।
9: कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे, उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहां से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वहां आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा, वहां आपको देश के न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहां तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ से आती है। ऐसे में वहां के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
10: ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए। और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं, इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़ें।
0: जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: 16 अगस्त से जनता के लिए खुलने जा रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण, ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। अमेरिका के टेक्सास में सनातन की गूंज, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया गीता का पाठ, एक साथ हुआ 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ। देश भर में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटीए स्पेशल। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है, तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ साथ जब कांवड़िया रास्ते से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा मार्ग में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कई दलों में कांवड़िए अपना संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव के से जुड़े जो कांवड़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई करुण की छांव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़ और कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर लगातार चल रहा है। तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सिरों पर सवार शिव जी का अद्भुत कांवड़ लेकर चल रहा है और एक कांवड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार बाकायदा दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या रंग देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कांवड़ों के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था।

इसी तरह कावड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कावड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कावड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कावड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कावड़ को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कावड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
2: अब बोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कावड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कावड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा बोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
3: कितने लोग आए होते?
2: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी है बहुत सारी, 12-13।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई है वो पुत्र है,
5: पहले भी कभी लेके।
4: हाँ पहले भी
2: नहीं बोले अभी तक, कोई कष्ट आया नहीं बाकी। और बाबा जी

हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

देखिए, अलग अलग अंदाज में सजी कांवड़ों की झांकी तो आपने देख ली, अब आपको सजे धजे कांवड़िए भी दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग जहां कुछ कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार अच्छे से जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी आज भी किसी ना किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है।

0: ये संभव नहीं कि कावड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण, एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा को पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है, या फिर किसी विशाल कावड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर रहा है।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूँ और दिल्ली पहुंचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिव जी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कांवड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती हैं। कांवड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कांवड़िए का मनोरथ एक। बोल बम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले चार दिनों से कांवड़ मेला चल रहा है और अब इस मेले की रौनक अपने चरम पर देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए अब तक हर की पैड़ी से जल उठा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज हरिद्वार में इन कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बाकायदा कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर कांवड़ियों का स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, उन्हें पटका पहनाया और फल फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ कांवड़ियों की सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन आज हरिद्वार में किया गया और नजदीक ही कांवड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने भंडारे में कांवड़ियों को भोजन परोसा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, औपचारिक रूप से कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए कई कांवड़िए अपने अपने शहरों से पहले ही निकल जाते हैं और अब ये तमाम कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कई अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। दिल्ली NCR के रास्तों में अब कांवड़िए दिखने लगे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने नोएडा पहुंचे कांवड़ियों से मुलाकात की।

0: अलग अलग कावड़ में आपको अलग अलग रंग, अलग अलग भक्ति, अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं। यूं तो हर कावड़ में हर जल के कलश के ऊपर आपको भोलेनाथ दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन इस खास कावड़ में आप देखेंगे तो कलश के ऊपर प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई गई है। ये कांवड़ बरसाने से आ रही है, बरसाने जाएगी, बरसाने के लोग इस जल को हरिद्वार से लेकर वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। बरसाने में नंदगांव इनका गांव है और नंदगांव में जो भोलेनाथ का मंदिर है कहते हैं वो भी बहुत खास है। भोलेनाथ जब नंदगांव में आए थे तो वो दर्शन करना चाहते थे श्री कृष्ण के, लेकिन माता यशोदा ने मना कर दिया कि बच्चा डर जाएगा। उसके बाद उन्होंने वहाँ तपस्या की और तपस्या करने के बाद नंदगांव में जो मंदिर बना भोलेनाथ का, उस मंदिर में अब ये बच्चे जल लेकर जा रहे हैं और वहाँ चढ़ाएंगे। ये दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे हैं और ये दोनों एक साथ इस कांवड़ को लेकर आ रहे हैं। प्रेमानंद जी की फोटो उस पर आपने देख ली है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो कहानी इन लोगों ने मुझे सुनाई थी। क्या नाम है
1: आपका? सचिन।
0: सचिन और
1: विष्णु।
0: सचिन और विष्णु, पहली बार है आप लोग का?
1: आज पहली बार है।
0: पहली बार है। और कितना जल लिया है?
1: हमने 41 प्लस लिया है।
0: 41 लीटर से ज्यादा जल है इनके पास, पहली बार निकले।
1: 55 के आसपास है।
0: 55 के आसपास पूरा वेट होगा?
1: पूरा वेट होगा।
0: कितनी उम्र है?
1: हमारी 19.5।
0: 19.5 साल के हैं और ये 20 साल के हैं, 6 महीने बड़े हैं आपसे, है ना? और पहली बार जल लेकर निकले हैं। पहली बार में ही इन्होंने 41 लीटर से ज्यादा का जल उठाया है। घर वाले मान गए थे कि उठा लो इतना पानी पहली बार?
1: घर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया था कि 11 से ऊपर मत लाना। तो फिर हमने कोशिश करी कि ले, दोनों भाइयों ने मैंने कि उठा लेंगे कोई नहीं, पर हम 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे 11 से पहले हम पहुंच जाएंगे। तो हमने एक ही बार में 41 प्लस कर ही दिया।
0: भोले के छोटे भक्तों से आपको मिलवा रहा हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, इनके कंधे पे कांवड़ है, जल लेकर ये निकले हैं और साथ में उनके बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन इन बच्चों का जज्बा देखिए आप, किसी की उम्र 9 साल है, किसी की 11, किसी की 13। बारी बारी से इनसे बात करते हैं, जल लेकर आए हैं। नोएडा में हमसे इनकी मुलाकात हो रही है और चेहरे पर आप देखिए बिल्कुल शिकन नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, जबकि इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं। चलो पहले एक बार कस के जगह लगा देते हैं, ठीक है? हर हर महादेव की गूंज लेकर हरिद्वार से ये बच्चे चले थे।
2: हम पलवल से आगे 10 किलोमीटर फुलवाड़ी गांव हरियाणा।
0: बच्चे थके तो नहीं रास्ते में? परेशान तो नहीं कर रहे?
2: कुछ भी दिक्कत नहीं।
0: बहुत बढ़िया है। तो पिता है साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इतने छोटे बच्चों को आप कांवड़ की यात्रा में देखते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता की एक भी लकीर इनमें से किसी बच्चे के माथे पर दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भोलेनाथ के जयकारों के साथ, गूंज के साथ लगातार आगे बढ़ रहे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
3: और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी, क्योंकि देखिए राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाक घरों में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम, मोली, मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,